0: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही दो लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
1: सर, सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण घिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर! फायर! आतंकी! जय! एक-एक को भूत डालो, कोई ना बचने पाए। फायर!
0: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
1: जवानों, आगे बढ़ो। एक दुश्मन बचने न पाए। आगे बढ़ो। फायर!
0: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया। पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
1: भगत सिंह,
0: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्यूनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्ते क्लास। टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
5: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
12: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
11: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
13: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
11: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
14: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
11: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
15: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
11: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
16: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
17: नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। जी हाँ, आज फिर से एक बार मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें होंगी कुछ उन्नत बातें खेती से जुड़ी। तो आज भी बहुत ही खास विषय हम लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा विषय है खेसारी की उन्नत खेती। और हमारे साथ हैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में डॉक्टर CK पांडा जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले आइए जानते हैं खेसारी की फसल के बारे में। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये बहुत ही कठोर फसल है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे कि अत्यधिक नमी हो, जल जमाव हो, सुखाड़ हो, इसमें सहने की क्षमता होती है। तो आज इसकी खेती के बारे में जानेंगे हम, और डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल भी करेंगे और उसके जवाब भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर खेती की बात आती है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बताएं कि हमें खेत की तैयारी यानी खेसारी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए।
18: नमस्कार किसान बंधुओं, और मैडम नमस्कार आपको भी। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा इस फसल के बारे में आपके साथ बात कर लेता हूँ।
17: जी जी,
18: देखिए आप जैसे बताया ना, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, तो सुखाड़ में बाढ़ में एक फसल है जो सरवाइव कर जाता है
17: जी।
18: और ये जो फसल है ना, ये बहुत दिन से हमारा देश नहीं, सिर्फ इंडिया मतलब भारतवर्ष, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रदेश, ये सब देश में भी इसका आबादी होता है। ये छोड़ के भी साउथ अफ्रीका का कुछ देश में और भी देश में इस फसल की आबादी होता है। और ये फसल का एक हम फलीदार फसल भी बोलते हैं, इसको लिगुमिनस फसल भी हम लोग बोलते हैं
17: जी।
18: ये लिगुमिनस फसल होने के कारण ये मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक होता है। कैसे
17: जी?
18: ना मिट्टी में इस फसल के आबादी के कारण हर हेक्टर में व प्रति हेक्टर में 37 kg से 40 kg के आसपास नाइट्रोजन जुड़ जाता है।
17: अच्छा,
18: तो जब सबसे बड़ा अभी के जमाने में मिट्टी के स्वास्थ्य बचाने के लिए इस फसल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है
17: जी जी।
18: और इसका जो डाल है, इस डाल में 31% के आसपास प्रोटीन रहता है, 41% के आसपास कार्बोहाइड्रेट रहता है, 17% के आसपास डाइटरी फाइबर रहता है।
17: अच्छा।
18: तो आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन काफी है, 31% मतलब काफी है। और इसको पोर मैन पाल्स भी बोला जाता है। क्यों? ये ऐसा एक फसल है, कोई भी जगह पर आप इसको बुआई कर दीजिए, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल रह जाएगा तो मिट्टी के साथ इसका जुड़ जाएगा, तो इसका बस जर्मिनेट कर जाएगा तो ये क्रॉप स्टैंड कर जाता है। और पहले आप जो बताया है, जो क्वेश्चन पूछे थे, जो इस फसल की आबादी करने के लिए लैंड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, देखिए खेती कैसे करना चाहिए। देखिए इस फसल को दो तरह से आबादी किया जाता है, एक है पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग कहते हैं।
17: अच्छा।
18: दूसरा होता है डायरेक्ट।
17: अच्छा।
18: मेनली इस क्रॉप को पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग में कल्टीवेशन किया जाता है। पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग मतलब हुआ क्या? एक्चुअली ये जो धान का जो जमीन में इस फसल को खेसारी का जो बीज है उसको बुआई दिया जाता है। कैसे ना, धान का फसल कटने की 10 से 15 दिन पहले खेसारी का जो सीड है व बीज जो हम कहते हैं उसको छिटका दिया जाता है। तो छिटकाने से पहले क्या देखा जाता है, नमी व मॉइस्चर लेवल मिट्टी में ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक ठाक होना चाहिए मतलब जो उसका मतलब इतना मॉइस्चर रहना चाहिए जो बीज जर्मिनेट किया जाए
17: जी।
18: तो इसी को कहते हैं यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग कहते हैं।
17: अच्छा।
18: और ज्यादा से ज्यादा यही फॉलो किया जाता है। क्यों? देखिए इस फसल जहां पर यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग में आबादी किया जाता है, धान के बाद दूसरा कुछ फसल नहीं लिया जाता है। तो एक फसल ऐसा एक फसल है, ज्यादा दिन का भी नहीं है, 115-120 दिन के अंदर भी उसका मैच्योरिटी भी हो जाता है, आ जाता है। एक कहावत है, शुरू किया जाता है इसका आबादी दिवाली के बाद, मतलब सोइंग का टाइम शुरू होता है दिवाली के बाद और होली से पहले, इसका होली के आसपास इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है।
17: अच्छा।
18: और बाकी रह गया डायरेक्ट सोइंग के बाद। तो डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है, तो डायरेक्ट सोइंग के लिए आपको जमीन को तैयारी करना पड़ता है। इसका मतलब मान लिया पहले आपका फसल धान था, तो धान हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके बाद मिट्टी का नमी के आधार पर 1 से 2 बार उसको जमीन को प्लाइंग करना पड़ता है।
17: अच्छा।
18: तो उसके बाद बीज को मॉइस्चर व नामी जैसे रहेगा उसके आधार पर उसको सोइंग किया जाता है। सोइंग करने के बाद वो जर्मिनेट कर जाता है, बस यही है। तो मैडम उसके बारे में थोड़ा सोइंग टाइम के बारे में और एक बार रिपीट कर देता हूँ। मतलब आप टाइम के आधार पर बताए थे अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके नवम्बर का सेकेंड वीक तक इसका सोइंग किया जाता है। बीज को सोइंग किया जाता है, बोई किया जाता है।
17: अच्छा।
18: और इसका फसल हार्वेस्टिंग का टाइम होता है आप मान लिए मार्च का एंड के आसपास,
19: मतलब होली के आसपास,
18: हाँ होली के आसपास उसका हार्वेस्टिंग किया जाता
19: किया
18: है,
19: जा सकता है यानि।
18: और इसके बाद आप पूछ रहे इसका उन्नत प्रभेद के बारे में,
19: हाँ।
18: यही बात है ना। देखिए इसका उन्नत प्रभेद बहुत इम्पोर्टेंट इशू होता है, लेकिन दूसरे क्रॉप से थोड़ा इसका इशू कुछ अलग है। क्यों, आप सब लोगों को पता है एक समय इस क्रॉप को बैन किया गया था
19: जी,
18: तो उसका कारण भी था इस क्रॉप में एक केमिकल रहता है जो न्यूरोटॉक्सिन के केमिकल है, जिसको बीटा ऑक्साइल डाई एमाइनो प्रोपाइनिंग एसिड कहते हैं। तो साइंटिफिक आधार पर नहीं नहीं जा सकते हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं। तो एक केमिकल रहता है जिसके कारण लेथाइरिज्म होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किए थे और रिसर्च भी चल रहा था, रिसर्च के आधार पर कुछ वेराइटी का प्रभेद निकल के आया है। जैसे आपका इनिशियल फेज में आया था निर्मल करके की वैरायटी व प्रभेद, इसके बाद आया प्रतीक, प्रतीक है, रतन है, महातेवड़ा है, इस प्रभेद है। इस प्रभेद का, इस प्रभेद सबका खूबियत व स्पेशलिटी यही हुआ, इसमें जो केमिकल बारे में अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया उसका अमाउंट बहुत कम रहता है, 0.1 से नीचे रहता है। और ये रिकमेंडेशन है लेथाइरस का कोई भी प्रभेद जिसमें ओडाब व कोई कोई बुआ भी इसको कहते हैं, उसका परसेंटेज 0.1 से कम होना चाहिए। और मैं जो चार प्रभेद के बारे में आप लोगों को अभी अभी बताया, इस सब में 0.1 से कम है, तो इसके आप आराम से इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं।
19: तो सर यहाँ पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीज दर की, और उसके बारे में बताएं, और जो दूरी है बोने की दूरी क्या होनी चाहिए, बीज दर क्या होनी चाहिए वो बताएं।
18: अच्छा देखिए, इसका हम पहले ही बताया हूँ, इसको दो तरह से स्विंग कल्टीवेशन किया जाता है, एक पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग, दूसरा है डायरेक्ट स्विंग किया जाता है।
19: अच्छा।
18: तो पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग में हम लोग उसको ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, मतलब छिटका देते हैं, तो छिटका के कारण थोड़ा ज्यादा सीड का जरूरत होता है। इसमें 70 से 80 केजी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 70 से 80 केजी पर हेक्टर सीड को यूटेरा क्रॉपिंग बा पैरा क्रॉपिंग आप ब्रॉडकास्टिंग भी बोल सकते हैं, इसमें कर सकते हैं आप लोग। और लाइन स्विंग के आधार पर आएंगे तो, अर्थात अब ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करना चाहेंगे तो, तब उसका सीड रेट होता है 40-60 केजी पर हेक्टर। और इसमें लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर के आसपास, और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर के आसपास, इस डिस्टेंस को इसमें मेंटेन किया जाता है
19: जी। फिर जो है बीज उपचार की बात करते हैं, जब बीजों को कुछ रोगों से बचाना हो तो फिर क्या करना है?
18: हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज उपचार बहुत जरूरी है, जिसको बीज को टीकाकरण भी हम लोग कहते हैं। तो क्यों, बीज उपचार कर लेंगे तो इन फ्यूचर में बहुत रोग से हम फसल को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए बीज उपचार के लिए मोनली किसान भाई सबको पता ही है कार्बेंडाजिन वो लोग यूज करते हैं 2.0 ग्राम पर केजी, तो वो सीड सोइंग के एक दिन पहले कर लेना चाहिए। और इसमें बायोफर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन किया जाता है। बायोफर्टिलाइजर को एप्लीकेशन इसीलिए किया जाता है, देखिए जो राइजोबियम जो कल्चर होता है, राइजोबियम कल्चर को सीड के साथ मिक्सिंग करने से क्या फायदा होता है ना, ये नोड्यूल जो फॉर्मेशन जो गांठ होता है खेसारी का सीकर जो सीकड़ में रूट में जो जड़ होता है उसमें क्या होता है ना, वो कुछ नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं।
19: अच्छा।
18: तो उस नोड्यूल में राइजोबियम रहता है, और राइजोबियम कल्चर आप देंगे तो नेचुरली उसका नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा, तो इसलिए घुमा के हम बोल सकते हैं फसल के अपने लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है, और फ्यूचर जो क्रॉप है उसके लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है।
19: अच्छा, तो ये बात हो गई बीजोपचार की, और उर्वरक और खाद की बात करते हैं। जब खेती होता है तो उस समय उर्वरक और खाद बहुत ज़रूरी होते हैं डॉक्टर साहब, उसके बारे में बताएं कि कौन से उर्वरक और कौन से खाद देनी चाहिए इन्हें।
18: देखिए ऐसे जो ऐसे एक फसल है जब पैरा क्रॉपिंग बा यूटेरा क्रॉपिंग में इस फसल को आबादी किया जाता है, तब तो किसान लोग उसको डायरेक्टली फर्टिलाइजर देने के बाद उर्वरक देने के लिए स्कोप नहीं रहता है। क्यों, मैंने पहले ही बताया जो धान का हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले उसको सीड को सोइंग किया जाता है, तो उसमें तो आपका उर्वरक देने का कोई जगह ही नहीं रही है। तो मतलब धान में जो उर्वरक दिया गया था वह फर्टिलाइजर व मैन्योर जो दिया गया था उसी का रेसिडुअल जो है उसी को यूज किया जाता है। और डायरेक्ट सोइंग में हुआ तो उसके आधार पर 100 केजी डीएपी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 100 केजी डीएपी पर हेक्टर इसको दिया जाता है। तो इसमें फसल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाता है, इसी में काफ़ी काम हो जाता है। और एक इशू होता है इसके, जैसे मान लिया फर्टिलाइजर को स्प्रे भी करते हैं।
19: अच्छा।
18: फर्टिलाइजर स्प्रे भी करते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे करने का क्या जरूरत पड़ जाता है, मान लिया आपका पॉट फ्लावरिंग हो गया, पॉट फॉर्मेशन का आसपास टाइम आ रहा है, उस समय यूरिया का स्प्रेइंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा पॉट का भी साइज बढ़ भी जाता है और आपका जो यील्ड फलन जो है वो भी बढ़ जाता है।
19: अच्छा, तो फिर इसमें सिंचाई की भी जरूरत होती है या नहीं?
18: देखिए, इस फसल में हम पहले ही बताया ये ज़्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट बा क्रॉप है, वह क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का जरूरत मोरलेस नहीं होता है। तो नमी बहुत कम हो गया, तो बहुत कम हो गया तो वो आप थोड़ा सा नमी के थोड़ा नमी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केस में हम लोग देखे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग देखे हैं कि इसमें सिंचाई देने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नमी बहुत घट गया तो आपका पानी देने का बंदोबस्त है तो पानी दीजिए, नहीं तो आपका ये फसल हो जाता है।
19: हाँ, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि क्लाइमेट रेजिलेंट है ये, तो इसलिए ये आराम से बिना सिंचाई के भी हो सकता है।
18: हाँ।
19: तो इसके बाद खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानना चाहेंगे।
18: देखिए, इसको हम लोग खेसारी को और भी एक बात बोलते हैं, ग्रास पी भी बोलते हैं, घास की तरह होता है। ये ऐसा होता है ना, ये खुद ही एक अपने में इतना ग्रोथ होता है इसका ना, उसके आसपास जितना भी वीड वगैरह जो भी रहता है उस खुद को ये कंट्रोल कर लेते हैं।
19: अच्छा।
18: तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीड मैनेजमेंट के लिए इतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, क्रॉप खुद ही अपने से जो उसके आसपास जो वीड गए उसके ऊपर स्मूदरिंग इफेक्ट हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको कर देते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ किसान का कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है।
19: तो इसके बाद पौधा संरक्षण उपचार के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे।
18: देखिए, एक क्रॉप जैसे क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप भी है और उसके साथ ये भी है, इस क्रॉप में कीड़ा बोलिए डिजीज का इन्फेस्टेशन बहुत कम होता है। फिर भी हम लोग कुछ कुछ जगह पर देखे हैं इसमें एफिड होता है, एफिड का थोड़ा बहुत अटैक होता है, तो लेकिन एफिड का अटैक होता है तो तब आप उसको औसत दवा देने का जरूरत होता है, तो उसके आधार पर आप डाइमिथोएट 30 से एट द रेट ऑफ 1.7 ml पर लीटर उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक रास्ट होता है, तो उसके आधार पर देखिए, एक रास्ट जब दिखाई जाएगा तो तब तो आपको कुछ मेडिसिन देने का जरूरत पड़ता है, लेकिन उससे पहले आप सीड ट्रीटमेंट ठीक से करके रख देंगे तो रास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कार्बन डाइजिन देके आप उसको ट्रीटमेंट करके रखे हैं तो सीड ट्रीटमेंट किए तो उसमें रास्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो किसी कारण पर आ गया तो मैंगोजेब 75 WP एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर पानी के आधार पर आप दीजिए। अच्छा। कंट्रोल हो जाएगा।
19: अच्छा, अब बात आती है अंत में कटाई की, तो हमारे किसान भाइयों को कब समझ जाना चाहिए कि अब इसकी कटाई कर देनी चाहिए और उसका भंडारण कैसे करना चाहिए?
18: अच्छा, देखिए, एक भंडारण का कटाई करने के लिए आप क्रॉप फील्ड में मतलब फसल के जमीन में आप लोग रेगुलर विजिट भी करते हैं। पहली बात है पत्ती का जो कलर है, कलर ये हो जाता है ग्रीनिश, जो डीप ग्रीन से धीरे धीरे उसको लाइट होते होते वो जो क्या बोलते हैं ना मैच्योरिटी का जो कलर होता है वो आ ही जाता है, और आप देख पाएंगे पॉट जो होता है उसका पॉट भी सूखा शुरू हो जाता है, मोर और लेस आप देखेंगे पौधा ड्राई हो गया, तब तो आपने वहां से उसको हार्वेस्टिंग करके लेके आइए, और हार्वेस्टर अवेलेबल है।
19: अच्छा।
18: तो हार्वेस्टर में जैसे आप लोग चना का हार्वेस्टर है उसी हार्वेस्टर लेके आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, उसका जो क्या बोलते हैं पुआल वगैरह जो भी हो सेपरेट हो जाए, सीड भी अलग हो जाएगा। सबसे बड़ा खूबी क्या है, उसका जो स्ट्रॉ जो बोलते हैं हम लोग पुआल जो बोलते हैं उसका वो भी फोडर के आधार पर और तत्व गाही जो है बेस के लिए एक खाने का अच्छा एक सोर्स हो सकता है, एवं गांव में प्रैक्टिस भी होता है और इसमें मिल्क का परिमाण दूध का परिमाण भी बढ़ जाता है।
19: अच्छा, तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि खेसारी की फसल की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक सभी बातें यहाँ पर आप सभी को बताई गई, आप सभी को निर्देश दिए गए हैं, तो आशा करती हूँ कि आप इन निर्देशों को अपनाएंगे और खेसारी की फसल जी हाँ ज़रूर करेंगे और उन्नत खेती करके आप एक सफल किसान बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन आरजी अनु के साथ उन्नत कृषि में।
20: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार

0: जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें

बता दे धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दे टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाध बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। और नाम से पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करके मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर उन फूलों के पौधे खेत में होते हैं तो कीटनाशकों का आपको कम प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गेंदा के पौधों की बात करें तो सूत्रकृमि, जिसे कि नेमाटोड भी कहते हैं, या फिर कुछ और भी कीटों के प्रबंधन में काफी उपयोगी माना जाता है। वैसे ही सूरजमुखी और गेंदा जैसी और भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो मिट्टी की हानिकारक नेमाटोड के प्रबंधन में बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी होती है। और कुछ ऐसे भी फूलों के पौधे होते हैं जो लाभकारी कीटों को, जो कि फसलों को, मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप अपने मुख्य फसलों के साथ फूलों के पौधों को लगाएं तो आपको आय तो मिलती ही है, साथ ही आपके फसलों को आप कीटनाशकों से बचाते हैं और आप मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। और जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों से हमें लगता है कि कितना ही आय हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा, तुरंत मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि एक रास्ते पर चलने से आपको नुकसान होगा तो आप कई सारे रास्ते खुले रखिए। और जब फूलों की खेती की बात आती है तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन के बारे में। किसान भाई बहनों और जो भी हमारे श्रोता है, आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आय का। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में भी फूलों की बहुत ज्यादा मांग है, हर तरह के फूलों की मांग है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ताजे, सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन कर आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं या आय का एक नया जरिया बना सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह से। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापक उद्यान पुष्प एवं भूदृश्य विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत फूलों के मूल संवर्धन के बारे में।
0: जी मैम, तो मैम जब हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करते हैं तो फूलों का, पुष्पों का मूल्य संवर्धन क्यों जरूरी होता है?
1: देखिए, ताजे फूलों एवं पत्तियों में अधिक नमी होने के कारण इनकी आयु सीमित होती है, जिससे हम अधिक समय तक इन्हें भंडारित नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए फूलों को मूल संवर्धित करने की तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे हम फूल की सुंदरता को काफ़ी समय तक सहज कर रख सकते हैं।
0: जी मैम, तो अगर हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करें तो मूल्य संवर्धन के कितने वर्ग होते हैं?
1: देखिए, प्रायः तीन तरीके के फूलों को हम मूल्य संवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ताजे फूलों का मूल्य संवर्धन। अगर हम फूलों को बाजार में बेचने ले गए हैं और कुछ फूल बच गए हैं तो वहीं बैठे बैठे हम उनसे कुछ ताजे फूलों में थोड़ा सा कुछ ऐसे लगा के उनको मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। दूसरा वर्ग हमारा ऐसे फूलों का होगा जैसे कि फूलों को हम सुखा लेंगे और सूखे फूलों से हम कई तरीके के उत्पाद बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग। और तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो फूलों को या तो हम ठंडे पानी या गर्म पानी में उबालकर, पीसकर या उसमें किसी भी तरीके से प्रसंस्करण करके हम मूल संवर्धित उत्पाद बनाएंगे, तो ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया प्रसंस्कृत फूलों का मूल संवर्धन।
0: पहले वर्ग के साथ मैम शुरू करते हैं, तो क्या फूलों के मूल्य संवर्धित उत्पादों की जब हम बात करते हैं
1: जी,
0: तो ताजे फूलों के मूल्य संवर्धन द्वारा कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: देखिए, ताजे फूलों से हम गुलदस्ता, मालाएं या जैसे गजरा, वेनी या फिर साज सज्जा के रूप में भी इन फूलों में, जैसे जो आजकल हम शादी ब्याह में डेकोरेटिव डेकोरेशन के चीजें देखते हैं, तो ये साज सज्जा भी की जा सकती है। तो आजकल जैसे शादी ब्याह बहुत ही आधुनिक हो गया है और इसमें सिर्फ मंडप ही नहीं अपितु इसमें हम बात करें तो गाड़ी, पंडाल या यहाँ तक कि घर के अंदर की भी सजावट की जाती है। वहीं फूलों से बनी हुई रंगोली और मेहंदी और हल्दी जैसे फंक्शंस में फूलों से बने गहने भी बहुत डिमांड में हैं। तो इस तरीके के उत्पाद हम ताजे फूलों से तुरंत के तुरंत बनाकर कर सकते हैं
0: जी, अगर फूल बच गए तो उसका इस्तेमाल कर
1: जी।
0: तो मैम क्या पुष्पों के, जब हम मूल संवर्धन उत्पादों की बात करते हैं, अभी आपने अलग अलग अवसरों के बारे में बताया, तो शोकाकुल अवसरों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है। जैसे उल्लासित अगर अवसरों की बात करें तो वहां तो हम बुके देते हैं या गुलदस्ता भेंट करते हैं, पर अगर हम शोकाकुल सभाओं की बात करें तो वहां भी हम एक कीपाकार गुलदस्ता या तिकोनाकार या गोलाकार गुलदस्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में रीथ बोलते हैं। प्रायः इनमें हम हल्के वर्ण के फूल, क्योंकि शोक है तो हल्के सफेद से लेकर हल्के रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, और जितने ही फूल तो उतनी ही पत्तियां भी इस्तेमाल करके इनका आकार दिया जाता है। और आजकल जैसे कि कह लें कि इसमें खास बात यह है कि फूलों के साथ इसमें पत्तियां भी जो इस्तेमाल होंगी तो वो बड़ा अच्छा लुक देती हैं, मतलब फूलों के साथ उनका कंट्रास्ट इफेक्ट आता है। मेनली जैसे कि फूल हो गए गुलाब, कार्नेशन, ग्लैडुलस, एस्टर, लिली, या पत्तियां हो गई जैसे साइकस, ताड़, फर्न, इनको हम प्रयोग करके बहुत अच्छे रीथ्स बनाते हैं, और ये रीथ्स बुके के मुकाबले काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं, तो इनका भी शोकाकुल सभाओं में प्रयोग होता है। और वहीं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे में गुलाब का तेल या तुलसी का तेल या इनके पौधे बगीचे में होना भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि ये भी हमारे एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं। इनसे जो निकलने वाली खुशबू होती है ये एरोमा थेरेपी में भी बहुत काम आती है।
0: जी मैम, मैम जब हम फूलों से साज सज्जा की बात करते हैं तो क्या इस वक्त हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है?
1: जी, बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि सामान्यतः फूलों की साज सज्जा के मिश्रण में हल्के रंगों की अपेक्षा गहरे रंग अधिक इस्तेमाल होते हैं, बट वहीं पर जैसे मैंने बताया शोकाकुल में आप हल्के रंग इस्तेमाल करेंगे। और फूलों के संयोजन में क्या होता है कि कलियों को प्रायः हम किनारे की ओर रखते हैं, और जो भारी फूल होता है उसे हम, या चटकीले रंग का फूल होता है उसे हम सेंटर पर रखते हैं। प्रायः हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि फूलों के अधिक रंग या अधिक तरीके के फूलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके के फूलों का ही इस्तेमाल करके हमको गुलदस्ता या साज सज्जा करनी चाहिए। और वहीं पर कृत्रिम रोशनी अगर है तो हल्के रंगों की जगह गहरे रंग इस्तेमाल करने चाहिए, और नेचुरल लाइट में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फूलों को यदि पात्र में रखना हो तो फूलों की लंबाई पात्र से कम 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। और प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए हमें प्रायः लचीली टहनियां या लटकने वाले क्लाइंबर जो फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अभी हमने बात करी थी कि गाड़ी को जब हम शादी ब्याह के लिए सजाते हैं तो उसमें भी हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे गाड़ी के रंग से विपरीत हो, तभी वो निखर के आएगी उसकी सजावट। और यदि कार को बहुत दूरी तय करनी है तो हमको फूलों की डंडियों के नीचे गीली फोम का इस्तेमाल करना चाहिए। और कम खर्चे में अगर गाड़ी को सजाना है तो छोटे छोटे बटन होल का प्रयोग करना चाहिए। अधिक खर्चे में भी हमें भारी भरकम सजावट से बचना चाहिए ताकि गाड़ी चलाने में कोई असुविधा ना हो। और प्रायः सफेद गाड़ियों के लिए हमें रंग बिरंगे फूल जैसे ऑर्किड, जरबेरा या गुलाब, या फिर हरी चटकीली पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही में इनके रिबन या हल्के नेट या फ्रिल को इस्तेमाल करके भी हम गाड़ी को सजा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम रंगों पर सही ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी सजावट निखर के आएगी।
0: जी मैम, मैम अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम सूखे फूलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो वो किस प्रकार किया जा सकता है?
1: देखिए, यहाँ पर फूलों को सुखाकर फिर हम अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ये जो उद्योग है ये बड़ा नवीन उद्योग है, क्योंकि इसमें हम सूखे फूलों को उनके ढांचे के बिगाड़े बगैर या उनके नेचुरल प्राकृतिक रंग को संजो के सुखाते हैं, एवं अन्य विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि हो गई आपकी फ्रेम जड़ित तस्वीरें, बधाई कार्ड, कवर या पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड, या शीशे की कटोरी में बने हुए पेपर वेट, ऐसे बहुत तमाम इस तरीके के उत्पाद हैं जो हम सूखे फूलों से बना सकते हैं। ये उत्पाद टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल भी। और अन्य उत्पाद जैसे जो और उत्पाद हैं टू डायमेंशनल में वे हैं ग्रीटिंग कार्ड या फिर पॉट पोरी या फिर आपका वॉल हैंगिंग हो गया, पुष्प विन्यास हो गया, या थ्री डायमेंशनल में गुलदस्ता, पेन स्टैंड, इस तरीके के उत्पाद हो गए जो होटलों और मॉल में बहुत मांग में हैं। साथ ही ऐसे उत्पादों से जो खाली बैठी घर में महिलाएं हैं या कोई भी वर्ग है वे इसका बहुत फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। इसमें हम कबाड़ का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जो कबाड़ है उसके साथ खराब फूलों को सुखाकर उनसे उत्पाद बनाते हैं, और वहीं इनकी डिमांड अधिक होने के कारण इनकी जो बिक्री दर है वो बहुत अच्छा है।
2: जी मैम, मैम आपने एक और वर्ग की बात की थी प्रसंस्कृत फूलों के बारे में
1: जी,
2: जहां आपने बताया था उबाल सकते हैं, तो फूलों को उबाल कर कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: देखिए, हर तरीके के तो फूलों को नहीं उबालते हैं, जो फूल टेम्परेचर को सहनशीलता जिनमें रहती है उनको उबालते हैं, या फिर कुछ को ठंडे पानी में ही हम रख के उनसे तेल निष्कर्षित कर सकते हैं या रंग निष्कर्षित कर सकते हैं, और इनसे हम हर्बल गुलाल, धूपबत्ती, या फिर फूल अगर हमारा बहुत तादाद में बच गया है तो इसे गड्ढे में डाल के हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर जो बचे हुए फूल हैं उनको सुखाकर पाउडर बना के मुर्गी के दानों में मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो होता है क्या है, अक्सर इसके लिए गेंदा का प्रयोग किया जाता है, जब डेकोरेशन के बाद जो फूल गेंदा के बच जाते हैं तो उनको पीस कर, क्योंकि इसमें कैरेटिनॉइड और भी पिगमेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये मुर्गी की आँखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अंडे के पीले भाग को और रंग प्रदान करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके के उत्पाद बनाकर भी हम काफी लाभ कमा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम उबाल कर या पका कर बात करें तो इससे हम गुलकंद या फूलों से बनी हुई चाय या सौंदर्य आइटम जैसे हो गए क्रीम, शैम्पू या गुलाब जल, ये भी बना सकते हैं।
2: जी मैम, तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को एवं अन्य श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि फूलों से, अगर आप फूलों से खेती करेंगे तो बहुत इससे फायदा है। फूलों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नमी अधिक है, बस इस नमी को यदि हम कंट्रोल कर लें और इससे मूल संवर्धित उत्पाद बना लें तो किसान भाई बहन या उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, या शारीरिक कमजोर से भी अगर कोई मेंबर है तो वो घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे उत्पाद बना सकता है जिनकी भारी डिमांड है और इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है।
2: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि किस प्रकार से ताजे सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाई बहनों, फूलों की खेती से न केवल आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अंततः फायदा इससे हमें ही होता है। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में, और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु का या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें, यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं?
10: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
5: संक्रमण होने
10: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2 साल 3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है। और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
5: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
10: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफी अधिक रहती है। और खास करके वैसे पशु जो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
5: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
10: ज्यादातर पाया ही जाता
5: और
10: है।
5: और सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
10: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-6 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
5: और गला
10: में सूजन भी आ जाता है। गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
5: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
10: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
5: तो इसके लक्षण क्या?
10: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी, अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांग वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है। प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर रहता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है, शरीर का तापक्रम, वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन, जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर, वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है।
5: अच्छा।
10: और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें, प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
5: टीकाकरण पर विशेष बल देना है, और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
10: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग भी होते हैं।
5: और मुँह,
10: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
5: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
10: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है।
5: अच्छा।
10: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है, और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुरपका और मुंहपका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है। उपाय किया जा रहा है लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशु पालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
5: उनको नुकसान होता है,
10: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
5: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया अब किसान भाइयों की जो है वो इनका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती है ये?
10: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
5: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते
10: हैं। नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो और ऊंचे स्थान पर रखें, वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें, उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वह नमी की कमी रहती है।
5: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
10: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग है और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
5: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
10: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
5: अच्छा।
10: और उसके रखने के जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहां जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
9: अच्छा।
10: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है HS, BQ
9: FMD.
10: और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
9: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु हैं उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है, तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
10: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
9: जहां पर सभी पशु,
10: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंगे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहां का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं, तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
9: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
10: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
9: अच्छा।
10: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहां घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
9: अच्छा।
10: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
9: कृमिनाशक दवा
10: बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये, इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
9: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से, यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े। और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
10: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको, जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग इसका नाम पास्टुरलोसिस भी है। तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूंकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भिंग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है तो वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव, तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें। अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
5: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद।
9: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
10: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पर गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
9: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
10: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
9: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
10: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा।

0: तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य

को हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुवाई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित है। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक एक, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। रबी फसलों की बात करते हैं और दलहनी फसलों की हम बात ना करें तो थोड़ा अधूरापन रहता है। जी हां, रबी फसलों में बुआई के पहले और उसके उपरांत लगने वाले रोगों के प्रबंधन के बारे में आज हम जानेंगे। जी हाँ श्रोताओं, तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रमेश नाथ गुप्ता। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। और डॉक्टर साहब आज बहुत सारी जानकारी देंगे हमें, तो स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बुआई के पूर्व रोगों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और बुआई के उप, डॉक्टर साहब।
7: प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दलहनी रबी के दलहनी फसलों का समय, बुआई का समय आ चुका है, तो अच्छी उपज लेने के लिए और खासकर रोगों से बचाव करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है और उसका प्रबंधन करना जरूरी है ताकि रोग का प्रकोप कम से कम हो और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो देखा जाता है कि अगर हम समय से बुआई करें, जैसा कि बुआई का समय आ गया है और यहाँ पे हमारे बिहार की परिस्थिति में जो बुआई का जो दलहनी फसल है खासकर चना और मसूर का, इसका बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय जो है ये सही समय माना जाता है। इस समय अगर लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ जाती है
6: जी।
7: अगर इसमें अगर लेट हो जाती है किन्हीं कारणों से, अगर धान की कटाई बाद हो तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक भी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें प्रभेद का चुनाव करना आवश्यक होता है उसके अनुसार। तो सबसे पहली कड़ी है कि हमारा जो है बुआई अगर समय समय पर हो जाता है तो उसमें रोग और कीटों का भी प्रकोप काफ़ी कम जाता है
6: जी।
7: रही दूसरी बात कि जो हम बुआई करें तो सबसे बड़ी बात है कि खेतों में जो है खरपतवार की जो है वहाँ पे नहीं हो, खेतों की सफाई अच्छे ढंग से हो और जुताई हो तो बहुत ज़्यादा भुरभुरी जुताई ना हो, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है
6: जी।
7: तो जुताई भी अगर हल से भी करते हैं या ट्रैक्टर से भी करते हैं तो उसमें जो है मिट्टी को बहुत भुरभुरा होना ज़रूरी नहीं है। तो जुताई जो है अच्छी तरह से होना चाहिए, खेतों में साफ सफाई होना चाहिए, खेत बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा गीली रहेगी तो उसमें जो है बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तीसरी बात रही कि जो है हम सही प्रभेद का चुनाव करें। अगर हम सही प्रभेद का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है उसमें बीमारियां कम लगती है और उत्पादन बढ़ती है। तो सही प्रभेद के चुनाव में अगर मसूर है तो हल 57 जो है ये अच्छी प्रजाति है और इनका उत्पादन भी अच्छा होता है। रही बात चना की, तो चना में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारी प्रजातियों का विकास हुआ है चना में, उसमें खासकर जो है चना का जो है सबौर चना वन जो है वो समय से बुआई के लिए उपयुक्त है और इसमें उत्पादन भी अच्छे होते हैं और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। दूसरी जो है हमारी प्रभेद जो है विश्वविद्यालय द्वारा है वो है सबौर चना टू। सबौर चना टू जो है नवंबर की बात करते हैं और 15 दिसंबर तक करते हैं तो ये प्रभेद जो है उपयुक्त है और इसमें बीमारी भी कम आती है और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। बुआई पूर्व रोगों से प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त प्रभेद का चुनाव भी करना आवश्यक होता है। और जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो है विकसित प्रजातियां हैं सवा और चना वन की समय से बुआई के लिए उपयुक्त है और इसकी बुआई अगर किसी कारणों से लेट हो जाता है तो उसमें हम सवा और चना टू की बुआई कर सकते हैं जिसका जो है बुआई का समय आपको 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। तो इस दरमियान में ये प्रभेद अच्छा करता है और उत्पादन भी इसमें अच्छा होता है। छिटकौआ विधि द्वारा छीट करके ही बुआई करते हैं तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बीजों का अंकुरण नहीं सही से हो पाता है क्योंकि बहुत सारे बीज ऊपर में रह जाते हैं, उनको प्रॉपर नमी नहीं मिलती है जिसके कारण जो है उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो बुआई के लिए जिससे पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है ताकि हर पौधे को सही हवा पानी और उपयुक्त जो है उनका पोषक तत्वों को मिल सके। तो इस चीज़ों को अगर हम ख्याल रखते हैं तो उससे भी हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। इन सबसे ज़रूरी है कि अगर हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो इससे भी बीमारी कम हो जाती है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घने रहेंगे तो उस शरीर है वो बीज का उपचार करना ज़रूरी है। बीज उपचार जो है खासकर रोगों से बचाव करने के लिए आपको करना आवश्यक है। बीज उपचार करने के लिए जो सबसे ज़रूरी तत्व है उसमें कार्बोक्जिन, उसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उपचार कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रैकोडर्मा का उपलब्ध है तो हम ट्रैकोडर्मा 10 ग्राम, वह समस्या बहुत ज़्यादा है। वैसे खेतों में जो है हम 2 ग्राम कार्बोक्जिन और प्लस 10 ग्राम ट्रैकोडर्मा से बीज का उपचार करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा बीमारियों का प्रकोप कम होगा और साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। और बीज उपचार में ये तो रोकथाम के लिए होता है, इसके अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते जो है कीट का भी प्रकोप होता है तो अगर वैसे खेतों में जहाँ कीट का प्रकोप ज़्यादा हो और उकठा की समस्या ज़्यादा हो और उत्पादन भी अगर बढ़ाना हो तो उसमें समग्र बीज उपचार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्बोक्जिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर दें, उसके 12 घंटे के बाद हम कीटनाशक में जो दवा आती है क्लोरोपाइरीफॉस उसका 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें और इसके 36 से 48 घंटे के बाद हम राइजोबियम से उपचार करें। अगर हम इस तरह से समग्र उपचार करते हैं तो निश्चित तौर से बीमारियों का प्रकोप भी कम होगी और साथ साथ हमारा उत्पादन भी कम से कम 15-20% सिर्फ इतना ही करने से हमारा बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर बीज उपचार करके ही लगावें अगर इस तरह से आप, तो इन सारी प्रक्रियाओं को समावेश करना ज़रूरी है। अगर समावेश करते हैं तो निश्चित तौर पर बीमारी हमारी कम आएगी। अब दूसरी बात रही कि बीमारियां जो है बुआई के बाद कौन कौन सी आती है, तो इसमें जो प्रारंभिक अवस्था में जो बीमारी आती है वो कॉलर रॉट की समस्या आती है। ये हमारे अंकुरण के 1 सप्ताह के बाद ही ये बीमारियां लगना शुरू हो जाती है पौधे के कारण, इसको कॉलर रॉट बोला जाता है जो कि ये एक मृदा जनित बीमारी है। अगर हम ट्रैकोडर्मा से मतलब बीज का उपचार करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कम जाता है। अगर जिन खेतों में इस तरह की समस्या ज़्यादा हो, उकठा की समस्या, निश्चित तौर पर प्रक्रिया उसको डालना चाहिए ताकि खेतों की जो है हिसाब से भी उसमें डाल के करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ये दोनों का प्रभाव तौर पर ये करना चाहिए बुआई पूर्व। और वैसे खेतों में प्लस मृदा जनित दोनों हैं तो वैसे खेतों में जो फफूंद जिस उसके कारक। तीसरी जो बीमारियाँ आती है वो शुष्क जड़ गलन की समस्या आती है। शुष्क जड़ गलन की समस्या प्रायः जब पौधे में जब दाने बनने लगते हैं और मृदा में नमी की कमी हो जाती है, वैसी परिस्थितियां अगर रहती है तो उस समय इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। और जब हम पौधे को उखाड़ते हैं उस समय तो ये तने का भाग जो है और जड़ का भाग जमीन के अंदर रह जाता है और तने का भाग जो है वो मतलब टूट जाता है। तो इस तरह से इस रोग को हम पहचान लेते हैं। अगर इस तरह की समस्या आती है तो उसको रोकथाम करने के लिए आप उस समय हल्की वह सिंचाई कर दें क्योंकि ये रोग के तापमान बढ़ने के कारण ही ये पैथोजन का विकास होता है। तो उस समय हल्की सिंचाई कर देने से इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। एक बीमारी और प्रमुख है जो कि अभी हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, उसको हम लोग अस्टंट रोग के नाम से जानते हैं। और ये बीमारियाँ काफ़ी ये धीरे धीरे बढ़ने जा रही है और एक समस्या के रूप में सामने उभर कर आई है। ये स्टंट रोग जो है ये हमारे जो जो लाही है उसके द्वारा ये रोग फैलते हैं। ये एक विषाणुजनित रोग है और ये इसमें जो है आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें पत्तियां पीली और नारंगी और लाल रंग की पत्तियां हो जाती है और जो इसके इंटरनोट होते हैं जो पर्व होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, पौधे का विकास काफ़ी कम हो जाता है, पौधे बौने हो जाते हैं और इसमें बहुत कम फलियां लगती है। इस तरह से जो है पौधे इस बीमारी को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर इस तरह के बीमारी के लक्षण जैसे ही खेतों में दिखाई पड़े तो उस पौधे को उसको उखाड़ देना चाहिए और एक कीटनाशक कोई भी जैसे इमिडाक्लोरोपीड उसका 1 ml 3 लीटर पानी में स्प्रे कर देना चाहिए ताकि जो इसके रोग वाहक है जो बीमारी फैलाते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब जो है हमारे प्रमुख रोग थे जिनका निदान करना जरूरी है और ये इनके पहचान भी आसानी से आ जाती है। तो बुआई से पूर्व भी कुछ प्रक्रिया अगर अपनाते हैं तो बिना पैसे को उसको हम कम कर सकते हैं और अगर बुआई के बाद आती है तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम समग्र उपचार करते हैं तो निश्चित तौर से जो है जो लगने वाली बीमारियां हैं उससे हम काफ़ी हद तक उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।
6: जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि कैसे रबी में जो दलहनी फसलें हैं उनके बुआई के पहले और उसके उपरांत आप कैसे रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। सारी दवाइयों के नाम भी आप सभी को बताएं और तरीका भी बताएं। तो आशा करते हैं कि आपको आज के इस वार्ता से लाभ मिलेगा इसे सुनकर। तो इसी के साथ अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।
5: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
8: चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
13: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया गोल्डन एकर,

सामुक्ता पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्म में अनुशंसित है। मूली की आगाध बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों आदाब, मैं डॉक्टर चमन आरा खां NCERT नई दिल्ली से। आज हम आपको आपकी 7वीं जमात की किताब अपनी जबान की दर्सी किताब से एक नज्म पढ़ाएंगे जिसका उन्वान है मेरा वतन। ये नज्म जो है ये लिखी है शफीउद्दीन नय्यर ने। शफीउद्दीन नय्यर के बारे में थोड़ा सा हम जान लें एक मुख्तसर तारुफ, उसके बाद फिर हम इस नज्म को पढ़ेंगे। शफीउद्दीन नय्यर 1903 में पैदा हुए। नय्यर इनका तखल्लुस था अलीगढ़ के कस्बे अतरौली में। इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की, फिर अलीगढ़ तालीम हासिल करने गए, उसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक स्कूल में उस्ताद मुकर्रर हुए और वहाँ पर 65 बरस की उम्र तक पढ़ाते रहे। शफीउद्दीन नय्यर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। उनका इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। तो ये जो नज़्म है मेरा वतन, ये भी शफीउद्दीन नय्यर की नज़्म है। इन्होंने ज़्यादातर जो नज़में लिखी हैं वो जो कुदरती मनाजिर हैं उन पर लिखी है, फूलों पे, बागों पे, इस तरह की नज़में जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं। जैसे बंदरवाला इनकी नज़्म है, और भी बहुत सी नज़में हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसी तरह से देखिए वतन के ऊपर तो हमारी पूरी उर्दू शायरी में बहुत नज़में लिखी गई हैं। इसकी जो दूसरी और नज़में हैं जिसमें दुनिया में जन्नत, वक्त की डिबिया, ये सब नज़में हैं। शफीउद्दीन नय्यर साहब ने जो ये नज़्म लिखी है मेरा वतन, तो इसमें इन्होंने हिंदुस्तान के जो परिंदे हैं, चिड़िया है, तोता है, मोर है, बुलबुल है, चकोर है, इन सब का जिक्र किया है। झीलों का जिक्र किया है, दरियाओं का जिक्र किया है, झरनों का जिक्र किया है। तो आइए आज इस नज़्म को हम पढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है। मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीने वो ज़रखेज दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इनमें हजारों ही चश्मे रवा, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर घुमा, ये बागे इरम है या बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। शफीउद्दीन नय्यर ने जो शुरुआत की है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी एक फख्र के साथ कह रहा है कि देखिए ये मेरा वतन है, कि जिसमें चिड़िया है, तोता है, मैना है, मोर है, और कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर। तो कुमरी जो है ना फाख्ता की किस्म का बच्चों एक परिंदा होता है, उसकी आवाज़ जो होती है ना बहुत गूंजदार होती है उसकी आवाज़। और चकोर जो होता है तीतर की किस्म का एक परिंदा है, उसे चांद का आशिक भी कहा जाता है। कहते हैं ना वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर। अब जैसे पहले शुरुआती उन्होंने नज़में की ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, कहते हैं ये मेरा वतन है, ऐसे इस तरह से कह रहे हैं कि ये वो चिड़िया है, वो तोता है, वो मैना है, वो मोर है, वो कोयल है, बुलबुल है, खुमरी है, चकोर है, झीलों की लहरें हैं, यानी झीलें जो हैं उनमें जो लहरें उठती हैं वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। तो झरनों का गिरना ना पूरा एक मंजर हमारे सामने आ जाता है, झरने गिर रहे हैं, पानी का शोर हो रहा है, झीलों की लहरें हैं, दरिया जोरों पर है, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और बन। पहाड़ों का भी जिक्र कर दिया कि सरसब्ज जिसमें हरियाली छाई हुई है। सरसब्ज के मायने होते हैं हरियाली, हरा, सरसब्ज इसके पहाड़ और वन। उसके बाद कहते हैं वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुशरंग फूलों की गुलकारियाँ। अब यहाँ पर गल्ले मेवे, गल्ले तो अनाज हो गया, मेवे जो होते हैं जैसे बादाम, पिस्ते और काजू वगैरह, ये सब मेवे होते हैं। तरकारियाँ यानी सब्जियाँ, वो खुशरंग फूलों की गुलकारियाँ, यानी गुलकारियाँ यानी ऐसे ऐसे फूल हमारे मेरे मुल्क के मेरे वतन में हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, और फुलवारियाँ भी हैं, और कैसी फुलवारियाँ हैं जो सरसब्ज हैं, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ। सैराब यानी पानी से भरी हुई, खुशनुमा दिल को खुश करने वाली खुशनुमा क्यारियाँ मौजूद हैं। ज़मीनें वो जरखेज दिलकश चमन, ज़मीनें जरखेज़ हैं यहाँ की, यहाँ पे जो है हर फसल पैदा होती है। जैसे कि बताया कई मौसम है हमारे यहाँ, गर्मी, सर्दी, बरसात, और एक बाहर का मौसम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हर मौसम की फसल है, ज़मीनें हैं, ज़मीनें जरखेज हैं, दिलकश चमन है, खूबसूरत चमन यानी बाग हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन यानी मेरे वतन में ये सब चीज़ें हैं। हर तरह के तरकारियाँ हैं, हर तरह के गल्ले हैं, गल्ला यानी अनाज है, दालें हैं, चावल, ये सब तरह की हर तरह की फसल जो है मेरे मुल्क में मौजूद है। और इतना जरखेज़ मुल्क है मेरा। इसी तरह से पहाड़ों का मंजर, वनों का समा, पहाड़ों का मंजर, पहाड़ों के मंजर की बात कर रहे हैं, वनों का समा यानी वन जो है जंगलों में, जैसे पेड़ हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, झरने हैं, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवा, और इसमें चश्मे रवा हैं, ये झरने हैं, चश्मा कहते हैं झरने को, तो चश्मे रवा हैं। कहाँ तक बयां हूँ इसकी खूबियाँ, मैंने कितनी खूबियाँ मैं इनकी बयान करूँ कि इसकी कोई हद नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना दिलकश मेरा वतन है। है फिरदौस का चमन पर घुमा, फिरदौस कहते हैं जन्नत को, तो जन्नत पर जो है ये चमन जो है यहाँ के जो बाग हैं उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम जन्नत का गुमान होता है, जन्नत तो नहीं लेकिन गुमान होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि जन्नत में इसी तरह के फल फूल पेड़ पौधे गल ये सब चीज़ें होंगी। ये बागे इरम है या बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। जैसे कि मैंने बताया जो है क्यारियाँ हैं, गल्ले हैं, यहाँ पे हर तरह के अनाज हैं, मेवे हैं, खुश्क फल हैं, बादाम है, अखरोट, किशमिश वगैरह वगैरह और भी हैं, तो जो इस मुल्क में पैदा होते हैं, सब्जियाँ हैं, गुलकारियाँ हैं, गुल बूटे हैं, फूल जो हैं उनको तराशा जाता है, सैराब में पानी से भरे हुए हैं जो चश्मे हैं, जरखेज है ऐसी ज़मीन। जरखेज़ किसे कहते हैं, उपजाऊ को कहते हैं बच्चों, जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है। तो यहाँ हिंदुस्तान में हर तरह की फसल होती है, गर्मी की अलग है, सर्दी की अलग है, बरसात की अलग है, तो इस तरह की फसलें होती हैं जो मौसम के हिसाब से होती हैं। चश्मा ज़मीन से उबलता हुआ पानी का, पानी या सोता, ज़मीन से उबलता हुआ पानी, पहाड़ों पे देखे होंगे आपने झरने बहते हुए, और चश्मा जो होता है वो ज़मीन से उबलता हुआ पानी होता है। रमा यानी बहता हुआ, फिरदौस के माने जन्नत है, जो मैंने बताया कि उस पर चमन जो है, जो बाग हैं उन पर जन्नत का गुमा होता है। ऐसे ही गुमान, गुमा के माने होते हैं शक, शुबा यानी वहम गुजरता है, हालांकि वो जन्नत नहीं है लेकिन जन्नत की जैसा है। जैसे हम कहते हैं अरे कितना खूबसूरत बाग है, कितना दिलकश बाग है, कितना खुशनुमा बाग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आई, हवाएं ऐसी चल रही हैं कि जैसे जन्नत की हवाएं आ रही हैं। हवा के बारे में भी एक कहा जाता है, इसी तरह से दिलकश, दिल पसंद है, दिल को लुभाने वाली है। ऐसे ही बाग इरम, बाग इरम कहते हैं जन्नत का बाग, इरम बाग इरम यानी जन्नत का बाग, इरम भी जन्नत को ही कहा जाता है। बाग अदन वो जन्नत का बाग जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो इस नज़्म में ज़्यादातर जो मंजर बयान किए गए हैं बड़े खूबसूरत मंजर हैं, जिसमें सबसे पहला मंजर जो है वो बागों का है, फूलों का है, परिंदों का है, उसके बाद चश्मों का है, पहाड़ों का है, दरियाओं का है। तो ऐसी इसी नज़्म के उस पर मुझे एक हमीदुल्ला अफसर का एक नज़्म है जैसा मेरा देश, उसकी एक चार लाइनें याद आ रही हैं जो उन्होंने अपनी नज़्म में कही हैं। कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो उनका इठलाकर चलना, दो बहने हैं गंगा जमुना, दुनिया में सानी नहीं उनका, जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। देखिए जहाँ इन्होंने कहा कि दरियाओं के बारे में कहा है, ऐसी हमीदुल्ला अफसर ने भी कैसे अच्छे अच्छे दरिया, वो इनका इठला कर चलना, और दो बहने यानी गंगा और जमुना का जिक्र कर दिया, गंगा जमुना उनका जिक्र किया है, और दुनिया में उनको कोई स्थानी नहीं है यानी उनको कोई दूसरा है नहीं, जैसी गंगा जमुना हमारे मुल्क में बहती है, तो जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। अब हम सवालों की तरफ आते हैं कि शायर ने इस नज्म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है, तो वही है कुमरी का है, चकोर का है, बुलबुल का है, मोर का है, चिड़िया, तोता, मैना, इन सब का जिक्र जो है इस नज्म के अंदर किया है। दिलकश चमन किसको कहा है उसने, वतन को कहा है। इस नज्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियां बयान की गई हैं, जो खूबियां बयान की गई हैं उनको आपको इसमें से देख कर समझ कर लिखना है, और वो क्या खूबियां हैं, वो यही है कि भाई आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है, हर तरह के परिंदे हैं, हर तरह के मेवे, हर तरह का जो है वो अनाज यहाँ पैदा होते हैं, और यहाँ के बाग, यहाँ के झरने, यहाँ के पहाड़, इन सब का जिक्र जो है भारत शायर ने, शफीउद्दीन अय्यर ने बड़ी खूबी से बयान किया है, और उसमें जो ज़बान का इस्तेमाल किया है वो बड़ी आसान और आम फहम ज़बान है, यानी ऐसी ज़बान है जिसको आप जो है वो आसानी से समझ में आ जाती है, कोई मुश्किल लफ्ज़ जो है उन्होंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि सारे लफ्ज़ जो हैं वो आसान है और उसकी मौजू की मुनासबत से है, क्योंकि वो वतन के फूलों का, बागों का इसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें ये सब लफ्ज़ों का, दिलकश जैसे लफ्ज़ है, खुशनुमा लफ्ज़ है, तो इन सब लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं या कोई नज़्म लिखते हैं, क्योंकि नज़्म जो है बच्चों एक मुसलसल इज़हार ख्याल होता है, नज़्म जो है किसी मौजू पर मुसलसल इज़हार ख्याल करते हैं, जैसे कि यह नज़्म है मेरा वतन, तो मेरे वतन में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरा वतन कैसा है, इस पर जो है वो शायर का पूरा जो है फोकस है, और उसमें वो यही बताते हैं कि मेरा वतन हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा वतन है, और उसमें ये सब चीज़ें जो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत का गुमान इस पर हो रहा है, और खूबियाँ भी बयान की हैं अपने वतन की, कि हर तरह के अनाज हैं यहाँ पर, हर तरह के परिंदे हैं, और हर तरह की मेवजात यहाँ पर हैं, हर तरह के परिंदे, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई नज़्म पढ़ें तो ठहर ठहर के पढ़ें, नज़्म को नज़्म के अंदाज से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि हर चीज़ हर आप पर वाज़े हो जाए, लफ्ज़ को दुरुस्त अदायगी के साथ मुनासिब लब व लहजे के साथ जो है आप उसको पढ़िए, तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखिए, दिलकश को दिलकशी बोलिए, दिलकश मत बोलिएगा, क्योंकि उसकी मीनिंग फिर जो है वो बदल जाएंगे, ऐसे ज़रखेज़ लफ्ज़ है तो ज़रखेज़ मत करिए उसको, ज़रखेज़ पूरा क़े और ज़े की आवाज़ जो है वो पूरी निकलनी चाहिए, इसी तरह से जो है कुमरी है तो कुमरी ना निकल जाए आपके मुंह से, तो कुमरी को खाप की आवाज़ जो है वो बाकायदा आपको तलफ़्फ़ुज़ को ऐसे ही अदायगी करनी है, और मुनासिब लब व लहजे के साथ मौज़ूनियत के साथ उसको पढ़ना है, और पढ़कर समझना है, समझ कर उसको जो मरकज़ी ख्याल है उसको लिखना है। मरकज़ी ख्याल क्या है, वो यही है कि वतन के बारे में, वतन की अहमियत को, वतन की खूबियों को शायर इस नज़्म में बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करता है। पैगाम क्या देना चाहता है, पैगाम यही देना चाहता है कि भाई मेरा वतन हिंदुस्तान जो है वो इतना दिलकश और इतना अच्छा है कि इस पर जन्नत का गुमान होता है मुझको, क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन है यहाँ की, बाग फल और बाग हैं, मेवाजात हैं, बागों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो इसमें आपने देखा होगा कि हर चीज़ धुल जाती है, सब्ज़ा जो है वो चारों तरफ साफ़ सुथरा नज़र आता है, फूलों में जान पड़ जाती है, कलियों में जान पड़ जाती है, और परिंदे भी चहचहाने लगते हैं और खुश होते हैं क्योंकि गर्मी से सबका बुरा हाल होता है। तो इस तरह से उसने जो शुरुआत में जो एक कहा है कि मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, यानी एक बड़ाई बयान कर रहा है, अपने वतन की खूबियां बयान कर रहा है। इसी तरह से इसमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं नीचे लिखे हुए, कुछ लफ्ज हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें है वतन, तो वतन पे आप वतन लिखिए और वतन को जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि मेरे वतन का नाम हिंदुस्तान है और उसमें बहुत दिलकश बाग है। इसी तरह से मंज़र है, तो पहाड़ों का मंज़र बहुत अच्छा मालूम होता है, तो मंज़र लफ्ज़ जो है उसमें ज़रूर आना चाहिए। उसकी मीनिंग मत लिखिएगा बल्कि उस मंज़र को, क्योंकि लफ्ज़ अपने आप में कुछ नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ को जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं विद कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चमन लफ्ज़ है, ऐसी समा, कैसा खूबसूरत समा है या कैसा दिलकश समा है। तो समा यानी कैफियत, एक तरह से किस तरह का मंज़र है, तो वो मंज़र जो है वो आप इसके अंदर समा में लिख सकते हैं, कैसा अच्छा समा है या कितना खुशगवार वक्त है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके अंदर लफ्ज़ हैं जिनको आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही इसमें जैसे तरकारी है, तो तरकारी जो है वो वाहिद हो गया, उसके जमा तरकारियाँ हो गई। ऐसे जो है इसमें चश्मा है, तो उसकी जमा जो होगी बहुत सारे चश्मे यानी चश्मों। ऐसी जो है बाग, बाग की जमा बागों। इस तरह से नज़्म में जितनी भी वाहिद जमा और मुतज़ाद अल्फाज आ रहे हैं उनको इसी नज़्म से भी तलाश करके लिखिए। ऐसे इसमें मैंने बताया था जैसे लिखते वक्त भी जो इमला जो लिखते हैं आपकी मैडम आपको लिखवाती हैं, या घर में आप अपने इमला लिखते हैं, आपके घर में आपकी बहन या आपकी मदर आपको इमला लिखवाती हैं, तो उसमें जैसे इसमें है तरकारियाँ, तो आपने अगर उसको सही सुना होगा तो सही लिखेंगे, अगर आपने सुन लिया तरकारियाँ तो उसको क्या लिखेंगे, तरकारियाँ। तरकारियाँ तो कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है, तरकारी है, तरकारियाँ हो गया। इसी तरह से अब जैसे बागों, तो गैन की आवाज़ ने लिख के आपने गाफ उसके अंदर लिख दिया तो वो हो जाए बागों, तो बागों तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है इसका इमला जो है वो दुरुस्त आपको लिखना होगा। ऐसी मंजर है, तो मंजर को मीम नून और जो और रे से लिखा जाता है, और अगर आप उसको जे से लिख देंगे तो वो मंजर नहीं रहेगा, गलत लिख जाएगा। तो लफ्ज़ों को सही हिज्जे के साथ लिखना, सही तलफ़ुज के साथ लिखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वतन है, वतन वाव तोय और नून है, तो आप इसमें वतन को जो है बहुत से बच्चे लिख देते हैं वाव ते और नून वतन, तो ते तो उसमें है नहीं बल्कि तोय है, तो तोय को जो है उसमें लिखा जाएगा। तो इसी तरह सरसब्ज है, तो सरसब्ज को आप सीन से ना लिखकर स्वाद से लिख दें तो वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इमला भी आपको दुरुस्त करना है, तलफ़ुज़ भी आपको उसकी अदायगी भी सही से करनी है, और उसको उसका जो मतलब है उसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मुनासिब लफ़्ज़ोलॉजी के साथ और मौजूनियत के साथ आपको पढ़ना है, मौजू करके पढ़ना है। यानी कि आप एक आंग होता है ना, एक लय होती है एक नज़्म के अंदर, उसी नज़्म के तहत उसको पढ़ना है। जैसे ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। देखिए एक ही लय में, ले आपकी एक ही होनी चाहिए, और अगर आपको आपने उसको ऐसे पढ़ दिया वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर इस तरह से, तो कोई भी नज़्म होती है ना उसका अपनी एक लय होती है, उस लय में जो है अगर आप उस नज़्म को पढ़ेंगे तो मज़ा भी आता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। आप जब उसको पढ़ें या उसकी किरत करें या उसको बुलंद खानी करें तो आवाज़ का भी आपको उतार चढ़ाव आपको देखना है, तो बहुत ज़्यादा ये ना हो कि बहुत खींच के पढ़ना है या बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम चढ़ा दिया उसको, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान पढ़ते वक्त रखना है। जैसे मैंने बताया था चिड़िया, तो चिड़िया की जमा चिड़ियाँ हो गई, बुलबुल बुलबुले, झील की जमा हो गई झीलों, दरिया की जमा दरियाओं, फिर झरना झरना की झरनों हो जाएगी, पहाड़ की पहाड़ों होगी, और मेवे की मेवो हो जाएगी। तो इस तरह से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद अगर आप बनाएंगे तो नए नए लफ्ज़ भी आप लिखेंगे और इस तरह से आपकी ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होगा। और बच्चों आप भी नज़्म लिख सकते हैं किसी भी उस पर, इन्होंने तो वतन पे लिखी है, आप किसी भी मंजर पर, आप फूल पे लिख सकते हैं, आप बरसात पे लिख सकते हैं, या पहाड़ पे लिख सकते हैं, या कोई आपको परिंदा नजर आता है तो चिड़िया पे भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप नज़्म, लेकिन लिखते वक्त जब आप लफ्ज़ों का इंतखाब करें, तब जैसे चिड़िया है तो चिड़िया से मुतालिक जितने लफ्ज हैं, जैसे चिड़िया आई, दाना लाई, इस तरह से, तो चिड़िया से मुतालिक जो जो चीज़ें हैं वो आपको उसके अंदर जो लफ्ज़ियात है उनका इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना होगा। चिड़िया आई, दाना लाई, या फिर एक नज़्म जो है वो, एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली, पाली और भोली भाली, तो इस तरह से उसमें पूरा ये कहानी है कि एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही डाला। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद ना आई, चूचू चूचू करके रोई, सारी रात इसी में कोई। सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला, प्यार से जब उसको चमकारा, चिड़िया ने तोतों से चोंचों से मारा। बुढ़िया भागी अंदर आई, मिट्टी भरकर दाना लाई, जब बुढ़िया ने दाना खिलाया तब चिड़िया ने गीत सुनाया। तो देखा, ये भी एक गीत है और चिड़िया पर है, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी के नाम से है, बरकतुल्ला फराक की नज़में, जो कि बच्चों के शायर थे, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। तो ये मुझे नज़म याद आ गई, क्योंकि आपको बता रही थी कि नज़म को किस तरह से लिखा जाए, तो वो नज़म आप लिख सकते हैं। फिर ये है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप नज़में भी जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर बच्चा नज़म लिख सके। आप नज़म नहीं लिख सकते तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में इकट्ठी कीजिए, उन नज़मों को याद कीजिए, इस नज़म को याद कीजिए और उसको सुनाइए आप अपने घर वालों को, और या फिर जो है तरन्नुम से गाइए, मिलकर गाइए, दो तीन लोग अगर मिलकर गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो गाने से क्या होता है वो जल्दी समझ में आएगी, और बच्चे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं खासतौर पर नर्सरी केजी के, या तो इस तरह के बच्चे जो है ना, नज़में गा के पढ़ते हैं, गा के पढ़ते हैं तो उनको याद भी हो जाता है। क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है, क्योंकि पाँचवीं क्लास आप पास कर चुके हैं, प्राइमरी आपका इब्तदाई जमातों से आप निकल कर अब आप प्राइमरी में दाखिल हुए हैं, तो अपर प्राइमरी में आपसे क्या तवक्कु की जाती है, यही तवक्कु की जाती है कि आप नए नए अल्फाज जो हैं उनको समझेंगे, और ज़बान मतलब आपने जो वहाँ पर सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखा है, तो यहाँ अगर आपका जो मयार है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ऊँचा हो जाएगा, और वो कैसा होगा ऊँचा, कि आप रवानी से बोलेंगे, रवानी से अपनी किसी बात का इजहार करेंगे, किसी मंजर को देख के उसके बारे में दो चार जुमले भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के जुमलों को लिखेंगे, या वतन से मुतालिक और किसी ने जो नज़में कही हैं, जैसे मैंने अभी आपको सुनाई थी अहमदुल्ला अफसर की नज़म, और भी अल्लामा इकबाल ने भी लिखी है नज़में, तो उन नज़मों को भी आप ले सकते हैं, या और जो मनाज़िर फितरत पर लिखी गई हैं नज़में, उन नज़मों को भी आप इंटरनेट से तलाश कीजिए, उनको लिखिए और उनका एक वो बना लीजिए। ऐसे ही अब इसमें जो है वो से शेर मुकम्मल करने हैं, तो मिसरों को सही तरतीब से देख के लिखना। मिसरा दे दिया इसमें, वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ। अब इसमें मुझे देखना है कि इसमें वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, तरकारियाँ और गुलकारियाँ, कहाँ तक बयां उसकी हों खूबियाँ, मुझीलों वो सरसा बागों की फुलवारियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुबा, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। तो इस तरह से आपको नज़्म जब आप देखेंगे, तो ये जो किताब में जो मशकें दी गई हैं, उस मशक में ये लिखा गया है कि मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए, क्योंकि जो शेर होता है दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, तो दोनों मिसरों को आपको जो है मिलाना है। अब इसमें एक एक मिसरा इधर दिया है, तो दूसरा जो है वो आप, अगर आपको नज़्म याद है तो बखूबी उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको देख कर और उस नज़्म को कीजिए। अच्छा, इस ज़बान को मैं ये भी कहूँगी कि आप ये भी कर सकते हैं कि नज़्म को ज़बानी याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी नज़्म है और ज़बानी याद की जा सकती है। ज़बानी याद कीजिए, फिर उसको जो है वो तरन्नुम से गाइए, और उसके बाद ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जब आपको याद होगी नज़्म ना, तो आप आराम से उस नज़्म को लिख सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इसमें वतन की जो सबसे बड़ी वतन की अहमियत को बयान किया है शायर ने, शफीउद्दीन अय्यर ने, और इसके अलावा वतन की या मुल्क की हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बहुत सारी खूबियों को मुख्तसरन बयान किया गया है, क्योंकि नज़्म तो मुख्तसर बयान होता है, बहुत कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाती है, और नसर जो होती है उसको हम इतने वजाहत के साथ लिखते हैं। जैसे अब ये मेरा वतन है, मेरा वतन पे आप मज़मून भी लिख सकते हैं बच्चों, तो एक मज़मून जब लिखेंगे तो आप उसमें लिखिए कि मेरा वतन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इतना ये चीज़ें हैं जो आपने इसमें देखी हैं, जो जो आप महसूस करते हैं, उन सब चीज़ों को लिखिए, एक पैराग्राफ कम से कम आप लिख सकते हैं मेरा वतन पर। ऐसे ही इस वतन की मोहब्बत और दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है कि शायर को अपने वतन से कितनी मोहब्बत है, वो ये कहता है ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी उस पर एक फ़ख्र महसूस करता है कि देखिए मेरा वतन कितना दिलकश है, कितना खूबसूरत है मेरा वतन, मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है कि यहाँ पर हर तरह के पर फूल हैं, क्यारियाँ हैं, चश्मे हैं, झरने हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपने नज़्म में भी, अगर नज़्म अगर लिख सकते हैं तो नज़्म में लिखिए। नज़्म ज़रूरी नहीं आप मेरे वतन पे ही लिखें, किसी और मौजू पे भी लिख सकते हैं, मेरे वतन पर आप मज़मून भी लिख सकते हैं, वतन पर कोई ड्रामा भी आप जो है वो लिख सकते हैं, उसको स्टेज कर सकते हैं, वो ड्रामा आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर आप बना सकते हैं तो उसको जो है वो बना सकते हैं, और उसमें कुछ मुकालमे वगैरह जो है वो डाल दीजिए, और बहुत कितना 5 मिनट का बनाइए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में आप अपनी बात को जो है बयान कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ बच्चों आपको इस नज़्म से एक तो पढ़ना, मौजूनियत के साथ पढ़ना, और दूसरे ये कि लय के साथ पढ़ना, सही तलफ़ुज़ से अदायगी करना, और इस नज़्म का जो मरकज़ी ख्याल है उससे वाकफियत हो गई होगी। इसके अलावा वतन की अहमियत को जो शायर ने जो बयान की है, ज़बान को जो लिखा है, जो उनका अंदाज है, जिसको कहते हैं हम तहरी उसलूब कहते हैं, जिसको स्टाइल कहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस पर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार लगिए कि आपको ये नज़्म कैसी लगी और क्यों अच्छी लगी, इस पर कम से कम 5 जुमले तो आप लिख ही सकते हैं। और मैं समझती हूँ बच्चों आपको आज की नज़्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप जो है इस नज़्म को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए, समझ के फिर लिखिए। तो इस तरह से ये नज़्म जो है वो वतन की अहमियत, उसकी वतन से मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है। तो इसके साथ ही मैं समझती हूँ आपको ये नज़्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीकों ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
10: नमस्कार किसान भाई, मैं हूँ आरजे अनु और एक बार फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच लेकर उन्नत कृषि कार्यक्रम। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर हमेशा इस कार्यक्रम में बातें करते हैं किसानों के लिए, किसानों के हित की बातें। तो आज भी कुछ ऐसे ही बातें, आपकी खेती से जुड़ी सारी बातें हम लेकर आए हैं। लेकिन फिलहाल आज का एक हमारा बहुत ही खास विषय है, और जैसा कि जानते हैं आप किसान भाई कि आलू, जिसे सब्जियों का राजा कहा जाता है, आलू के बिना हमारा हर एक जो सब्जी है वो अधूरा रहता है। तो जब भी हम जाते हैं बाजार तो आलू ज़रूर खरीदते हैं। क्या आपको पता है कि आलू की खेती भी वैज्ञानिक तरीके से हो सकती है? जी हाँ, आलू की वैज्ञानिक खेती, आज यही विषय है हमारा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आलू की खेती किस मौसम में होती है?
11: आलू मिट्टी के नीचे तैयार होने वाली शीतकालीन कंद फसल है। आलू की खेती मुख्य सब्जी फसल के रूप में बिहार के प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। आलू की खेती ठंडे मौसम में, जहाँ पाले का प्रभाव नहीं होता है, सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके सही जमाव के लिए 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अधिकतम तापक्रम कंद बनते समय दिन का 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस तरह का तापमान उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से मार्च तक रहता है। कम तापमान, सूर्य की तेज रोशनी और छोटे दिनों में कंदों का शीघ्र निर्माण होता है। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर कंदों का निर्माण रुक जाता है।
10: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, शीतकालीन मतलब कि शीतकाल में इसकी जो आलू की खेती है वो हो सकती है, ये आपने बताया। तो डॉक्टर साहब, अब खेत की बारी आती है कि हम आलू की खेती करना चाहते हैं, तो खेत की तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें?
11: आलू उत्पादन में खेत की तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा उसके बाद दो तीन बार कल्टीवेटर से जुताई करें। ध्यान रखें कि प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, ताकि भूमि में नमी बनी रहे तथा मिट्टी भुरभुरी हो जाए। यदि भूमि में नमी की कमी हो तो जुताई से पूर्व सिंचाई कर लेना चाहिए, जिससे भूमि भली भांति तैयार की जा सके। उसके बाद जुताई के क्रम में खरपतवार एवं फसलों के डंठल वगैरह जो भी हो उसे चुनकर खेत से बाहर निकाल दें।
10: तो ये थी खेत की तैयारी। और डॉक्टर साहब, खाद और उर्वरक जो हैं, ये इसका इसके लिए यानी कि किसी भी फसलों की खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आलू की खेती की बात आती है तो इसके लिए अलग खाद और उर्वरक की ज़रूरत होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि खाद और उर्वरक आलू की खेती में कैसे दें, कौन सी देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए?
11: अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। आलू की फसल के लिए खाद एवं उर्वरकों की मात्रा भूमि की किस्म, भूमि की उर्वरा शक्ति, जलवायु, फसल चक्र एवं किस्म पर निर्भर करती है। नियमतः खाद एवं उर्वरक मिट्टी के परीक्षणोपरांत ही डालना चाहिए। अतः खेत जोतने के समय 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। गोबर की खाद खेत में डालने से न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी पूरी होती है, बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी पूर्ति होती है। आलू की फसल को प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 730 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या 325 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। आलू की फसल को गंधयुक्त रासायनिक उर्वरकों से अधिक लाभ मिलता है, अथा संभव यूरिया के बदले अमोनियम सल्फेट तथा डीएपी के जगह सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा आलू बोने के समय ही करना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा मिट्टी चढ़ाते समय अर्थात बुआई के 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। बुआई के समय उर्वरकों को डालने की विधि पर ध्यान देना आवश्यक है। आलू के कंद उर्वरकों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, अन्यथा कंद सड़ने की संभावना रहती है। अतः आलू बोने के लिए बनाई गई उथली नालियों में उर्वरकों को डालकर मिट्टी में मिला दें और तब आलू के कंद रखें, या कंद रखने के 50 सेंटीमीटर दूर उर्वरक को डालें। आलू के कंदों को पंक्ति में रखने के बाद मिट्टी चढ़ा दें। प्रायः देखा जाता है कि एक ही खेत में प्रत्येक वर्ष आलू लगाया जाता है। शुरू के कुछ वर्षों तक उपज अच्छी मिलती है, परंतु बाद में उपज में कमी आने लगती है, क्योंकि एक ही खेत में कई वर्षों तक लगातार आलू की खेती करने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। अतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्रत्येक 2-3 वर्षों पर 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 से 15 किलोग्राम मैंगनीज सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व खेत तैयारी के समय ही खेत में डाल दें।
10: तो डॉक्टर साहब ने बताया आप सभी को कि खाद एवं उर्वरक किस मात्रा में, कौन से खाद एवं उर्वरक डालनी चाहिए आपको आलू की खेती के लिए। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि हम अगर सही प्रभेदों का चयन करें तो हम आलू की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आप किसान भाइयों को बताएं कि आलू के कौन कौन से प्रभेद उनके लिए अच्छे होंगे।
11: आलू की भरपूर उपज प्राप्त करने के लिए उसकी उन्नत किस्मों को ही उगाना चाहिए। आलू के प्रमुख उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे आलू का कुछ किस्में अगात किस्में होती है। जैसे अगात किस्में में आती है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी कुबेर, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज। ये सभी किस्में 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है तथा इन्हें 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अवश्य ही लगा देना चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। फिर दूसरा ग्रुप आता है मध्य अगात के लिए अच्छी किस्में हैं कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी ज्योति, कुफरी चमत्कार। ये सभी मध्य अगात यानी कि मुख्य फसल वाली किस्में हैं जो लगभग 100 से 110 दिनों में तैयार होती है। इसे 20 नवंबर तक लगा देना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ पिछात किस्में। इसमें पिछात किस्में में मुख्य रूप से हैं कुफरी सिंदूरी, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2। ये किस्में लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार होती है तथा इन्हें 30 नवंबर तक लगा देना चाहिए।
10: तो यहाँ पर हमने जो प्रभेदों के बारे में जाना है, डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्नतशील प्रभेदों को ही हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए, आलू के उन्नतशील प्रभेदों को, और उसके टाइमिंग के बारे में बताया कि कब और किस समय के बीच लगाएं आप, ताकि आपको फ़ायदा हो किसान भाइयों। और डॉक्टर साहब, जब बीजों की आवश्यकता की बात करते हैं तो हमारे जो किसान भाई है वो सही बीजों का चयन करेंगे तो उन्हें इस खेती में, आलू की खेती में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि कौन से जो बीज हैं वो उनके लिए सही होंगे।
11: आलू का उत्पादन आलू के बीज के ऊपर निर्भर करता है। आलू के बीज पर लगभग कुल लागत का 40-50% तक खर्च आता है, अतः अधिक उपज हेतु सदैव प्रमाणित एवं निरोग बीज का उपयोग करना चाहिए। इसकी खेती के लिए बीज की मात्रा आलू के कंदों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे 25 से 30 ग्राम यानी कि बाजार में उसे सूत पर बिकता है, तो 25 से 30 ग्राम यानी कि 8 से 9 सूत का कंद प्रयोग में लाने पर एक हेक्टेयर के लिए 15 से 20 क्विंटल बीज लगेगा, तथा 40 से 50 ग्राम यानी 12 से 14 सूत का कंद लगाने पर एक हेक्टेयर के लिए 20 से 25 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। 20 ग्राम यानी लगभग 6 सूत से छोटे आकार के कंदों का प्रयोग करने पर उपज में कमी हो जाती है, अतः बहुत छोटे कंदों का प्रयोग बुआई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 25 से 30 ग्राम अर्थात 8 से 9 सूत यानी उस या उससे बड़े आकार के कंदों को वायरस से ग्रसित होने की संभावना नहीं होती है तथा पौधे स्वस्थ एवं पुष्ट होते हैं। यदि बीज के कंद वायरस से ग्रसित होंगे तो कुछ दिनों के बाद पौधे की पत्तियां मुड़ने लगेगी यानी कुकुड़िया जाती है, और ऐसे पौधों में कंद लगेंगे ही नहीं, और यदि लगेंगे भी तो आकार में बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, फलस्वरूप उपज में कमी आ जाएगी। आलू के बड़े कंदों को काटकर भी लगाया जा सकता है, परंतु कटी हुई आलुओं से बुआई अक्टूबर माह के बाद ही की जानी चाहिए, जब तापक्रम कम हो जाए। वायुमंडलीय तापमान अधिक रहने की स्थिति में कंदों को काटकर लगाने पर सड़ने की संभावना रहती है। कंदों को काटने के समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 आँखें, जिसे कलियां कहते हैं, अवश्य रहे। अंकुरित आलू के कंद ही लगाने चाहिए। उत्तर भारत में प्रायः शीतगृह में रखा हुआ बीज ही बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज से बीज को निकालने के बाद उसे ठंडे हवादार और अंधेरे कमरे में फैलाकर 1 सप्ताह छोड़ दें ताकि कंदों में अंकुरण आ जाए। यह हमेशा ध्यान रखें कि अंकुरण आने के बाद ही उसकी बुआई करें।
10: तो यहाँ पर हमने जाना कि कैसे बीज होने चाहिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ बीजों की जो खराबी है उनके बारे में बताया कि अगर वैसे बीज रहते हैं तो आप उसे ना लें ताकि उससे आपको नुकसान ना हो, आपके जो फसल है उस पर नुकसान ना पहुँचे, उससे नुकसान ना पहुँचे। और डॉक्टर साहब, अब सस्य क्रियाओं की बात करते हैं, तो इसकी खेती में जो प्रमुख सस्य क्रियाएँ हैं वो हम जानना चाहेंगे।
11: इसकी खेत पहले तो कि जब हम आलू लगाते हैं तो उसको हमको बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित करने के लिए एमिसान नामक दवा आती है, एमिसान 6, उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर उसे घोल बना लें और उसमें आलू को डुबो दें। 10-15 मिनट डुबोने के बाद उसे बाहर छानकर निकाल लें और छाया में सुखाने के पश्चात उसकी बुआई करें। बुआई की दूरी जो है हमेशा 50 से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें और कंध से कंध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें खरपतवार आ जाते हैं, अतः बुआई के 10-15 दिनों बाद निकाय गुड़ाई करें ताकि फसल खरपतवार से मुक्त रहे। साथ ही साथ मिट्टी हल्की होगी जिसके कारण कंदों का विकास भी ठीक होगा। अब आलू बोने के बाद जो है उसमें मिट्टी चढ़ाना एक प्रमुख कार्य होता है, अतः आलू में मिट्टी का चढ़ाया जाना बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए मिट्टी चढ़ाना समय पर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विलम्ब से मिट्टी चढ़ाने के कारण नए नन्हे कंदों को नुकसान होगा, अतः बुआई के 25 से 30 दिनों के अंदर ही खेत की कोरनी कर एवं नाइट्रोजन उर्वरक का भुरकाव कर मिट्टी चढ़ा दें। उसके बाद शस्क्रिया में मुख्य रूप से सिंचाई पर भी ध्यान देना आवश्यक है, तो सिंचाई के लिए हमें नियमित एवं हल्की सिंचाई का होना आवश्यक है। यदि बुआई के बाद नमी में कमी नज़र आए तो प्रथम सिंचाई बुआई के 4-5 दिन बाद हल्की करें ताकि पौधा आसानी से उग जाए। दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 15 दिनों बाद तथा तीसरी सिंचाई मिट्टी चढ़ाने के 2-3 बाद करें। इसके बाद 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। ध्यान रहे कि आलू के क्यारियों में कभी भी ज़्यादा पानी न हो। सिंचाई से मेड़ों का केवल 2/3 भाग ही गीला होना चाहिए। कंदों के खुदाई के 15 दिनों पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से फसल सुरक्षा भी आता है, तो फसल सुरक्षा के लिए इसमें मुख्य रूप से कजरा पिल्लू दीमक वगैरह लगता है, तो फसल को कजरा पिल्लू एवं दीमक से बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय फुरा-डाउन-3G एक कीटनाशी दवा है। इस दवा को 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय मिट्टी में डाल दें। आलू में मुख्य रूप से अगात झुलसा, पिछात झुलसा एवं वायरस रोग का प्रकोप होता है। इन रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि फसल 5-6 सप्ताह का हो जाए तो इमिडाक्लोरोपीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में तथा इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद सिर्फ इंडोफिल M45 फफूंदनाशी दवा का 10-15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। यदि मौसम में नमी अधिक हो, तापक्रम बहुत कम हो, बदली छाए रहे तथा हल्की बारिश हो जाए तो रीडोमिल एम गोल्ड फफूंदनाशी दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अति आवश्यक है, अन्यथा पिछात झुलसा रोग से फसल बर्बाद होने की संभावना रहती है। वैसे तो बिहार राज्य में पाला पड़ने की संभावना नहीं रहती है, परंतु कभी कभी तापक्रम काफ़ी कम हो जाता है और पाला गिरने जैसी स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में फसल को बचाने के लिए खेत में कम दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे तथा रीडोमिल गोल्ड दवा का भी छिड़काव करते रहें। आलू के पौधों की पत्तियों में जब पीलापन आने लगे तो समझें कि अब मेरा आलू तैयार हो गया है, उसके बाद इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। आलू को खेत से निकालने के बाद उसे छायादार एवं हवादार जगह में 10-15 दिनों तक सुखाने के बाधे भंडारण करें।
10: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी कि आप आलू की वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि खेत की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, खाद एवं उर्वरक आप किस तरीके के और कौन से डाल सकते हैं, साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी खेती के प्रमुख सस्य क्रियाएँ कौन सी हैं, बीमारियों से बचाव के बारे में बताया। तो इन सारी चीज़ों की पूरी जानकारी आप सभी को उपलब्ध हो गई है और आशा करेंगे कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए इन सुझावों को अपनाएंगे और आलू की खेती बिना रुकावट के साथ करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल

0: साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी

अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक एक, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, तो लीजिए फिर से हाजिर हैं हम और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु, लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हाँ, वैसे समय की बात करें, सीजन की बात करें तो सब्जियों की रोपाई का वक्त आ चुका है और उसमें भी बहुत सारे सब्जियां हैं जो आप अपने बागान में लगा सकते हैं। तो सब्जियों को लगाने से पहले ज़रूरी होता है कि हम सावधानियां बरतें। सावधानियां यानी कि जो कीट पतंगे हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, उन कीट पतंगों से हम कैसे आज़ादी दिलाएं अपने बागानों को, यानी कि खास तौर पर सब्जियों के बागानों को। तो आज हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं एक खास विषय पर जो है सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन। जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर टी साहा जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और जहाँ तक देखा जा रहा है तो मौसम के अनुसार भी हमारे किसान भाइयों को अभी ये सलाह दिया जा रहा है कि वो अपने नए बागान सब्जियों के लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन की ओर जाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि बैंगन के अगर हम बागान लगाते हैं तो उनमें कौन कौन से कीट पतंगे जो हैं वो आ सकते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम।
1: धन्यवाद। मैं पहले बताना चाहूँगा, बैंगन में हमारे बिहार में जो है मुख्यतर 3-4 कीड़े जो है सबसे ज़्यादातर डैमेज करते हैं। उसमें जो है बैगन के तना और फली छेदक है, जो जब हमार बैगन ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके 20 से 25 दिन के बाद से ये कीड़े का आक्रमण शुरू होता है। ये पहले तना में अटैक कर डैमेज करता है, तना के अंदर वो जो है छेद करके उसके अंदर घुसता है, जब एक से जब उसका पिल्लू निकलता है उसके बाद फिर वो होल पहले शुरू में जो है बहुत छोटा रहता है, बट जब मैच्योर होता है लार्वा जो पिल्लू जो है वो निकल के फिर फ्रूट में डैमेज करता है। जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है, फल का अवस्था होता है तो फल में वो डैमेज करता है। ये पिल्लू जो है देखने में थोड़ा सा हल्का सा उजला और भूरा कलर का मिक्सचर है और जो उसका हेड है जो उसको बोलते हैं वो जो है भूरा कलर का होता है और ये जो है दोनों तना को भी एवं फल को भी ये छेद करते हैं, किंतु इसका जो एडल्ट है जो संपूर्ण अवस्था है ये डैमेज नहीं करता है, किंतु इसका जो इमैच्योर जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं इसको ज़्यादा डैमेज करता है सब्जी में बैगन में। और ये डैमेज जो है लगभग 20-80% तक डैमेज करता है, रबी में भी डैमेज करता है, तो रबी फसल में थोड़ा सा कम करता है कंपेयर अगर किया जाए हम लोग खरीफ बैगन और रबी में अगर बैगन लगाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सबसे मुख्य कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डा बीटल, ये शुरू के टाइम में ज़्यादा डैमेज करता है जब बैगन का 2-3 पत्ती के समय आता है। इसमें ये क्या, ये बैगन का पत्ती को जो है नोच के इसको पूरा उसका जो हरा वाला पोर्शन पीला हरा वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा डैमेज करके ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है और उसमें जो पत्ती में जो वेंट्स वगैरह रहता है वही से बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा, जब बैगन का 2-3 लीफ का स्टेज रहे उसी समय हमको इनको अच्छा से कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद तीसरा जो कीड़ा है ये है बैगन का जैसिड बोल सकते हैं हम लोग, ये पूरा पीला का हरा कलर का होता है, बहुत छोटा होता है और बैगन के पत्ती के निचले भाग में ये ज़्यादातर देखा जाता है। ये अंडा भी उसी के अंदर ही देता है, अंदर जो बैगन के नीचे वाला पत्ती में, और ये बैगन को बैगन से जो है पत्ती से रस चूस के इसको कंप्लीट जो है एकदम ड्राई कर देता है, जो पत्ता जो आहिस्ता आहिस्ता इसका अंदर जो क्लोरोफिल रहता है बैगन के पत्ती में ये पूरा ख़त्म करके इसको भूरा कलर का आकार कलर में आ जाता है। पहले पीला करते फिर भूरा कलर होके फिर पत्ती गिर जाता है और ये वायरस नामक एक बीमारी भी फैलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ बेंजर। ये कैसे होते हैं देखने में, जब भी ये वायरस बीमारी आपके खेत में आएगा तो बैगन का जो नॉर्मल जो हाइट होता है उससे वो छोटा हो जाएगा, उसमें ना फल लगेगा ना फूल लगेगा और बैगन का जो जितना भी ब्रांचेस आता है उसमें छोटा छोटा जो है जो पत्ती है छोटा छोटा हो जाएगा और वो ऊपर की तरह थोड़ा सा मुड़ जाएगा और उसमें कोई फूल भी नहीं लगता है कोई फल भी नहीं लगता और उसका पत्ती का जो कलर है जो नॉर्मल हमारा बैगन का पत्ती का कलर है उससे ज़्यादा डार्क हरा कलर का पत्ती आता है। तो ये जो है बहुत भयंकर बीमारी है, ये अगर आपके खेत में आ जाता है तो आपको तुरंत जो है आपको खेत को वो बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कुछ और छोटे छोटे कीड़ा है जिसे हम लोग बोल सकते हैं सादा मक्खी बोल सकते हैं बैगन का, ये भी डैमेज करता है, ये भी निचले वाले पोर्शन के बैगन के पत्ती के नीचे वाले पोर्शन पे रहता है, ये भी शुरू के टाइम में ही डैमेज करता है मैक्सिमम। ये जब डैमेज करता है जो पत्ती का फिर वही कलर चेंज हो जाता है और बैगन का पत्ती का कलर जो है ये पीला कलर का हो जाता है फिर भूरा कलर का हो जाता है, तो इससे भी हमको सावधानियाँ बरतना पड़ेगा। यही सब जो है बैगन का मुख्य कीट जो है हमारे इधर लगता है।
0: अच्छा, यहाँ पर आपने बताया डॉक्टर साहब कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं इन कीट पतंगों से, तो अब जो समेकित अगर हम इसके समाधान के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए खासतौर पर बैंगन के लिए?
1: हाँ, हम लोग अगर समाधान करने के जाए बेचा हम शुरू से बताना चाहेंगे हम कैसे बैगन का समाधान करेंगे। जैसे शुरू में हम आपका आप लोगों को बताएं जो बैगन का जो जैसीड है और सादा मक्खी है ये शुरू के समय में ज़्यादा लगता है और जो दो से तीन पत्ती में हड्डा बिटल लगता है।
0: अच्छा।
1: जो अगर हम बीज शोधन करके अगर हम लगाए तो ये हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है जैसे जैसीड हो गया सादा मक्खी हो गया ये जो है 20 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और नर्सरी में भी हम जब इसको बुआई करेंगे तब भी कोई दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा जो है कीट जो फसल में जो कीटनाशी का प्रभाव भी कम होगा और हमारा फसल में जो फार्मर फ्रेंडली जो बंधु कीट है इसका भी नंबर बढ़ेगा और डिजीज भी हमारा कम है मतलब रोग भी जो है हमारा कम आएगा। तो ये हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। शुरू से हम लोग बीज शोधन करें, बस सीडलिंग डीप मतलब जो सीडलिंग जो नर्सरी से आप मेन फील्ड में जब रोपाई करेंगे तो सीडलिंग को अगर इमिडाक्लोपीड बा थायोमिथाक्साम नामक जो दवा है इमिडाक्लोपीड का गौचो और थायोमिथाक्साम नामक एक तरह का दवा है ये दवा अगर 3 ml और 3 ग्राम 15 लीटर सॉरी 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप इसको डीप कर सकते हैं। अगर कम मात्रा में बनाना है तो इसका मात्रा है 1 gram/1 ml प्रति 3 liter पानी। अगर स्प्रेयर में लेना है तो 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर में 5 gram/15 liter स्प्रेयर में आप घोल कर सकते हो। तो हम इसको बीज शोधन जो है हम उसको नर्सरी से मेन फील्ड में लगाने के बाद हम इसको सीडलिंग डीप करके भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा जो चूसने वाले कीड़ा से हम 25 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा हड्डा बिटल के बारे में आप बताएं जब आप 2 से 3 लीफ की स्टेज में हैं वो मैक्सिमम डैमेज करता है। अगर वो एक बार डैमेज मैक्सिमम कर देंगे तो फिर उसमें फल भी नहीं बनेगा फूल भी नहीं आएगा और वो ग्रोथ भी बंद हो जाएगा तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम अगर समेकित प्रणाली में जाए तो हम जानते हैं हमारे गाँव में जो है राख मिलता है राख मतलब जो जलावन करने के बाद जो रेसिड्यू रहता है उसको अगर हम कलेक्ट करके उसको अगर हम भुरकाव करें पत्ते के ऊपर भुरकाव करने के बाद हल्का सा मिट्टी का तेल डाल दे इसलिए डाल दे जो वो उसके ऊपर बना रहे नहीं तो कभी कभी ये होता है बारिश के समय पे व हल्का जो ठंडी के समय पे जो ड्यू जो पानी गिरता है उससे जो है वो फिर पत्ती में सटके नहीं रह सकता है। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें अगर डाल देंगे तो ये जो है हमको कोई भी कीटनाशी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमारा जो पत्ती जो है और हमारा बैगन का जो फसल है कीटनाशी मुक्त रहेगा और इस तरह से हम समेकित प्रणाली से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके गाँव में नीम का पेड़ है नीम का पत्ती आपको मिलेगा अगर नीम आधारित कोई दवा अगर आप इस्तेमाल करना चाहे अगर बाजार में उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना मिले तो नीम का पत्ती जो है आप पेड़ से तोड़ के 400 से 500 ग्राम पत्ती मिक्सचर ग्राइंडर में उसको क्रश करके उससे जो निष्कास निकलेगा उसको एक उजला कपड़ा में पोटली बनाकर 1 liter पानी एक मिट्टी के घर में घड़ा में व कोई भी बर्तन में आप रख के उसको ओवरनाइट जो एक रात तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन देखिएगा जो पानी का पूरा कलर चेंज हो जाता है निष्कास से जो पानी में जो मिल गया उससे जो जो आपको जो जो बना जो नीम का सॉल्यूशन बना वो आप एक लीटर का पानी का जो बॉटल मिलता है उसमें आप उसको आप स्टोर कर गए स्टोर करके उसी से 5 ml 1 liter पानी के दर से आप छिड़काव करें। अगर 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर है तो 75 ml 75 ml का जो है आप लेके उसको छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको कोई कीटनाशी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और हम जो है समेकित कीट प्रबंधन के और भी बढ़ सकते हैं, तो इससे बहुत हद तक हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप केमिकल में भी जाना चाहते हैं तो केमिकल के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक केमिकल है बहुत ही सस्ता है जिसको हम लोग बाज़ार में क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन जो नाक के नाम से मिलता है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो मात्रा है 1 ml 1 लीटर पानी में आप घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया जो चूसने वाले कीड़ा और जो चूसने और चाटने वाले। अब जो सबसे खतरनाक जो कीड़ा है बैगन का, तना और फली छेदक। तना और फली छेदक के लिए हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, इसलिए बैगन जो है हम डायरेक्टली इसको खाते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कीटनाशी का छिड़का जितना हद तक कम करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो शुरू में हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू में हम आपको जैसे नीम आधारित दवा के बारे में बताएं, आप नीम आधारित दवा अगर बाज़ार में मिले आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। नीम के पत्ती से बना जो सॉल्यूशन बनाए हम उसको 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके 7 दिन के अंतराल में 25 से 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप उसके अंदर छिड़काव करने से ये जो है रिपेलेंट का काम करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारे कीड़े का आक्रमण कम होगा। और हम फेरोमोन ट्रैप जो है बाज़ार में उपलब्ध है, फेरोमोन ट्रैप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं आपके खेत पर। इससे क्या होगा, जो मेल जो मक्खी होता है वो मक्खी सोचेगा उसका फीमेल उस ट्रैप के अंदर है, वो उससे मेटिंग करने जाएगा और उसके अंदर वो फंस के मर जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारा जो बैगन का तना और फली छेदक का पॉपुलेशन है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और इससे हमारा कंट्रोल भी बहुत हद तक हो जाएगा। ये तो हुआ समेकित कीट प्रणाली। अगर हम केमिक बायोपेस्टिसाइड भी इसके अंदर हम बताना चाहेंगे, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस नामक एक बायोपेस्टिसाइड है जो बैक्टीरियासाइड बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 ml 1 लीटर पानी में बाजार में BT करके नाम से मिलता है, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस भारत कुर्सटाकी के नाम से मिलता है, इसको हम लोग बाजार से खरीद के इसको भी 1 ml 1 लीटर के दर से पानी के दर से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ये भी समेकित कीट प्रणाली में कर सकते हैं। और 2 बायो इंसेक्टिसाइड्स है, अगर आपको लगे जो नहीं मात्रा 10% to 15% डैमेज से ज़्यादा हो जा रहा है हमारे विल में, इस समय जो है आप 2 बायो इंसेक्टिसाइड है, एक है स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, इसका मात्रा जो है 2 लीटर पानी में 1 ml, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाज़ार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है जिसका मात्रा है 5 लीटर पानी में 2 ग्राम। तो ये दोनों में से कोई भी मिल जाए, थोड़ा सा ये 2 दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये दवा तभी आपको स्प्रे करना पड़ेगा जब आपका खेत में कीड़े के आक्रमण 20% to 30% से ऊपर डैमेज कर रहा है तब। नहीं तो हम जो आपको समेकित कीट प्रणाली बताए जिसमें आपको नीम लीव्स कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस का स्प्रे कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं तभी आप कर सकते हैं, और ये भी दोनों बायो इंसेक्टिसाइड है। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा 2 केमिकल पेस्टिसाइड है, इस एक जो नाम है फ्लूबेंडियामाइट जो फेम करके दवा के नाम से आता है, ये जो है 1 gram/3 liter पानी में आप घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो है लैम्डा साइहेलोथ्रिन जो कैराटे के नाम से आता है, लैम्डा साइहेलोथ्रिन नामक दवा, ये भी बहुत अच्छा है, ये बैगन के तना फली तना छेदक के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी यूज़ करते हैं, इसका दाम थोड़ा सा कम होगा। फेम नामक जो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये ही दवा आपको कब करना पड़ेगा, जब आपका आक्रमण ज़्यादा होगा तभी आपका छिड़काव करना पड़ेगा।
0: तो इस तरीके से आप बैंगन के कीट से छुटकारा पा सकते हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप राख का छिड़काव कर सकते हैं उस पर किरासन तेल डालकर, और इसके अलावे जो है अगर सावधानियों की बात करें तो आप नर्सरी से जैसे ही आप उसे पौधे रोपाई के लिए ले जाते हैं तो बीज शोध करके ही ले जाएँ, अन्यथा नहीं ले जाएँ क्योंकि डर रहता है कि उसमें कीट पतंगे भी लग सकते हैं। इसके अलावे अभी बात आ रही है डॉक्टर साहब कि हम टमाटर की जो है रोपाई वो कैसे करें, अभी फ़िलहाल टमाटर की रोपाई का सीज़न भी है, सलाह दिया जा रहा है किसान भाइयों को कि आप टमाटर की आराम से रोपाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सावधानी भी बरतना है, और उसमें सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि कीट पतंगों से कैसे बचा जाए। तो हम जानना चाहेंगे टमाटर खासतौर पर इस पौधे में जो कीट पतंग लगते हैं उनके बारे में और वो किस तरीके से इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं।
1: टमाटर में हमारे बिहार में मुख्यतः 3-4 तरह के कीड़े हैं जिसमें ज़्यादा समस्या दिखाई देता है शुरू के टाइम में, जो सादा मक्खी, जिससे एक वायरस डिजीज जो हम लोग बताते हैं टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, मतलब पत्ता ऊपर की तरह कुकड़ी हो जाता है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। ये जो वायरस जो बीमा वायरस बीमारी है, ये सादा मक्खी नामक कीड़े से फैलता है। ये सब शुरू में ही सबसे प्रॉब्लम होता है। इसके छोड़ के टमाटर के सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है टमाटर फसल को, वो है फली छेदक। वो जो है अंतिम अवस्था में आता है, जब फल आना शुरू होता है उस समय जो है फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, तो वो भी बहुत ही समस्या। तो फली छेदक को अगर हम लोग कैसे पहचाने, तो हम जब भी देखेंगे टमाटर के फल में छोटा सा छेद किया हुआ रहता है, जब भी उसका आक्रमण होता है उसको अगर हम तोड़े फल को, तो उसके अंदर से एक पिल्लू, तो हरा कलर का पिल्लू जो है निकल के आएगा। तो वो सबसे ज़्यादा बैगन में जो है 20-30% तक डैमेज करता है, अगर हम बैगन लेट में लगाए। अगर हम बैगन अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगा देते हैं और हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च तक हो जाता है हमारे, उस केस में हम लोग देखते हैं जो बैगन में फली छेदक का आक्रमण कम है। अगर बैगन हम लोग लेट लगाते हैं, लगभग नवंबर के एंड बट दिसंबर में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग हम लोग मार्च के मिडिल से अप्रैल तक करते हैं, तो उस फसल में हम फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादातर देखते हैं। ये फली छेदक छोड़ के जो तीसरा जो हमारा कीड़ा है, जो हम लोग टमाटर का लीफ माइनर कहते हैं, जो पत्ता में जो है सांप जैसा जो है अपना दाग छोड़ के जाते हैं, और ये भी जो है बहुत ही हद तक डैमेज करता है, किंतु हमारा फल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, किंतु टमाटर का पत्ती के ऊपर मैक्स बहुत हद तक ये डैमेज पहुँचाता है। तो ये तीन जो है मुख्य कीड़ा है, टमाटर का सादा मक्खी, टमाटर का फली छेदक और टमाटर का लीफ माइनर। और माइनर अगर जो उससे भी अगर हम डैमेज अगर कम करें, इसके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे, तो टमाटर में माइट का भी, मकड़ी जिसको बोलते हैं, माइट का भी समस्या है। और इसमें जो है पत्ता जो है टमाटर का नीचे की तरह मुड़ने लगेगा। जब हम बताएं सादा मक्खी जब आक्रमण होगा तो ऊपर की तरह मुड़ेगा, किंतु जब मकड़ी व माइट का आक्रमण होता है तो नीचे की तरह मुड़ता है। तो ये भी जो है बहुत हद तक डैमेज करता है टमाटर के पत्ते के शुरू के समय में।
0: अच्छा, तो ये हो गई बातें कीट की, और अब इसका समाधान कैसे करें हमारे किसान भाई, उनके बारे में जानना चाहेंगे।
1: समाधान के लिए पहले ही हम बताना चाहेंगे आपको, शुरू से ही आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप बीज शोधन से शुरू करते हैं तो आपको जो बैगन टमाटर में जो वायरस बीमारी है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जिसको हम कहना चाहेंगे, इससे आप बहुत हद तक जो है आप निष्कास पा सकते हैं। इसमें जो है आपको जो है इमिडाक्लोपिड नामक दवा, जो गौचो करके नाम से आता है, 5 ग्राम प्रति केजी सीट, व थायमिथक्सम व एक तरह नामक दवा जो आता है वो भी 5 ग्राम प्रति केजी सीट के दर से आप इसको बीज शोधन कीजिए। बीज शोधन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम आपको ये थोड़ा सा बता दें। एक पॉलीथीन जो है आप मिट्टी में बिछा दीजिए और सीट को फैला दीजिए पॉलीथीन के ऊपर, और पॉलीथीन में थोड़ा सा हल्का सा जो है बीज के ऊपर नमी के लिए थोड़ा सा पानी का हल्का सा छिड़काव करें, और जो इमिडाक्लोपिड नामक दवा और थायमिथक्सन का जो पाउडर हम बताए वो पाउडर पूरा बीज में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करके आप हाथ में पॉलीथीन पहन के, खाली हाथ में नहीं, हाथ में कुछ पहन के, पॉलीथीन पहन के या कुछ भी ग्लव्स पहन के आप उसको अच्छा से मिला दीजिए। मिला के एक पूरा रात छोड़ दीजिए, अगले दिन बा अगले से एक दिन और छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन जाके आप इसको जो है सोइंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपको शुरू के समय में जो आपका वायरस नामक बीमारी का जो समस्या है, ये समस्या आपके खेत पे नहीं आएगा। ये बहुत हद तक जो है आपको खेत में कंट्रोल भी कर देगा और कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है शुरू के 20 से 25 दिन के बाद अगर बीज शोधन करते हैं, तो 30 दिन और 40 दिन के अंतराल में, मतलब 10 दिन के इंटरवल में, 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप दो छिड़काव, कीड़ा खेत में थोड़ा भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोपिड नामक दवा है वो एडमायर व कन्फिडर के नाम से मिलता है, 1 ml 3 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। व आप जो है थायोमिथक्सम जो एक तरह नामक दवा है, इसका भी जो है आप 1 ग्राम 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर समेकित कीट प्रबंधन के तरफ आप जाना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा जो ये सादा मक्खी जो है, जो वेक्टर है जो बीमारी का, जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है, इसके लिए हम लोग योलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। योलो स्टिकी ट्रैप ये है, आप कोई भी पीला कलर का कागज व पॉलीथीन जो है, आप एक पिच बोर्ड जो है, बच्चे लोग जो पढ़ता है वो पिच बोर्ड उसको उखाड़ के पिच बोर्ड के दोनों तरफ जो पीला कलर का कागज साट दीजिए, साट के उसके अंदर जो है ग्रीस और गोंद का मिक्स करके, ट्रांसपेरेंट गोंद होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट गोंद और ग्रीस का जो है प्रोलेप मिक्स करके उसको ब्रश से इससे दोनों साइड में आप उसका प्रोलेप लगा दीजिए। लगा के जो है आप एक जो बांस का ये मिलता है स्टिक मिलता है उसको जो है आप गाड़ के जो फसल का जो हाइट होता है, जो हमारा पौधा का जो हाइट है उसी हाइट के अनुसार आप अपना जो ट्रैप जो बनाए उस ट्रैप को आप जो फील्ड खेत में लगाइए। ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लगाना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना, जो उसका हाइट है फसल का वही सिमिलर हाइट में आपको लगाना है। इसलिए लगाना है जो हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है वो ज़्यादातर ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, वो बहुत ही वीक है, उड़ नहीं पाते, तो इसीलिए वो सिर्फ हवा के माध्यम से ही दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो हम येलो स्टिकी ट्रैप बताए, जो पीला कलर का ट्रैप बताए, इससे क्या होगा, जो हमारा सादा मक्खी उसमें अट्रैक्ट ज़्यादा होगा और उसमें जाके वो फंस जाएगा। एक बार जब उसमें फंस जाएगा उसके गोंद और ग्रीस के वजह से वो उधर से निकल नहीं पाएगा, उसी में वो मर जाएगा। तो इससे जो है बहुत हद तक हम पॉपुलेशन जो है हमारा सादा मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। और शुरू में जो है आप नीम आधारित, आपको हम बताए थे नीम आधारित कोई भी दवा, निम्बिसिडिन हो, निमाजोल हो, एचूक हो, कोई भी दवा अगर आपको बाजार में मिले वो कर सकते हैं, बा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, नीम का बीज को मिक्सचर ग्राइंडर में क्रश करके उसका 5% सॉल्यूशन बना के 5 ml 1 liter पानी में घोल करके भी हम छिड़काव कर सकते हैं, पर नीम का पत्ती से भी हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है हम कीट बताए, कीड़े के बारे में बताए, जो टमाटर का फली छेदक है, फली छेदक के लिए हम लोग शुरू से हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जब भी हम लोग जिस फील्ड में लगाना है उस फील्ड को अच्छा से जुताई करना चाहिए। इसलिए जो कीड़ा है, कीड़े का जो इमैच्योर जो अवस्था है वो एक इमैच्योर स्टेज जो है वो सॉयल जो मिट्टी के अंदर भी रहता है, अगर हम उसको अच्छा से प्लाउइंग करेंगे तो वो जो है सूर्य के सामने जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, उससे क्या होगा उसका पॉपुलेशन भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो प्लाउइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो हम टमाटर में हम ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप क्या मतलब जो है, जो कीड़ा टमाटर छोड़ के दूसरे क्रॉप में भी अट्रैक्ट हो, उससे क्या होता है जो हमारा जो मेन क्रॉप टमाटर है वो बच जाएगा। जो ट्रैप क्रॉप है, ट्रैप क्रॉप के ऊपर ही हम दवा का छिड़काव करेंगे तो मेन क्रॉप में कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होगा। तो ये ट्रैप क्रॉप का नाम है मेरीगोल्ड, गेंदा जिसको हम लोग बोलते हैं। गेंदा का जो है 25:2 मतलब 25 टमाटर 2 गेंदा, 25 टमाटर 2 गेंदा, ये लगा के हम जो है अपना पेस्ट जो है जो हम बोले पिल्लू हेलिकोबर्फा वो हम गेंदा पे शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज गेंदा का जो फूल है वो जो पीला कलर का होता है इसमें वो अट्रैक्ट होता है और उसमें वो शिफ्ट हो जाए, तब हम गेंदा में स्प्रे कर से जो हमारा टमाटर जो मेन फसल है इसको पेस्टिसाइड के लोड से बचा सकते हैं। ये एक तकनीक है समेकित कीट प्रबंधन का। दूसरा जो समेकित कीट प्रबंधन का तकनीक है, हम बताए थे फेरोमोन ट्रैप के बारे में, फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हो। फेरोमोन ट्रैप का नाम है हेलिलियो। हम लोग अगर मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग मतलब कब हमारे खेत में कीड़ा है इसके अगर हम लोगों को जानना है तो इसके लिए हम लोगों को 1 hectare में 12 ट्रैप लगाना पड़ेगा 200-200 मीटर के दूरी में। उससे क्या होगा, जो उसका एडल्ट का जो एडल्ट है, पिल्लू का जो एडल्ट है वो उसमें फंस जाएगा, उससे हमको पता चलेगा जब हमारे खेत में जो है हेलिकोबर्फा का इन्फेस्टेशन शुरू हो चुका है, तो हम लोगों को सचेत रहना होगा। और उसके बाद हम लोगों को अगर इन्फेस्टेशन लेवल जो है 5%, 5% या 10% फ्रूट डैमेज से ज़्यादा हो तो हमको समेकित कीट प्रणाली में से एक दवा आता है HANPV, उसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबर्फा आर्मीजेरा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये नामक दवा का जो है हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से बहुत 70-80-90% तक हमारा कीड़े का जो है कंट्रोल हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, तो हमको कोई रासायनिक दवा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसान बंधु रासायनिक दवा में भी जाना चाहता है तो रासायनिक दवा के लिए हम बता देते हैं, जो एक दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्साकार्प, जो बाजार में एवांट करके नाम से मिलता है, उसका मात्रा है 2 लीटर पानी में 1 ml इंडोक्साकार्प एवांट, ये एक दवा है। दूसरा जो दवा है ये है लैम्डा साइलोथ्रिन, जो बाजार में कराटे के नाम से मिलता है। ये शुरू में आप दे सकते हैं, इसका महंगा भी नहीं है ज़्यादा, आप यूज़। अगर आपका कीड़े का आक्रमण ज़्यादा हो गया, अगर लगता है जो नहीं कि जो है कीटनाशी, अच्छा कोई कीटनाशी देना पड़ेगा जिससे कंट्रोल और कम हो जाए, इसके लिए हम बताना चाहेंगे थोड़ा कॉस्टली दवा है, जैसे स्पाइनोसेट, जो हम बताना चाहेंगे स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, 2 लीटर पानी में 1 ml के दर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बस फ्लूबेंडियामाइड जो फेम है, फेम भी 1 ग्राम प्रति 3 लीटर के दर से 15 लीटर पानी में 5 ग्राम के दर से आप छिड़काव कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा दवा है जो कोराजेन के नाम से मिलता है, ये भी जो है 3 लीटर पानी में 1 ml के गुना के दर से घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दो जो लास्ट दवा बताए, फ्लूबेंडेमाइड फेम और कोराजेन, ये थोड़ा सा महंगा दवा है। जब आपका खेत में आक्रमण जो है 20-30% के ऊपर चला जाएगा तभी इस दवा का छिड़काव करें, अन्यथा आपको जो पहले जो हम इंडोक्साकार्प के बारे में बताए, लैम्डा साइहेलोथ्रिन के बारे में बताए, इसी दवा का आप छिड़काव करें। और अंतिम जो मैं कीड़े के बारे में बताया था, टोमेटो का लीफ माइनर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पत्ते में जो सांप के जैसा दाग छोड़ देता है, इसके लिए जो है आप समेकित कीट प्रबंधन में नीम आधारित दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और रासायनिक में क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा है, क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो है आप प्रोफेनोफॉस नामक दवा है जो कुराक्रॉन के नाम से मिलता है, ये भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि लगभग सभी सब्जियों में कीट और समाधान एक समान है लगभग, तो इसलिए आप इस तरीके से इन दवाइयों का छिड़काव जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन दवाइयों का छिड़काव करके या फिर कुछ सावधानियों को अपनाकर अपनी सब्जियों को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि इन कीटों से दूर रख सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे आगे मुलाकातें होंगी अगले विषय के साथ, अगली जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर। तब तक सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर, सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
9: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा ना हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं। इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
10: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और

0: लटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई। लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
11: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
10: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर।
13: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
14: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
13: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
14: आपकी सेहत की बातें,
13: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
14: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
13: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
14: वो कहाँ पर?
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
14: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
15: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
16: जी
15: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
16: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
15: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
17: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
18: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 एफएम ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूं और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं, ये जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में।
2: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन, अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
1: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
2: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, ऐसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं। हो सकता
1: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा, वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
2: पोषण दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे, तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को, मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
2: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह के कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उसके शरीर में।
1: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
2: वो उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, महिलाओं को उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है, वो हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का, उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा। उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
1: जी, मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
2: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे, बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग, जैसे एनीमिया, रतौंधी, ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों को।
1: तो अगर मान लिया जाए, ये सब तो आपको पता है कि मान लिया जाए ऐसा होता है, अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले, तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है। तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
2: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा नाम मानव है।
1: जी, तो मानव जी, आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियाँ हैं ये बताएं।
2: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
1: ये तो मान लिया जाए कि वृहत पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा जमीन नहीं होती है।
2: हाँ।
1: जब जमीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
2: वो अपने बारे वो क्या करे, अगर जो वो नहीं कर सकते, अगर जो उनके पास अपना ज़मीन नहीं है तो वो दूसरे पे, दूसरे के अथी पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो उगा रहा है तो अगर वो उसके पास है कि वो एक दूसरे,
3: नहीं नहीं, अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो, बाड़ी हो, उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं, उस क्यारी में लगाएं। और अपना जैसे कि सब्जी हो, फल हो, वो अपने आप आंगन में अगर उपजाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है, ठीक है। उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 FM ग्रीन आपका धन्यवाद करती है।

0: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं, जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में, गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें तो, परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूं मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ बरसों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यवसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा जमीन है, तो आप कुछ जमीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास जमीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी, तो वो क्या कर सकते हैं? पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है, लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी जमीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा सकते, अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
5: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
6: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए, कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था, आप बोल सकते हैं, आज वहाँ पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, वही धान गेहूँ पर आश्रित है, तो ऐसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं है तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते, ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
5: तो सर, अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
6: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है, मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं, आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कोई भी काम, उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
5: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
6: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है, उसके कारण से सरकार ने, राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसे योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है, तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है, फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है, तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे, आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा, आपको लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है, तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
5: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
6: जी जी हाँ।
5: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
6: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट, प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
5: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
6: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे, चकबंदी का मतलब ये होता है जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, इसी सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियाँ हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत, अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं, बाद बोलते हैं, खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला, पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है, तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में दिक्कत होती है, और छोटे खेत में आप एक एक खेत के लिए आप ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं या, तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
5: सर, हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं, जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं, उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
6: जी, ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती, क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो, जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है। अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाई है, और वो 10 लोग मिलके एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे, औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए। इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं, किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
5: जी, तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
6: जी जी, देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें वो हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटी जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए, तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
5: तो सर, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
6: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है, हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा, व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे मैंने बताया वही एक बीघा में आप धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियाँ जैसे हमने बात किया, तो उस चुनौतियाँ सब जगह चुनौतियाँ हैं, जीवन में चुनौतियाँ हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियाँ हैं, लेकिन उस चुनौतियाँ उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी,
5: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: उन्नत कृषि आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
11: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
14: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
15: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
16: बिहार
14: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಭಾರತ್ ಕೃಷಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಪ್ನೆ ಟ್ಯೂನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ 90.8 ಎಫ್ಎಂ ಗ್ರೀನ್ ಔರ್ ಮೈ ಹೂ ಆಪ್ಕಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ಕಿ ದೋಸ್ತ್ ಆರ್ ಜೆ ಅನು. ಎಕ್ ಬಾರ್ ಫಿರ್ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕೇ ಬೀಚ್ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಉಪಯೋಗಿ ವಿಷಯ ಲೇಕರ್ ಹಮ್ ಆ ಚುಕೆ ಹೈ. ದೋಸ್ತೋ, ಹಮಾರೆ ಭಾರತ್ ಮೇ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಬಿಹಾರ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಫಲೋ ಕಾ ಉತ್ಪಾದನ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ಜೊ ಸಬ್ಸೆ ಖಾಸ್, ಜೊ ದೇಖ್ನೆ ಮೇ ತೋ ಸುಂದರ್ ಲಗ್ತಾ ಹಿ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ವಿಶೇಷತಾಯೆ ಭಿ ಬಹುತ್ ಹೈ, ವೋ ಹೈ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ಜಿ ಹಾಂ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಸುನ್ತೆ ಹಿ ಹಮ್ ಉಸ್ಕಿ ಖೇತಿ ಕೇ ಬಾರೆ ಮೇ ಜಾನ್ನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಉತ್ಸುಕ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಅಗರ್ ಮೇ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಿ ಖೇತಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರೂ ತೋ ಬಹುತ್ ಹಿ ಕಮ್ ಜಗಹ ಖಾಸ್ ತೌರ್ ಪರ್ ಮೇನೆ ದೇಖಾ ಇಸ್ಕಿ ಖೇತಿ ಔರ್ ಇಸಿ ಲಿಯೆ ಲೋಗ್ ಇಸ್ಕಿ ಖೇತಿ ಕೋ ಜಾನ್ನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಉತ್ಸುಕ್ ಹೋತೆ ಹೈ. ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾ ದೇಂ ಕಿ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಭಿ ಯೇ ಜಾನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ಕಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಷತಾ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸೇ ಹೈ, ವೋ ಹೈ ಪೋಷಣ್ ಸುರಕ್ಷಾ. ಯಾನಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸೇ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಿ ಖೇತಿ ಸೇ ಪೋಷಣ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಏಕ್ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಕೈಸೆ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर रूबी रानी जी और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद अनु. मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, योग उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे.
0: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा.
1: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए. सबसे पहली बात है कि हमारे स्ट्रॉबेरी जो है उसमें बहुत ही पोषण से भरपूर, या पोषण का कैप्सूल, न्यूट्रिटिव कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं. अच्छा. हर तरह का न्यूट्रिशन है और जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटास, फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फैट का ये अनुपात कम है और इसमें कैलोरी कम मिलती है.
0: अच्छा.
1: लेकिन ये फाइबर रिच फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स में बहुत ज़्यादा है. अब एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स का क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं.
0: अच्छा.
1: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोग रोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें.
0: अच्छा.
1: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है. जो भी फैट कंटेंट, थोड़ा फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है

0: और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है। आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: ना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
1: एंटीऑक्सीडेंट्स
0: ज़्यादा हो, विटामिन मिनरल्स ज़्यादा हो। तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए, तो स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद हैं
1: जी।
0: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फूड है। लेकिन विटामिन मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनीज, मैग्नीशियम, ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये फल जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है, उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से क्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं।
1: अच्छा।
0: स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है, इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो इसको जो अच्छे कंडीशन में जब इसको बहुत कम दिन होता है, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाए
1: जी,
0: तभी हमें ये मिल पाएगा, वरना हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
1: तो दोस्तों, मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है, और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना शामिल हो चुकी है ये महामारी, और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसी फल और सब्जियां लेनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर शामिल करें, और आपको हम स्ट्रॉबेरी से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। तो मैम ने जैसे कहा कि इसे बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता, ये बहुत कोमल फल है, तो मैम बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है क्या?
0: बेशक बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है। हमने पिछले 10 साल में इस पर शोध किया। जब हमने शुरू किया था तो हमें भी विश्वास नहीं था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसका शोध किया तो मैंने पाया कि बिहार में इसका खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि ये फल जो है वो ठंडे जगहों का फल है, जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में, आदि जगहों में उगाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ किस्में आई हैं और कुछ विशेष तकनीक की मदद से इसे हमारे प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगहों में भी काफ़ी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए हमने शोध के उपरांत मैंने देखा कि बिहार में ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।
1: मतलब पहले लोग ये घबराते थे कि गर्म वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये पहले जम्मू और कश्मीर में ही उगाया जाता था। तो यहाँ पर शोध के बाद पता चला है दोस्तों कि बिहार में इसका उत्पादन किया जा सकता है। मैम साथ ही आप इसके लगाने की विधि भी बता दें, और समय क्या है इसे लगाने की वो भी बता दें।
0: तो सब इसमें एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें पोषण तो भरपूर है ही है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री बनाने में होता है, आइसक्रीम, कैंडी, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगते हैं तो उन सब चीज़ों में बनाता है, सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, केक, आइसक्रीम, बहुत तरह से सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी का यूज होता है, और इस तरह से इसमें पोषण के साथ साथ इसके उपयोग
1: व्यावसायिक रूप में
0: बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही सुवासित सुगंधित फल है, इसका अलग ही एक एरोमा है, और जो कि इसका आकर्षित रंग के साथ साथ इसका एरोमा भी लोगों को अट्रैक्टिव करता है, साथ ही पोषण और बहुआयामी इसके उपयोग हैं, इसके कारण इसकी खेती बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि किसान इसके प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं इसको उगाने के लिए, क्योंकि ये 7 से 8 महीने में पूरा फसल तैयार हो जाता है, और इसका डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसके प्राइस ज़्यादा हैं, और किसानों को ज़्यादा मुनाफा 7 से 8 महीने में प्राप्त हो जाता है
1: जी।
0: और अब आती है कि इसको लगाने की विधि
1: जी,
0: और इसका समय क्या है। तो हमने शोध के उपरांत पाया कि बिहार में इसको लगाने का समय अक्टूबर माह जो है इसको लगाने का सबसे उत्तम समय है। प्रथम सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंत तक आप लगा सकते हैं, हालांकि इसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप अक्टूबर तक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 15 नवंबर के बाद आप लगाएंगे तो इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि कमी आ जाती है। अच्छा। क्योंकि उसको सही समय नहीं मिल पाता है उसको समुचित ग्रोथ का, और फूल खिलने लगते हैं इसके कारण कि छोटे पौधे में फूल खिलने से उत्पादन में कमी हो जाती है, गुणवत्ता भी सही नहीं रहती है। तो लगाने का उचित समय इसका अक्टूबर है,
1: अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से।
0: प्रथम सप्ताह से आप 15 नवंबर तक लगा सकें, नवंबर तक बिल्कुल लगा दें, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उत्पादकता में आपको
1: कमी मिलेगी जी।
0: अब मैं इसको पूछा जैसे कि अपने लगाने की विधि क्या है। तो इसको लगाते हम लोग रनर से, पौध से हम इसे लगाते हैं
1: जी जी।
0: इसके लिए जो है छोटे छोटे पौध आते हैं और इसके हम बीज से नहीं लगाते हैं, और ये पौध जो है हमारे रनर से एक पौधे से कई कई पौधे निकलते हैं उससे तैयार होते हैं। परंतु हमारे राज्य में अप्रैल महीने के बाद से इतनी गर्मी होती है कि ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पौधों के लिए दूसरे राज्यों जहाँ ठंड प्रदेश हैं वहाँ से हमको उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये पौधे 4 से 6 पत्तियाँ हों उस पौध में, उसको हमको लगाना चाहिए। और लगाने के पहले पौधे को हम कार्बनडाइजीम के 0.2% के घोल में 5 मिनट तक डुबाते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके पौधे को लगाते हैं। तो ये भी लगाने की विधि और इसका लगाने का समय।
1: तो मैम इसके बाद उत्पादन तकनीक को भी हम जानना चाहेंगे। जब विधि की बात हो गई है और इसके बाद उत्पादन तकनीक को ना जाने तो थोड़ा अधूरापन रहता है, तो इसके उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताएं थोड़ा।
0: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी इसका भूमि की तैयारी कैसे करें, इसका बेड कैसे बनाएं, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें, और इसमें सिंचाई कैसे करें, और इसमें कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके बारे में मैं एक एक करके सबको आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी करने के लिए आप जैसे अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें खेत की। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
1: अच्छा।
0: और मिट्टी जो है वो बलवाही दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, और वो क्षारीय मिट्टी ना हो, जैसे कि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का चुनाव करें और वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव नहीं हो और मिट्टी हल्की हो। इसका जिसका पीएच मान मिट्टी का 6.5 से 7 के बीच या 6 से 7 के बीच हो, 7 से ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का हम चुनाव करें
1: जी।
0: और चुनाव करने के बाद लगाने के समय के, यानी कि अक्टूबर में आप लगा रहे हैं या 15 अक्टूबर को लगा रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले आप उसकी जमीन की गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई करें। हल्की जुताई के समय उसमें आप कुछ खाद डालें, तो खाद की मात्रा जो है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो पोटास प्रति एकड़ आप हल्की जुताई के समय में डाल करके इसको जुताई कर दें। उसके बाद इसकी खेती, व्यावसायिक खेती जो होती है वो उठी हुई क्यारियों पे होती है।
1: अच्छा।
0: तो उस क्यारी को बनाने के लिए आप उसकी ऊंचाई जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखें और उसकी चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं, और लंबाई आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे रख सकते हैं
1: जी।
0: 2 क्यारी के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आपकी उठी हुई क्यारी तैयार हो जाएगी जो कि 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 से 1.25 मीटर चौड़ा हो और 2 क्यारियों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो। एक क्यारी पे अगर आप 1 मीटर रखे हैं या 90 सेंटीमीटर तक चौड़ा रखे हैं तो आप दो पंक्तियाँ लगाएं, अगर उससे ज़्यादा रखे हैं तो तीन और चार पंक्तियाँ भी, तीन पंक्तियाँ भी आप लगा सकते हैं। चार पंक्तियाँ में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए तीन पंक्तियाँ आप एक क्यारी पे लगा सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखें
1: जी।
0: तो इस तरह से आप बेड पे दो से तीन क्यारी
1: तैयार
0: कर सकते हैं और प्रति एकड़ लगभग 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद आता है कि हम इसको लगाने की विधि मैंने पहले बता दी, लेकिन अगर आप इसमें सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था कर सकें तो ये आपके लिए वरदान होगा
1: जी।
0: और ड्रिप सिंचाई पे आज जो है सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है, तो आप सरकारी सहायता प्राप्त कर आप ड्रिप सिंचाई का अपने खेत में लगा सकते हैं और ये जो कि काफ़ी वरदान होता है इसके लिए, बड़ी अच्छी खेती, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है फलों की। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि किसान भाइयों आप ड्रिप सिंचाई का इसमें उपयोग जरूर करें
1: जी।
0: इसके अलावा पौधे लगाने के बाद ये इसकी जो खेती होती है, इसके जो फल होते हैं वो मूलतः जमीन पे सटे हुए होते हैं। जब निकलते हैं तो जैसे ही फल बड़ा होता है तो अपने भार से वो जमीन सतह पे सट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, इसलिए मल्च या पलवार का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी और फल का संपर्क ना बने। ये फल चूंकि बहुत ही कोमल मुलायम होता है, लगातार अगर मिट्टी के संसर्ग में रहेगा तो ये खराब हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, बाजार में ले जाने के लायक नहीं रहेंगे
1: जी।
0: इसलिए मल्च बहुत ही आवश्यक है। मल्च आप पुआल का भी दे सकते हैं और प्लास्टिक का भी दे सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो प्लास्टिक का मल्च बहुत ही अच्छा देखा गया है इसमें, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की मल्च नहीं है तो आप धान या गेहूं के का जो भूसा होता है या पुआल होता है उसका भी उपयोग मल्च के रूप में कर सकते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा मल्च होना चाहिए ताकि फल का संपर्क डायरेक्ट मिट्टी से ना हो और आपकी फल जो है परिपक्वता तक अच्छे कंडीशन में रहे और बाजार में ले जाने लग रहे। तो इस तरह से दो तकनीक, जो मल्च और सूक्ष्म सिंचाई, ये दोनों इसके लिए वरदान है। और जब आप बेड तैयार करते हैं तब उसमें जो है आप सूक्ष्म सिंचाई पहले बिछा दें, पौधे लगा दें, उसमें सूक्ष्म सिंचाई कर दें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं आपने वहाँ वहाँ उतनी दूरी पर आप मल्च में छेद करके उस तरह से पौधे को व्यवस्थित कर दें
1: जी।
0: आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार करके मल्च को फिक्स कर दें, फिर जितनी दूरी पर आपको बेड को तैयार करके पहले ड्रिप इरिगेशन लगा दें, फिर आपको मल्च डाल दें, मल्च फिक्स कर दें और जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर छेद करके थोड़ा सा होल करके वहाँ पर पौधे को आप फिक्स कर दें और ड्रिप से आपका पानी और पोषण सारा चीज ड्रिप के माध्यम से पौधे को मिलता रहेगा। तो ये हुई विशेष तकनीक।
1: अच्छा,
0: कि इसके उत्पादन में विशेष तकनीक है। इसके अलावा हमारे राज्य में दिसंबर के अंत में और जनवरी तक पाले का प्रकोप रहता है, उसमें बहुत धुंध रहती है, पाले का प्रकोप रहता है और पाले से बचाने के लिए आप छोटा पॉलीटनेल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पौधे जो है पाले से बच सकें। और पॉलीटनेल जो है उसकी ऊंचाई 65 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये पॉलीटनेल क्या है, एक छोटा पॉलीहाउस है, मिनिएचर है पॉलीहाउस का, इसकी ऊंचाई 60 से सेंटीमीटर होता है। इसको बेड कवर या रो कवर भी बोलते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 60 से 70 सेंटीमीटर तक, 65 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये अगर आपको टनल बनाने के लिए जीआई पाइप का ना मिले तो आप बांस की करची पे भी पतली पॉलीथीन की सीट बिछा करके पॉली टनल बना सकते हैं। और जो कि आपके पास बहुत आयत में बांस तो हर गांव में उपलब्ध रहता है तो उस कमाची का उपयोग करके, बांस का उपयोग करके आप पॉलीटनल बना लें और पॉलीटनल पर पतली सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उजले कलर की पॉलीथीन आप डाल दें। और ये जो है जब आपका पाला पड़ना शुरू हो जाए तब और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसको डाले रहें। इससे क्या होता है कि पौधा जो है पाले से बचा रहेगा और धूप उसके अंदर आती रही, ग्रोथ बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा पॉली हाउस का इफेक्ट रहता है, पॉली जैसा पॉली हाउस में उसका इफेक्ट रहता है पौधों का, उसी तरह से पॉलीटनल का भी उपयोग है, साथ साथ ये पाले से भी बचाता है और ढके रहने के कारण कीट व्याधि का भी प्रकोप कम रहता है, इसी कारण की फल की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये विशेष तीन तकनीक जो है स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सूक्ष्म सिंचाई, पॉलीटनल और मल्च। किसान भाइयों, अगर आप सूक्ष्म सिंचाई नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन मल्च तो मस्ट है, चाहे आप पुआल का मल्च दें चाहे आप प्लास्टिक का मल्च दें। मल्च के लिए हमेशा काले पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, इसके लिए एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है, मल्च सीटू कहलाता है, और वो 1 मीटर 1.25 मीटर की चौड़ाई में आता है और लंबा आप जितना चाहें एक रोल ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी जाती है। खासकर ये स्ट्रॉबेरी सब्जियों आदि के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्च आप का उपयोग करें, सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बिना उसकी भी खेती कर सकते हैं। टनल का भी उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, करना करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मल्च का उपयोग तो करना ही होगा। तो ये है उत्पादन तकनीक, और लगाने के बाद जो है आप जो भी उसमें पोषण देंगे वो फर्टिकेशन के थ्रू देंगे, क्योंकि आप ड्रिप सिंचाई लगा चुके हैं और पौधा जो है मल्च के नीचे है, तो आपको बाहर से आप नहीं दे सकते हैं, आप जो है इसको फर्टिकेशन के थ्रू दे सकते हैं। और फर्टिकेशन के लिए भी हमने शोध किया है, पौधे लगाने के 30 से 45 दिन बाद जो घुलनशील हमारा एनपीके है 20-20-20 का, उसका 25 ग्राम की मात्रा को 4 भागों में बांट दें और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम 4 भागों में बांट करके और 15 दिन के अंतराल पे उसको 4 बार दें, तो इस तरह से आपका जो है वो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा।
1: जी श्रोताओं, मैम ने आपको बताया कि उत्पादन की तीन विशेष तकनीक हैं, वो है मल्च, पॉलीटनल और साथ ही मैम ने बताया सूक्ष्म सिंचाई। मल्च जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये अपनाएं, और सूक्ष्म सिंचाई आप चाहे तो अपना सकते हैं नहीं तो नहीं, और पॉलीटनल भी आप चाहे तो अपना सकते हैं नहीं तो आपकी जो सुविधा है आप उसके अनुसार उत्पादन तकनीक को अपना सकते हैं। मैम, उत्पादन तकनीक के दौरान भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, और अगर किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो पहले से सावधान हो जाएंगे, उन सावधानियों के साथ वो उत्पादन तकनीक को अपनाएंगे ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: हाँ, किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे किसान, हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत लोग किसान लोग कर रहे हैं और हमारे पास उनकी समस्याओं के बारे में भी फ़ोन आते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के दौरान किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कुछ इसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है उकठा रोग। कभी कभी देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बीच बीच में पौधे गलने शुरू हो गए, पौधे अचानक सूखने शुरू हो जाते हैं और उसको चाह करके भी आप नहीं बचा सकते हैं, तो इसके लिए ये समस्या फरवरी मार्च के बाद आनी शुरू होती है, जब पौधे जो थोड़ी सी गर्मी आती है उसके बाद ये आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध होनी चाहिए, उस पौधे में कहीं किसी तरह का स्पॉट या कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पौधे को लगाएं तो मैंने बताया कि कार्बन डाइजीम में उसको 0.2% के घोल में, आप कार्बन डाइजीम के घोल में उसको 5 मिनट तक दुबाएं, उसके बाद लगाएं। और जब आप बेड तैयार करते हैं, ऊंची उठी हुई बेड आप तैयार करते हैं, तो 0.01% का मेटालेक्सिल का घोल से एक बार उस पर स्प्रे कर दें जी, तो ये आपको उकठा रोग से बहुत बचाव करेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो कंपोस्ट डालते इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, ट्राइको कंपोस्ट को डालने के पूर्व ट्राइकोडर्मा आधा केजी लेकर के ट्राइकोडर्मा उसको 15 से 20 केजी कंपोस्ट में मिक्स कर दें, उसको एक सप्ताह के लिए छोड़ दें, मॉइस्ट रखें, और उस कंपोस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि आप कार्बन डाइजीम का यूज करें, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें और मेटल एक्सिल के 0.01% के घोल से आप बेड को जो नर्सरी का अपनी जो उठी हुई क्यारी तैयार की उसको उपचारित करें। इस तरह से करने से आपको जो है फफूंद जनित रोग जो है वो आप से आप इसको बचा सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा और इसका रोग है लीप स्पॉट आता है, पर्णचित्ती आता है। कभी कभी देखेंगे कि गोल गोल गोल गोल स्पॉट आ गया है लीप पे। जैसे ही आप स्पॉट देखें उसको आप कैंची से हटा दें, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1% का घोल से उसका छिड़काव करें। इससे आप जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे कि फल में फल जो है उस पर फफूंद रोग गया है, तो वैसे फल जो मिट्टी के संसर्ग में आएंगे या ज़्यादा पानी भी आप अगर आपने दे दिया है तो ग्रे मोल्ड का जो ग्रे मोल्ड होता है ग्रे मोल्ड का प्रकोप हो जाता है और ग्रे मोल्ड का प्रकोप होने से आपका फल खराब हो जाएंगे। इसलिए आप मल्च का उपयोग करें, बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं दें। जड़ों को आप नमी बरकरार रखें जड़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वातावरण में नहीं रहने दें। और अगर सूप सिंचाई का उपयोग करते हैं तो आपको जड़ में पानी जाएगा, पत्तियों पे बाकी वातावरण में पानी कम रहेगा और वहाँ पर ग्रे मोल्ड की समस्या कम होगी। इसलिए ग्रे मोल्ड से बचाने के लिए आप मल्च का उपयोग करें। अगर ये कुछ आ गया है तो तुड़ाई के उपरांत डायथन M45 का 2 ग्राम का प्रति लीटर का घोल बना करके आप एक बार स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप ग्रे मोल्ड से, उकठा रोग से यानी कि विल्ट से और लिप स्पॉट से इसका निजात पा सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं, आपने जाना कि जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान के बारे में भी आपने जाना, और मैम इसके बाद उत्पादन से लाभ तो मिलेंगे ही, क्योंकि पहले ही भी हम जान चुके हैं इसमें पोषण बहुत ज़्यादा है। तो व्यावसायिक तौर पर, आम तौर पर क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इसके उत्पादन से?
0: इसके पहले हम बताना चाहेंगे इसकी तुड़ाई कैसे की जानी चाहिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो अगर आप इसको अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो दिसंबर माह में इसका फल टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगातार मार्च तक या कभी कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फल देगा। जैसे ही गर्मी आएगी इसमें फूल आना बंद हो जाता है और फूल आना बंद हो जाएगा तो फल आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको मार्च तक आपको अच्छा फलन देगा। और इसका तोड़ने के लिए जब ये फलना शुरू हो जाता है तो कुछ कुछ अंतराल पे ये फल आपको तोड़ने होंगे। और फल की तुड़ाई आप सुबह में करें, तुड़ाई के बाद आप फल को जो है आप ठंडे जगह में रखें और जितनी जल्दी हो सके इसको मार्केट में भेज दें, क्योंकि तुड़ाई के उपरांत इसकी जो है संधारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फ्रूट है और बहुत जल्दी खराब होता है
1: जी।
0: तो जितनी जल्दी हो सके इसको मार्केट में भेज दें। अगर दूर के मार्केट में आपको भेजना है तो फल को पूरा लाल होने के पूर्व यानी 75% जब पक जाए तभी आप इसको हार्वेस्ट करें। थोड़ा उसमें टफ रहता है और 1-2 दिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये थोड़ा सा और पकता है, फिर जा करके आप उसको मार्केट में भेजें। तो नज़दीक के लिए मार्केट के लिए पूरा फल पकने के बाद इसको तोड़ें, और अगर दूर का मार्केट में भेजना है तो आप 75% पकने पर ही उसको तोड़ दें। इसकी पैकिंग के लिए पुनेट आता है, पुनेट का उपयोग करें और सही ढंग से इसकी पैकिंग करें। एक फल दूसरे फल पे बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना हो, एक फल पर दूसरा फल ना हो, इस तरह से इसकी पैकिंग करें और तभी आपका ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा मार्केट में रह सकता है
1: जी।
0: और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, कितने लाभ हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी लागत जो है आपको अगर ड्रिप सिंचाई क्या लगाएंगे, मल्च डालेंगे, पॉलिटिनेल डालेंगे तो पहले साल इसकी लागत कुछ ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लगातार इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करें। और 3 साल के बाद उपरांत पाएंगे कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 4 रुपया आपको मिलेंगे।
1: अच्छा।
0: तो पौधों का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो पौधे आपको 10 से 12 रुपये के बीच में मिलेंगे या 15 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 20,000 पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपये आपको पौधे में लग जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादकता जो है अगर अच्छे से आप मैनेज करें तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपको 15 टन से कम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर उसको 200 रुपये के जी भी बेचेंगे तब भी आपको 3 से 4 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा एक एकड़ में। इसलिए 8 से 9 महीने के बीच में इतना शुद्ध मुनाफा किसी भी क्रॉप में नहीं है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है, पोषण से भरपूर फल है, कम अवधि में इसके उगाए जा सकते हैं। और अगर आपके शहर के किनारे छोटा सा भी ज़मीन है तो आप छोटी सी भूभाग में इसकी खेती करके आप इसको बहुत मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अच्छे अच्छी आमदनी पाएं, अच्छा लाभ पाएं। व्यावसायिक तौर पे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ये इसका स्ट्रॉबेरी का फल उत्पादन काफी अच्छा है। और मैं अपनी वार्ता के दौरान एक चीज बताना भूल गई कि हमारे राज्य में किस्में कौन कौन सी अच्छी उत्पादकता के साथ कर रही है। तो मैं बता दूं कि इसके लिए आप स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामारोजा, विंटर डाउन, नबीला, सेंसेशन, ये 6-7 किस्में जो हैं वो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हमने शोध के उपरांत पाया, हमने लगभग 21 किस्में शोध किया है, किस किस्मों का उत्पादन किया अपने रिसर्च प्लॉट पे, और हमने पाया कि ये 6-7 किस्में जो हैं हमारे राज्य में बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादकता के साथ। तो मेरा ये मैंने अपने बताया आपको कि स्ट्रॉबेरी की खेती के कैसे उत्पादन करें और कैसे इससे लाभ कमाएं और क्या इसके लाभ हैं, ये हमारी बात। धन्यवाद किसान भाई, उम्मीद है कि आपको उचित जानकारी मिली होगी, जो जानना चाहेंगे जानना चाह रहे होंगे आपकी वो जानकारी आपको मैं दे पाई होंगी इतने कम समय में। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं आपने जाना स्ट्रॉबेरी एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बन सकता है, पोषण सुरक्षा हेतु स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा सकती है, हर एक छोटी से बड़ी बात मैम ने आपको बताया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा। अगर आप अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, समय है। और साथ ही जो भी समस्याओं की बात यहाँ पर हुई है, मैम ने उसके समाधान के बारे में भी बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगाएं। और उत्पादन तकनीक के बारे में भी मैम ने बताया कि आप उस तकनीक को ज़रूर अपनाएं, और मल्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे तो आपको अपनाना ही चाहिए, जो कि आपकी जो फल हैं वो मिट्टी से संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से बहुत लाभ होगा आपको अगर आप इन जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर,
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं, तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक, सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है, जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है। तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा, और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
0: जी। तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
1: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे, तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी, तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले, उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की, वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
0: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी, बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसके फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि हैं, जलवायु अनुकूल कृषि हैं, या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके की पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटेशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग, तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे
0: जी।
1: तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
0: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
1: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था, तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीकी है। तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है, नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीजें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियाँ हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
0: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद उमा आपको।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हाय

0: फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं। और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज़ को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीज़ें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज़ को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना, और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती है या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
3: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम। करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के।
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में रबी मक्का में लगने वाले कीटों के समुचित प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह और सर वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका स्वागत है। और किसान अभी मक्का लगा रहे हैं और इस समय उनको क्या कुछ करना चाहिए तो उसके बारे में पहले बता दें।
10: हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मक्का लगा रहे होंगे, इसमें कुछ सावधानियां हैं। कैसे आप मक्का तो आप लगाते ही हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिसको आप कर करके आप ये कीट है, ये कीट का जो संक्रमण होता है जो, उसे आप बच सकते हैं और आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप खेत की तैयारी, जो लोग नहीं लगाए होंगे वो कर रहे होंगे, तो खेत की तैयारी में कुछ चीज़ें हैं, उस बातों पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब जुताई करते हैं तो जुताई हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है कि कल्टीवेटर से भी करते हैं तो एकदम ऊपर ऊपर ना हो करके उसको थोड़ी गड्ढा में उसको करना है। चूँकि अभी तो ये सीजन है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हर तीसरे साल पे आप लोगों को अपनी ज़मीन का गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई जनरली इस महीने तो नहीं संभव है, इस महीने करने से फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। गहरी जुताई करना है आपको मई जून के महीने में, जब सूरज का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उस समय आपको करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि जितने भी रोग जो पौधे को करता है, जो शुरुआत में जो पौधा जब हमारा बहुत छोटा रहता है तो उसको संक्रमित करता है, तो उनसे रोग करने वाले कारक को सूरज के जो प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश जो है उनको मार देते हैं, जिसके चलते ये संक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तो रोगों से बचाव होता है, दूसरा जो है कीट के जीवन चक्र का कोई भी जो स्टेज होता है वो अगर सॉइल में है, जमीन में है, तो वो ये ज़्यादा तापमान से, धूप के प्रकाश से वो मर जाते हैं। तो साथ ही साथ जो बहुत सारे जो कीट को जो चिड़िया हैं वो चुन करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गहरी जुताई के फायदे। अब हम लोग चलते हैं उर्वरक के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो आपको जो उर्वरक है उसको कब कब देना चाहिए, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उर्वरक हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी खड़े फसल में भी वो फॉस्फोरस और पोटास डालते हैं। तो ये खड़े फसल में जब फॉस्फोरस और पोटास डालेंगे तो इनका जो उपलब्धता होता है, ये अगर आज हम उसको छींटते हैं प्लांट में तो इसकी उपलब्धता में होते होते महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर उर्वरक जो है देने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक सही समय है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधी मात्रा यूरिया का जो अनुशंसित है मक्का के लिए, चूँकि ज़्यादातर किसान आजकल हाइब्रिड मक्का लगाते हैं तो उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय और पूरी मात्रा फॉस्फोरस और पोटास की। आपको खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद पट्टा दे करके जब हम बीज लगाते हैं तो उस समय आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा शुरू में छोटा रहता है तो जितना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो तो मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास लगभग एक महीने के बाद जब उपलब्ध होगा तब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, ऐसे आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो रेस्ट जो नाइट्रोजन है उसको जो आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं तो उसको पुनः दो पार्ट में आधा आधा कर करके, एक जब नी हाइट होता है, मतलब नी हाइट कहते हैं जब आपके ठेहुने के हाइट का हो तब, और दूसरा जब उसमें धनवाल जब आने वाला होता है उस समय आपको प्रॉपर सिंचाई के साथ आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पोटेशियम जो होता है अगर आप कम मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं तो ये आपके पौधे के जो रोगों से लड़ने या कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। अगर पोटेशियम आप कम मात्रा में देंगे तो आपके जो फसल होंगे उस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है कि ज़्यादा हो और वो, लेकिन अगर आप पोटेशियम जो समुचित मात्रा में देते हैं तो इस पर कीट वो पौधा जो होता है वो मजबूत होता है और उसके चलते जो है उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है। तो ये आप पोटेशियम के बारे में आप समझ लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जब आप उर्वरक जब दे दिए तब होती है कि भाई बीज का चुनाव कैसे क्या करना है। तो बीज आप अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लेंगे और बीज में भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीज एक तो हाइब्रिड होना चाहिए, क्योंकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो अगर बीज होती है तो उसमें रोग और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। एक जो साधारण प्रकार का अगर बीज हम लगाते हैं वो और एक जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो उत्पादन में ही अंतर होता है और साथ ही साथ इसमें रोगों और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो बीज आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता वाली लेनी है। अब ये बीज आपको मिलेगी कहाँ से, इसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो बीज जो है अच्छे दुकान से ले और वहाँ उनसे कैश मेमो का डिमांड करें, मांग करें। और कैश मेमो जो होता है ओरिजिनल बिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसका लॉट नंबर रहता है, सारा डिटेल रहता है उसमें दिया हुआ। तो इन केस अगर कभी कोई आपको अगर बीज का शिकायत होता है समय से अगर पहले उसमें अगर फ्लावरिंग हो गया, फूल आ गया या दाना सेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है आपको, अगर आपका कैश मेमो होगा तभी कृषि विभाग या कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो ये होगा कि कहाँ से बीज लाएँ, तो ये आपको रसीद लेनी है ओरिजिनल कैश मेमो के साथ और उसको आपको लगाना है। टाइमिंग का भी सही उपयोग करना चाहिए, अभी उपयुक्त टाइम चल रहा है उसको आप लोग लगाइए। अब क्या है कि बीज जो आप लेते हैं उसको उपचारित करना है। अब उपचारित कैसे करें, उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उपचार करने का दो, चूँकि ये मक्का है इसलिए दो चीज़ों से उपचार करने से ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो करना है कि रोगों से इसका कैसे बचाव हो, तो रोगों से जो बचाव होने के लिए इसका हम लोग कार्बेंडाजिम से हम लोग इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसका 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलो सीड की दर से आपको कार्बेंडाजिम लेना है और पानी उतना ही मिलाना है जितना कि जस्ट ये बीज आपको उसमें मतलब ये भींग जाए। और इसको आपको पक्का फर्श पे या पॉलीथीन जो आता है पॉलीथीन सीट उस पे करना है, ज़मीन पे कभी इसको ना करें। और ये जब भी बीज उपचार करते हैं आपको ठंडे में करना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको रोगों से लड़ने। इससे क्या होता है, ये जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदनाशी है, और ये आपके पौधे को, जो पौधा आपका छोटा छोटा होता है उसको लगभग 21 दिन तक आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके मिट्टी में मिट्टी जनित फफूंद भी होगा तो ये अप टू बहुत हद तक आपके फसल को ये बचाता है। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक से भी इसको जो है बीज उपचार करना चाहिए। तो मक्का के केस में क्योंकि कहीं कहीं पे ये हम लोग रबी में लगा रहे हैं इसको, तो इसमें दीमक और इस सब की भी समस्या हो सकती है। दूसरे जो कीट है उनके भी जो शिशु है वो मिट्टी में हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 AC प्लस साइप्रोमेथ्रिन 5 AC ये जो द्रव के मात्रा में ये पाए जाते हैं कीटनाशी, तो इसका आपको जो मक्का का बीज है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति की दर से इसको आपको किसी भी पात्र में या जो पॉलीथीन का जो पैकेट आता है, मक्का का जो पैकेट आता है 2 kg वाला जो आता है, तो उसी में डाल करके आप दोनों हाथ से उसको हिला दीजिए। और हिलाने के बाद पुनः जो है इसको पक्का फर्श पे इसको आप सुखाइए, और सुखाने के बाद तब जा करके आप इसको खेत में लगाना है। इसको पुनः अब खेत में कैसे लगाना है, तो कई किसान भाइयों को रहता है कि अगर जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम कम करेंगे और फिर लाइन में पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको भी कम करके अगर जो मक्का के जो पौधा है उसकी संख्या अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। लेकिन इसके उल्टा भी होता है, जब इस सारा एक अनुशंसित मतलब इसका जो दूरी होती है जो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है और पुनः उसमें 20 सेंटीमीटर का जो होता है लाइन में पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए। क्योंकि इसे अगर कम आप रखते हैं तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे जो मक्के का पौधा है उसको सभी पार्ट में नहीं लगता है, और जिसके चलते रोग भी होने की समस्या रहती है, और कीटों के जो जीवन चक्र के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था नीचे में जाके कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, और छुपने के बाद जो है वो आपके फसल को ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लाइन से लाइन कर दिए, देन आपको जो पौधा है उसको हमेशा आपको खेत पे अपने जाते रहना चाहिए। खेत पे जाते रहने से क्या होता है कि आपको अगर कोई कीटों का अगर उस पर समस्या होगा, आक्रमण होगा, तो आप देख पाएंगे और उसका जो है समुचित आप उपचार कर पाएंगे।
0: जी, तो अगर हम बात करें कीटों की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं इसके बारे में बताएं।
10: हाँ, ये कीट एक तो कटवर्म जो मक्का में बहुत, अभी जब आपका पौधा जब छोटा छोटा होता है तो वो आता है कटवर्म, और दूसरा है जब पौधा फिर आपका जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसमें तना छेदक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। और उसके बाद तना छेदक के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, एक फॉल आर्मी वर्म जो कीट है, जो पहले नहीं पाया जाता था लेकिन विगत कुछ सालों से उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, तो वो मुख्यतः ये रहते हैं। उसके अलावा भी कई कीट है लेकिन इन ये तीन कीटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ग्रास हॉपर है जो आपको पत्तियों पे खाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन तीनों तीन कीटों पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि क्या है, उनको कैसे आप पहचानें, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, ये कटवर्म का आप लोग अपने अलग अलग जगहों पे लोकल भाषा में उसका कुछ और भी नाम है, हो सकता है, ये आपको बताते हैं कि ये कैसे आपके फसल को नुकसान करता है। तो आप जब अपने जब हम मक्का जब लगाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जब ये दो पत्तियाँ एक फेज में होता है, ये जर्मिनेशन के अंकुरित होने के बाद के जो बात है उसके बाद ये जनरली आपको कटवर्म की समस्या हो सकती है। तो कटवर्म में क्या होता है कि इसके जो शिशु होंगे वो लंबा लंबा शिशु होते हैं, और वो जनरली ज़मीन का जो ढेला होता है और उसमें ये छुपा रहता है या दरार रहता है उसमें छुपा रहता है ये दिन को, लेकिन जो ही शाम होता है ये निकल करके आपकी जो फसल है उसको ये नीचे से ही कट कर देते हैं, मतलब जड़ के ऊपर से ये कट कर देते हैं। चूँकि पौधा बहुत छोटा होता है, मुलायम रहता है, जिसके चलते कभी कभार किसान भाइयों को क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर ये काट दिए ये जो कीट है इसके जो शिशु है, तो आपको पुनः किसान भाइयों को वहाँ पे गैप फिलिंग करना पड़ता है मक्का के दूसरे बीजों से। तो ये कटवर्म है। तो अब इस कटवर्म से कैसे आपको निजात पाना चाहिए, तो अगर ये इसकी कहीं कहीं समस्या है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको ये क्लोरपाइरीफॉस 50C प्लस हाइपरमेथ्रिन 5EC की जो मात्रा है वो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, इसको आपको पूरी तरह से इसको ज़मीन पे और जो आपका छोटा पौधा है उस पे शाम के समय शाम के 4 बजे के आसपास इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका जो है वो रोकथाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो शुरुआती कंडीशन है। उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जब पौधा आपका जब बड़ा होगा तो तना छेदक का समस्या हो सकता है। तो ये तना छेदक कैसा होता है, ये तना छेदक आप देखेंगे कि आपका जो मक्का है तो उनकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियां में लाइन से तीन तीन गोला गोला छिद्र ये हो सकता है, छिद्र मिले। तो पुनः छिद्र के साथ साथ होता है क्या कि जो उसका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो है ये इसके जो है शिशु रहते हैं और वहाँ पे वो उसको वो खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं, साथ ही साथ स्क्रीटा भी उसमें वो डालते रहते हैं। तो ये है तना छेदक का। तो तना छेदक की जब समस्या हो, और इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, अगर 100 पौधे में अमूमन अगर 5 पौधे में ऐसा समस्या अगर 5 से ज़्यादा में देखा जाता है तब आपको इसके उपचार के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे है 5 से इसकी संख्या कम है तो ये उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकता है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके कीटनाशी को छिड़कने में और ख़रीदने में और छिड़कने में जितना पैसा आपका लगता है उससे कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तब आपको इसके उपचार के लिए आपको आगे आना होगा। तो एक तो हो गया, अब इसका उपचार कैसे करें। तो इसके उपचार करने के लिए अगर पौधा आपका छोटा है, आपका अगर पौधा आपके ठोने से नीचे कंडीशन में है तो उस कंडीशन में आप जो दानेदार जो कीटनाशी है जो कटाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4G के नाम से आता है, तो इसको एक जर्दे के डब्बा में डालना है और जर्दे के डब्बा में छेद करके जैसे जर्दा पान पे डालते हैं लोग, उसी ढंग से आपको जो मक्का का जो गभा है उस गभा में उसको डालना है, ऐसे छींटना है ताकि दो तीन उसके जो हमारा जो कीटनाशी है क्लोरोपाइरीफॉस दानेदार उसकी ये दानेदार कीटनाशी है उसका दाना जो है उसके कंठ में चला जाए, क्योंकि ये कीट जो कंठ में छुपे रहते हैं तो ये कीट के बॉडी में ये सट स्पर्श करते ही सटते ही ये कीट मर जाता है और आपका जो है जिस पोर्शन में जिस पॉकेट में जिस क्षेत्र साइड में अगर ये समस्या उधर ही सिर्फ छिटने से आपको काम हो जाएगा, आपके पूरे फसल पे छिटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चलते क्या होता है कि एक तो हमारा जो कीटनाशी की मात्रा कम लगती है और हमारे जो मित्र कीट है वो भी मरने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आपको ये तना छेदक के लिए। लेकिन हाँ, अगर पौधा पर बहुत जब बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में आप ये जो दानेदार दवा जो है नहीं छींट सकते, तो उस कंडीशन में आपको जो लिक्विड वाला दवा है उसको आपको गटोर से स्प्रे करना चाहिए और उस कंडीशन में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG उसकी मतलब 10 लीटर पानी में 4 ग्राम मात्रा आपको डालना है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा कीटनाशी है जिसको पहले ये झिल्ली की तरह होता है, इसको पहले आपको किसी भी पात्र में घुला लेना है और घुलाने के बाद तब आपको स्प्रेयर में डाल करके फिर पानी डालना है और उसके साथ कुछ मात्रा में स्टिकर मिलाना है और स्टिकर मिला करके अच्छी तरह से उसको तब आपको स्प्रे करना है, गटोर से पूरी अच्छा से स्प्रे करना है और स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटा छोटा बूंदा है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी पूरा निकल रहा हो, इससे आपकी दवा भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो सॉइल और सारा हमारा जो सिस्टम है वो उस पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया तना छेदक के लिए। अब एक आती है जो फॉल आर्मी बम, तो ये फॉल आर्मी बम हो सकता है कि सब कहीं पे आता है कहीं पे नहीं भी आता है, लेकिन इसको ये बहुत आक्रामक है, ये तना छेदक से भी ज़्यादा बहुत जल्दी ये आपके फसलों को बर्बाद करता है, इसीलिए इसका नाम फॉल आर्मी बम रखा गया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका 2 से 3 दिन में आपके फसल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो ये आपको जो तना छेदक होता है इससे ये ज़्यादा मोटा होता है, लंबा भी होता है, इसके बॉडी पे ये काला काला धारी होता है और साथ ही साथ इसके जो टेल जो पूंछ पोर्शन जिसको बोलते हैं, तो पूंछ पोर्शन में 4 छोटे छोटे बिंदु काले काले बिंदु होते हैं जो एकदम स्क्वायर के रूप में रहते हैं, जैसे कि अगर चारपाई या जो भी स्क्वायर होता है उसके चारों साइड पे ये बुंद रहेंगे। साथ में अगर आगे पोर्शन में देखिएगा तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो उल्टा वाई का शेप उसके सर पे बना हुआ रहता है। तो ये फॉल आर्मी बम है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जनरल कीटनाशी है उससे ये कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इसके भी 6 इन स्टार है, इसके जो 6 स्टेजेज हैं, अगर ये इनिशियल कंडीशन में है तो सिंपल कीटनाशी से भी ये इनका रोकथाम हो सकता है, लेकिन अगर ये इन स्टार अगर ये एडवांस इन स्टार में है जैसे 4, 5 और उसके आगे के इन स्टार में है तो उस कंडीशन में आपको मतलब इससे जो हार्डी इंसेक्टिसाइड है वो देना है। तो जो शुरू वाला अगर फेज है जैसे स्टेज 1 और 2 में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट हमने जो बताया है उससे भी ये नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 स्टेज में है तब स्पाइनोटोरम 11.11.7% की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको और साथ में स्टिकर लेकर के इसको छिड़काव करना है शाम के समय में। और अगर इसकी उपलब्धता नहीं हो तो थायोमेथोक्जाम 12.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथोगियम प्लस लैम्डा साइलोथिन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मीवर्म में क्या होता है, ये आपके पत्तियाँ को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जब बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए और इससे आपका इस से आप निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मक्का का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा।
2: उन्नत कृषि

0: कॉलेरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद
7: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का, सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
7: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
9: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है, उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
7: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ और बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
7: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति

0: किसान भाई बहन कर ले गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक एक, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है।

सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर
2: जी।
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
2: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है
2: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देख कर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
2: श्रोताओ कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि चार बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने दो रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओ दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
2: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
2: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
2: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
2: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
2: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
2: जी।
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
2: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
2: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
2: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
2: जी।
0: तो पहली बात,
2: संकट में घबराएं नहीं।
0: दूसरी बात,
2: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
2: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
2: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
2: जी,
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: बहुत ही बढ़िया बोला।
5: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
6: ना नहीं,
7: अरे
6: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
7: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
5: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
6: प्लीज मेघा,
7: दिखा दो ना।
8: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
9: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
8: चलो चलो चलो चलो चलो।
10: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
10: बहुत अच्छी।
11: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
12: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
12: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
12: जी
5: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
5: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
12: लीजिए मैडम।
3: हाँ इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
9: अरे किताब भी नहीं है।
3: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
12: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
9: सैनिकों के बारे में?
12: सैनिकों के बारे में है।
5: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
12: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है। वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
12: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
11: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
9: सैनिकों को करनी होती होगी।
12: बहादुर है हमारे सैनिक।
5: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
11: मुझे भी।
7: इसके बाद में
5: नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
12: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
5: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
5: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
12: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
12: जी मैडम।
10: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
12: जी मैडम।
3: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
12: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
3: क्या बात है।
5: अच्छा मेघा ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
12: बताती हूँ सुनो। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह। अच्छा मेघा क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
12: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
3: शाबाश।
12: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
5: मेघा ऐसा क्या किया था उन्होंने?
12: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
13: ओ मैडम जी।
3: जी मोहन भैया क्या बात है, आ जाइए।
13: मैडम जी आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
3: ओ हाँ। मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
13: ठीक है जी।
3: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
12: जी मैडम।
3: मेघा देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
5: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
9: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अवसरों का साथ हो और सामने दुश्मन।
11: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
14: मोहित लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
3: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
15: नमस्ते सर।
16: नमस्ते बच्चों।
3: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
12: जी मैडम।
16: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आप

0: महाराजा हरि सिंह को ये नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई, हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
2: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद।
0: दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
3: शाबाश जांबाजों, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, ये गन पकड़ो, फायर फायर।
0: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
3: सर सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
0: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
3: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
0: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
3: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण घिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर फायर की जय। एक एक को भूत करो, कोई ना बचने पाए। फायर।
0: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
3: जवानों, आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचने दे पाए। आगे बढ़ो, फायर।
0: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे। उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खास तौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
5: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
12: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
11: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
13: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
11: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
14: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
11: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
15: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
11: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
16: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। जी हाँ, आज फिर से एक बार मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम,
1: जिसमें होंगी कुछ उन्नत बातें खेती से जुड़ी। तो आज भी बहुत ही खास विषय हम लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा विषय है खेसारी की उन्नत खेती। और हमारे साथ हैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सी के पांडा जी और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले आइए जानते हैं खेसारी की फसल के बारे में। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये बहुत ही कठोर फसल है जो विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे कि अत्यधिक नमी हो, जल जमाव हो, सुखाड़ हो, इसमें सहने की क्षमता होती है। तो आज इसकी खेती के बारे में जानेंगे हम और डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल भी करेंगे और उसके जवाब भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर खेती की बात आती है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बताएं कि हमें खेत की तैयारी यानी खेसारी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए।
17: नमस्कार किसान बंधुओं और मैडम नमस्कार आपको भी। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा इस फसल के बारे में आपके साथ बात कर लेता हूँ।
1: जी जी।
17: देखिए आप जैसे बताया ना, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, तो सूखाड़ में बाढ़ में एक फसल है जो सरवाइव कर जाता है
1: जी।
17: और ये जो फसल है ना, ये बहुत दिन से हमारा देश नहीं, सिर्फ इंडिया मतलब भारतवर्ष, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रदेश, ये सब देश में भी इसका आबादी होता है। ये छोड़ के भी साउथ अफ्रीका का कुछ देश में और भी देश में इस फसल की आबादी होता है। ये फसल का एक हम फलीदार फसल भी बोलते हैं, इसको लिगुमिनस फसल भी हम लोग बोलते हैं
1: जी।
17: ये लिगुमिनस फसल होने के कारण ये मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक होता है। कैसे
1: जी?
17: ना मिट्टी में इस फसल के आबादी के कारण हर हेक्टर में प्रति हेक्टर में 37 kg से 40 kg के आसपास नाइट्रोजन जुड़ जाता है।
1: अच्छा।
17: तो जब सबसे बड़ा अभी के जमाने में मिट्टी के स्वास्थ्य बचाने के लिए इस फसल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है
1: जी जी।
17: और इसका जो डाल है, इस डाल में 31% के आसपास प्रोटीन रहता है, 41% के आसपास कार्बोहाइड रहता है, 17% के आसपास डाइटरी फाइबर रहता है।
1: अच्छा।
17: तो आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन काफी है, 31% मतलब काफी है। और इसको पोर मैन पाल्स भी बोला जाता है। क्यों? ये ऐसा एक फसल है, कोई भी जगह पर आप इसको बुआई कर दीजिए, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल रह जाएगा तो मिट्टी के साथ इसका जुड़ जाएगा, तो इसका बस जर्मिनेट कर जाएगा तो ये क्रॉप स्टैंड कर जाता है। और पहले आप जो बताया है, जो क्वेश्चन पूछे थे, जो इस फसल की आबादी करने के लिए लैंड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, देखिए खेती कैसे करना चाहिए। देखिए इस फसल को दो तरह से आबादी किया जाता है, एक है पैरा बा यूटेरा क्रॉपिंग कहते हैं।
1: अच्छा।
17: दूसरा होता है डायरेक्ट।
1: अच्छा।
17: मेनली इस क्रॉप को पैरा बा यूटेरा क्रॉपिंग में कल्टीवेशन किया जाता है। पैरा बा यूटेरा क्रॉपिंग मतलब हुआ क्या? एक्चुअली ये जो धान का जो जमीन में इस फसल को खेसारी का जो बीज है उसको बुआई दिया जाता है। कैसे ना, धान का फसल कटने की 10 से 15 दिन पहले खेसारी का जो सीड है बीज जो हम कहते हैं उसको छिटका दिया जाता है। तो छिटकाने से पहले क्या देखा जाता है, नमी व मॉइस्चर लेवल मिट्टी में ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक ठाक होना चाहिए मतलब जो उसका मतलब इतना मॉइस्चर रहना चाहिए जो बीज जर्मिनेट किया जाए
1: जी।
17: तो इसी को कहते हैं यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग कहते हैं।
1: अच्छा।
17: और ज्यादा से ज्यादा यही फॉलो किया जाता है। क्यों? देखिए इस फसल जहां पर यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग में आबादी किया जाता है, धान के बाद दूसरा कुछ फसल नहीं लिया जाता है। तो एक फसल ऐसा एक फसल है, ज्यादा दिन का भी नहीं है, 115-120 दिन के अंदर भी उसका मैच्योरिटी भी हो जाता है, आ जाता है। एक कहावत है, शुरू किया जाता है इसका आबादी दिवाली के बाद, मतलब सोइंग का टाइम शुरू होता है दिवाली के बाद और होली से पहले, इसका बाद होली के आसपास इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है।
1: अच्छा।
17: और बाकी रह गया डायरेक्ट सोइंग के बाद। तो डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है, तो डायरेक्ट सोइंग के लिए आपको जमीन को तैयारी करना पड़ता है। इसका मतलब मान लिया पहले आपका फसल धान था, तो धान हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके बाद मिट्टी का नमी के आधार पर 1 से 2 बार उसको जमीन को प्लाइंग करना पड़ता है।
1: अच्छा।
17: तो उसके बाद बीज को मॉइस्चर व नमी जैसे रहेगा उसके आधार पर उसको सोइंग किया जाता है। सोइंग करने के बाद वो जर्मिनेट कर जाता है, बस यही है। तो मैडम उसके बारे में थोड़ा सोइंग टाइम के बारे में और एक बार रिपीट कर देता हूँ, मतलब आप टाइम के आधार पर बताए थे, अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके नवंबर का सेकेंड वीक तक इसका सोइंग किया जाता है, बीज को सोइंग किया जाता है, बोई किया जाता है।
1: अच्छा।
17: और इसका फसल हार्वेस्टिंग का टाइम होता है आप मान लिए मार्च का एंड के आसपास,
1: मतलब होली के आसपास।
17: हाँ, होली के आसपास उसका हार्वेस्टिंग किया जाता
1: किया
17: है,
1: जा सकता है यानि।
17: और इसके बाद आप पूछ रहे इसका उन्नत प्रभेद के बारे में,
1: हाँ।
17: यही बात है ना। देखिए इसका उन्नत प्रभेद बहुत इम्पोर्टेंट इशू होता है, लेकिन दूसरे क्रॉप से थोड़ा इसका इशू कुछ अलग है। क्यों, आप सब लोगों को पता है एक समय इस क्रॉप को बैन किया गया था
1: जी,
17: तो उसका कारण भी था इस क्रॉप में एक केमिकल रहता है जो न्यूरोटॉक्सिन के केमिकल है जिसको बीटा ऑक्साइल डाई एमाइनो प्रोपाइनिंग एसिड कहते हैं, तो साइंटिफिक आधार पर नहीं जा सकते हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं, तो एक केमिकल रहता है जिसके कारण लेथाइरिज्म होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किए थे और रिसर्च भी चल रहा था, रिसर्च के आधार पर कुछ वेराइटी व प्रभेद निकल के आया है, जैसे आपका इनिशियल फेज में आया था निर्मल करके एक वेराइटी व प्रभेद, इसके बाद आया है प्रतीक, प्रतीक है, रतन है, महातेवड़ा है, इस प्रभेद है। इस प्रभेद का, इस प्रभेद सब का खूबियत व स्पेशलिटी यही हुआ, इसमें जो केमिकल बारे में अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया उसका अमाउंट बहुत कम रहता है, 0.1 से नीचे रहता है। और ये रिकमेंडेशन है लेथाइरस का कोई भी प्रभेद जिसमें ओडाब व कोई कोई बुआ भी इसको कहते हैं, उसका परसेंटेज 0.1 से कम होना चाहिए। और मैं जो चार प्रभेद के बारे में आप लोगों को अभी अभी बताया इस सब में 0.1 से कम है, तो इसके आप आराम से इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं।
1: तो सर यहाँ पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीज दर की, और उसके बारे में बताएं, और जो दूरी है बोने की दूरी क्या होनी चाहिए, बीज दर क्या होनी चाहिए वो बताएं।
17: अच्छा देखिए, इसका हम पहले ही बताया हूँ इसको दो तरह से स्विंग कल्टीवेशन किया जाता है, एक पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग, दूसरा है डायरेक्ट स्विंग किया जाता है।
1: अच्छा।
17: तो पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग में हम लोग उसको ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, मतलब छिटका देते हैं, तो छिटका के कारण थोड़ा ज्यादा सीड का जरूरत होता है। इसमें 70 से 80 केजी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 70 से 80 केजी पर हेक्टर सीड को यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग आप ब्रॉडकास्टिंग भी बोल सकते हैं, इसमें कर सकते हैं आप लोग। और लाइन सोइंग के आधार पर आएंगे तो, अर्थात अब ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करना चाहेंगे तो, तब उसका सीड रेट होता है 40-60 केजी पर हेक्टर। और इसमें लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर के आसपास, और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर के आसपास, इस डिस्टेंस को इसमें मेंटेन किया जाता है
1: जी। फिर जो है बीज उपचार की बात करते हैं, जब बीजों को कुछ रोगों से बचाना हो तो फिर क्या करना है?
17: हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज उपचार बहुत जरूरी है, जिसको बीज को टीकाकरण भी हम लोग कहते हैं, तो क्योंकि बीज उपचार कर लेंगे तो इन फ्यूचर में बहुत रोग से हम फसल को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए बीज उपचार के लिए मोनली किसान भाई सबको पता ही है कार्बेंडाजिन वो लोग यूज करते हैं 2.0 ग्राम पर केजी, तो वो सीड सोइंग के एक दिन पहले कर लेना चाहिए। और इसमें बायोफर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन किया जाता है, बायोफर्टिलाइजर को एप्लीकेशन इसीलिए किया जाता है, देखिए जो राइजोबियम जो कल्चर होता है, राइजोबियम कल्चर को सीड के साथ मिक्सिंग करने से क्या फायदा होता है ना, ये नोड्यूल जो फॉर्मेशन जो गांठ होता है खेसारी का सिकड़ में रूट में जो जाड़ होता है उसमें क्या होता है ना, वो कुछ नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं।
1: अच्छा।
17: तो उस नोड्यूल में राइजोबियम रहता है, और राइजोबियम कल्चर आप देंगे तो नेचुरली उसका नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा, तो इसलिए घुमा के हम बोल सकते हैं फसल के अपने लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है और फ्यूचर जो क्रॉप है उसके लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है।
1: अच्छा, तो ये बात हो गई बीजोपचार की। और उर्वरक और खाद की बात करते हैं, जब खेती होता है तो उस समय उर्वरक और खाद बहुत ज़रूरी होते हैं, डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएं कि कौन से उर्वरक और कौन से खाद देनी चाहिए इन्हें।
17: देखिए ऐसे जो ऐसे एक फसल है जो पैराक्रॉपिंग व यूटेराक्रॉपिंग में इस फसल को आबादी किया जाता है, तब तो किसान लोग उसको डायरेक्टली फर्टिलाइजर देने के बाद उर्वरक देने के लिए स्कोप नहीं रहता है, क्यों मैंने पहले ही बताया जो धान का हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले उसको सीड को सोइंग किया जाता है, तो उसमें तो आपका उर्वरक देने का कोई जगह ही नहीं रही है, तो मतलब धान में जो उर्वरक दिया गया था व फर्टिलाइजर व मैन्योर जो दिया गया था उसी का रेसिडुअल जो है उसी को यूज किया जाता है। और डायरेक्ट सोइंग में हुआ तो उसके आधार पर 100 केजी डीएपी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 100 केजी डीएपी पर हेक्टर इसको दिया जाता है, तो इसमें फसल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाता है, इसी में काफ़ी काम हो जाता है। और एक इशू होता है इसके, जैसे मान लिया फर्टिलाइजर को स्प्रे भी करते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे भी करते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे करने का क्या जरूरत पड़ जाता है, मान लिया आपका पॉट फ्लावरिंग हो गया, पॉट फॉर्मेशन का आसपास टाइम आ रहा है, उस समय यूरिया का स्प्रेइंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा पॉट का भी साइज बढ़ भी जाता है और आपका जो यील्ड फॉलन जो है वो भी बढ़ जाता है।
1: अच्छा, तो फिर इसमें सिंचाई की भी जरूरत होती है या नहीं?
17: देखिए, इस फसल में हम पहले ही बताया ये ज़्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट व क्रॉप है व क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का जरूरत मोरलेस नहीं होता है। तो नमी बहुत कम हो गया तो, बहुत कम हो गया तो वो आप थोड़ा सा नमी के, थोड़ा नमी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केस में हम लोग देखे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग देखे हैं कि इसमें सिंचाई देने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नमी बहुत घट गया तो आपका पानी देने का बंदोबस्त है तो पानी दीजिए, नहीं तो आपका ये फसल हो जाता है।
1: हाँ, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि क्लाइमेट रेजिलेंट है ये, तो इसलिए ये आराम से बिना सिंचाई के भी हो सकता है।
17: हाँ।
1: तो इसके बाद खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानना चाहेंगे।
17: देखिए, इसको हम लोग खेसारी को और भी एक बात बोलते हैं, ग्रास पी भी बोलते हैं, घास की तरह होता है। ये ऐसा होता है ना, ये खुद ही एक अपने में इतना ग्रोथ होता है इसका ना, उसके आसपास जितना भी वीड वगैरह जो भी रहता है उस खुद को ये कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
17: तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीड मैनेजमेंट के लिए इतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, क्रॉप खुद ही अपने से जो उसके आसपास जो वीड गए उसके ऊपर स्मूदरिंग इफेक्ट हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको कर देते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा कुछ किसान का कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है।
1: तो इसके बाद पौधा संरक्षण उपचार के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
17: देखिए, एक क्रॉप जैसे क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप भी है और उसके साथ ये भी है, इस क्रॉप में कीड़ा बोलिए डिजीज का इन्फेस्टेशन बहुत कम होता है। फिर भी हम लोग कुछ कुछ जगह पर देखे हैं इसमें एफिड होता है, एफिड का थोड़ा बहुत अटैक होता है, तो लेकिन एफिड का अटैक होता है तो तब आप उसको औसत दवा देने का जरूरत होता है, तो उसके आधार पर आप डाइमिथोएट 30 से एट द रेट ऑफ 1.7 ml पर लीटर उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक रास्ट होता है, तो उसके आधार पर देखिए, एक रास्ट जब दिखा जाएगा तो तब तो आपको कुछ मेडिसिन देने का जरूरत पड़ता है, लेकिन उससे पहले आप सीड ट्रीटमेंट ठीक से करके रख देंगे तो रास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कार्बन डाइजिन देके आप उसको ट्रीटमेंट करके रखे हैं तो सीड ट्रीटमेंट किए तो उसमें रास्ट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो किसी कारण पर आ गया तो मैंगो जेब 75W पे एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर व पानी के आधार पर आप दीजिए। अच्छा। कंट्रोल हो जाएगा।
1: अच्छा, अब बात आती है अंत में कटाई की, तो हमारे किसान भाइयों को कब समझ जाना चाहिए कि अब इसकी कटाई कर देनी चाहिए और उसका भंडारण कैसे करना चाहिए?
17: अच्छा, देखिए, एक भंडारण का कटाई करने के लिए आप क्रॉप फील्ड में मतलब फसल के जमीन में आप लोग रेगुलर विजिट भी करते हैं। पहली बात है पत्ती का जो कलर है, कलर ये हो जाता है ग्रीनिश, जो डीप ग्रीन से धीरे धीरे उसको लाइट होते होते वो जो क्या बोलते हैं ना मैच्योरिटी का जो कलर होता है वो आ ही जाता है, और आप देख पाएंगे पॉट जो होता है उसका पॉट भी सूखा शुरू हो जाता है, मोर और लेस आप देखेंगे पौधा ड्राई हो गया, तब आपने वहां से उसको हार्वेस्टिंग करके लेके आइए, और हार्वेस्टर अवेलेबल है। अच्छा। तो हार्वेस्टर में जैसे आप लोग चना का हार्वेस्टर है, उसी हार्वेस्टर लेके आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, उसका जो क्या बोलते हैं पुआल वगैरह जो भी हो सेपरेट हो जाए, सीड भी अलग हो जाएगा। सबसे बड़ा खूबी क्या है, उसका जो स्ट्रॉ जो बोलते हैं हम लोग पुआल जो बोलते हैं उसका, वो भी फोडार के आधार पर और तत्व गाही जो है बेस के लिए एक खाने का अच्छा एक सोर्स हो सकता है, एवं गांव में प्रैक्टिस भी होता है और इसमें मिल्क का परिमाण, दूध का परिमाण भी बढ़ जाता है।
1: अच्छा, तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि खेसारी की फसल की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक सभी बातें यहाँ पर आप सभी को बताई गई, आप सभी को निर्देश दिए गए हैं, तो आशा करती हूँ कि आप इन निर्देशों को अपनाएंगे और खेसारी की फसल जी हाँ ज़रूर करेंगे और उन्नत खेती करके आप एक सफल किसान बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन आरजी अनु के साथ उन्नत कृषि में।
18: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती

शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करे। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दे टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 cm की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। और नाम से पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करके मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर उन फूलों के पौधे खेत में होते हैं तो कीटनाशकों का आपको कम प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गेंदा के पौधों की बात करें तो सूत्रकृमि, जिसे कि नेमाटोड भी कहते हैं, या फिर कुछ और भी कीटों के प्रबंधन में काफी उपयोगी माना जाता है। वैसे ही सूरजमुखी और गेंदा जैसी और भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो मिट्टी की हानि कारक नेमाटोड के प्रबंधन में बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी होती है। और कुछ ऐसे भी फूलों के पौधे होते हैं जो लाभकारी कीटों को, जो कि फसलों को, मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप अपने मुख्य फसलों के साथ फूलों के पौधों को लगाएं तो आपको आय तो मिलती ही है, साथ ही आपके फसलों को आप कीटनाशकों से बचाते हैं और आप मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। और जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों से हमें लगता है कि कितना ही आय हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा, तुरंत मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि एक रास्ते पर चलने से आपको नुकसान होगा तो आप कई सारे रास्ते खुले रखिए। और जब फूलों की खेती की बात आती है तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन के बारे में। किसान भाई बहनों और जो भी हमारे श्रोता है, आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आय का। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में भी फूलों की बहुत ज्यादा मांग है, हर तरह के फूलों की मांग है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ताजे, सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन कर आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं या आय का एक नया जरिया बना सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह से। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापक उद्यान पुष्प एवं भूदृश्य विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत फूलों के मूल संवर्धन के बारे में।
0: जी मैम, तो मैम जब हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करते हैं तो फूलों का, पुष्पों का मूल्य संवर्धन क्यों जरूरी होता है?
1: देखिए, ताजे फूलों एवं पत्तियों में अधिक नमी होने के कारण इनकी आयु सीमित होती है, जिससे हम अधिक समय तक इन्हें भंडारित नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए फूलों को मूल संवर्धित करने की तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे हम फूल की सुंदरता को काफ़ी समय तक सहज कर रख सकते हैं।
0: जी मैम, तो अगर हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करें तो मूल्य संवर्धन के कितने वर्ग होते हैं?
1: देखिए, प्रायः तीन तरीके के फूलों को हम मूल्य संवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ताजे फूलों का मूल्य संवर्धन। अगर हम फूलों को बाजार में बेचने ले गए हैं और कुछ फूल बच गए हैं तो वहीं बैठे बैठे हम उनसे कुछ ताजे फूलों में थोड़े सा कुछ ऐसे लगा के उनको मूल संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। दूसरा वर्ग हमारा ऐसे फूलों का होगा जैसे कि फूलों को हम सुखा लेंगे और सूखे फूलों से हम कई तरीके के उत्पाद बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग। और तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो फूलों को या तो हम ठंडे पानी या गर्म पानी में उबालकर, पीसकर या उसमें किसी भी तरीके से प्रसंस्करण करके हम मूल संवर्धित उत्पाद बनाएंगे, तो ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया प्रसंस्कृत फूलों का मूल संवर्धन।
0: पहले वर्ग के साथ मैम शुरू करते हैं, तो क्या फूलों के मूल्य संवर्धित उत्पादों की जब हम बात करते हैं
1: जी,
0: तो ताजे फूलों के मूल्य संवर्धन द्वारा कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: देखिए, ताजे फूलों से हम गुलदस्ता, मालाएं या जैसे गजरा, वेनी या फिर साज सज्जा के रूप में भी इन फूलों में, जैसे जो आजकल हम शादी ब्याह में डेकोरेटिव डेकोरेशन के चीजें देखते हैं, तो ये साज सज्जा भी की जा सकती है। तो आजकल जैसे शादी ब्याह बहुत ही आधुनिक हो गया है और इसमें सिर्फ मंडप ही नहीं अपितु इसमें हम बात करें तो गाड़ी, पंडाल या यहाँ तक कि घर के अंदर की भी सजावट की जाती है। वहीं फूलों से बनी हुई रंगोली और मेहंदी और हल्दी जैसे फंक्शंस में फूलों से बने गहने भी बहुत डिमांड में हैं। तो इस तरीके के उत्पाद हम ताजे फूलों से तुरंत के तुरंत बनाकर कर सकते हैं
0: जी, अगर फूल बच गए तो उसका इस्तेमाल कर
1: जी।
0: तो मैम क्या पुष्पों के जब हम मूल संवर्धन उत्पादों की बात करते हैं, अभी आपने अलग अलग अवसरों के बारे में बताया, तो शोकाकुल अवसरों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है। जैसे उल्लासित अगर अवसरों की बात करें तो वहां तो हम बुके देते हैं या गुलदस्ता भेंट करते हैं, पर अगर हम शोकाकुल सभाओं की बात करें तो वहां भी हम एक कीपाकार गुलदस्ता या तिकोनाकार या गोलाकार गुलदस्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में रीथ बोलते हैं। प्रायः इनमें हम हल्के वर्ण के फूल, क्योंकि शोक है तो हल्के सफेद से लेकर हल्के रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, और जितने ही फूल तो उतनी ही पत्तियां भी इस्तेमाल करके इनका आकार दिया जाता है। और आजकल जैसे कि कह लें कि इसमें खास बात यह है कि फूलों के साथ इसमें पत्तियां भी जो इस्तेमाल होंगी तो वो बड़ा अच्छा लुक देती हैं, मतलब फूलों के साथ उनका कंट्रास्ट इफेक्ट आता है। मेनली जैसे कि फूल हो गए गुलाब, कार्नेशन, ग्लैडुलस, एस्टर, लिली, या पत्तियां हो गई जैसे साइकस, ताड़, फर्न, इनको हम प्रयोग करके बहुत अच्छे रीथ्स बनाते हैं, और ये रीथ्स बुके के मुकाबले काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं, तो इनका भी शोकाकुल सभाओं में प्रयोग होता है। और वहीं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे में गुलाब का तेल या तुलसी का तेल या इनके पौधे बगीचे में होना भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि ये भी हमारे एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं। इनसे जो निकलने वाली खुशबू होती है ये एरोमा थेरेपी में भी बहुत काम आती है।
0: जी मैम, जब हम फूलों से साज सज्जा की बात करते हैं तो क्या इस वक्त हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है?
1: जी, बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि सामान्यतः फूलों की साज सज्जा के मिश्रण में हल्के रंगों की अपेक्षा गहरे रंग अधिक इस्तेमाल होते हैं, बट वहीं पर जैसे मैंने बताया शोकाकुल में आप हल्के रंग इस्तेमाल करेंगे। और फूलों के संयोजन में क्या होता है कि कलियों को प्रायः हम किनारे की ओर रखते हैं, और जो भारी फूल होता है उसे हम, या चटकीले रंग का फूल होता है उसे हम सेंटर पर रखते हैं। प्रायः हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि फूलों के अधिक रंग या अधिक तरीके के फूलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके के फूलों का ही इस्तेमाल करके हमको गुलदस्ता या साज सज्जा करनी चाहिए। और वहीं पर कृत्रिम रोशनी अगर है तो हल्के रंगों की जगह गहरे रंग इस्तेमाल करने चाहिए, और नेचुरल लाइट में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फूलों को यदि पात्र में रखना हो तो फूलों की लंबाई पात्र से कम 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। और प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए हमें प्रायः लचीली टहनियां या लटकने वाले क्लाइंबर जो फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अभी हमने बात करी थी कि गाड़ी को जब हम शादी ब्याह के लिए सजाते हैं तो उसमें भी हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे गाड़ी के रंग से विपरीत हो, तभी वो निखर के आएगी उसकी सजावट। और यदि कार को बहुत दूरी तय करनी है तो हमको फूलों की डंडियों के नीचे गीली फोम का इस्तेमाल करना चाहिए। और कम खर्चे में अगर गाड़ी को सजाना है तो छोटे छोटे बटन होल का प्रयोग करना चाहिए। अधिक खर्चे में भी हमें भारी भरकम सजावट से बचना चाहिए ताकि गाड़ी चलाने में कोई असुविधा ना हो। और प्रायः सफेद गाड़ियों के लिए हमें रंग बिरंगे फूल जैसे ऑर्किड, जरबेरा या गुलाब, या फिर हरी चटकीली पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही में इनके रिबन या हल्के नेट या फ्रिल को इस्तेमाल करके भी हम गाड़ी को सजा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम रंगों पर सही ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी सजावट निखर के आएगी।
0: जी मैम, अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम सूखे फूलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो वो किस प्रकार किया जा सकता है?
1: देखिए, यहाँ पर फूलों को सुखाकर फिर हम अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ये जो उद्योग है ये बड़ा नवीन उद्योग है, क्योंकि इसमें हम सूखे फूलों को उनके ढांचे के बिगाड़े बगैर या उनके नेचुरल प्राकृतिक रंग को संजो के सुखाते हैं, एवं अन्य विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि हो गई आपकी फ्रेम जड़ित तस्वीरें, बधाई कार्ड, कवर या पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड, या शीशे की कटोरी में बने हुए पेपर वेट, ऐसे बहुत तमाम इस तरीके के उत्पाद हैं जो हम सूखे फूलों से बना सकते हैं। ये उत्पाद टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल भी। और अन्य उत्पाद जैसे जो और उत्पाद हैं टू डायमेंशनल में वे हैं ग्रीटिंग कार्ड या फिर पॉट पोरी या फिर आपका वॉल हैंगिंग हो गया, पुष्प विन्यास हो गया, या थ्री डायमेंशनल में गुलदस्ता, पेन स्टैंड, इस तरीके के उत्पाद हो गए जो होटलों और मॉल में बहुत मांग में हैं। साथ ही ऐसे उत्पादों से जो खाली बैठी घर में महिलाएं हैं या कोई भी वर्ग है वे इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। इसमें हम कबाड़ का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जो कबाड़ है उसके साथ खराब फूलों को सुखाकर उनसे उत्पाद बनाते हैं, और वहीं इनकी डिमांड अधिक होने के कारण इनकी जो बिक्री दर है वो बहुत अच्छा है।
2: जी मैम, मैम आपने एक और वर्ग की बात की थी प्रसंस्कृत फूलों के बारे में
1: जी,
2: जहां आपने बताया था उबाल सकते हैं, तो फूलों को उबाल कर कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: देखिए हर तरीके के तो फूलों को नहीं उबालते हैं, जो फूल टेम्परेचर को सहनशीलता जिनमें रहती है उनको उबालते हैं, या फिर कुछ को ठंडे पानी में ही हम रख के उनसे तेल निष्कर्षित कर सकते हैं या रंग निष्कर्षित कर सकते हैं, और इनसे हम हर्बल गुलाल, धूपबत्ती, या फिर फूल अगर हमारा बहुत तादाद में बच गया है तो इसे गड्ढे में डाल के हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर जो बचे हुए फूल हैं उनको सुखाकर पाउडर बना के मुर्गी के दानों में मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो होता है क्या है, अक्सर इसके लिए गेंदा का प्रयोग किया जाता है, जब डेकोरेशन के बाद जो फूल गेंदा के बच जाते हैं तो उनको पीस कर, क्योंकि इसमें कैरेटिनॉइड और भी पिगमेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये मुर्गी की आँखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अंडे के पीले भाग को और रंग प्रदान करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके के उत्पाद बनाकर भी हम काफी लाभ कमा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम उबाल कर या पका कर बात करें तो इससे हम गुलकंद या फूलों से बनी हुई चाय या सौंदर्य आइटम जैसे हो गए क्रीम, शैम्पू या गुलाब जल, ये भी बना सकते हैं।
2: जी मैम, तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को एवं अन्य श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि फूलों से, अगर आप फूलों से खेती करेंगे तो बहुत इससे फायदा है। फूलों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि नमी अधिक है, बस इस नमी को यदि हम कंट्रोल कर लें और इससे मूल संवर्धित उत्पाद बना लें तो किसान भाई बहन या उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या शारीरिक कमजोर से भी अगर कोई मेंबर है तो वो घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे उत्पाद बना सकता है जिनकी भारी डिमांड है और इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है।
2: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि किस प्रकार से ताजे सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाई बहनों, फूलों की खेती से न केवल आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अंततः फायदा इससे हमें ही होता है। तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
2: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम। करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
8: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु का या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
13: जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
8: संक्रमण होने
13: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
8: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है।
13: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये, इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
8: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज़्यादातर देखा जाता है,
13: ज़्यादातर पाया ही जाता
8: और
13: है।
8: और सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है।
13: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-106 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
8: और गला
13: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
8: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
13: भैंस वंश में ज्यादा होता है,
8: तो इसके लक्षण क्या?
13: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी, अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस, आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है, जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है, शरीर का तापक्रम, वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन, जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर, वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
8: टीकाकरण पर विशेष बल देना है और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
13: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग भी होते हैं।
8: और मुँह,
13: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुँह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुँह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुँह में,
8: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
13: खुर में और मुँह में दोनों में घाव होता है।
8: अच्छा।
13: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला यह बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुँह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है।
8: नियंत्रण
13: किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में, खुरपका मुंहपका रोग में, पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशु पालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
8: उनको नुकसान होता है,
13: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के, पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं। और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
8: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए, और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब, आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया अब किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती हैं ये?
13: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव, और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता, जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
8: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
13: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन जो किलनी जू इसकी भी संख्या बढ़ती है, जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहां जल जमाव न हो, और ऊंचे स्थान पर रखें। वहां शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें, जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें। उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वह नमी की कमी रहती है।
8: तो डॉक्टर साहब, आपने जिन रोगों के नाम बताए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती हैं?
13: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं, और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग हैं, और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
8: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
13: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
8: अच्छा।
13: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें, और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहां जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। तो बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू, लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
8: अच्छा।
13: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है, HS, BQ
8: FMD
13: और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
8: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा। आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं, अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है, तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
13: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
8: जहां पर सभी पशु,
13: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है, जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल जमाव है वहां का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं, तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
8: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
13: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
8: अच्छा।
13: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहां घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
8: अच्छा।
13: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
8: कृमिनाशक दवा
13: बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
8: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो है वो बीमार ना पड़े। और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटी मोटी उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
13: यहाँ तक है जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूंकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको, सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, तो वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव, तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें। अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
8: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान
13: होता है।
8: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की, जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद
8: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
8: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
9: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की,

0: मिलाकर हम मिट्टी को तैयार करते हैं। इसके अलावा एक हो जाता है हमारा कंटूर जुताई, ढलान वाले क्षेत्रों में मिट्टी को इरोजन से बचाने के लिए हम कंटूर की जुताई करते हैं, जिसमें भूमि के ढलान के समकोण पर जोता जाता है, जिससे बारिश का पानी सीधे बहने के बजाय ज़मीन पर रुक जाए और धीरे धीरे अवशोषित हो जाए। इसके अलावा एक और होती है टेरेसिंग। जब हम भूमि की तैयारी करते हैं उन जगहों पे, जैसे पर्वतीय जगह हो गए या ऊंचे क्षेत्र वाले जगह हो गए, तो उन पे हम टेरेसिंग करते हैं, जहाँ पर ढलान वाले भूमि को हम सीढ़ीदार रूप में विभाजित कर देते हैं और उन सीढ़ियों पर हम फसलों को उगाते हैं। तो इस तरह से हम भूमि की तैयारी करते हैं। एक आखिरी चीज़ हो जाती है हमारी पडलिंग, जो किसान भाइयों उनको जानकारी है, काफ़ी जानकारी है इस चीज़ की, जो धान में विशेषतर यूज़ करते हैं। पडलिंग की जाती है बेसिकली ट्रांसप्लांटिंग के लिए, और जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं किसी मिट्टी पे धान की, तो उसमें हमें चाहिए कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो काफ़ी आसानी से मिट्टी के अंदर चले जाए, और जब भी बारिश हो उसमें मिट्टी की पानी के ठहराव काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस वजह से पडलिंग अक्सर हम धान में करते हैं, क्योंकि हमें धान में ऐसी कुछ चाहिए, ज़रूरतें होती हैं धान में, हमें चाहिए कि पानी ज़्यादा देर तक ठहरे और उनकी जो जड़ें होती हैं ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स की, जिनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी महीन होती हैं और इसीलिए काफ़ी अच्छे से उस पर इस्टेब्लिश हो, काफ़ी अच्छे से मिट्टी पर बने, तो इसी वजह से हम पडलिंग करते हैं धान की। तो इस तरह से हम विभिन्न जगहों के लिए, विभिन्न फसलों को लगाने के लिए अलग अलग तरीके से भूमि की तैयारी करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि फसल के लिए एक मजबूत आधार बनाया जा सके, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार हो।
1: जी तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बुआई से पहले भूमि की तैयारी क्यों करते हैं, इस पर विशेष वार्ता, और आप सभी के बीच थी डॉक्टर गायत्री, और आशा करते हैं कि आज यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले दिन मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में, और आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
3: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल सकता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है, हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं। बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं, उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। उसी के तरह बैसिलस हो गया, या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
1: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बैसिलस

0: इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है।
1: जी यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है रोग के कारक है वो सभी एक ही जगह पर रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं पैथोजन है उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं वो ये फफून की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोलैसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
0: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है,
1: जी
0: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है,
1: जी।
0: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बैसिलस?
1: तो जैसे मैंने बताया पहले से कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ

0: इसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियां होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमन्स में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंजीसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगरजी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगरजी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।

0: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बेसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिले।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बेसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
1: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है, या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: पीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
2: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
0: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
5: देखिए किसान भाइयों नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें। क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
5: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएँ की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
5: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बाँस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का भाव वहाँ पर ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जाँच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और चीज जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद।
0: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपने फसलों की भी अच्छी निगरानी कर रहे होंगे। जब हम अपने फसलों की निगरानी करते हैं तो उसमें खरपतवार दिखते हैं और ये किसान भाई बहनों के लिए बड़ी चिंता का सबब होते हैं। खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन खरपतवार नाशी कई बार गहरे प्रभाव भी छोड़ते हैं और ये प्रभाव नकारात्मक होते हैं, यानी कि अन्य फसलों पर भी प्रभाव देखा जाता है। तो बदलते वक्त के साथ खेती गृहस्थी भी थोड़ी बदली है और चीजें आसान भी हुई है। खेती गृहस्थी को आसान बनाने के लिए कुछ नई चीजें भी आ रही है, उन्हीं में से एक है नैनो हर्बिसाइड्स, यानी कि नैनो शाकनाशी या नैनो खरपतवार नाशी। और इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। तो आइए आज के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं नैनो हर्बिसाइड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद
0: सर। आपसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि नैनो शाकनाशी क्या है?
8: यह जो है आज के परिप्रेक्ष्य में आपका जो प्रश्न है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो अभी का जो समय चल रहा है, जो परंपरागत खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी के चलते अभी जो रिसर्च के द्वारा नए चीज आए हैं किसान भाइयों के लिए, जिसे कि हम नैनो शाकनाशी भी कहते हैं, नैनो खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में नैनो हर्बिसाइड भी बोलते हैं। यह एक खरपतवार नाशी है जिसे नैनो तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें कि खरपतवार नाशक तत्व जो होते हैं लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के भीतर समाहित रहता है, या नैनो कण के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक कुशल एवं लक्षित होता है और इसे ही नैनो खरपतवार नाशी कहा जाता है।
0: तो नैनो खरपतवार नाशी किसे कहा जाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन पहले से बाजार में बहुत सारे खरपतवार नाशी मौजूद हैं, नैनो खरपतवार नाशी की क्या जरूरत है सर? अभी इसका महत्व क्या है?
8: यह जो परंपरागत जो हम यूज करते थे, जो प्रयोग में लाते थे हमारे किसान भाई जो खरपतवार नाशी, उसके तुलना में अभी जो यह नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खरपतवार नाशी है, यह जो है ना, इसका बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करते हैं, मतलब कि यह एकदम जो है ना टू द पॉइंट जहां पे हमको यूज करना है वहां पे यह काम करता है, और परंपरागत जो हम यूज करते थे उसके तुलना में यह अत्यधिक कुशल भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक रसायन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है, और इससे भी अधिक जो इसका महत्वपूर्ण चीज़ है अभी के परिपेक्ष में, जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यह जो नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खर पतवार नाशी है, यह जो है ना पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होता है, मतलब अवशेष मात्रा इसका कम होता है। और भी देखें, साथ ही साथ तो यह नियंत्रित रिलीज प्रदान करता है, जिससे कि मात्रा जो है ना कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो है ना जो आगे जो भी फसल भी आएंगे उसके लिए भी यह जो है ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और यह उपयोग की मात्रा भी अगर देखें तो परंपरागत के तुलना में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। ऐसे समझा जाए कि लगभग दसवां हिस्सा हम लोग यूज करते हैं परंपरागत के तुलना में। और यह धीरे धीरे भी काम करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो है ना टारगेट डिलीवरी होता है, तो इसीलिए यह जो है ना धीरे धीरे काम करता है। और भी देखें तो बीज का जो छिलका होता है उसमें भी जो खरपतवार नाशी पौधे के जो बीज होते हैं, कुछ कुछ बीज बहुत कठोर होते हैं, उस कठोरता के में भी यह जो है ना बहुत आसानी से जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो बहुत सारे जो परंपरागत खरपतवार नाशी हैं उससे जो है ना प्रतिरोधी क्षमता आ रहा है, तो उसको भी जो है ना उसको भी अगर हम देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम नैनो खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो अच्छा है। और साथ ही साथ पौधे के विकास में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। उसके बाद है कि जो नीचे का पानी जो लेवल था परंपरागत खरपतवार नाशी से दूषित हो रहा था, तो उसके दूषित जो प्रभाव है इसके उपयोग से कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इससे इसके चलते जो कृषि की पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत संभावना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है ना किसानों की आय दुगुनी करें। तो उसमें हम समझते हैं कि यह जो है ना टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय है अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने के कगार पे है। और ओवरऑल देखेंगे, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो है ना स्वास्थ्य पर भी जो है ना चूँकि कम प्रभाव होगा, चूँकि इसका जो है ना रेसिडुअल इफेक्ट अवशेष का जो प्रभाव है कम है, तो इससे कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
1: तो सर अभी जैसे कि आपने बताया तो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत कम मात्रा में और अवशेष भी कम छोड़ता है, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी इतने फायदे इसके होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बताइए
8: जी। यह क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी उसमें भी हमने अभी बात भी किया, उसी में है कि यह जैसे सबसे जो पहला और जो प्रथम इसका जो यह है नैनो खरपतवार नाशी का, यह पूरा लक्षित जो करता है, यह जो है ना लक्षित क्रिया द्वारा काम करता है, कि मतलब हमको जहाँ पे डालना है वहीं पे भी जाता है, जिससे कि जो है ना जो खरपतवार नाशिक जो पौधे के विशिष्ट भाग होते हैं जैसे बीज है या प्रकंद है, तो उसके जो है ना सभी अंगों में यह आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो है ना आकार हमने जैसा कि बताया था इसके परिभाषा में भी कि इसका जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसके चलते यह जो है ना पूरा जो है ना लक्षित करके जाता है और उसके लगभग सभी भागों को यह लक्षित करता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है ना इसका प्रवेश भी बहुत बेहतर तरीके से होता है। जो हम परंपरागत यूज करते थे, चूँकि उसके साइज में अंतर था लेकिन इसका साइज छोटा होता है, तो इसका जो है ना प्रवेश भी बहुत बेहतर होता है। और साथ ही साथ प्रवेश बेहतर के साथ साथ जो इसका जो ऊपर का सतही क्षेत्रफल जितना छोटा कण होगा उसका उतना ही सतही क्षेत्रफल भरा होता है, तो इसके चलते क्या होता है कि यह बड़ा प्रभावी होता है, क्योंकि वह जो है ना उसका जो कार्य क्षमता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सतही का जो क्षेत्रफल है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा क्या है कि यह जो रासायनिक संजय और बहाव को कम करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका जो है ना अवशिष्ट कम होता है, तो इसलिए जो है ना यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो इस तरह से यह जो है ना यह तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह जो है पूरा लक्षित होकर काम करता है, बेहतर ढंग से प्रवेश करता है और रासायनिक संजय के अवशिष्ट को जो है ना वह कम करते करते हुए अपना टिकाऊपन बनाए रखता है।
1: मतलब सबसे बड़ी बात है कि लक्षित होकर काम करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस चीज को खत्म करना है ये उसी को खत्म करता है और अवशेष भी नहीं रहता।
8: जी,
1: सर काम कैसे करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन नैनो हर्बिसाइड को बनाया कैसे जाता है?
8: तो इसका जो है बनाने का जो तरीका है तो मुख्यतः दो तरह से इसको बनाए जाते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्ट नैनोकन का उपयोग करते हैं, लोग बोलते हैं डायरेक्ट नैनोकन, और प्रत्यक्ष रूप से जो कि हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे चीज हैं जो डायरेक्ट खरपतवार नाशी की तरह काम करते हैं और उसको जो है ना नैनो रेंज में हम ला के उसका उपयोग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि नैनोकनों को समाहित करके भी हम बनाते हैं। इसमें जो है ना जो परंपरागत जो अपना खरपतवार नाशी है उसको नैनोकन के साथ समाहित करके भी हम इसका बनाते हैं, जिससे कि इसका जो है ना कार्य क्षमता में जो है ना कई गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो नैनो जो कण होते हैं या छोटे छोटे हैं होते हैं इसका कार्यशीलता बहुत ज़्यादा होता है, सतह का जो जो ऊर्जा है वह भी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद सतह क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि परंपरागत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है कि अब दो जो दो प्रकार है बनाने का, उसमें जैसे कि प्रत्यक्ष जिसमें नैनो कणों का हम उपयोग करते हैं उसमें जो परंपरागत जो सक्रिय अवयव होते हैं वह उसको जो है ना नैनो रेंज में स्केल में डिलीवरी सिस्टम में शामिल किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है ना इसका जो है ना प्रभावशीलता बढ़ जाती है और पर्यावरण का पे जो है ना जो बुरा प्रभाव है वह कम हो जाता है। और तीसरा जो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा भी पहले भी किया कि जो यह टारगेट होता है और कंट्रोल रिलीज होते हैं, हम आपको जो इसमें जो है ना जो हम प्रयोग करते हैं वह बहुत लक्षित तरह से होता है और इसका नियंत्रण जो हम रिलीज का नियंत्रण है वह भी बहुत प्रभावी होता है। साथ ही साथ जो हमने चर्चा किया था कि इसका उपयोग जो है ना जो धीरे धीरे जो होता है ना तो इसको जो है ना कि जितना जहाँ जिस पौधे को चाहिए उस तरह से काम करके या जो है ना अपना कुशलता से उस पौधे को नाश करने में या खरपतवार नाशी को हटाने में बहुत भूमिका निभाती है। और जो दूसरा जो है नैनोकन समाहित जो करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जो बहुत ही जो उपयुक्त होता है जैसे पॉलीमर जो यूज होता है पॉलीमर आधारित जो हम लोग बाहक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पॉली के प्रेक्टो पीसीएल जो यूज करते हैं यह जो है ना बहुत ही उसके लिए जो है ना कंफर्टेबल होता है जो है ना बहुत उसके लिए सहयोगपन का काम करता है। दूसरा है कि मिट्टी के आधारित पे भी हम लोग बाहक का यूज करते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्ले वेस्ट बाहक, तो उसमें उसका खासियत यह है कि जो क्ले हम यूज करते हैं वह तो ऑलरेडी प्राकृतिक चीज है, हम उसमें वहाँ रसायन का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से भी इसकी जो है ना महत्ता और भी बढ़ जाती है चूँकि यह प्राकृतिक रूप से हम इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए क्या होता है कि इसमें खर्च जो है ना कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, क्योंकि जो है ना अच्छे गुणवत्ता अगर हम मिट्टी क्ले को यूज करते हैं तो उसमें भी जो है ना नैनोकन को समाहित करने में बड़ा अच्छी भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जो है ना इसमें क्या होता है कि सोखने की भी क्षमता बढ़ जाती है।
1: अच्छा
8: जी, जिसमें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है ना और भी है जैसे सिलिका आधारित बाहक है जिसको कि मेसोपोरस सिलिका नैनोकन भी बोलते हैं, उसी तरह कार्बन आधारित बाहक होते हैं जिसमें कि मुख्यतः जो है ना तेल वगैरह का भी जो है ना यूज करते हैं, तो इसमें जो है ना जो मुख्य जो चीज होते हैं इसमें जो है ना कार्बन होते हैं और कार्बन से जो संबंधित है जैसे ग्राफीन वगैरह होता है उसका जो है ना उपयोग जो है ना बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना दो इसका मुख्य तरीका है बनाने का कि जिसमें कि हम नैनोकन को हम जो है ना प्रत्यक्ष रूप से हम यूज करते हैं, दूसरा नैनोकनों को डिफरेंट तरह के पॉलीमर में या क्ले या सिल्का वेस्ट बाहक में उसको समाहित करके जो है ना अपना जो खरपतवार नाशी है उसको यूज करके बनाने से क्या होता है कि इसकी जो है ना कार्य क्षमता जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
1: सर आपने बताया कि इसे कैसे बनाया जाता है, दो प्रकार से इसे बनाया जाता है
8: जी।
1: और दो प्रकार से बनाया जाता है तो इसके प्रकार भी कई तरह के होते होंगे
8: जी, जी।
1: तो नैनो हर्बिसाइड्स कितने प्रकार के मौजूद हैं?
8: अच्छा अच्छा जी, यह जो है ना मुख्यतः अगर अगर देखेंगे तो यह तीन तरह के होते हैं, जैसे कि पहला इसको बोलते हैं कार्बनिक खरपतवार नाशी, दूसरा अकार्बनिक खरपतवार नाशी, और तीसरा है जो है ना संयुक्त नैनो खरपतवार नाशी। तो यह जो है ना जो तीनों का जो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कार्बनिक खरपतवार नाशी के रूप में जो नैनो खरपतवार नाशी होता है, इसमें मुख्यतः मुख्य चीज जो होता है ना कार्बनिक चीज का उपयोग किया जाता है, जैसे तेल वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो जिससे कि इसकी जो है ना क्षमता में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे इसका जो है ना उपयोगिता बढ़ता है। तो और दूसरा है कि कार्बनिक खरपतवार जो नाशी होता है, इसमें हम लोग मुख्यतः जो धातु युक्त जो है ना नैनो कण होता है जो बहुलता से मिल जाता है, वैसे नैनो खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जिससे कि इसमें जो इसकी खासियत क्या है और कार्बनिक खरपतवार नाशी का, इसमें जो धातु कण यूज करते हैं ना तो उसमें जो है ना छिद्र पोरस चीज होता है, और उसमें जो पोरस में आसानी से जो अपना परंपरागत जो खरपतवार नाशी जैसे एट्राजिन है, सेमाजिन है, ग्लूफोसाइनेट ग्लेफोसाइनेट है, तो यह सब जो है ना बहुत आसानी से उसमें समाहित हो जाते हैं, इससे इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो तीसरा है इसको संयुक्त नैनो शाख नाशी भी बोलते हैं, तो इसमें दोनों तरह के चीज यूज करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यह देखते हुए कि कहीं दोनों के उपयोग से इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाए, तो तीसरा जो है ना संयुक्त नैनो शाकनाशी का भी इसमें यूज होता है, इसमें संयुक्त रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिला रहता है। और उदाहरण तौर पे जो हम लोग यहाँ एक आया है जैसे है ना बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो यह जो है ना जो हर्बिसाइड का उदाहरण है नैनो हर्बिसाइड का, जो कि बेंटाजोन इनकैप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो इसमें जो है ना किसान भाई लोग इस तरह के जो है ना नैनो हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। उसी तरह जो है ना पीसीएल जो है ना एटीजेन एनपीएस है, पीसीएल जो एक पॉलीमर है और एट्राजिन नैनो पार्टिकल बेस्ड है, उसी तरह पीसीएल एमेट्रॉन है नैनो पार्टिकल है, पीसीएल सिमाजिन्स नैनो पार्टिकल्स है, तो इसमें जो है ना दोनों तरह के, इसमें जो परंपरागत जो खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ मिक्सित जब करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाता है।
1: मतलब बनाया दो प्रकार से जाता है लेकिन अभी जो मौजूद है तीन प्रकार के हैं, एक कार्बन बेस्ड है, दूसरा जो कि अकार्बनिक है, और तीसरा संयुक्त है जिसमें दोनों प्रकार के मिलाए हुए हैं। अब तक हमने नैनो खरपतवार नाशी से जुड़ी लगभग हर बात जानी है, लेकिन सबसे अहम बात जो किसान भाई बहन के लिए जरूरी होती है कि इसे उपयोग कैसे करेंगे, नैनो खरपतवार नाशी का उपयोग करने का क्या तरीका है, ये सर बताएं आप।
8: यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने बहुत चीज देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, यह है क्या, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका उपयोग
1: जी जी,
8: क्योंकि इसका उपयोग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो कण बहुत छोटा होता है, अपना जो सूक्ष्म जो मतलब इतने छोटे छोटे हैं अपने आँख से इसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और इसका उपयोग निश्चित तौर पर सुरक्षात्मक ढंग से ही करना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग किया जाए, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान भाई भावनात्मक में आके या किसी तरह के दूसरे को देख के भी जो है ना तो कभी कभी ज़्यादा यूज कर लेते हैं
1: जी, जी।
8: तो उस तरह से हमको बचना चाहिए, जहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा भी है तो इसके साथ सावधानी भी बरतने की उतनी ही ज़रूरत हो जाती है। और जो तीसरा जो है कि इसका जो उपयोग पौधों के सक्रिय चरणों के आधार पे करें तो और अच्छा होता है, कि जो पौधा जो खरपतवार जो पौधे होते हैं तो उसका जो विकसित जो जो पूरा सक्रिय फेज जो होता है अगर उस समय टारगेट करें तो जो है ना नैनो हर्बिसाइड या नैनो खरपतवार नाशी या जो है ना अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि उस फेज में यह बहुत एक्टिव तरह से काम करेगा, बहुत सक्रिय रूप से काम करेगा, जिससे कि उसमें जो है ना खरपतवार नाशी पे जो है ना बुरा इफेक्ट तो पड़ना है, पड़ना चाहिए ताकि वह पौधा मर जाए और जो अपना जो जो खाद्य पौधा है उसको जो है ना विकास व्यवहार अच्छा हो। और भी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यतः इसको जो है ना बहुत तरह से यूज करते हैं, लेकिन जो अभी तक देखा गया है कि इस जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, तो इसलिए किसान भाइयों को इसका उपयोग जो है ना स्प्रे तरह से करें तो अच्छा है। और जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका उपयोग तभी करें जब देखें कि हवा की बहाव नहीं है। अच्छा। उसमें बहाव होने से जो है जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि बहाव के साथ कुछ जो है ना खरपतवार नाशी जो नैनो खरपतवार नाशी है अपने खाद्य पौधे पे भी आ जाए तो उससे जो है ना उसमें हानि की संभावना है। तो हम यहाँ किसान भाई को जरूर यह चीज़ बताएंगे कि जिस समय हवा का बहाव कम हो और उस समय जो है नहीं करें तो यह ज़्यादा कारगर भी होगा और इसका हानिकारक जो प्रभाव है कम है। और किसान भाई जब भी यूज करें तो जरूर या उपयोग करें तो उस समय जरूर मुंह पे कुछ कपड़ा हो या जो मास्क है उसका यूज करें, क्योंकि यह हमने बताया था प्रारंभ में यह बहुत छोटे होते हैं तो जितना ही छोटा होगा तो हो सकता है कि उसका प्रभाव ही उतना ही होगा। और तीसरी और जो आगे की बात है कि किसान भाई अगर नहीं जानते हैं किसी तरह का कि हम कितना लें क्या करें, तो जो परंपरागत हम यूज करते थे प्रयोग करते थे उसका जो है ना दसवां हिस्सा से
1: काम के, हो जाता
8: हाँ के तुलना में आप लें, अगर पहले एक लीटर लेते थे तो उसका दसवां हिस्सा 0.1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना किसान भाई ध्यान में रखें इसका उपयोग और जब जरूरत हो तभी करें
1: जी।
8: हाँ जब जरूरत हो तभी करें और जरूर बुद्धिमत्ता को प्रयोग करके ही करें, भावनात्मक में दूसरे को देखा होसी करके किसान भाई इसका उपयोग नहीं करें, जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही करें।
1: तो मतलब नैनो खरपतवार नाशी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जितनी इसकी आवश्यकता होती है उतनी ही उतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और हवा का बहाव ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही इसकी मात्रा कितनी है ये तो ज़रूरी है ही, और मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि ये हमारे किसान भाई बहनों के काम आएगी। और जो परंपरागत खरपतवार नाशी है उसका एक विकल्प है, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान भी होते थे तो उसका एक ये बेहतरीन विकल्प है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियां दी,
8: धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। उन्नत कृषि
7: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन, टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
9: खुद भी बचे देश भी बचाए।
10: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
11: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
12: कौन सी कहानी टीकी?
11: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
13: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
11: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
13: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
11: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
13: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, मैं आरजे अनु स्वागत करती हूं आप सभी का 90.8 FM ग्रीन पर। आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर, और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई, आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय, और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, हर रोज की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे। और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा जो है लालची हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम, और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है, क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद। तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें, जो कि आज का हमारा विषय है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
14: जी धन्यवाद।
0: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं।
14: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है। खास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है। विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं वो भी फूलगोभी में ज्यादा पाए जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं, और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं।
0: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से। फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं।
14: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी जी।
14: वो चाहे कोई भी फसल हो, तो इसी प्रकार से जो फूलगोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर 3 प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है, और पछेती फूलगोभी भी आती है। तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगैती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम।
1: अच्छा,
14: तो इसी के इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगैती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुवारी है, पंत गोभी 2 है, पंत गोभी 3 है। तो इस प्रकार से कई फूलगोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड 2 है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी माघी आती है, जायंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 2 है, स्नोबॉल 16 है। इस प्रकार की कई वैरायटीज हैं जो हम पछेती मौसम में लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
14: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
1: अच्छा।
14: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं
1: जी।
14: उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपके खेत के हिसाब से, कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
1: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
14: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से, या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूलगोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है, और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा, और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
1: अच्छा।
14: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लिए लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा में एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए। अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं, या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
1: अवशेष,
14: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं। अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं। उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं, और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं, और जो पछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए। और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है, वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं। अच्छा। सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप 2 क्यारियां बना रहे हैं, 3 क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए। और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए। और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है। अच्छा। पौध रोपाई के लिए तो ये चीज किसान भाइयों को जानना जरूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है, तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है, लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
1: अच्छा।
14: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में
1: मतलब
14: तैयार होती है,
1: वैरायटी डिपेंड करता है वो।
14: जी। अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुवाई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
1: होती है,
14: बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया और क्यारियों के जो दूरी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए, डॉक्टर साहब बताएं फूल गोभी के लिए।
14: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
1: अच्छा।
14: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में मुख्य खेत में डालना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा।
14: और इसके अलावा जो एक खरपतवार जो खाद की जो मात्रा होती है वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 80 80 120 किलो

0: रखे खेत में, और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको दो भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद, आपने जब रोपाई कर दिया रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद, मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
1: अच्छा
0: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फॉस्फोरस के लिए, जो हम फॉस्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फॉस्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन, बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
1: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
0: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
1: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
0: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज़ का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी फूलगोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूलगोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
1: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
0: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
1: बैलेंस बना रहता है,
0: फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात की फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहर में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज़्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है। उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
1: जी,
0: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
1: मतलब
0: तो उसका रंग
1: ताजा
0: तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
1: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो

0: फफूंद जो हैं जो लग जाते हैं फूल गोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं फूल गोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
1: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कन्फ्यूज़ करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं, और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके
0: जी
1: अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियाँ जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
0: अच्छा
1: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है। तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में दो तीन तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
0: अच्छा
1: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं
0: जी
1: रहता।
0: जी
1: तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते
0: दिखने
1: हैं, या
0: लगते हैं।
1: आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: जी
1: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो
0: जी
1: ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किस्में उगाएं, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विपटेल,
0: अच्छा,
1: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विपटेल होता है एक मॉलिब्डेनम की कमी से।
0: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विपटेल के?
1: हाँ, विपटेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता है,
0: अच्छा,
1: तो उसको विपटेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा
0: विपटेल।
1: जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज़ करना है।
0: अच्छा।
1: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
0: अच्छा,
1: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के
0: रोग हैं।
1: रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे।
0: अच्छा
1: ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको, जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो, तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसिनस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूल गोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
0: नुकसान
1: वो फूल
0: पहुंचाते हैं।
1: देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो इसके
0: अच्छा
1: इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं, 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव
0: छिड़काव
1: करना है।
0: करना।
1: 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि तन जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, या तो
0: अच्छा
1: फॉर्मेल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं, तो आप उससे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला
0: अच्छा
1: गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएं होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए, और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो
0: जी
1: चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को
0: बचा
1: बचा सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देश को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई है तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों

0: उड़ान। दोस्तों, बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है, और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है, और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से, और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इनक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं, तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें, ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
0: यस मैम। मैम, अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
1: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो, वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है, या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है, तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं। अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
0: मैम, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया हैं उसको और भी सरल बनाना, और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
0: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
1: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है, जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
0: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
1: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित EMI चुकानी होती है और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार

0: स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
1: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
0: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे STSC उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
1: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
0: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहाँ से फंडिंग आएगा और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि PPT, PDF, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण के तरफ जाएंगे जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है। फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे, जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है, और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है, और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह आठ चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम, आपने आठों चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो छह फेज, छह चरण से गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का, जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम छह फेज, छह स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज, और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता छह स्टेज होते हैं, छह चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप।
1: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, एफपीओ आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो एफपीओ का हो गया, ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पे, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहाँ से ही जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर, बल्कि अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
1: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगे?
0: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से, जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनसे यही मैं कहना चाहूँगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की, एक नई दिशा देने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए, और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। TB के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। TB रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न TB, नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। TB मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: TB हारेगा देश जीतेगा।
6: इन पंछियों को
2: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस

0: जो आया था करने पंछियों का शिकार।
1: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आपके लिए खेती से जुड़े अलग अलग विषय लेकर आती हूं। और आज भी बिल्कुल आपके लिए है ये विषय, धान में खरपतवार प्रबंधन। तो इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं आज डॉक्टर महेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
4: डॉक्टर साहब। अब सबसे पहले तो अपने टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, विषय की ओर। धान की बुआई किन किन विधियों द्वारा की जा सकती है और किन किन विधियों से खरपतवार प्रबंधन हम कर सकते हैं, बताएं।
5: आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में धान की जो बुआई है या रोपाई है, वो मुख्य रूप से हम लोग दो विधियों से करते हैं। देखा जाए तो एक हम सीधी बुआई कहते हैं और दूसरा धान की जो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है, जिसमें हम धान की नर्सरी डालते हैं और उसके बाद रोपाई करते हैं
4: जी।
5: तो धान की हम सीधी बुआई करते हैं और दूसरा धान की रोपी विधि से करते हैं। तो अब दोनों में जो खरपतवार है, खरपतवार का अलग अलग स्पेसीज आती हैं। जैसे धान की जब हम सीधी बुआई करते हैं तो धान की सीधी बुआई में सबसे अधिक समस्या अगर किसी बात की है तो खरपतवार की है, क्योंकि तो सीधी बुआई में पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। हम इवन वर्षा जो आधारित खेती है उसमें भी हम धान की सीधी बुआई करके खरपतवार प्रबंधन करके धान की उपज ले लेते हैं। तो वर्षा का पानी कम होने से या सिंचाई का पानी उसमें कम देने से खरपतवार ज़्यादा उगते हैं। तो यूँ कहें कि धान की जो सीधी बुआई है उसमें सबसे अधिक अगर कोई सी चीज़ की समस्या है तो वो खरपतवार की है। तो उसमें खरपतवार का ससमय प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा धान की रोपित विधि है। तो धान की रोपित विधि में चूंकि हम बिचड़ा डालते हैं, बिचड़ा 21 दिन का हो जाता है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पडलिंग करके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसमें खरपतवार थोड़ा कम आते हैं। तो इसलिए दोनों विधियों में खरपतवार प्रबंधन का जो तरीका है थोड़ा सा बदल जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे धान की जो सीधी बुआई है, सीधी बुआई में खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि धान की जो हम सीधी बुआई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, धान के खेत को तैयार कर लेते हैं, जैसे गेहूं का खेत तैयार करते हैं उसी तरह धान का खेत तैयार कर लेते हैं। 2-3 बार जुताई कर लेते हैं, पाटा लगाते हैं, खेत भुरभुरा हो जाता है। उसके बाद धान को हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर 20 सेंटीमीटर के कतारों में बुआई कर देते हैं जी। तो ये धान की सीधी बुआई हुई। दूसरी विधि है सीधी बुआई में, जहाँ हमारा वर्षा का पानी थोड़ा यदि अधिक मिल जाता है, किसी कारणवश खेत गीला हो जाता है, तो वहाँ पे हम जो हमारा धान की बुआई के लिए ड्रम सीडर आता है उसको हम अच्छे से पढ़ल सॉइल में, पार्शियल पढ़ल सॉइल में ड्रम सीडर में बीज भर करके 20 सेंटीमीटर की कतार को मेंटेन करते हुए बीज को गिरा देते हैं। तो चाहे धान की सीधी बुआई, चाहे ड्राई मेथड से हो, चाहे वेट मेथड से हो, धान में खरपतवार बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मिल जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सांवा है, सवई है, ये सब आ जाते हैं, और मोथा कुल के कुल 6 प्रकार के खरपतवार आते हैं। तो इस प्रकार हम कहें तो धान में करीब 100 से 150 प्रकार की खरपतवार आते हैं, लेकिन इनको जब हम 3 ग्रुपों में बांटते हैं, चौड़ी पत्ती वाले

खरपतवार हो जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं और मोथा कुल के खरपतवार रहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो खरपतवार हैं, तीनों ग्रुप के जो खरपतवार हैं, वो बहुत ही सक्रिय मात्रा में होते हैं और इनका ससमय प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि धान जब हम बुआई करते हैं सीधी, तो सीधी बुआई करने के तीन दिन, दो से तीन दिन के बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू होने लगता है और खरपतवार के बीज का भी जर्मिनेशन उसी के साथ साथ होने लगता है। लेकिन खरपतवार का ग्रोथ जो है, जो उनका वानस्पतिक विकास है, वो बहुत तेजी से होता है। इसलिए सीधी बुआई में ये समस्या आ जाती है कि खरपतवार तेजी से बढ़ जाते हैं, धान हमारा छोटा रह जाता है। तो इसमें ससमय खरपतवार प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम लोग सीधी बुआई के लिए एक बहुत प्रचलित हर्बिसाइड है, जिसको हम बोलते हैं पेंडामेथिलीन। पेंडामेथिलीन का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें वहाँ सावधानी देने की जरूरत है। अगर हमको पता है कि अगले 24 घंटे में या अगले 48 घंटे में बरसात होने वाली है, तो पेंडामेथिलीन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि जब पेंडामेथिलीन का हम प्रयोग कर देते हैं, पेंडामेथिलीन का जो हमारा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है, अर्थात 400 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ दवा लेकर के उसको 200 लीटर पानी में घोल करके हम लोग बुआई के 24 घंटे के भीतर खेत में छिड़काव कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये पेंडामेथिलीन एक बहुत बारीक लेयर बनाता है जमीन पर, और जो ही खरपतवार उगने लगते हैं और उस लेयर को टच करते हैं, वो मर जाके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अगर हम पेंडामेथिलीन आज छिड़के हैं और 48 घंटे के भीतर बरसात हो जाती है, तो वो पेंडामेथिलीन बरसात के पानी के साथ घुल करके बीज के टच में आ जाता है। क्योंकि बीज हम दो से ढाई सेंटीमीटर की गहराई पर ही उथला बीज बोते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर, तो बीज के टच में आने से बरसात के पानी के साथ वो बीज का अंकुरण भी खराब कर देता है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी देना पड़ता है कि पेंडामेथिलीन का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन अगर हमको मौसम विभाग से अलर्ट मिला हुआ है कि अगले 48 घंटों में बरसात होने वाली है, तो उस कंडीशन में

0: के बारे में मैं अभी आपसे आपको बता रहा हूँ। जैसे आलू का कुछ किस्में अगाध किस्में होती है, जैसे अगाध किस्में में आती है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी कुबेर, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज। ये सभी किस्में 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है तथा इन्हें 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अवश्य ही लगा देना चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। फिर दूसरा ग्रुप आता है मध्य अगाध के लिए अच्छी किस्में हैं कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी ज्योति, कुफरी चमत्कार। ये सभी मध्य अगाध यानी कि मुख्य फसल वाली किस्में हैं जो लगभग 100 से 110 दिनों में तैयार होती है। इसे 20 नवंबर तक लगा देना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ पिछात किस्में। इसमें पिछात किस्में में मुख्य रूप से हैं कुफरी सिंदूरी, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2। ये किस्में लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार होती है तथा इन्हें 30 नवंबर तक लगा देना चाहिए।
1: तो यहाँ पर हमने जो प्रभेदों के बारे में जाना है, डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्नतशील प्रभेदों को ही हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए, आलू के उन्नतशील प्रभेदों को, और उसके टाइमिंग के बारे में बताया कि कब और किस समय के बीच लगाएं आप, ताकि आपको फ़ायदा हो किसान भाइयों। और डॉक्टर साहब, जब बीजों की आवश्यकता की बात करते हैं तो हमारे जो किसान भाई है वो सही बीजों का चयन करेंगे तो उन्हें इस खेती में, आलू की खेती में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि कौन से जो बीज हैं वो उनके लिए सही होंगे।
0: आलू का उत्पादन आलू के बीज के ऊपर निर्भर करता है। आलू के बीज पर लगभग कुल लागत का 40 से 50% तक खर्च आता है, अतः अधिक उपज हेतु तो सदैव प्रमाणित एवं निरोग बीज का उपयोग करना चाहिए। इसकी खेती के लिए बीज की मात्रा आलू के कंदों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे 25 से 30 ग्राम यानी कि बाजार में उसे सूत पर बिकता है, तो 25 से 30 ग्राम यानी कि 8 से 9 सूत का कंद प्रयोग में लाने पर 1 हेक्टेयर के लिए 15 से 20 क्विंटल बीज लगेगा तथा 40 से 50 ग्राम यानी 12 से 14 सूत का कंद लगाने पर 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। 20 ग्राम यानी लगभग 6 सूत से छोटे आकार के कंदों का प्रयोग करने पर उपज में कमी हो जाती है, अतः बहुत छोटे कंदों का प्रयोग बुआई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 25 से 30 ग्राम अर्थात 8 से 9 सूत यानी उससे बड़े आकार के कंदों को वायरस से ग्रसित होने की संभावना नहीं होती है तथा पौधे स्वस्थ एवं पुष्ट होते हैं। यदि बीज के कंद वायरस से ग्रसित होंगे तो कुछ दिनों के बाद पौधे की पत्तियां मुड़ने लगेगी यानी कुकुड़िया जाती है, और ऐसे पौधों में कंद लगेंगे ही नहीं, और यदि लगेंगे भी तो आकार में बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, फलस्वरूप उपज में कमी आ जाएगी। आलू के बड़े कंदों को काटकर भी लगाया जा सकता है, परंतु कटी हुई आलुओं से बुआई अक्टूबर माह के बाद ही की जानी चाहिए, जब तापक्रम कम हो जाए। वायुमंडलीय तापमान अधिक रहने की स्थिति में कंदों को काटकर लगाने पर सड़ने की संभावना रहती है। कंदों को काटने के समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 आँखें, जिसे कलियां कहते हैं, अवश्य रहे। अंकुरित आलू के कंद ही लगाने चाहिए। उत्तर भारत में प्रायः शीतगृह में रखा हुआ बीज ही बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज से बीज को निकालने के बाद उसे ठंडे हवादार और अंधेरे कमरे में फैलाकर 1 सप्ताह छोड़ दें ताकि कंदों में अंकुरण आ जाए। यह हमेशा ध्यान रखें कि कि

0: अंकुरण आने के बाद ही उसकी बुआई करें।
1: अच्छा, तो यहाँ पर हमने जाना कि कैसे बीज होने चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ बीजों की जो खराबी है उनके बारे में बताया कि अगर वैसे बीज रहते हैं तो आप उसे ना लें, ताकि उससे आपको नुकसान ना हो, आपके जो फसल है उस पर नुकसान ना पहुँचे, उसे नुकसान ना पहुँचे। और डॉक्टर साहब, अब सस्य क्रियाओं की बात करते हैं, तो इसकी खेती में जो प्रमुख सस्य क्रियाएँ हैं वो हम जानना चाहेंगे।
0: इसकी खेत पहला तो कि जब हम आलू लगाते हैं तो उसको हमको बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित करने के लिए एमिसान नामक दवा आती है, एमिसान 6, उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर उसे घोल बना लें और उसमें आलू को डुबो दें। 10-15 मिनट डुबोने के बाद उसे बाहर छानकर निकाल लें और छाया में सुखाने के पश्चात उसकी बुआई करें। बुआई की दूरी जो है हमेशा 50 से कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें खरपतवार आ जाते हैं, अतः बुआई के 10-15 दिनों बाद निकाई गुड़ाई करें ताकि फसल खरपतवार से मुक्त रहे। साथ ही साथ मिट्टी हल्की होगी जिसके कारण कंदों का विकास भी ठीक होगा। अब आलू बोने के बाद जो है उसमें मिट्टी चढ़ाना एक प्रमुख कार्य होता है, अतः आलू में मिट्टी का चढ़ाया जाना बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए मिट्टी चढ़ाना समय पर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विलम्ब से मिट्टी चढ़ाने के कारण नए नन्हे कंदों को नुकसान होगा, अतः बुआई के 25 से 30 दिनों के अंदर ही खेत की कोरनी कर एवं नाइट्रोजन उर्वरक का भुरकाव कर मिट्टी चढ़ा दें। उसके बाद सस्य क्रिया में मुख्य रूप से सिंचाई पर भी ध्यान देना आवश्यक है, तो सिंचाई के लिए हमें नियमित एवं हल्की सिंचाई का होना आवश्यक है। यदि बुआई के बाद नमी में कमी नज़र आए तो प्रथम सिंचाई बुआई के 4-5 दिन बाद हल्की करें ताकि पौधा आसानी से उग जाए। दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 15 दिनों बाद तथा तीसरी सिंचाई मिट्टी चढ़ाने के 2-3 बार करें। इसके बाद 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। ध्यान रहे कि आलू के क्यारियों में कभी भी ज़्यादा पानी न हो। सिंचाई से मेड़ों का केवल 2/3 भाग ही गीला होना चाहिए। कंदों के खुदाई के 15 दिनों पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से फसल सुरक्षा भी आता है, तो फसल सुरक्षा के लिए इसमें मुख्य रूप से कजरा पिल्लू दीमक वगैरह लगता है, तो फसल को कजरा पिल्लू एवं दीमक से बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय फुरा-डाउन-3G एक कीटनाशी दवा है। इस दवा को 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय मिट्टी में डाल दें। आलू में मुख्य रूप से अगात झुलसा, पिछात झुलसा एवं वायरस रोग का प्रकोप होता है। इन रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि फसल 5-6 सप्ताह का हो जाए तो इमिडाक्लोरोपीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में तथा इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद सिर्फ इंडोफिल M45 फफूंदनाशी दवा का 10-15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। यदि मौसम में नमी अधिक हो, तापक्रम बहुत कम हो, बदली छाए रहे तथा हल्की बारिश हो जाए तो रीडोमिल M गोल्ड फफूंदनाशी दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अति आवश्यक है, अन्यथा पिछात झुलसा रोग से फसल बर्बाद होने की संभावना रहती है। वैसे तो बिहार राज्य में पाला पड़ने की संभावना नहीं रहती है, परंतु कभी कभी तापक्रम काफ़ी कम हो जाता है और पाला गिरने जैसी स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में फसल को बचाने के लिए खेत में कम दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, तथा रिडोमिल गोल्ड दवा का भी छिड़काव करते रहें। आलू के पौधों की पत्तियों में जब पीलापन आने लगे तो समझें कि अब मेरा आलू तैयार हो गया है, उसके बाद इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। आलू को खेत से निकालने के बाद उसे छायादार एवं हवादार जगह में 10-15 दिनों तक सुखाने के बाद ही भंडारण करें।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी कि आप आलू की वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि खेत की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, खाद एवं उर्वरक आप किस तरीके के और कौन से डाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी खेती के प्रमुख सस्य क्रियाएँ कौन सी हैं, बीमारियों से बचाव के बारे में बताया। तो इन सारी चीज़ों की पूरी जानकारी आप सभी को उपलब्ध हो गई है, और आशा करेंगे कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए इन सुझावों को अपनाएंगे और आलू की खेती बिना रुकावट के साथ करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश,

0: या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धनबाद

लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഭാരത് കൃഷി.
1: हेलो नमस्कार, तो लीजिए फिर से हाजिर हैं हम और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु, लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम. जी हाँ, वैसे समय की बात करें, सीजन की बात करें तो सब्जियों की रोपाई का वक्त आ चुका है और उसमें भी बहुत सारे सब्जियां हैं जो आप अपने बागान में लगा सकते हैं. तो सब्जियों को लगाने से पहले ज़रूरी होता है

0: कि हम सावधानियां बरतें। सावधानियां यानी कि जो कीट पतंगे हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, उन कीट पतंगों से हम कैसे आज़ादी दिलाएं अपने बागानों को, यानी कि खास तौर पर सब्जियों के बागानों को। तो आज हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं एक खास विषय पर जो है सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन। जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर टी साहा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और जहाँ तक देखा जा रहा है तो मौसम के अनुसार भी हमारे किसान भाइयों को अभी ये सलाह दिया जा रहा है कि वो अपने नए बागान सब्जियों के लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन की ओर जाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि बैंगन के अगर हम बागान लगाते हैं तो उनमें कौन कौन से कीट पतंगे जो हैं वो आ सकते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम।
1: धन्यवाद। मैं पहले बताना चाहूँगा, बैंगन में हमारे बिहार में जो है मुख्यतर तीन चार कीड़े जो है सबसे ज़्यादातर डैमेज करते हैं। उसमें जो है बैगन के तना और फली छेदक है, जो जब हमर बैगन ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके 20 से 25 दिन के बाद से ये कीड़े का आक्रमण शुरू होता है। ये पहले तना में अटैक कर डैमेज करता है, तना के अंदर वो जो है छेद करके उसके अंदर घुसता है, जब एक से जब उसका पिल्लू निकलता है उसके बाद फिर वो होल पहले शुरू में जो है बहुत छोटा रहता है, बट जब मैच्योर होता है लार्वा जो पिल्लू जो है वो निकल के फिर फ्रूट में डैमेज करता है। जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है या फल का अवस्था होता है तो फल में वो डैमेज करता है। ये पिल्लू जो है देखने में थोड़ा सा हल्का सा उजला और भूरा कलर का मिक्सचर है, और जो उसका हेड है जो उसको बोलते हैं वो जो है भूरा कलर का होता है, और ये जो है दोनों तना को भी एवं फल को भी ये छेद करते हैं। किंतु इसका जो एडल्ट है जो संपूर्ण अवस्था है ये डैमेज नहीं करता है, किंतु इसका जो इमैच्योर जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं इसको ज़्यादा डैमेज करता है सब्जी में, बैगन में। और ये डैमेज जो है लगभग 20-80% तक डैमेज करता है, रबी में भी डैमेज करता है। तो रबी फसल में थोड़ा सा कम करता है कंपेयर अगर किया जाए हम लोग खरीफ बैगन और रबी में अगर बैगन लगाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सबसे मुख्य कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डा बीटल, ये शुरू के टाइम में ही ज़्यादा डैमेज करता है। जब बैगन का 2 से 3 पत्ती के समय आता है इसमें ये क्या, ये बैगन का पत्ती को जो है नोच के इसको पूरा उसका जो हरा वाला पोर्शन पीला हरा वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा डैमेज करके ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है, और उसमें जो पत्ती में जो वेंट्स वगैरह रहता है वही से बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। जब बैगन का 2 से 3 लीप का स्टेज रहे उसी समय हमको इनको अच्छा से कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद तीसरा जो कीड़ा है ये है बैगन का जैसिड बोल सकते हैं हम लोग, ये पूरा पीला का हरा कलर का होता है, बहुत छोटा होता है और बैगन के पत्ती के निचले भाग में ये ज़्यादातर देखा जाता है। ये अंडा भी उसी के अंदर ही देता है, अंदर जो बैगन के नीचे वाला पत्ती में, और ये बैगन को बैगन से जो है पत्ती से रस चूस के इसको कंप्लीट जो है एकदम ड्राई कर देता है। जो पत्ता जो आहिस्ता आहिस्ता इसका अंदर जो क्लोरोफिल रहता है बैगन के पत्ती में ये पूरा ख़त्म करके इसको भूरा कलर का आकार कलर में आ जाता है। पहले पीला करते फिर भूरा कलर होके फिर पत्ती गिर जाता है, और ये वायरस नामक एक बीमारी भी फैलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ बेंजर। ये कैसे होते हैं देखने में, जब भी ये वायरस बीमारी आपके खेत में आएगा तो बैगन का जो नॉर्मल जो हाइट होता है उससे वो छोटा हो जाएगा, उसमें ना फल लगेगा ना फूल लगेगा, और बैगन का जो जितना भी ब्रांचेस आता है उसमें छोटा छोटा छोटा छोटा जो है जो पत्ती है छोटा छोटा हो जाएगा, और वो ऊपर की तरह थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और उसमें कोई फूल भी नहीं लगता है कोई फल भी नहीं लगता, और उसका पत्ती का जो कलर है जो नॉर्मल हमारा बैगन का पत्ती का कलर है उससे ज़्यादा डार्क जो है डार्क हरा कलर का पत्ती आता है। तो ये जो है बहुत भयंकर बीमारी है, ये अगर आपके खेत में आ जाता है तो आपको तुरंत जो है आपको खेत को वो बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कुछ और छोटे छोटे कीड़ा है जिसे हम लोग बोल सकते हैं सादा मक्खी बोल सकते हैं बैगन का, ये भी डैमेज करता है, ये भी निचले वाले पोर्शन के बैगन के पत्ती के नीचे वाले पोर्शन पे रहता है, ये भी शुरू के टाइम में ही डैमेज करता है मैक्सिमम। ये जब डैमेज करता है जो पत्ती का, फिर वही कलर चेंज हो जाता है और बैगन का पत्ती का कलर जो है ये पीला कलर का हो जाता है, फिर भूरा कलर का हो जाता है। तो इससे भी हमको सावधानियां बरतना पड़ेगा। यही सब जो है बैगन का मुख्य कीट जो है हमारे इधर लगता है।
0: अच्छा, यहाँ पर आपने बताया डॉक्टर साहब कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं इन कीट पतंगों से, तो अब जो समेकित अगर हम इसके समाधान के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए खासतौर पर बैंगन के लिए?
1: हाँ, हम लोग अगर समाधान करने के जाए हम शुरू से बताना चाहेंगे हम कैसे बैगन का समाधान करेंगे। जैसे शुरू में हम आपका आप लोगों को बताएं जो बैगन का जो जैसीड है और सादा मक्खी है ये शुरू के समय में ज़्यादा लगता है और जो दो से तीन पत्ती में हड्डा बीटल लगता है।
0: अच्छा।
1: जो अगर हम बीज शोधन करके अगर हम लगाए तो ये हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है जैसे जैसीड हो गया सादा मक्खी हो गया ये जो है 20 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और नर्सरी में भी हम जब इसको बुआई करेंगे तब भी कोई दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा जो है कीट जो फसल में जो कीटनाशी का प्रभाव भी कम होगा और हमारा फसल में जो फार्मर फ्रेंडली जो बंधु कीट है इसका भी नंबर बढ़ेगा और डिजीज भी हमारा कम है, मतलब तो रोग भी जो है हमारा कम आएगा। तो ये हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। शुरू से हम लोग बीज शोधन करें, बस सीडलिंग डीप मतलब जो सीडलिंग जो नर्सरी से आप मेन फील्ड में जब रोपाई करेंगे तो सीडलिंग को अगर इमिडाक्लोपीड बा थायोमिथाक्साम नामक जो दवा है इमिडाक्लोपीड का गौचो और थायोमिथाक्साम नामक एक तरह का दवा है, ये दवा अगर 3 ml और 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप इसको डीप कर सकते हैं। अगर कम मात्रा में बनाना है तो इसका मात्रा है 1 ग्राम/1 ml प्रति 3 लीटर पानी। अगर स्प्रेयर में लेना है तो 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर में 5 ग्राम/15 लीटर स्प्रेयर में आप घोल कर सकते हो। तो हम इसको बीज शोधन जो है हम उसको नर्सरी से मेन फील्ड में लगाने के बाद हम इसको सीडलिंग डीप करके भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा जो चूसने वाले कीड़ा से हम 25 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा हड्डा बीटल के बारे में आप बताएं, जब हम 2 से 3 लीफ की स्टेज में हैं वो मैक्सिमम डैमेज करता है। अगर वो एक बार डैमेज मैक्सिमम कर देंगे तो फिर उसमें फल भी नहीं बनेगा, फूल भी नहीं आएगा और वो ग्रोथ भी बंद हो जाएगा, तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम अगर समेकित प्रणाली में जाए तो हम जानते हैं हमारे गाँव में जो है राख मिलता है, राख मतलब जो जलावन करने के बाद जो रेसिड्यू रहता है उसको अगर हम कलेक्ट करके उसको अगर हम भुरकाव करें पत्ते के ऊपर, भुरकाव करने के बाद हल्का सा मिट्टी का तेल डाल दे, इसलिए डाल दे जो वो उसके ऊपर बना रहे, नहीं तो कभी कभी ये होता है बारिश के समय पे वह हल्का जो संडी के समय पे जो ड्यू जो पानी गिरता है उससे जो है वो फिर पत्ती में सटके नहीं रह सकता है। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें अगर डाल देंगे तो ये जो है हमको कोई भी कीटनाशी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमारा जो पत्ती जो है और हमारा बैगन का जो फसल है कीटनाशी मुक्त रहेगा और इस तरह से हम समेकित प्रणाली से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके गाँव में नीम का पेड़ है, नीम का पत्ती आपको मिलेगा, अगर नीम आधारित कोई दवा अगर आप इस्तेमाल करना चाहे अगर बाजार में उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना मिले तो नीम का पत्ती जो है आप पेड़ से तोड़ के 400 से 500 ग्राम पत्ती मिक्सचर ग्राइंडर में उसको क्रश करके उससे जो निष्कास निकलेगा उसको एक उजला कपड़ा में पोटली बनाकर 1 लीटर पानी एक मिट्टी के घर में घड़ा में व कोई भी बर्तन में आप रख के उसको ओवरनाइट जो 1 रात तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन देखिएगा जो पानी का पूरा कलर चेंज हो जाता है, निष्कास से जो पानी में जो मिल गया उससे जो जो आपको जो जो बना जो नीम का सॉल्यूशन बना वो आप एक लीटर का पानी का जो बॉटल मिलता है उसमें आप उसको उसको आप स्टोर कर गए, स्टोर करके उसी से 5 ml 1 लीटर पानी के दर से आप छिड़काव करें। अगर 15 लीटर का नेफ्सट्रक स्प्रे है तो 75 ml, 75 ml का जो है आप लेके उसको छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको कोई कीटनाशी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और हम जो है समेकित कीट प्रबंधन के और भी बढ़ सकते हैं, तो इससे बहुत हद तक हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप केमिकल में भी जाना चाहते हैं तो केमिकल के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक केमिकल है बहुत ही सस्ता है जिसको हम लोग बाज़ार में क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन जो नाक के नाम से मिलता है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो मात्रा है 1 ml 1 लीटर पानी में आप घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया जो चूसने वाले कीड़ा और जो चूसने और चाटने वाले। अब जो सबसे खतरनाक जो कीड़ा है बैगन का, तना और फली छेदक। तना और फली छेदक के लिए हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, इसलिए बैगन जो है हम डायरेक्टली इसको खाते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कीटनाशी का छिड़का जितना हद तक कम करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो शुरू में हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू में हम आपको जैसे नीम आधारित दवा के बारे में बताएं, आप नीम आधारित दवा का अगर बाज़ार में मिले आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। नीम के पत्ती से बना जो सॉल्यूशन बनाए हम उसको 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके 7 दिन के अंतराल में 25 से 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप उसके अंदर छिड़काव करने से ये जो है रिपेलेंट का काम करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारे कीड़े का आक्रमण कम होगा। और हम फेरोमोन ट्रैप जो है बाज़ार में उपलब्ध है, फेरोमोन ट्रैप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं आपके खेत पर। इससे क्या होगा, जो मेल जो मक्खी होता है वो मक्खी सोचेगा उसका फीमेल उस ट्रैप के अंदर है, वो उससे मेटिंग करने जाएगा और उसके अंदर वो फंस के मर जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारा जो बैगन का तना और फली छेदक का पॉपुलेशन है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और इससे हमारा कंट्रोल भी बहुत हद तक हो जाएगा। ये तो हुआ समेकित कीट प्रणाली। अगर हम केमिक बायोपेस्टिसाइड भी इसके अंदर हम बताना चाहेंगे, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस नामक एक बायोपेस्टिसाइड है जो बैक्टीरियासाइड बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 ml 1 लीटर पानी में बाजार में BT करके नाम से मिलता है, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस भारकुर्स्टाकी के नाम से मिलता है। इसको हम लोग बाजार से खरीद के इसको भी 1 ml 1 लीटर के दर से पानी के दर से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, ये भी समेकित कीट प्रणाली में कर सकते हैं। और दो बायो इंसेक्टिसाइड्स है, अगर आपको लगे जो नहीं मात्रा 10% to 15% डैमेज से ज़्यादा हो जा रहा है हमारे फील्ड में, इस समय जो है आप दो बायो इंसेक्टिसाइड है, एक है स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, इसका मात्रा जो है 2 लीटर पानी में 1 ml, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाज़ार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है जिसका मात्रा है 5 लीटर पानी में 2 ग्राम। तो ये दोनों में से कोई भी मिल जाए, थोड़ा सा ये दो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये दवा तभी आपको स्प्रे करना पड़ेगा जब आपका खेत में कीड़े के आक्रमण 20% to 30% से ऊपर डैमेज कर रहा है तब। नहीं तो हम जो आपको समेकित कीट प्रणाली बताए जिसमें आपको नीम लीव्स कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस का स्प्रे कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं तभी आप कर सकते हैं, और ये भी दोनों बायो इंसेक्टिसाइड है। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा दो केमिकल पेस्टिसाइड है, इस एक जो नाम है फ्लूबेंडियम जो फेम करके दवा के नाम से आता है, ये जो है 1 g/3 l पानी में आप घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो है लैम्डा साइहैलोथ्रिन जो कैराटे के नाम से आता है, लैम्डा साइहैलोथ्रिन नमक दवा ये भी बहुत अच्छा है, ये बैगन के तना फली या तना छेदक के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी यूज़ करते हैं, इसका दाम थोड़ा सा कम होगा। फेम नामक जो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये ही दवा आपको कब करना पड़ेगा, जब आपका आक्रमण ज़्यादा होगा तभी आपका छिड़काव करना पड़ेगा।
0: तो इस तरीके से आप बैंगन के कीट से छुटकारा पा सकते हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप राख का छिड़काव कर सकते हैं उस पर किरासन तेल डालकर, और इसके अलावे जो है अगर सावधानियों की बात करें तो आप नर्सरी से जैसे ही उसे पौधे रोपाई के लिए ले जाते हैं तो बीज शोध करके ही ले जाएं, अन्यथा नहीं ले जाएं क्योंकि डर रहता है कि उसमें कीट पतंगे भी लग सकते हैं। इसके अलावे अभी बात आ रही है डॉक्टर साहब कि हम टमाटर की जो है रोपाई वो कैसे करें, अभी फ़िलहाल टमाटर की रोपाई का सीज़न भी है, सलाह दिया जा रहा है किसान भाइयों को कि आप टमाटर की आराम से रोपाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सावधानी भी बरतना है, और उसमें सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि कीट पतंगों से कैसे बचा जाए। तो हम जानना चाहेंगे टमाटर खासतौर पर इस पौधे में जो कीट पतंग लगते हैं उनके बारे में और वो किस तरीके से इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं।
1: टमाटर में हमारे बिहार में मुख्यतः 3-4 तरह के कीड़े हैं जिसमें ज़्यादा समस्या दिखाई देता है शुरू के टाइम में, जो सादा मक्खी जिससे एक वायरस डिजीज जो हम लोग बताते हैं टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, मतलब पत्ता ऊपर की तरह कुकड़ी हो जाता है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ये जो वायरस जो बीमा वायरस बीमारी है ये सादा मक्खी नामक कीड़े से फैलता है। ये सब शुरू में ही सबसे प्रॉब्लम होता है। इसके छोड़ के टमाटर के सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है टमाटर फसल को वो है फली छेदक। वो जो है अंतिम अवस्था में आता है जब फल आना शुरू होता है, उस समय जो है फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, तो वो भी बहुत ही समस्या। तो फली छेदक को अगर हम लोग कैसे पहचाने, तो हम जब भी देखेंगे टमाटर के फल में छोटा सा छेद किया हुआ रहता है, जब भी उसका आक्रमण होता है उसको अगर हम तोड़े फल को, तो उसके अंदर से एक पिल्लू, तो हरा कलर का पिल्लू जो है निकल के आएगा, तो वो सबसे ज़्यादा बैगन में जो है 20-30% तक डैमेज करता है अगर हम बैगन लेट में लगाए। अगर हम बैगन अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगा देते हैं और हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च तक हो जाता है हमारे, उस केस में हम लोग देखते हैं जो बैगन में फली छेदक का आक्रमण कम है। अगर बैगन हम लोग लेट लगाते हैं, लगभग नवंबर के एंड दिसंबर में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग हम लोग मार्च के मिडिल से अप्रैल तक करते हैं, तो उस फसल में हम फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादातर देखते हैं। ये फली छेदक छोड़ के जो तीसरा जो हमारा कीड़ा है, जो हम लोग टमाटर का लीफ माइनर कहते हैं, जो पत्ता में जो है सांप जैसा जो है अपना दाग छोड़ के जाते हैं, और ये भी जो है बहुत ही हद तक डैमेज करता है, किंतु हमारा फल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, किंतु टमाटर का पत्ती के ऊपर मैक्स बहुत हद तक ये डैमेज पहुँचाता है। तो ये तीन जो है मुख्य कीड़ा है, टमाटर का सादा मक्खी, टमाटर का फली छेदक और टमाटर का लीफ माइनर। और माइनर अगर उससे भी अगर हम डैमेज अगर कम करें इसके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे, तो टमाटर में माइट का भी, मकड़ी जिसको बोलते हैं, माइट का भी समस्या है। और इसमें जो है पत्ता जो है टमाटर का नीचे की तरह मुड़ने लगेगा, जब हम बताए सादा मक्खी जब आक्रमण होगा तो ऊपर की तरह मुड़ेगा, किंतु जब मकड़ी व माइट का आक्रमण होता है तो नीचे की तरह मुड़ता है। तो ये भी जो है बहुत हद तक डैमेज करता है टमाटर के पत्ते के शुरू के समय में।
0: अच्छा, तो ये हो गई बातें कीट की, और अब इसका समाधान कैसे करें हमारे किसान भाई, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम।
1: समाधान के लिए पहले ही हम बताना चाहेंगे आपको, शुरू से ही आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप बीज शोधन से शुरू करते हैं तो आपको जो बैगन टमाटर में जो वायरस बीमारी है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जिसको हम कहना चाहेंगे, इससे आप बहुत हद तक जो है आप निष्कास पा सकते हैं। इसमें जो है आपको जो है इमिडाक्लोपिड नामक दवा जो गौचो करके नाम से आता है 5 ग्राम प्रति केजी सीट, थायमिथक्सम बा एक तरह नामक दवा जो आता है वो भी 5 ग्राम प्रति केजी सीट के दर से आप इसको बीज शोधन कीजिए। बीज शोधन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम आपको ये थोड़ा सा बता दें। एक पॉलीथीन जो है आप मिट्टी में बिछा दीजिए और सीट को फैला दीजिए पॉलीथीन के ऊपर, और पॉलीथीन में थोड़ा सा हल्का सा जो है बीज के ऊपर नमी के लिए थोड़ा सा पानी का हल्का सा छिड़काव करें, और जो इमिडाक्लोपिड नामक दवा और थायमिथक्सन का जो पाउडर हम बताए वो पाउडर पूरा बीज में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करके आप हाथ में पॉलीथीन पहन के, खाली हाथ में नहीं, हाथ में कुछ पहन के, पॉलीथीन पहन के या कुछ भी ग्लव्स पहन के आप उसको अच्छा से मिला दीजिए। मिला के एक पूरा रात छोड़ दीजिए, अगले दिन बा अगले से एक दिन और छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन जाके आप इसको जो है सोइंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपको शुरू के समय में जो आपका वायरस नामक बीमारी का जो समस्या है ये समस्या आपके खेत पे नहीं आएगा, ये बहुत हद तक जो है आपको खेत में कंट्रोल भी कर देगा और कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है शुरू के 20 से 25 दिन के बाद अगर बीज शोधन करते हैं तो 30 दिन और 40 दिन के अंतराल में, मतलब 10 दिन के इंटरवल में, 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप दो छिड़काव, कीड़ा खेत में थोड़ा भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोपिड नामक दवा है वो एडमायर व कन्फिडर के नाम से मिलता है, 1 ml 3 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। आप जो है थायमिथक्सम जो एक तरह नामक दवा है इसका भी जो है आप 1 ग्राम 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर समय की पीठ प्रबंधन के तरफ आप जाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो ये सादा मक्खी जो है, जो वेक्टर है जो बीमारी का, जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है, इसके लिए हम लोग योलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। योलो स्टिकी ट्रैप ये है, आप कोई भी पीला कलर का कागज व पॉलीथीन जो है, आप एक पिच बोर्ड जो है, बच्चे लोग जो पढ़ता है वो पिच बोर्ड उसको उखाड़ के पिच बोर्ड के दोनों तरफ जो पीला कलर का कागज साट दीजिए, साट के उसके अंदर जो है ग्रीस और गोंद का मिक्स करके, ट्रांसपेरेंट गोंद होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट गोंद और ग्रीस का जो है प्रोलेप मिक्स करके उसको ब्रश से इससे दोनों साइड में आप उसका प्रोलेप लगा दीजिए। लगा के जो है आप एक जो बांस का ये मिलता है स्टिक मिलता है उसको जो है आप गाड़ के जो फसल का जो हाइट होता है, जो हमारा पौधा का जो हाइट है उसी हाइट के अनुसार आप अपना जो ट्रैप जो बनाए उस ट्रैप को आप जो फील्ड खेत में लगाइए। ऊंचा ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लगाना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना, जो उसका हाइट है फसल का वही सिमिलर हाइट में आपको लगाना है। इसलिए लगाना है जो हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है वो ज़्यादातर ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, वो बहुत ही वीक है, उड़ नहीं पाते, तो इसीलिए वो सिर्फ हवा के माध्यम से ही दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो हम येलो स्टिकी ट्रैप बताए, जो पीला कलर का ट्रैप बताए, इससे क्या होगा, जो हमारा सादा मक्खी उसमें अट्रैक्ट ज़्यादा होगा और उसमें जाके वो फंस जाएगा। एक बार जब उसमें फंस जाएगा उसके गोंद और ग्रीस के वजह से वो उधर से निकल नहीं पाएगा, उसी में वो मर जाएगा। तो इससे जो है बहुत हद तक हम पॉपुलेशन जो है हमारा सादा मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। और शुरू में जो है आप नीम आधारित, आपको हम बताए थे नीम आधारित कोई भी दवा, निम्बिसिडिन हो, निमाजोल हो, एचूक हो, कोई भी दवा अगर आपको बाजार में मिले वो कर सकते हैं, बा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, नीम का बीज को मिक्सचर ग्राइंडर में क्रश करके उसका 5% सॉल्यूशन बना के 5 ml 1 liter पानी में घोल करके भी हम छिड़काव कर सकते हैं, पर नीम का पत्ती से भी हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है हम कीट बताए, कीड़े के बारे में बताए, जो टमाटर का फली छेदक है, फली छेदक के लिए हम लोग शुरू से हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जब भी हम लोग जिस फील्ड में लगाना है उस फील्ड को अच्छा से जुताई करना चाहिए। इसलिए जो कीड़ा है, कीड़े का जो इमैच्योर जो अवस्था है वो एक इमैच्योर स्टेज जो है वो सॉइल जो मिट्टी के अंदर भी रहता है, अगर हम उसको अच्छा से प्लाउइंग करेंगे तो वो जो है सूर्य के सामने जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, उससे क्या होगा उसका पॉपुलेशन भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो प्लाउइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो हम टमाटर में हम ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप क्या मतलब जो है जो कीड़ा टमाटर छोड़ के दूसरे क्रॉप में भी अट्रैक्ट हो, उससे क्या होता है जो हमारा जो मेन क्रॉप टमाटर है वो बच जाएगा, जो ट्रैप क्रॉप है ट्रैप क्रॉप के ऊपर ही हम दवा का छिड़काव करेंगे तो मेन क्रॉप में कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होगा। तो ये ट्रैप क्रॉप का नाम है मेरीगोल्ड, गेंदा जिसको हम लोग बोलते हैं। गेंदा का जो है 25:2 मतलब 25 टमाटर 2 गेंदा, 25 टमाटर 2 गेंदा, ये लगा के हम जो है अपना पेस्ट जो है जो हम बोले पिल्लू हेलिकोबर्फा वो हम गेंदा पे शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज गेंदा का जो फूल है वो जो पीला कलर का होता है इसमें वो अट्रैक्ट होता है और उसमें वो शिफ्ट हो जाए, तब हम गेंदा में स्प्रे कर से जो हमारा टमाटर जो मेन फसल है इसको पेस्टिसाइड के लोड से बचा सकते हैं। ये एक तकनीक है समेकित कीट प्रबंधन का। दूसरा जो समेकित कीट प्रबंधन का तकनीक है हम बताए थे फेरोमोन ट्रैप के बारे में, फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हो। फेरोमोन ट्रैप का नाम है हेलिलियो। हम लोग अगर मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग मतलब कब हमारे खेत में कीड़ा है इसके अगर हम लोगों को जानना है तो इसके लिए हम लोगों को 1 hectare में 12 ट्रैप लगाना पड़ेगा 200-200 meters के दूरी में। उससे क्या होगा जो उसका एडल्ट का जो एडल्ट है पिल्लू का जो एडल्ट है वो उसमें फंस जाएगा, उससे हमको पता चलेगा जब हमारे खेत में जो है हेलिकोबर्फा का इन्फेस्टेशन शुरू हो चुका है, तो हम लोगों को सचेत रहना होगा। और उसके बाद हम लोगों को अगर इन्फेस्टेशन लेवल जो है 5%, 5% या 10% फ्रूट डैमेज से ज़्यादा हो तो हमको समेकित कीट प्रणाली में से एक दवा आता है HANPV, उसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबर्फा आर्मीजेरा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये नामक दवा का जो है हम 2.5 से 3 gram प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से बहुत 70-80-90% तक हमारा कीड़े का जो है कंट्रोल हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, तो हमको कोई रासायनिक दवा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसान बंधु रासायनिक दवा में भी जाना चाहता है तो रासायनिक दवा के लिए हम बता देते हैं, जो एक दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्साकार्प, जो बाजार में एवांट करके नाम से मिलता है, उसका मात्रा है 2 लीटर पानी में 1 ml, इंडोक्साकार्प एवांट, ये एक दवा है। दूसरा जो दवा है ये है लैम्डासायलोथ्रिन, जो बाजार में कराटे के नाम से मिलता है, ये शुरू में आप दे सकते हैं, इसका महंगा भी नहीं है ज़्यादा, आप यूज़। अगर आपका कीड़े का आक्रमण ज़्यादा हो गया, अगर लगता है जो नहीं कीट जो है कीटनाशी, अच्छा कोई कीटनाशी देना पड़ेगा जिससे कंट्रोल और कम हो जाए, इसके लिए हम बताना चाहेंगे थोड़ा कॉस्टली दवा है, जैसे स्पाइनोसेट, जो हम बताना चाहेंगे स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, 2 लीटर पानी में 1 ml के दर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। फ्लूबेंडियामाइड जो फेम है, फेम भी 1 ग्राम प्रति 3 लीटर के दर से 15 लीटर पानी में 5 ग्राम के दर से आप छिड़काव कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा दवा है जो कोराजेन के नाम से मिलता है, ये भी जो है 3 लीटर पानी में 1 ml के गुना के दर से घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दो जो लास्ट दवा बताए, फ्लूबेंडेमाइड, फेम और कोराजेन, ये थोड़ा सा महंगा दवा है। जब आपका खेत में आक्रमण जो है 20-30% के ऊपर चला जाएगा तभी इस दवा का छिड़काव करें, अन्यथा आपको जो पहले जो हम इंडोक्सोकार्प के बारे में बताए, लैम्डासायलोथ्रिन के बारे में बताए, इसी दवा का आप छिड़काव करें। और अंतिम जो मैं कीड़े के बारे में बताया था, टोमेटो का लीफ माइनर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पत्ते में जो सांप के जैसा दाग छोड़ देता है, इसके लिए जो है आप समेकित कीट प्रबंधन में नीम आधारित दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और रासायनिक में क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा है, क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो है आप प्रोफेनोफॉस नामक दवा है जो कुराक्रॉन के नाम से मिलता है, ये भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि लगभग सभी सब्जियों में कीट और समाधान एक समान है, लगभग, तो इसलिए आप इस तरीके से इन दवाइयों का छिड़काव जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन दवाइयों का छिड़काव करके या फिर कुछ सावधानियों को अपनाकर अपनी सब्जियों को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि इन कीटों से दूर रख सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे आगे मुलाकातें होंगी अगले विषय के साथ, अगली जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर। तब तक सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
9: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं, वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9: देखिए ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सकें। दूसरा एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं। इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल, चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि एचपीवी संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। एचपीवी टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का

0: भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई। लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी।

0: जानलेवा बीमारी।
1: UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
14: जी
13: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
14: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
13: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
15: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
16: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
15: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
17: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीक

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 एफएम ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूं और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं, यह जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में।
2: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
1: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
2: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, इसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं। हो सकता
1: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा, वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
2: पोषण दवाई के माध्यम, दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे, तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को, मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
2: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह के कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उसके शरीर में।
1: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
2: उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, महिलाओं को उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है, वो हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का, उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा। उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
1: जी, मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
2: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे, बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग, जैसे एनीमिया, रतौंधी, ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों को।
1: तो अगर मान लिया जाए, ये सब तो आपको पता है कि मान लिया जाए ऐसा होता है, अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले, तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है। तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
2: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा नाम मानव है।
1: जी, तो मानव जी, आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें, इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियाँ हैं ये बताएं।
2: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
1: ये तो मान लिया जाए कि वृहत पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा जमीन नहीं होती है।
2: हाँ।
1: जब जमीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे, या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
2: वो अपने बारे वो क्या करे, अगर जो वो नहीं कर सकते, अगर जो उनके पास अपना ज़मीन नहीं है तो वो दूसरे पे, दूसरे के अथी पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो उगा रहा है तो अगर वो उसके पास है कि वो एक दूसरे
1: नहीं, नहीं, अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो, बाड़ी हो, उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं, उस क्यारी में लगाएं। और अपना जैसे कि सब्जी हो, फल हो, वो अपने आप आंगन में अगर उपजाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है, ठीक है। उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 FM ग्रीन आपका धन्यवाद करती है।

0: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं, जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में, गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें तो, परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूं मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ बरसों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूँ, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यवसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा जमीन है, तो आप कुछ जमीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास जमीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी, तो वो क्या कर सकते हैं? पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है, लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है, और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
5: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
6: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है, तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था आप बोल सकते हैं, आज वहाँ पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, अब वही धान गेहूँ पर आश्रित है, तो ऐसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते, ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
5: तो सर, अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
6: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है, मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं, आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं, कोई भी काम उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
5: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यवसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
6: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है, उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसे योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है। तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है। फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे। आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा, आपको लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है। तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
5: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
6: जी जी हाँ।
5: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
6: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट, प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
5: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
6: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है, जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, इसी सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं, बाद बोलते हैं, खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला, पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है। तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है, और छोटे खेत में आप एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है। पूंजी की कमी, आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं या, तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
5: सर, हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं, जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं, उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
6: जी, ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती, क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है। अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाई है, और वो 10 लोग मिलके एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए, इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
5: जी, तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
6: जी, देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें वो हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए, तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
5: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
6: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है, हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा, व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे मैंने बताया वही एक बीघा में धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियाँ, जैसे हमने बात किया तो उस चुनौतियाँ सब जगह चुनौतियाँ हैं, जीवन में चुनौतियाँ हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियाँ हैं, लेकिन उस चुनौतियाँ उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी,
5: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: उन्नत कृषि आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
8: हर घर

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
12: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
14: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
15: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
16: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
15: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
16: आपकी सेहत की बातें,
15: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
16: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
15: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
16: वो कहाँ पर?
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
16: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
17: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: prší.
1: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे अनु। एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर हम आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे बिहार में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, लेकिन एक जो सबसे खास, जो देखने में तो सुंदर लगता ही है और उसकी विशेषताएँ भी बहुत हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही हम उसकी खेती के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूँ तो बहुत ही कम जगह, ख़ासतौर पर मैंने देखा इसकी खेती, और इसीलिए लोग इसकी खेती को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसकी एक विशेषता इस स्ट्रॉबेरी से है, वो है पोषण सुरक्षा। यानी स्ट्रॉबेरी की खेती से पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है और ये एक लाभदायक व्यवसाय हमारे लिए कैसे बन सकता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर रूबी रानी जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु। मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, योग उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
1: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा?
2: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए। सबसे पहले

0: इसका क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोग रोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें।
1: अच्छा,
0: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो भी फैट कंटेंट थोड़ा मैं फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है। आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: होना चाहिए और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
1: एंटीऑक्सीडेंट्स
0: ज्यादा हो, विटामिन मिनरल्स ज्यादा हो, तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए। तो इस स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद हैं
1: जी,
0: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है इसे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फूड है, लेकिन विटामिन मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनीज, मैग्नीशियम ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये फल जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से क्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं।
1: अच्छा।
0: स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है, इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो उसको जो अच्छे कंडीशन में जब इसको बहुत कम दिन होता है, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाएं
1: जी,
0: तभी हमें ये मिल पाएगा, वरना हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
1: तो दोस्तों मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है, और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं, जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना शामिल हो चुकी है ये महामारी, और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसे फल और सब्जियां लेनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर शामिल करें, और आपको हम स्ट्रॉबेरी से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। तो मैम ने जैसे कहा कि इसे बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता, ये बहुत कोमल फल है, तो मैम बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है क्या?
0: बेशक बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है, हमने पिछले 10 साल में पर इस पर शोध किया। जब हमने शुरू किया था तो हमें भी विश्वास नहीं था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसका शोध किया तो मैंने पाया कि बिहार में इसका खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि ये फल जो है वो ठंडे जगहों का फल है, जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में, आदि जगहों में उगाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ किस्में आई हैं और कुछ विशेष तकनीक की मदद से इसे हमारे प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगहों में भी काफ़ी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए हमने शोध के उपरांत मैंने देखा कि बिहार में ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।
1: मतलब पहले लोग ये घबराते थे कि गर्म वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये पहले जम्मू और कश्मीर में ही उगाया जाता था, तो यहाँ पर शोध के बाद पता चला है दोस्तों कि बिहार में इसका उत्पादन किया जा सकता है। मैम साथ ही आप इसके लगाने की विधि भी बता दें, और समय क्या है इसे लगाने की वो भी बता दें।
0: तो सब इसमें एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें पोषण तो भरपूर है ही है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री बनाने में होता है, आइसक्रीम, कैंडी, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगते हैं तो उन सब चीज़ों में बनाता है, सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, केक, आइसक्रीम, बहुत तरह से सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी का यूज होता है, और इस तरह से इसमें पोषण के साथ साथ इसके उपयोग
1: व्यावसायिक रूप में
0: बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही सुवासित सुगंधित फल है, इसका अलग ही एक एरोमा है, और जो कि इसका आकर्षित रंग के साथ साथ इसका एरोमा भी लोगों को

0: एक्टिव करता है, साथ ही पोषण और बहुआयामी इसके उपयोग हैं, इसके कारण इसकी खेती बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इसको उगाने के लिए, क्योंकि ये 7 से 8 महीने में पूरा फसल तैयार हो जाता है और इसका डिमांड ज्यादा होने के कारण इसके प्राइस ज्यादा है और किसानों को ज्यादा मुनाफा 7 से 8 महीने में प्राप्त हो जाता है
1: जी।
0: और अब आती है कि इसको लगाने की विधि
1: जी
0: और इसका समय क्या है। तो हमने शोध के उपरांत पाया कि बिहार में इसको लगाने का समय अक्टूबर माह जो है इसको लगाने का सबसे उत्तम समय है। प्रथम सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंत तक आप लगा सकते हैं, हालांकि इसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन आप अक्टूबर तक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 15 नवंबर के बाद आप लगाएंगे तो इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि कमी आ जाती है, क्योंकि उसको सही समय नहीं मिल पाता है उसको समुचित ग्रोथ का, और फूल खिलने लगते हैं इसके कारण कि छोटे पौधे में फूल खिलने से उत्पादन में कमी हो जाती है, गुणवत्ता भी सही नहीं रहती है। तो लगाने का उचित समय इसका अक्टूबर है,
1: अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से।
0: प्रथम सप्ताह से आप 15 नवंबर तक लगा सकें, नवंबर तक बिल्कुल लगा दें, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उत्पादकता में आपको कमी मिलेगी
1: जी।
0: अब भाई इसको पूछा जैसे कि अपने लगाने की विधि क्या है, तो इसको लगाते हम लोग रनर से, पौध से हम इसे लगाते हैं
1: जी जी।
0: इसके लिए जो है छोटे छोटे पौध आते हैं और इसके हम बीज से नहीं लगाते हैं, और ये पौध जो है हमारे रनर से एक पौधे से कई कई पौधे निकलते हैं उससे तैयार होते हैं। परंतु हमारे राज्य में अप्रैल महीने के बाद से इतनी गर्मी होती है कि ये पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पौधों के लिए दूसरे राज्यों जहाँ ठंड प्रदेश हैं वहाँ से हमको उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये पौधे 4 से 6 पत्तियां हो उस पौध में, उसको हमको लगाना चाहिए। और लगाने के पहले पौधे को हम कार्बनडाइजीम के 0.2% के घोल में 5 मिनट तक डुबाते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके पौधे को लगाते हैं। तो ये भी लगाने की विधि और इसका लगाने का समय।
1: तो मैम इसके बाद उत्पादन तकनीक को भी हम जानना चाहेंगे, जब विधि की बात हो गई है और इसके बाद उत्पादन तकनीक को ना जाने तो थोड़ा अधूरापन रहता है, तो इसके उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताएं थोड़ा।
0: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी इसका भूमि की तैयारी कैसे करें, इसका बेड कैसे बनाएं, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें और इसमें सिंचाई कैसे करें, और इसमें कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके बारे में मैं एक एक करके सबको आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी करने के लिए आप जैसे अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें खेत की। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
1: अच्छा।
0: और मिट्टी जो है वो बलवाही दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, और वो क्षारीय मिट्टी ना हो, जैसे कि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का चुनाव करें और वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव नहीं हो और मिट्टी हल्की हो। इसका जिसका पीएच मान मिट्टी का 6.5 से 7 के बीच या 6 से 7 के बीच हो, 7 से ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का हम चुनाव करें
1: जी।
0: और चुनाव करने के बाद लगाने के समय के, यानी कि अक्टूबर में आप लगा रहे हैं या 15 अक्टूबर को लगा रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले आप उसकी जमीन की गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई करें। हल्की जुताई के समय उसमें आप कुछ खाद डालें, तो खाद की मात्रा जो है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो पोटास प्रति एकड़ आप हल्की जुताई के समय में डाल करके इसको जुताई कर दें। उसके बाद इसकी खेती, व्यावसायिक खेती जो होती है वो उठी हुई क्यारियों पे होती है।
1: अच्छा।
0: तो उस क्यारी को बनाने के लिए आप उसकी ऊंचाई जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखें और उसकी चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं, और लंबाई आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे रख सकते हैं
1: जी।
0: दो क्यारी के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आपकी उठी हुई क्यारी तैयार हो जाएगी जो कि 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 से 1.25 मीटर चौड़ा हो और दो क्यारियों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो। एक क्यारी पे अगर आप 1 मीटर रखे हैं या 90 सेंटीमीटर तक चौड़ा रखे हैं तो आप 2 पंक्तियां लगाएं, अगर उससे ज़्यादा रखे हैं तो 3 पंक्तियां भी आप लगा सकते हैं। 4 पंक्तियां में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 3 पंक्तियां आप एक क्यारी पे लगा सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखें
1: जी।
0: तो इस तरह से आप बेड पे 2 से 3 क्यारी
1: तैयार कर सकते हैं
0: और प्रति एकड़ लगभग 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद आता है कि हम इसको लगाने की विधि मैंने पहले बता दी, लेकिन अगर आप इसमें सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था कर सकें तो ये आपके लिए वरदान होगा
1: जी।
0: और ड्रिप सिंचाई पे आज जो है सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है, तो आप सरकारी सहायता प्राप्त कर आप ड्रिप सिंचाई का अपने खेत में लगा सकते हैं और ये जो कि काफ़ी वरदान होता है इसके लिए, बड़ी अच्छी खेती, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है फलों की। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि किसान भाइयों आप ड्रिप सिंचाई का इसमें उपयोग जरूर करें
1: जी।
0: इसके अलावा पौधे लगाने के बाद इसकी जो खेती होती है, इसके जो फल होते हैं वो मूलतः जमीन पे सटे हुए होते हैं। जब निकलते हैं तो जैसे ही फल बड़ा होता है तो अपने भार से वो जमीन सतह पे सट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, इसलिए मल्च या पलवार का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी और फल का संपर्क ना बने। ये फल चूंकि बहुत ही कोमल मुलायम होता है, लगातार अगर मिट्टी के संसर्ग में रहेगा तो ये खराब हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, बाजार में ले जाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मल्च बहुत ही आवश्यक है। मल्च आप पुआल का भी दे सकते हैं और प्लास्टिक का भी दे सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो प्लास्टिक का मल्च बहुत ही अच्छा देखा गया है इसमें, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की मल्च नहीं है तो आप धान या गेहूं के का जो भूसा होता है या पुआल होता है उसका भी उपयोग मल्च के रूप में कर सकते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा मल्च होना चाहिए ताकि फल का संपर्क डायरेक्ट मिट्टी से ना हो और आपके फल जो है परिपक्वता तक अच्छे कंडीशन में रहे और बाजार में ले जाने लग रहे। तो इस तरह से दो तकनीक, जो मल्च और सूक्ष्म सिंचाई, ये दोनों इसके लिए वरदान है। और जब आप बेड तैयार करते हैं तब उसमें जो है आप सूक्ष्म सिंचाई पहले बिछा दें, पौधे लगा दें, उसमें सूक्ष्म सिंचाई कर दें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं आपने वहाँ वहाँ उतनी दूरी पर आप मल्च में छेद करके उस तरह से पौधे को व्यवस्थित कर दें
1: जी।
0: आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार करके मल्च को फिक्स कर दें, फिर जितनी दूरी पर आपको बेड को तैयार करके पहले ड्रिप इरिगेशन लगा दें, फिर आपको मल्च डाल दें, मल्च फिक्स कर दें और जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर छेद करके थोड़ा सा होल करके वहाँ पर पौधे को आप फिक्स कर दें और ड्रिप से आपका पानी और पोषण सारा चीज ड्रिप के माध्यम से पौधे को मिलता रहेगा। तो ये हुई विशेष तकनीक।
1: अच्छा,
0: कि इसके उत्पादन में विशेष तकनीक है। इसके अलावा हमारे राज्य में दिसंबर के अंत में और जनवरी तक पाले का प्रकोप रहता है, उसमें बहुत धुंध रहती है, पाले का प्रकोप रहता है और पाले से बचाने के लिए आप छोटा पॉलीटनेल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पौधे जो है पाले से बच सकें। और पॉलीटनेल जो है उसकी ऊंचाई 65 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये पॉलीटनेल क्या है, एक छोटा पॉलीहाउस है, मिनिएचर है पॉलीहाउस का, इसकी ऊंचाई 60 से सेंटीमीटर होती है। इसको बेड कवर या रो कवर भी बोलते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 65 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये अगर आपको टनल बनाने के लिए जीआई पाइप का ना मिले तो आप बांस की करची पे भी पतली पॉलीथीन की सीट बिछा करके पॉली टनल बना सकते हैं और जो कि आपके पास बहुतायत में बांस तो हर गांव में उपलब्ध रहता है, तो उस कमाची का उपयोग करके, बांस का उपयोग करके आप पॉलीटनल बना लें, और पॉलीटनल पर पतली सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उजले कलर की पॉलीथीन आप डाल दें, और ये जो है जब आपका पाला पड़ना शुरू हो जाए तब और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसको डाले रहें। इससे क्या होता है कि पौधा जो है पाले से बचा रहेगा और धूप उसके अंदर आती रही, ग्रोथ बढ़वार बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा पॉली हाउस का इफेक्ट रहता है, पॉली जैसा पॉली हाउस में उसका इफेक्ट रहता है पौधों का, उसी तरह से पॉलीटनल का भी उपयोग है, साथ साथ ये पाले से भी बचाता है और ढके रहने के कारण कीट व्याधि का भी प्रकोप कम रहता है, इसी कारण की फल की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये विशेष तीन तकनीक जो है स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सूक्ष्म सिंचाई, पॉलीटनल और मल्च। किसान भाइयों, अगर आप सूक्ष्म सिंचाई नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन मल्च तो मस्ट है, चाहे आप फुआल का मल्च दें चाहे आप प्लास्टिक का मल्च दें। मल्च के लिए हमेशा काले पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, इसके लिए एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है, मल्च सीटू कहलाता है, और वो 1 मीटर और 1.25 मीटर की चौड़ाई में आता है, और लंबा आप जितना चाहें एक रोल ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी जाती है, खासकर ये स्ट्रॉबेरी सब्जियों आदि के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्च आप का उपयोग करें, सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बिना उसकी भी खेती कर सकते हैं। टनल का भी उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, करना करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मल्च का उपयोग तो करना ही होगा। तो ये है उत्पादन तकनीक, और लगाने के बाद जो है आप जो भी उसमें पोषण देंगे वो फर्टिगेशन के थ्रू देंगे, क्योंकि आप ड्रिप सिंचाई लगा चुके हैं और पौधा जो है मल्च के नीचे है, तो आपको बाहर से आप नहीं दे सकते हैं, आप जो है इसको फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं। और फर्टिगेशन के लिए भी हमने शोध किया है, पौधे लगाने के 30 से 45 दिन बाद जो घुलनशील हमारा एनपीके है 20-20-20 का, उसका 25 ग्राम की मात्रा को 4 भागों में बांट दें, और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम 4 भागों में बांट करके और 15 दिन के अंतराल पे उसको 4 बार दें, तो इस तरह से आपका जो है वो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा।
1: जी श्रोताओं, मैम ने आपको बताया कि उत्पादन की 3 विशेष तकनीक हैं, वो है मल्च, पॉलीटनल, और साथ ही मैम ने बताया सूक्ष्म सिंचाई। मल्च जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये अपनाएं, और सूक्ष्म सिंचाई आप चाहे तो अपना सकते हैं नहीं तो नहीं, और पॉलीटनल भी आप चाहे तो अपना सकते हैं नहीं तो आपकी जो सुविधा है आप उसके अनुसार उत्पादन तकनीक को अपना सकते हैं। मैम, उत्पादन तकनीक के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और अगर किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो पहले से सावधान हो जाएंगे, उन सावधानियों के साथ वो उत्पादन तकनीक को अपनाएंगे ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे किसान, हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत लोग किसान लोग कर रहे हैं, और हमारे पास उनकी समस्याओं के बारे में भी फ़ोन आते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के दौरान किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कुछ इसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है उकठा रोग। कभी कभी देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बीच बीच में पौधे गलने शुरू हो गए, पौधे अचानक सूखने शुरू हो जाते हैं और उसको चाह करके भी आप नहीं बचा सकते हैं, तो इसके लिए ये समस्या फरवरी मार्च के बाद आनी शुरू होती है, जब पौधे जो थोड़ी सी गर्मी आती है उसके बाद ही आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध होनी चाहिए, उस पौधे में कहीं किसी तरह का स्पॉट या कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पौधे को लगाएं, तो मैंने बताया कि कार्बन डाइजीम में उसको 0.2% के घोल में, आप कार्बन डाइजीम के घोल में उसको 5 मिनट तक दुबाएं, उसके बाद लगाएं। और जब आप बेड तैयार करते हैं, ऊँची उठी हुई बेड आप तैयार करते हैं, तो 0.01% का मेटल एक्सिल का घोल से एक बार उस पर स्प्रे कर दें। तो ये आपको उकठा रोग से बहुत बचाव करेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो कंपोस्ट डालते इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, कंपोस्ट को डालने के पूर्व ट्राइकोडर्मा आधा आधा केजी लेकर के ट्राइकोडर्मा उसको 15 से 20 केजी कंपोस्ट में मिक्स कर दें, उसको एक सप्ताह के लिए छोड़ दें, मॉइस्ट रखें और उस कंपोस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि आप कार्बन डाइजीम का यूज करें, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें और मेटालेक्सिल के 0.01% के घोल से आप बेड को जो नर्सरी का अपनी जो उठी हुई क्यारी तैयार की उसको उपचारित करें। इस तरह से करने से आपको जो है फफूंद जनित रोग जो है वो आप से आप इसको बचा सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा और इसका रोग है लीप स्पॉट आता है, पर्णचित्ती आता है। कभी कभी देखेंगे कि गोल गोल गोल गोल स्पॉट आ गया है लीप पे। जैसे ही आप स्पॉट देखें उसको आप कैंची से हटा दें, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1% का घोल से उसका छिड़काव करें। इससे आप जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे कि फल में फल जो है उस पर फफूंद हो गया है, तो वैसे फल जो मिट्टी के संसर्ग में आएंगे या ज़्यादा पानी भी आप अगर आपने दे दिया है तो ग्रे मोल्ड का जो ग्रे मोल्ड होता है ग्रे मोल्ड का प्रकोप हो जाता है और ग्रे मोल्ड का प्रकोप होने से आपका फल खराब हो जाएंगे। इसलिए आप मल्च का उपयोग करें, बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं दें, जड़ों को आप नमी बरकरार रखें जड़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वातावरण में नहीं रहने दें। और अगर सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करते हैं तो आपको जड़ में पानी जाएगा, पत्तियों पे बाकी वातावरण में पानी कम रहेगा और वहाँ पर ग्रे मोल्ड की समस्या कम होगी। इसलिए ग्रे मोल्ड से बचाने के लिए आप मल्च का उपयोग करें। अगर ये कुछ आ गया है तो तुड़ाई के उपरांत डायथन M45 का 2 ग्राम का प्रति लीटर का घोल बना करके आप एक बार स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप ग्रे मोल्ड से, उकठा रोग से यानी कि विल्ट से और लिप स्पॉट से इसका निजात पा सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं आपने जाना कि जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान के बारे में भी आपने जाना, और मैम इसके बाद उत्पादन से लाभ तो मिलेंगे ही क्योंकि पहले ही भी हम जान चुके हैं इसमें पोषण बहुत ज़्यादा है। तो व्यावसायिक तौर पर आम तौर पर क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इसके उत्पादन से?
0: इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि इसकी तुड़ाई कैसे की जानी चाहिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो अगर आप इसको अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो दिसंबर माह में इसका फल टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगातार मार्च तक या कभी कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फल देगा। जैसे ही गर्मी आएगी इसमें फूल आना बंद हो जाता है और फूल आना बंद हो जाएगा तो फल आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको मार्च तक आपको अच्छा फलन देगा। और इसका तोड़ने के लिए जब ये फलना शुरू हो जाता है तो कुछ कुछ अंतराल पे ये फल आपको तोड़ने होंगे और फल की तुड़ाई आप सुबह में करें। तुड़ाई के बाद आप फल को जो है आप ठंडे जगह में रखें और जितनी जल्दी हो सके इसको मार्केट में भेज दें, क्योंकि तुड़ाई के उपरांत इसकी जो है संधारण क्षमता बहुत कम होती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट फ्रूट है और बहुत जल्दी खराब होता है
1: जी।
0: तो जितनी जल्दी हो सके इसको मार्केट में भेज दें। अगर दूर के मार्केट में आपको भेजना है तो फल को पूरा लाल होने के पूर्व यानी 75% जब पक जाए तभी आप इसको हार्वेस्ट करें। थोड़ा उसमें टफ रहता है और 1-2 दिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये थोड़ा सा और पकता है, फिर जा करके आप उसको मार्केट में भेजें। तो नज़दीक के लिए मार्केट के लिए पूरा फल पकने के बाद इसको तोड़ें, और अगर दूर का मार्केट में भेजना है तो आप 75% पकने पर ही उसको तोड़ दें। इसकी पैकिंग के लिए पुनेट आता है, पुनेट का उपयोग करें और सही ढंग से इसकी पैकिंग करें। एक फल दूसरे फल पे बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना हो, एक फल पर दूसरा फल ना हो, इस तरह से इसकी पैकिंग करें और तभी आपका ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा मार्केट में रह सकता है
1: जी।
0: और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, कितने लाभ हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी लागत जो है आपको अगर ड्रिप सिंचाई क्या लगाएंगे, मल्च डालेंगे, पॉलिटिनेल डालेंगे तो पहले साल इसकी लागत कुछ ज़्यादा आएगी क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लगातार इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करें। और 3 साल के बाद उपरांत पाएंगे कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 4 रुपया आपको मिलेंगे।
1: अच्छा।
0: तो पौधों का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो पौधे आपको 10 से 12 रुपए के बीच में मिलेंगे या 15 रुपए तक भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 20,000 पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपए आपको पौधे में लग जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादकता जो है अगर अच्छे से आप मैनेज करें तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपको 15 टन से कम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर उसको 200 रुपये के जी भी बेचेंगे तब भी आपको 3 से 4 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा एक एकड़ में। इसलिए 8 से 9 महीने के बीच में इतना शुद्ध मुनाफा किसी भी क्रॉप में नहीं है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है, पोषण से भरपूर फल है, कम अवधि में इसके उगाए जा सकते हैं। और अगर आपके शहर के किनारे छोटा सा भी जमीन है तो आप छोटी सी भूभाग में इसकी खेती करके आप इसको बहुत मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अच्छी आमदनी पाएं, अच्छा लाभ पाएं। व्यावसायिक तौर पे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ये इसका स्ट्रॉबेरी का फल उत्पादन काफी अच्छा है। और मैं अपनी वार्ता के दौरान एक चीज बताना भूल गई कि हमारे राज्य में किस्में कौन कौन सी अच्छी उत्पादकता के साथ कर रही हैं। तो मैं बता दूं कि इसके लिए अब स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामारोजा, विंटर डाउन, नबीला, सेंसेशन, ये 6-7 किस्में जो हैं वो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हमने शोध के उपरांत पाया, हमने लगभग 21 किस्में शोध किया है, किस किस्मों का उत्पादन किया अपने रिसर्च प्लॉट पे, और हमने पाया कि ये 6-7 किस्में जो हैं हमारे राज्य में बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादकता के साथ। तो मेरा ये मैंने अपने बताया आपको कि स्ट्रॉबेरी की खेती के कैसे उत्पादन करें और कैसे इससे लाभ कमाएं और क्या इसके लाभ हैं, ये हमारी बात। धन्यवाद किसान भाई, उम्मीद है कि आपको उचित जानकारी मिली होगी, जो जानना चाहेंगे जानना चाह रहे होंगे आपकी वो जानकारी आपको मैं दे पाई होंगी इतने कम समय में। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं आपने जाना स्ट्रॉबेरी एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बन सकता है, पोषण सुरक्षा हेतु स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा सकती है, हर एक छोटी से बड़ी बात मैम ने आपको बताया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा। अगर आप अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, समय है। और साथ ही जो भी समस्याओं की बात यहाँ पर हुई है मैम ने उसके समाधान के बारे में भी बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगाएं। और उत्पादन तकनीक के बारे में भी मैम ने बताया कि आप उस तकनीक को ज़रूर अपनाएं, और मल्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे तो आपको अपनाना ही चाहिए, जो कि आपकी जो फल हैं वो मिट्टी से संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से बहुत लाभ होगा आपको अगर आप इन जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर,
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं, तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है, एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है, जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है, तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा, और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
0: जी जी। तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
1: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे, तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी, तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पे कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले, उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की, वो तो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
0: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसके फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि है, जलवायु अनुकूल कृषि है, या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके की पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटाशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग, तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे जी। तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
0: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
1: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था, तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीकी है। तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है, नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करें, ये सब चीज़ें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियाँ हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
0: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद उमा आपको।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहाँ आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर घर में

ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की

0: नक्शा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएँ होती है, कमाने वाली महिलाएँ होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देखरेख, उस पैसे की देखरेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए, आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में रबी मक्का में लगने वाले कीटों के समुचित प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू सा और सर वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका स्वागत है। और किसान अभी मक्का लगा रहे हैं और इस समय उनको क्या कुछ करना चाहिए तो उसके बारे में पहले बता दें।
9: हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मक्का लगा रहे होंगे, इसमें कुछ सावधानियां हैं। कैसे आप मक्का तो आप लगाते ही हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिसको आप कर करके आप ये कीट है, ये कीट का जो संक्रमण होता है जो उसे आप बच सकते हैं और आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप खेत की तैयारी, जो लोग नहीं लगाया होंगे वो कर रहे होंगे, तो खेत की तैयारी में कुछ चीज़ें हैं, उस बातों पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब जुताई करते हैं तो जुताई हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है कि कल्टीवेटर से भी करते हैं तो एकदम ऊपर ऊपर ना हो करके उसको थोड़ी गड्ढा में उसको करना है। चूँकि अभी तो ये सीजन है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हर तीसरे साल पे आप लोगों को अपनी ज़मीन का गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई जनरली इस महीने तो नहीं संभव है, इस महीने करने से फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। गहरी जुताई करना है आपको मई जून के महीने में, जब सूरज का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उस समय आपको करना चाहिए। इसके करने से क्या होता है कि जितने भी रोग जो पौधे को करता है, जो शुरुआत में जो पौधा जब हमारा बहुत छोटा रहता है तो उसको संक्रमित करता है, तो उनसे रोग करने वाले कारक को सूरज के जो प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश जो है उनको मार देते हैं, जिसके चलते ये संक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तो रोगों से बचाव होता है, दूसरा जो है कीट के जीवन चक्र का कोई भी जो स्टेज होता है वो अगर सॉइल में है, ज़मीन में है, तो वो ये ज़्यादा तापमान से, धूप के प्रकाश से वो मर जाते हैं। तो साथ ही साथ जो बहुत सारे जो कीट को जो चिड़िया हैं वो चुन करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गहरी जुताई के फ़ायदे। अब हम लोग चलते हैं उर्वरक के बारे में, थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो आपको जो उर्वरक है उसको कब कब देना चाहिए, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उर्वरक हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी खड़े फसल में भी वो फास्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो ये खरीज फसल में जब फास्फोरस और पोटाश डालेंगे तो इनका जो उपलब्धता होता है, ये अगर आज हम उसको छींटते हैं प्लांट में तो इसकी उपलब्धता में होते होते महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर उर्वरक जो है देने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक सही समय है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधी मात्रा यूरिया का जो अनुशंसित है मक्का के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान आजकल हाइब्रिड मक्का लगाते हैं तो उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय और पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की। आपको खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद पाटा दे करके जब हम बीज लगाते हैं तो उस समय आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा शुरू में छोटा रहता है तो जितना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो तो मिलेगा, लेकिन फास्फोरस और पोटास लगभग एक महीने के बाद जब उपलब्ध होगा तब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, ऐसे आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो रेस्ट जो नाइट्रोजन है उसको जो आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं तो उसको पुनः दो पार्ट में आधा आधा कर करके, एक जब नी हाइट होता है, मतलब नी हाइट कहते हैं जब आपके ठेहुने के हाइट का हो तब, और दूसरा जब उसमें धनवाल जब आने वाला होता है उस समय आपको प्रॉपर सिंचाई के साथ आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पोटेशियम जो होता है, अगर आप कम मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं तो ये आपके पौधे के जो रोगों से लड़ने या कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। अगर पोटेशियम आप कम मात्रा में देंगे तो आपके जो फसल होंगे उस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है कि ज़्यादा हो और वो, लेकिन अगर आप पोटेशियम जो समुचित मात्रा में देते हैं तो इस पर कीट वो पौधा जो होता है वो मजबूत होता है और उसके चलते जो है उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है। तो ये आप पोटेशियम के बारे में आप समझ लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जब आप उर्वरक जब दे दिए तब होती है कि भाई बीज का चुनाव कैसे क्या करना है। तो बीज आप अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लेंगे, और बीज में भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीज एक तो हाइब्रिड होना चाहिए, क्योंकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो अगर बीज होती है तो उसमें रोग और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। एक जो साधारण प्रकार का अगर बीज हम लगाते हैं वो, और एक जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो उत्पादन में ही अंतर होता है और साथ ही साथ इसमें रोगों और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो बीज आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता वाली लेनी है। अब ये बीज आपको मिलेगी कहाँ से, इसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो बीज जो है अच्छे दुकान से ले, और वहाँ उनसे कैश मेमो का डिमांड करें, मांग करें, और कैश मेमो जो होता है ओरिजिनल बिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसका लॉट नंबर रहता है, सारा डिटेल रहता है उसमें दिया हुआ। तो इनकेस अगर कभी कोई आपको अगर बीज का शिकायत होता है, समय से अगर पहले उसमें अगर फ्लावरिंग हो गया, फूल आ गया, या दाना सेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है आपको, अगर आपका कैश मेमो होगा तभी कृषि विभाग या कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो ये होगा कि कहाँ से बीज लाएं, तो ये आपको रसीद लेनी है ओरिजिनल कैश मेमो के साथ, और उसको आपको लगाना है। टाइमिंग का भी सही उपयोग करना चाहिए, अभी उपयुक्त टाइम चल रहा है उसको आप लोग लगाइए। अब क्या है कि बीज जो आप लेते हैं उसको उपचारित करना है। अब वो उपचारित कैसे करें, उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उपचार करने का दो, चूँकि ये मक्का है इसलिए दो चीज़ों से उपचार करने से ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो करना है कि रोगों से इसका कैसे बचाव हो, तो रोगों से जो बचाव होने के लिए इसका हम लोग कार्बेंडाजिम से हम लोग इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसका 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलो सीड की दर से आपको कार्बेंडाजिम लेना है, और पानी उतना ही मिलाना है जितना कि जस्ट ये बीज आपको उसमें मतलब ये भींग जाए, और इसको आपको पक्का फर्श पे या पॉलीथीन जो आता है पॉलीथीन सीट उस पर करना है, ज़मीन पे कभी इसको ना करें। और ये जब भी बीज उपचार करते हैं आपको ठंडे में करना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको रोगों से लड़ने। इससे क्या होता है, ये जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदनाशी है, और ये आपके पौधे को, जो पौधा आपका छोटा छोटा होता है उसको लगभग 21 दिन तक आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके मिट्टी में मिट्टी जनित फफूंद भी होगा तो ये अप टू बहुत हद तक आपके फसल को ये बचाता है। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक से भी इसको जो है बीज उपचार करना चाहिए। तो मक्का के केस में क्योंकि कहीं कहीं पे ये हम लोग रबी में लगा रहे हैं इसको, तो इसमें दीमक और इस सब की भी समस्या हो सकती है, दूसरे जो कीट है उनके भी जो शिशु है वो मिट्टी में हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 AC प्लस साइपरमेथ्रिन 5 AC ये जो द्रव के मात्रा में ये पाए जाते हैं कीटनाशी, तो इसका आपको जो मक्का का बीज है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति की दर से इसको आपको किसी भी पात्र में या जो पॉलीथीन का जो पैकेट आता है, मक्का का जो पैकेट आता है, दो केजी वाला जो आता है, तो उसी में डाल करके आप दोनों हाथ से उसको हिला दीजिए, और हिलाने के बाद पुनः जो है इसको पक्का फर्श पे इसको आप सुखाइए, और सुखाने के बाद तब जा करके आप इसको खेत में लगाना है। इसको पुनः अब खेत में कैसे लगाना है, तो कई किसान भाइयों को रहता है कि अगर जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम कम करेंगे, और फिर लाइन में पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको भी कम करके, अगर जो मक्का के जो पौधा है उसकी संख्या अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। लेकिन इसके उल्टा भी होता है, जब इस सारा एक अनुशंसित मतलब इसका जो दूरी होती है जो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, और पुनः उसमें 20 सेंटीमीटर का जो होता है लाइन में पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए, क्योंकि इसे अगर कम आप रखते हैं तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे जो मक्के का पौधा है उसको सभी पार्ट में नहीं लगता है, और जिसके चलते रोग भी होने की समस्या रहती है, और कीटों के जो जीवन चक्र के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था नीचे में जाके कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, और छुपने के बाद जो है वो आपके फसल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ करना चाहिए, और उसके बाद अगर आप लाइन से लाइन कर दिए देन आपको जो पौधा है उसको हमेशा आपको खेत पे अपने जाते रहना चाहिए। खेत पे जाते रहने से क्या होता है कि आपको अगर कोई कीटों का अगर उस पर समस्या होगा, आक्रमण होगा, तो आप देख पाएंगे और उसका जो है समुचित आप उपचार कर पाएंगे।
0: जी, तो अगर हम बात करें कीटों की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं इसके बारे में बताएं।
9: हाँ, ये कीट एक तो कटवर्म जो मक्का में बहुत अभी जब आपका पौधा जब छोटा छोटा होता है तो वो आता है कटवर्म, और दूसरा है जब पौधा फिर आपका जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसमें तनाछेदक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, और उसके बाद तनाछेदक के साथ साथ कभी कभी क्या होता है एक फॉल आर्मी वर्म जो कीट है जो पहले नहीं पाया जाता था लेकिन विगत कुछ सालों से उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, तो वो मुख्यतः ये रहते हैं। उसके अलावा भी कई कीट है लेकिन इन ये तीन कीटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ग्रास हॉपर है जो आपको पत्तियों पे खाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन तीनों तीन कीटों पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि क्या है, उनको कैसे आप पहचानें, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, ये कटवर्म का आप लोग अपने अलग अलग जगहों पे लोकल भाषा में उसका कुछ और भी नाम है हो सकता है, ये आपको बताते हैं कि ये कैसे आपके फसल को नुकसान करता है। तो आप जब अपने जो हम मक्का जब लगाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जब ये दो पत्तियों के फेज में होता है, ये जर्मिनेशन के अंकुरित होने के बाद के जो बाद है उसके बाद ये जनरली आपको कटवर्म की समस्या हो सकती है। तो कटवर्म में क्या होता है कि इसके जो शिशु होंगे वो लंबा लंबा शिशु होते हैं, और वो जनरली ज़मीन का जो ढेला होता है और उसमें ये छुपा रहता है या दरार रहता है उसमें छुपा रहता है ये दिन को, लेकिन जो ही शाम होता है ये निकल करके आपकी जो फसल है उसको ये नीचे से ही कट कर देते हैं, मतलब जड़ के ऊपर से ये कट कर देते हैं, क्योंकि पौधा बहुत छोटा होता है, मुलायम रहता है, जिसके चलते कभी कभार किसान भाइयों को क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर ये काट दिए ये जो कीट है इसके जो शिशु है, तो आपको पुनः किसान भाइयों को वहाँ पे गैप फिलिंग करना पड़ता है मक्का के दूसरे बीजों से। तो ये कटवर्म है, तो अब इस कटवर्म से कैसे आपको निजात पाना चाहिए, तो अगर ये इसकी कहीं कहीं समस्या है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको ये क्लोरपाइरीफॉस 50C प्लस साइपरमेथ्रिन 5EC की जो मात्रा है वो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको पूरी तरह से इसको जमीन पे और जो आपका छोटा पौधा है उस पे शाम के समय शाम के 4 बजे के आसपास इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका जो है वो रोकथाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो शुरुआती कंडीशन है। उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जब पौधा आपका जो बड़ा होगा तो तना छेदक का समस्या हो सकता है। तो ये तना छेदक कैसा होता है? ये तना छेदक आप देखेंगे कि आपका जो मक्का है तो उनकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियां में लाइन से तीन तीन गोला गोला छिद्र ये हो सकता है छिद्र मिले। तो पुनः छिद्र के साथ साथ होता है क्या कि जो उसका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है उस पोर्शन में जो है ये इसके जो है शिशु रहते हैं और वहाँ पे वो उसको वो खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं, साथ ही साथ स्क्रीटा भी उसमें वो डालते रहते हैं। तो ये है तना छेदक का। तो तना छेदक की जब समस्या हो और इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, अगर 100 पौधे में अमूमन अगर 5 पौधे में ऐसा समस्या अगर 5 से ज़्यादा में देखा जाता है तब आपको इसके उपचार के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे है 5 से इसकी संख्या कम है तो ये उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकता है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसके कीटनाशी को छिड़कने में और ख़रीदने में और छिड़कने में जितना पैसा आपका लगता है उससे कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तब आपको इसके उपचार के लिए आपको आगे आना होगा। तो एक तो हो गया, अब इसके उपचार कैसे करें? तो इसके उपचार करने के लिए अगर पौधा आपका छोटा है, आपका अगर पौधा आपके ठोने से नीचे कंडीशन में है तो उस कंडीशन में आप जो दानेदार जो कीटनाशी है जो कटाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4G के नाम से आता है तो इसको एक जर्दे के डब्बा में डालना है और जर्दे के डब्बा में छेद करके जैसे जर्दा पान पे डालते हैं लोग उसी ढंग से आपको जो मक्का का जो गभा है उस गभा में उसको डालना है, ऐसे छींटना है ताकि 2-3 उसके जो हमारा जो कीटनाशी है क्लोरोपाइरीफॉस दानेदार उसकी ये दानेदार कीटनाशी है उसका दाना जो है उसके कंठ में चला जाए। क्योंकि ये कीट जो कंठ में छुपे रहते हैं तो ये कीट के बॉडी में ये स्पर्श करते ही सटते ही ये कीट मर जाता है और आपका जो है जिस पोर्शन में जिस पॉकेट में जिस क्षेत्र साइड में अगर ये समस्या उधर ही सिर्फ छिटने से आपको काम हो जाएगा, आपके पूरे फसल पे छिटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चलते क्या होता है कि एक तो हमारा जो कीटनाशी की मात्रा कम लगती है और हमारे जो मित्र कीट है वो भी मरने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आपको ये तना छेदक के लिए। लेकिन हाँ, अगर पौधा पर बहुत जब बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में आप ये जो दानेदार दवा जो है नहीं छीट सकते तो उस कंडीशन में आपको जो लिक्विड वाला दवा है उसको आपको गटोर से स्प्रे करना चाहिए और उस कंडीशन में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसकी मतलब 10 लीटर पानी में 4 ग्राम मात्रा आपको डालना है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा कीटनाशी है जिसको पहले ये झिल्ली की तरह होता है, इसको पहले आपको किसी भी पात्र में घुला लेना है और घुलाने के बाद तब आपको स्प्रेयर में डाल करके फिर पानी डालना है और उसके साथ कुछ मात्रा में स्टिकर मिलाना है और स्टिकर मिला करके अच्छी तरह से उसको तब आपको स्प्रे करना है गटोर से पूरी अच्छा से स्प्रे करना है और स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटा छोटा बूंदा है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी पूरा निकल रहा हो, इससे आपकी दवा भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो सॉयल और सारा हमारा जो सिस्टम है वो उस पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया तना छेदक के लिए। अब एक आती है जो फॉल आर्मी बम, तो ये फॉल आर्मी बम हो सकता है कि सब कहीं पे आता है कहीं पे नहीं भी आता है, लेकिन इसको ये बहुत आक्रामक है, ये तना छेदक से भी ज़्यादा बहुत जल्दी ये आपके फसलों को बर्बाद करता है, इसीलिए इसका नाम फॉल आर्मी वर्म रखा गया है। क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका दूध से तीन दिन में आपके फसल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो ये आपको जो तना छेदक होता है इससे ये ज़्यादा मोटा होता है, लंबा भी होता है, इसके बॉडी पे ये काला काला धारी होता है, और साथ ही साथ इसके जो टेल जो पूंछ पोर्शन जिसको बोलते हैं, तो पूंछ पोर्शन में चार छोटे छोटे बिंदु, काले काले बिंदु होते हैं जो एकदम स्क्वायर के रूप में रहते हैं, जैसे कि अगर चारपाई या जो भी स्क्वायर होता है उसके चारों साइड पे ये बुंद रहेंगे। साथ में अगर आगे पोर्शन में देखिएगा तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो उल्टा वाई का शेप उसके सर पे बना हुआ रहता है। तो ये फॉल आर्मी वर्म है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जनरल कीटनाशी है उसे ये कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इसके भी छः इन स्टार है, इसके जो छः स्टेजेज हैं, अगर ये इनिशियल कंडीशन में है तो सिंपल कीटनाशी से भी ये इनका रोकथाम हो सकता है, लेकिन अगर ये इन स्टार अगर ये एडवांस इन स्टार में है, जैसे 4-5 और उसके आगे के इन स्टार में है, तो उस कंडीशन में आपको मतलब इससे जो हार्डी इंसेक्टिसाइड है वो देना है। तो जो शुरू वाला अगर फेज है जैसे स्टेज 1 और 2 में है, तो इमामेक्टिन बेंजोएट हमने जो बताया है उससे भी ये नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 स्टेज में है तब स्पाइनोटोरम 11.11.7% की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको, और साथ में स्टिकर लेकर के इसको छिड़काव करना है शाम के समय में। और अगर इसकी उपलब्धता नहीं हो तो थायोमेथोक्जाम 12.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथोक्जाम प्लस लैम्डा साइलोथ्रीन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मी वर्म में क्या होता है, ये आपके पत्तियाँ को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जब बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए और इससे आपका इससे आप निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मक्का का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
6: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
8: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
9: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
8: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टी विटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
9: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
8: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और चीज जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
9: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
9: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
11: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 cm लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में
9: व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ग्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

जी सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से।

0: कुमार मौर्य जी का।
1: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओ एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
1: मेघालय, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियाँ प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर।
1: जी,
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है, और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है।
1: जी,
0: खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
1: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं, अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
1: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
1: श्रोताओ कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी, नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओ दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था।
1: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
1: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
1: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया।
1: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
1: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि 4 बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओ, किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है।
1: जी।
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
1: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति, नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो, तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है,
1: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने 4 बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
1: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम 3 बातों को जरूर याद रखें।
1: जी।
0: तो पहली बात,
1: संकट में घबराएं नहीं।
0: दूसरी बात,
1: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
1: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम।
1: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी।
1: जी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: बहुत ही बढ़िया
5: बोला।
6: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना नहीं,
6: अरे
5: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
7: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
6: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
5: प्लीज
7: दिखा दो ना।
6: अरे चुप, देखो मैडम आ रही हैं। चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
8: बहुत अच्छी।
9: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
10: जी मैडम।
3: शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
10: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
10: जी
6: मैडम, आप ही कहते हैं इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
6: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
10: लीजिए मैडम।
3: हाँ इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
6: अरे किताब भी नहीं है।
3: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
10: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
6: सैनिकों के बारे में?
10: सैनिकों के बारे में है।
6: अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
10: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है। वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
10: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
9: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
6: सैनिकों को करनी होती होगी।
10: बहादुर है हमारे सैनिक।
6: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
9: मुझे भी।
6: इसके बाद मैं नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
10: हाँ हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
6: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
6: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
10: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
8: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
10: जी मैडम।
3: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
10: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
3: क्या बात है।
6: अच्छा मेघा ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
10: बताती हूँ सुनो। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह। अच्छा मेघा क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
10: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
3: शाबाश।
10: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
6: मेघा ऐसा क्या किया था उन्होंने?
10: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
4: ओ मैडम जी।
3: जी मोहन भैया क्या बात है, आ जाइए।
4: मैडम जी आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
3: ओ हाँ। मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
4: ठीक है जी।
3: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
10: जी मैडम।
3: मेघा देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
6: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
5: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, फौजी अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन।
6: वाह देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
8: मोहित लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
3: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
11: नमस्ते सर।
12: नमस्ते बच्चों।
3: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
10: जी मैडम।
12: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
10: धन्यवाद सर।
11: धन्यवाद सर।
12: सबसे पहले तो मेघा मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
10: धन्यवाद सर।
12: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
10: सर मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
12: बिल्कुल ठीक। बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
3: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
12: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
11: एक हिंदुस्तान।
12: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को ये नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई, हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
13: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
12: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
14: शाबाश जांबाज, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तालाब में से आए, लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, चलो ये काम करो। फायर, फायर।
12: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
14: सर, सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
12: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
14: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
12: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
14: सर, सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण गिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर, फायर, आतंकी, जय, एक एक को भूत डालो, कोई ना बचने पाए। फायर।
12: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
14: जवानों, आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचना नहीं पाए, आगे बढ़ो। फायर।
12: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
14: बाला सिंह,
12: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खास तौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: नमस्ते क्लास। टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
5: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
12: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
11: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
13: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
11: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
14: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
11: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
15: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
11: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
16: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। जी हाँ, आज फिर से एक बार मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें होंगी कुछ उन्नत बातें खेती से जुड़ी। तो आज भी बहुत ही खास विषय हम लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा विषय है खेसारी की उन्नत खेती। और हमारे साथ हैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में डॉक्टर CK पांडा जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले आइए जानते हैं खेसारी की फसल के बारे में। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये बहुत ही कठोर फसल है जो विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे कि अत्यधिक नमी हो, जल जमाव हो, सुखाड़ हो, इसमें सहने की क्षमता होती है। तो आज इसकी खेती के बारे में जानेंगे हम, और डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल भी करेंगे और उसके जवाब भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर खेती की बात आती है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बताएं कि हमें खेत की तैयारी यानी खेसारी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए।
17: नमस्कार किसान बंधु, और मैडम नमस्कार आपको भी। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा इस फसल के बारे में आपके साथ बात कर लेता हूँ।
11: जी जी,
17: देखिए आप जैसे बताया ना, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, तो सूखाड़ में बाढ़ में एक फसल है जो सरवाइव कर जाता है
11: जी।
17: और ये जो फसल है ना, ये बहुत दिन से हमारा देश नहीं, सिर्फ इंडिया मतलब भारतवर्ष, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रदेश, ये सब देश में भी इसका आबादी होता है। ये छोड़ के भी साउथ अफ्रीका का कुछ देश में और भी देश में इस फसल की आबादी होता है। ये फसल का एक हम फलीदार फसल भी बोलते हैं, इसको लिगुमिनस फसल भी हम लोग बोलते हैं
11: जी।
17: लिगुमिनस फसल होने के कारण ये मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक होता है। कैसे
11: जी?
17: ना मिट्टी में इस फसल के आबादी के कारण हर हेक्टर में प्रति हेक्टर में 37 kg से 40 kg के आसपास नाइट्रोजन जुड़ जाता है।
11: अच्छा,
17: तो जब सबसे बड़ा अभी के जमाने में मिट्टी के स्वास्थ्य बचाने के लिए इस फसल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है
11: जी जी।
17: और इसका जो डाल है, इस डाल में 31% के आसपास प्रोटीन रहता है, 41 के आसपास कार्बोहाइड रहता है, 17% के आसपास डाइटरी फाइबर रहता है।
11: अच्छा।
17: तो आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन काफी है, 31% मतलब काफी है। और इसको पोर मैन पाल्स भी बोला जाता है। क्यों? ये ऐसा एक फसल है, कोई भी जगह पर आप इसको बुआई कर दीजिए, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल रह जाएगा तो मिट्टी के साथ इसका जुड़ जाएगा, तो इसका बस जर्मिनेट कर जाएगा तो ये क्रॉप स्टैंड कर जाता है। और पहले आप जो बताया है, जो क्वेश्चन पूछे थे, जो इस फसल की आबादी करने के लिए लैंड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, देखिए खेती कैसे करना चाहिए। देखिए इस फसल को दो तरह से आबादी किया जाता है, एक है पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग कहते हैं।
11: अच्छा।
17: दूसरा होता है डायरेक्ट।
11: अच्छा।
17: मेनली इस क्रॉप को पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग में कल्टीवेशन किया जाता है। पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग मतलब हुआ क्या? एक्चुअली ये जो धान का जो जमीन में इस फसल को खेसारी का जो बीज है उसको बुआई दिया जाता है। कैसे ना, धान का फसल कटने की 10 से 15 दिन पहले खेसारी का जो सीड है, बीज जो हम कहते हैं, उसको छिटका दिया जाता है। तो छिटकाने से पहले क्या देखा जाता है, नमी व मॉइस्चर लेवल मिट्टी में ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक ठाक होना चाहिए मतलब जो उसका मतलब इतना मॉइस्चर रहना चाहिए जो बीज जर्मिनेट किया जाए
11: जी।
17: तो इसी को कहते हैं यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग कहते हैं।
11: अच्छा।
17: और ज्यादा से ज्यादा यही फॉलो किया जाता है। क्यों? देखिए इस फसल जहां पर यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग में आबादी किया जाता है, धान के बाद दूसरा कुछ फसल नहीं लिया जाता है। तो एक फसल ऐसा एक फसल है, ज्यादा दिन का भी नहीं है, 115-120 दिन के अंदर भी उसका मैच्योरिटी भी हो जाता है, आ जाता है। एक कहावत है, शुरू किया जाता है इसका आबादी दिवाली के बाद, मतलब सोइंग का टाइम शुरू होता है दिवाली के बाद और होली से पहले, इसका होली के आसपास इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है।
11: अच्छा।
17: और बाकी रह गया डायरेक्ट सोइंग के बाद। तो डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है, तो डायरेक्ट सोइंग के लिए आपको जमीन को तैयारी करना पड़ता है। इसका मतलब मान लिया पहले आपका फसल धान था, तो धान हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके बाद मिट्टी का नमी के आधार पर 1 से 2 बार उसको जमीन को प्लाइंग करना पड़ता है।
11: अच्छा।
17: तो उसके बाद बीज को मॉइस्चर व नामी जैसे रहेगा उसके आधार पर उसको सोइंग किया जाता है। सोइंग करने के बाद वो जर्मिनेट कर जाता है, बस यही है। तो मैडम उसके बारे में थोड़ा सोइंग टाइम के बारे में और एक बार रिपीट कर देता हूँ, मतलब आप टाइम के आधार पर बताए थे अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके नवंबर का सेकेंड वीक तक इसका सोइंग किया जाता है। बीज को सोइंग किया जाता है, बोई किया जाता है।
11: अच्छा।
17: और इसका फसल हार्वेस्टिंग का टाइम होता है आप मान लिए मार्च का एंड के आसपास,
11: मतलब होली के आसपास,
17: हाँ होली के आसपास उसका हार्वेस्टिंग किया जाता
11: किया
17: है,
11: जा सकता है।
17: और इसके बाद आप पूछ रहे इसका उन्नत प्रभेद के बारे में,
11: हाँ।
17: यही बात है ना। देखिए इसका उन्नत प्रभेद बहुत इम्पोर्टेंट इशू होता है, लेकिन दूसरे क्रॉप से थोड़ा इसका इशू कुछ अलग है। क्यों, आप सब लोगों को पता है एक समय इस क्रॉप को बैन किया गया था
11: जी,
17: तो उसका कारण भी था इस क्रॉप में एक केमिकल रहता है जो न्यूरोटॉक्सिन के केमिकल है जिसको बीटा ऑक्साइल डाई एमाइनो प्रोपाइनिंग एसिड कहते हैं। तो साइंटिफिक आधार पर नहीं नहीं जा सकते हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं। तो एक केमिकल रहता है जिसके कारण लेथाइरिज्म होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किए थे और रिसर्च भी चल रहा था, रिसर्च के आधार पर कुछ वेराइटी का प्रभेद निकल के आया है। जैसे आपका इनिशियल फेज में आया था निर्मल करके एक वेराइटी व प्रभेद, इसके बाद आया है प्रतीक, प्रतीक है, रतन है, महातेवड़ा है, इस प्रभेद है। इस प्रभेद का, इस प्रभेद सब का खूबियत व स्पेशलिटी यही हुआ, इसमें जो केमिकल बारे में अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया उसका अमाउंट बहुत कम रहता है, 0.1 से नीचे रहता है। और ये रिकमेंडेशन है लेथाइरस का कोई भी प्रभेद जिसमें ओडाब व कोई कोई बुआ भी इसको कहते हैं, उसका परसेंटेज 0.1 से कम होना चाहिए। और मैं जो चार प्रभेद के बारे में आप लोगों को अभी अभी बताया, इस सब में 0.1 से कम है, तो इसके आप आराम से इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं।
11: तो सर यहाँ पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीज दर की, और उसके बारे में बताएं, और जो दूरी है बोने की दूरी क्या होनी चाहिए, बीज दर क्या होनी चाहिए वो बताएं।
17: अच्छा देखिए, इसका हम पहले ही बताया हूँ, इसको दो तरह से स्विंग कल्टीवेशन किया जाता है, एक पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग, दूसरा है डायरेक्ट स्विंग किया जाता है।
11: अच्छा।
17: तो पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग में हम लोग उसको ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, मतलब छिटका देते हैं, तो छिटका के कारण थोड़ा ज्यादा सीड का जरूरत होता है। इसमें 70 से 80 केजी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 70 से 80 केजी पर हेक्टर सीड को यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग आप ब्रॉडकास्टिंग भी बोल सकते हैं, इसमें कर सकते हैं आप लोग। और लाइन स्विंग के आधार पर आएंगे तो, अर्थात अब ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करना चाहेंगे तो, तब उसका सीड रेट होता है 40-60 केजी पर हेक्टर। और इसमें लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर के आसपास, और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर के आसपास, इस डिस्टेंस को इसमें मेंटेन किया जाता है
11: जी। फिर जो है बीज उपचार की बात करते हैं, जब बीजों को कुछ रोगों से बचाना हो तो फिर क्या करना है?
17: हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, बीज उपचार बहुत जरूरी है, जिसको बीज को टीकाकरण भी हम लोग कहते हैं। तो क्यों, बीज उपचार कर लेंगे तो इन फ्यूचर में बहुत रोग से हम फसल को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए बीज उपचार के लिए मोनली किसान भाई सबको पता ही है कार्बेंडाजिन वो लोग यूज करते हैं 2.0 ग्राम पर केजी, तो वो सीड सोइंग के एक दिन पहले कर लेना चाहिए। और इसमें बायोफर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन किया जाता है। बायोफर्टिलाइजर को एप्लीकेशन इसीलिए किया जाता है, देखिए जो राइजोबियम जो कल्चर होता है, राइजोबियम कल्चर को सीड के साथ मिक्सिंग करने से क्या फायदा होता है ना, ये नोड्यूल जो फॉर्मेशन जो गांठ होता है खेसारी का सिकड़ में रूट में जो जाड़ होता है, उसमें क्या होता है ना, वो कुछ नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं।
11: अच्छा।
17: तो उस नोड्यूल में राइजोबियम रहता है, और राइजोबियम कल्चर आप देंगे तो नेचुरली उसका नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा। तो इसलिए घुमा के हम बोल सकते हैं फसल के अपने लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है, और फ्यूचर जो क्रॉप है उसके लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है।
11: अच्छा, तो ये बात हो गई बीजोपचार की। और उर्वरक और खाद की बात करते हैं, जब खेती होता है तो उस समय उर्वरक और खाद बहुत ज़रूरी होते हैं, डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएं कि कौन से उर्वरक और कौन से खाद देनी चाहिए इन्हें।
17: देखिए ऐसे जो ऐसे फसल है जो पैराक्रॉपिंग व यूटेरा क्रॉपिंग में इस फसल को आबादी किया जाता है, तब तो किसान लोग उसको डायरेक्टली फर्टिलाइजर देने के बाद उर्वरक देने के लिए स्कोप नहीं रहता है। क्यों, मैंने पहले ही बताया जो धान का हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले उसको सीड को सोइंग किया जाता है, तो उसमें तो आपका उर्वरक देने का कोई जगह ही नहीं रही है। तो मतलब धान में जो उर्वरक दिया गया था व फर्टिलाइजर व मैन्योर जो दिया गया था उसी का रेसिडुअल जो है उसी को यूज किया जाता है। और डायरेक्ट सोइंग में हुआ तो उसके आधार पर 100 केजी डीएपी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 100 केजी डीएपी पर हेक्टर इसको दिया जाता है, तो इसमें फसल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाता है, इसी में काफ़ी काम हो जाता है। और एक इशू होता है इसके, जैसे मान लिया फर्टिलाइजर को स्प्रे भी करते हैं।
11: अच्छा।
17: फर्टिलाइजर स्प्रे करने का क्या जरूरत पड़ जाता है, मान लिया आपका पॉट फ्लावरिंग हो गया, पॉट फॉर्मेशन का आसपास टाइम आ रहा है, उस समय यूरिया का स्प्रेइंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा पॉट का भी साइज बढ़ भी जाता है और आपका जो यील्ड फॉलन जो है वो भी बढ़ जाता है।
11: अच्छा, तो फिर इसमें सिंचाई की भी जरूरत होती है या नहीं?
17: देखिए, इस फसल में हम पहले ही बताया ये ज़्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट बा क्रॉप है, वह क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का जरूरत मोरलेस नहीं होता है। तो नमी बहुत कम हो गया तो वो आप थोड़ा सा नमी के नमी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केस में हम लोग देखे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग देखे हैं कि इसमें सिंचाई देने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नमी बहुत घट गया तो आपका पानी देने का बंदोबस्त है तो पानी दीजिए, नहीं तो आपका ये फसल हो जाता है।
11: हाँ, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि क्लाइमेट रेजिलेंट है ये, तो इसलिए ये आराम से बिना सिंचाई के भी हो सकता है।
17: हाँ।
11: तो इसके बाद खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानना चाहेंगे।
17: देखिए, इसको हम लोग खेसारी को और भी एक बात बोलते हैं, ग्रास पी भी बोलते हैं, घास की तरह होता है। ये ऐसा होता है ना, ये खुद ही एक अपने में इतना ग्रोथ होता है इसका ना, उसके आसपास जितना भी वीड वगैरह जो भी रहता है उस खुद को ये कंट्रोल कर लेते हैं।
11: अच्छा।
17: तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीड मैनेजमेंट के लिए इतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, क्रॉप खुद ही अपने से जो उसके आसपास जो वीड गए उसके ऊपर स्मूदरिंग इफेक्ट हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको कर देते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा कुछ किसान का कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है।
11: तो इसके बाद पौधा संरक्षण उपचार के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे।
17: देखिए, एक क्रॉप जैसे क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप भी है और उसके साथ ये भी है, इस क्रॉप में कीड़ा बोलिए डिजीज का इन्फेस्टेशन बहुत कम होता है। फिर भी हम लोग कुछ कुछ जगह पर देखे हैं इसमें एफिड होता है, एफिड का थोड़ा बहुत अटैक होता है, तो लेकिन एफिड का अटैक होता है तो तब आप उसको औसत दवा देने का जरूरत होता है, तो उसके आधार पर आप डाइमिथोएट 30 से एट द रेट ऑफ 1.7 ml पर लीटर उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक रास्ट होता है, तो उसके आधार पर देखिए, एक रास्ट जब दिखा जाएगा तो तब तो आपको कुछ मेडिसिन देने का जरूरत पड़ता है, लेकिन उससे पहले आप सीड ट्रीटमेंट ठीक से करके रख देंगे तो रास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कार्बन डाइजिन देके आप उसको ट्रीटमेंट करके रखे हैं तो सीड ट्रीटमेंट किए तो उसमें रास्ट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो किसी कारण पर आ गया तो मैंगोजेब 75W पे एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर पानी के आधार पर आप दीजिए। अच्छा। कंट्रोल हो जाएगा।
11: अच्छा, अब बात आती है अंत में कटाई की, तो हमारे किसान भाइयों को कब समझ जाना चाहिए कि अब इसकी कटाई कर देनी चाहिए और उसका भंडारण कैसे करना चाहिए?
17: अच्छा, देखिए, एक भंडारण का कटाई करने के लिए आप क्रॉप फील्ड में मतलब फसल के जमीन में आप लोग रेगुलर विजिट भी करते हैं। पहली बात है पत्ती का जो कलर है, कलर ये हो जाता है ग्रीनिश, जो डीप ग्रीन से धीरे धीरे उसको लाइट होते होते वो जो क्या बोलते हैं ना मैच्योरिटी का जो कलर होता है वो आ ही जाता है, और आप देख पाएंगे पॉट जो होता है उसका पॉट भी सूखा शुरू हो जाता है, मोर और लेस आप देखेंगे पौधा ड्राई हो गया, तब आपने वहां से उसको हार्वेस्टिंग करके लेके आइए, और हार्वेस्टर अवेलेबल है। अच्छा। तो हार्वेस्टर में जैसे आप लोग चना का हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर है, उसी हार्वेस्टर लेके आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, उसका जो क्या बोलते हैं पुआल वगैरह जो भी हो सेपरेट हो जाए, सीड भी अलग हो जाएगा। सबसे बड़ा खूबी क्या है, उसका जो स्ट्रॉ जो बोलते हैं हम लोग पुआल जो बोलते हैं उसका वो भी फोडार के आधार पर और तत्व गाही जो है बेस के लिए एक खाने का अच्छा एक सोर्स हो सकता है, एवं गांव में प्रैक्टिस भी होता है और इसमें मिल्क का परिमाण दूध का परिमाण भी बढ़ जाता है।
11: अच्छा, तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि खेसारी की फसल की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक सभी बातें यहाँ पर आप सभी को बताई गई, आप सभी को निर्देश दिए गए हैं, तो आशा करती हूँ कि आप इन निर्देशों को अपनाएंगे और खेसारी की फसल जी हाँ ज़रूर करेंगे और उन्नत खेती करके आप एक सफल किसान बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन आरजी अनु के साथ उन्नत कृषि में। कृषि

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुरवा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। और नाम से पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करके मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर उन फूलों के पौधे खेत में होते हैं तो कीटनाशकों का आपको कम प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गेंदा के पौधों की बात करें तो सूत्रकृमि, जिसे कि नेमाटोड भी कहते हैं, या फिर कुछ और भी कीटों के प्रबंधन में काफी उपयोगी माना जाता है। वैसे ही सूरजमुखी और गेंदा जैसी और भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो मिट्टी की हानि कारक नेमाटोड के प्रबंधन में बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी होती है। और कुछ ऐसे भी फूलों के पौधे होते हैं जो लाभकारी कीटों को, जो कि फसलों को, मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप अपने मुख्य फसलों के साथ फूलों के पौधों को लगाएं तो आपको आय तो मिलती ही है, साथ ही आपके फसलों को आप कीटनाशकों से बचाते हैं और आप मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। और जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों से हमें लगता है कि कितना ही आय हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा, तुरंत मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि एक रास्ते पर चलने से आपको नुकसान होगा तो आप कई सारे रास्ते खुले रखिए। और जब फूलों की खेती की बात आती है तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन के बारे में। किसान भाई बहनों और जो भी हमारे श्रोता है, आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आय का। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में भी फूलों की बहुत ज्यादा मांग है, हर तरह के फूलों की मांग है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ताजे, सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन कर आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं या आय का एक नया जरिया बना सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह से। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापक उद्यान पुष्प एवं भूदृश्य विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत फूलों के मूल संवर्धन के बारे में।
0: जी मैम, तो मैम जब हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करते हैं तो फूलों का, पुष्पों का मूल्य संवर्धन क्यों जरूरी होता है?
1: देखिए, ताजे फूलों एवं पत्तियों में अधिक नमी होने के कारण इनकी आयु सीमित होती है, जिससे हम अधिक समय तक इन्हें भंडारित नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए फूलों को मूल संवर्धित करने की तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे हम फूल की सुंदरता को काफ़ी समय तक सहज कर रख सकते हैं।
0: जी मैम, तो अगर हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करें तो मूल्य संवर्धन के कितने वर्ग होते हैं?
1: देखिए, प्रायः तीन तरीके के फूलों को हम मूल्य संवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ताजे फूलों का मूल्य संवर्धन। अगर हम फूलों को बाजार में बेचने ले गए हैं और कुछ फूल बच गए हैं तो वहीं बैठे बैठे हम उनसे कुछ ताजे फूलों में थोड़े सा कुछ ऐसे लगा के उनको मूल संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। दूसरा वर्ग हमारा ऐसे फूलों का होगा जैसे कि फूलों को हम सुखा लेंगे और सूखे फूलों से हम कई तरीके के उत्पाद बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग। और तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो फूलों को या तो हम ठंडे पानी या गर्म पानी में उबालकर, पीसकर या उसमें किसी भी तरीके से प्रसंस्करण करके हम मूल संवर्धित उत्पाद बनाएंगे, तो ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया प्रसंस्कृत फूलों का

0: संवर्धन।
1: पहले वर्ग के साथ मैम शुरू करते हैं, तो क्या फूलों के मूल्य संवर्धित उत्पादों की जब हम बात करते हैं
0: जी,
1: तो ताजे फूलों के मूल्य संवर्धन द्वारा कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
0: देखिए, ताजे फूलों से हम गुलदस्ता, मालाएं या जैसे गजरा, वेनी या फिर साज सज्जा के रूप में भी इन फूलों में, जैसे जो आजकल हम शादी ब्याह में डेकोरेटिव डेकोरेशन के चीज़ें देखते हैं, तो ये साज सज्जा भी की जा सकती है। तो आजकल जैसे शादी ब्याह बहुत ही आधुनिक हो गया है, और इसमें सिर्फ मंडप ही नहीं अपितु इसमें हम बात करें तो गाड़ी, पंडाल या यहाँ तक कि घर के अंदर की भी सजावट की जाती है। वहीं फूलों से बनी हुई रंगोली और मेहंदी और हल्दी जैसे फंक्शंस में फूलों से बने गहने भी बहुत डिमांड में हैं। तो इस तरीके के उत्पाद हम ताजे फूलों से तुरंत के तुरंत बनाकर कर सकते हैं
1: जी, अगर फूल बच गए तो उसका इस्तेमाल कर
0: जी, जी।
1: तो मैम क्या पुष्पों के जब हम मूल्य संवर्धन उत्पादों की बात करते हैं, अभी आपने अलग अलग अवसरों के बारे में बताया, तो शोका कुल अवसरों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है। जैसे उल्लासित अगर अवसरों की बात करें तो वहां तो हम बुके देते हैं या गुलदस्ता भेंट करते हैं, पर अगर हम शोका कुल सभाओं की बात करें तो वहां भी हम एक कीपाकार गुलदस्ता या तिकोनाकार या गोलाकार गुलदस्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में रीथ बोलते हैं। प्रायः इनमें हम हल्के वर्ण के फूल, क्योंकि शोक है तो हल्के सफेद से लेकर हल्के रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, और जितने ही फूल तो उतनी ही पत्तियां भी इस्तेमाल करके इनका आकार दिया जाता है। और आजकल जैसे कि कह लें कि इसमें खास बात यह है कि फूलों के साथ इसमें पत्तियां भी जो इस्तेमाल होंगी तो वो बड़ा अच्छा लुक देती हैं, मतलब फूलों के साथ उनका कंट्रास्ट इफेक्ट आता है। मेनली जैसे कि फूल हो गए गुलाब, कार्नेशन, ग्लैडुलस, एस्टर, लिली, या पत्तियां हो गई जैसे साइकस, ताड़, फर्न, इनको हम प्रयोग करके बहुत अच्छे रीथ्स बनाते हैं, और ये रीथ्स बुके के मुकाबले काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं, तो इनका भी शोका कुल सभाओं में प्रयोग होता है। और वहीं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे में गुलाब का तेल या तुलसी का तेल या इनके पौधे बगीचे में होना भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि ये भी हमारे एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं। इनसे जो निकलने वाली खुशबू होती है ये एरोमाथेरेपी में भी बहुत काम आती है
1: जी। मैम जब हम फूलों से साज सज्जा की बात करते हैं तो क्या इस वक्त हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है?
0: जी, बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि सामान्यतः फूलों की साज सज्जा के मिश्रण में हल्के रंगों की अपेक्षा गहरे रंग अधिक इस्तेमाल होते हैं, बट वहीं पर जैसे मैंने बताया शोका कुल में आप हल्के रंग इस्तेमाल करेंगे। और फूलों के संयोजन में क्या होता है कि कलियों को प्रायः हम किनारे की ओर रखते हैं, और जो भारी फूल होता है उसे हम, या चटकीले रंग का फूल होता है उसे हम सेंटर पर रखते हैं। प्रायः हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि फूलों के अधिक रंग या अधिक तरीके के फूलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके के फूलों का ही इस्तेमाल करके हमको गुलदस्ता या साज सज्जा करनी चाहिए। और वहीं पर कृत्रिम रोशनी अगर है तो हल्के रंगों की जगह गहरे रंग इस्तेमाल करने चाहिए, और नेचुरल लाइट में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फूलों को यदि पात्र में रखना हो तो फूलों की लंबाई पात्र से कम 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए, और प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए हमें प्रायः लचीली टहनियाँ या लटकने वाले क्लाइंबर जो फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अभी हमने बात करी थी कि गाड़ी को जब हम शादी ब्याह के लिए सजाते हैं तो उसमें भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे गाड़ी के रंग से विपरीत हो, तभी वो निखर के आएगी उसकी सजावट। और यदि कार को बहुत दूरी तय करनी है तो हमको फूलों की डंडियों के नीचे गीली फोम का इस्तेमाल करना चाहिए, और कम खर्चे में अगर गाड़ी को सजाना है तो छोटे छोटे बटन होल का प्रयोग करना चाहिए। अधिक खर्चे में भी हमें भारी भरकम सजावट से बचना चाहिए ताकि गाड़ी चलाने में कोई असुविधा ना हो, और प्रायः सफेद गाड़ियों के लिए हमें रंग बिरंगे फूल जैसे ऑर्किड, जरबेरा या गुलाब या फिर हरी चटकीली पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही में इनके रिबन या हल्के नेट या फ्रिल को इस्तेमाल करके भी हम गाड़ी को सजा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम रंगों पर सही ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी सजावट निखर के आएगी।
1: जी मैम, मैम अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम सूखे फूलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो वो किस प्रकार किया जा सकता है?
0: देखिए, यहाँ पर फूलों को सुखाकर फिर हम अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ये जो उद्योग है ये बड़ा नवीन उद्योग है, क्योंकि इसमें हम सूखे फूलों को उनके ढांचे के बिगाड़े बगैर या उनके नेचुरल प्राकृतिक रंग को संजो के सुखाते हैं एवं अन्य विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि हो गई आपकी फ्रेम जड़ित तस्वीरें, बधाई कार्ड, कवर या पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड या शीशे की कटोरी में बने हुए पेपर वेट, ऐसे बहुत तमाम इस तरीके के उत्पाद हैं जो हम सूखे फूलों से बना सकते हैं। ये उत्पाद टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल भी, और अन्य उत्पाद जैसे जो और उत्पाद हैं टू डायमेंशनल में हैं ग्रीटिंग कार्ड या फिर पॉट पोरी या फिर आपका वॉल हैंगिंग हो गया, पुष्प विन्यास हो गया, या थ्री डायमेंशनल में गुलदस्ता, पेन स्टैंड, इस तरीके के उत्पाद हो गए जो होटलों और मॉल में बहुत मांग में हैं। साथ ही ऐसे उत्पादों से जो खाली बैठी घर में महिलाएं हैं या कोई भी वर्ग है वह इसका बहुत फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। इसमें हम कबाड़ का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जो कबाड़ है उसके साथ खराब फूलों को सुखाकर उनसे उत्पाद बनाते हैं, और वहीं इनकी डिमांड अधिक होने के कारण इनकी जो बिक्री दर है वो बहुत अच्छा है।
1: जी मैम, मैम आपने एक और वर्ग की बात की थी प्रसंस्कृत फूलों के बारे में
0: जी,
1: जहां आपने बताया था उबाल सकते हैं, तो फूलों को उबाल कर कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
0: देखिए, हर तरीके के तो फूलों को नहीं उबालते हैं, जो फूल टेम्परेचर को सहनशीलता जिनमें रहती है उनको उबालते हैं, या फिर कुछ को ठंडे पानी में ही हम रख के उनसे तेल निष्कर्षित कर सकते हैं या रंग निष्कर्षित कर सकते हैं, और इनसे हम हर्बल गुलाल, धूपबत्ती या फिर फूल अगर हमारा बहुत तादाद में बच गया है तो इसे गड्ढे में डाल के हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर जो बचे हुए फूल हैं उनको सुखाकर पाउडर बना के मुर्गी के दानों में मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो होता है क्या है, अक्सर इसके लिए गेंदा का प्रयोग किया जाता है, जब डेकोरेशन के बाद जो फूल गेंदा के बच जाते हैं तो उनको पीस कर, क्योंकि इसमें कैरेटिनॉइड और भी पिगमेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये मुर्गी की आँखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अंडे के पीले भाग को और रंग प्रदान करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके के उत्पाद बनाकर भी हम काफी लाभ कमा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम उबाल कर या पका कर बात करें तो इससे हम गुलकंद या फूलों से बनी हुई चाय या सौंदर्य आइटम जैसे हो गए क्रीम, शैम्पू या गुलाब जल, ये भी बना सकते हैं।
1: जी मैम, तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को एवं अन्य श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि फूलों से, अगर आप फूलों से खेती करेंगे तो बहुत इससे फायदा है। फूलों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नमी अधिक है, बस इस नमी को यदि हम कंट्रोल कर लें और इससे मूल संवर्धित उत्पाद बना लें तो किसान भाई बहन या उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या शारीरिक कमजोर से भी अगर कोई मेंबर है तो वो घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे उत्पाद बना सकता है जिनकी भारी डिमांड है और इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है।
1: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि किस प्रकार से ताजे सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, फूलों की खेती से न केवल आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अंततः फायदा इससे हमें ही होता है। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
11: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
9: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
12: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
9: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
13: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
9: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
14: जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नजर आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
9: संक्रमण होने
14: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नजर आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
9: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है।
14: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं, और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये, इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
9: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
14: ज्यादातर पाया ही जाता
9: और
14: है।
9: सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है।
14: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-6 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
9: और गला
14: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
9: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
14: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
9: तो इसके लक्षण क्या?
14: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी, अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांग वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है, शरीर का तापक्रम, वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन, जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर, वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
9: टीकाकरण पर विशेष बल देना है और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
14: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, खुर और मुंह में होने वाले रोग भी होते हैं।
9: और मुंह,
14: हाँ, तो खुर और मुंह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
9: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
14: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है।
9: अच्छा।
14: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है। किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशु पालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
9: उनको नुकसान होता है,
14: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं, और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
9: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो पशुओं को इसलिए पालते क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए, और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब, आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती हैं ये?
14: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव, और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता, जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
9: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
14: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन जो किलनी जू इसकी भी संख्या बढ़ती है, जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहां जल जमाव न हो, और ऊंचे स्थान पर रखें। वहां शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें, जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो। और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें, उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
9: तो डॉक्टर साहब, आपने जिन रोगों के नाम बताए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती हैं?
14: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं, और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग हैं, और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
9: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
14: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
9: अच्छा।
14: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें, और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू, लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
9: अच्छा।
14: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है, HS, BQ और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
9: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं, अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है, तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
14: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
9: जहां पर सभी पशु,
14: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है, जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं, तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
9: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
14: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
9: अच्छा।
14: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
9: अच्छा।
14: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
9: कृमिनाशक
14: दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
9: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े। और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटी मोटी उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
14: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावे चूँकि HS हेमरेजिक सेप्टिसिमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको, सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई ज़रूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाओ, तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें। अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
9: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान
14: होता है।
9: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की, जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: पिता कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद
8: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
8: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
9: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
8: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
8: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: लगवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। रबी फसलों की बात करते हैं और दलहनी फसलों की हम बात ना करें तो थोड़ा अधूरापन रहता है। जी हां, रबी फसलों में बुआई के पहले और उसके उपरांत लगने वाले रोगों के प्रबंधन के बारे में आज हम जानेंगे। जी हाँ श्रोताओं, तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रमेश नाथ गुप्ता। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। और डॉक्टर साहब आज बहुत सारी जानकारी देंगे हमें, तो स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बुआई के पूर्व रोगों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और बुआई के उप, डॉक्टर साहब।
7: प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दलहनी रबी के दलहनी फसलों का समय, बुआई का समय आ चुका है, तो अच्छी उपज लेने के लिए और खासकर रोगों से बचाव करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है और उसका प्रबंधन करना जरूरी है ताकि रोग का प्रकोप कम से कम हो और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो देखा जाता है कि अगर हम समय से बुआई करें, जैसा कि बुआई का समय आ गया है और यहाँ पे हमारे बिहार की परिस्थिति में जो बुआई का जो दलहनी फसल है खासकर चना और मसूर का, इसका बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय जो है ये सही समय माना जाता है। इस समय अगर लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ जाती है
6: जी।
7: अगर इसमें अगर लेट हो जाती है किन्हीं कारणों से, अगर धान की कटाई बाद हो तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक भी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें प्रभेद का चुनाव करना आवश्यक होता है उसके अनुसार। तो सबसे पहली कड़ी है कि हमारा जो है बुआई अगर समय समय पर हो जाता है तो उसमें रोग और कीटों का भी प्रकोप काफ़ी कम जाता है
6: जी।
7: रही दूसरी बात कि जो हम बुआई करें तो सबसे बड़ी बात है कि खेतों में जो है खरपतवार के जो है वहाँ पे नहीं हो, खेतों की सफाई अच्छे ढंग से हो और जुताई हो तो बहुत ज़्यादा भुरभुरी जुताई ना हो, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है
6: जी।
7: तो जुताई भी अगर हल से भी करते हैं या ट्रैक्टर से भी करते हैं तो उसमें जो है मिट्टी को बहुत भुरभुरा होना ज़रूरी नहीं है। तो जुताई जो है अच्छी तरह से होना चाहिए, खेतों में साफ सफाई होना चाहिए, खेत बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा गीली रहेगी तो उसमें जो है बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तीसरी बात रही कि जो है हम सही प्रभेद का चुनाव करें। अगर हम सही प्रभेद का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है उसमें बीमारियां कम लगती है और उत्पादन बढ़ती है। तो सही प्रभेद के चुनाव में अगर मसूर है तो हल 57 जो है ये अच्छी प्रजाति है और इनका उत्पादन भी अच्छा होता है। रही बात चना की, तो चना में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारी प्रजातियों का विकास हुआ है चना में, उसमें खासकर जो है चना का जो है सबौर चना 1 जो है वो समय से बुआई के लिए उपयुक्त है और इसमें उत्पादन भी अच्छे होते हैं और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। दूसरी जो है हमारी प्रभेद जो है विश्वविद्यालय द्वारा है वो है सबौर चना 2। सबौर चना 2 जो है नवंबर की बात करते हैं और 15 दिसंबर तक करते हैं, तो ये प्रभेद जो है उपयुक्त है और इसमें बीमारी भी कम आती है और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। बुआई पूर्व रोगों से प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त प्रभेद का चुनाव भी करना आवश्यक होता है। और जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो है विकसित प्रजातियां हैं सवा और चना वन की समय से बुआई के लिए उपयुक्त है, और इसकी बुआई अगर किसी कारणों से लेट हो जाता है तो उसमें हम सवा और चना टू की बुआई कर सकते हैं, जिसका जो है बुआई का समय आपको 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। तो इस दरमियान में ये प्रभेद अच्छा करता है और उत्पादन भी इसमें अच्छा होता है। छिटकौआ विधि द्वारा छीट करके ही बुआई करते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बीजों का अंकुरण नहीं सही से हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे बीज ऊपर में रह जाते हैं, उनको प्रॉपर नमी नहीं मिलती है, जिसके कारण जो है उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो बुआई के लिए जड़ से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है, ताकि हर पौधे को सही हवा पानी और उपयुक्त जो है उनका पोषक तत्वों को मिल सके। तो इस चीज़ों को अगर हम ख्याल रखते हैं तो उससे भी हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। इन सबसे ज़रूरी है कि अगर हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो इससे भी बीमारी कम हो जाती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घने रहेंगे तो उस शरीर है वो बीज का उपचार करना ज़रूरी है। बीज उपचार जो है खासकर रोगों से बचाव करने के लिए आपको करना आवश्यक है। बीज उपचार करने के लिए जो सबसे ज़रूरी तत्व है उसमें कार्बोक्जिन, उसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उपचार कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रैकोडर्मा का उपलब्ध है तो हम ट्रैकोडर्मा 10 ग्राम, वह समस्या बहुत ज़्यादा है। वैसे खेतों में जो है हम 2 ग्राम कार्बोक्जिन और प्लस 10 ग्राम ट्रैकोडर्मा से बीज का उपचार करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा बीमारियों का प्रकोप कम होगा और साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। और बीज उपचार में ये तो रोकथाम के लिए होता है, इसके अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते जो है कीट का भी प्रकोप होता है, तो अगर वैसे खेतों में जहाँ कीट का प्रकोप ज़्यादा हो और उकठा की समस्या ज़्यादा हो और उत्पादन भी अगर बढ़ाना हो तो उसमें समग्र बीज उपचार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्बोक्जिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर दें, उसके 12 घंटे के बाद हम कीटनाशक में जो दवा आती है क्लोरोपाइरीफोस उसका 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें, और इसके 36 से 48 घंटे के बाद हम राइजोबियम से उपचार करें। अगर हम इस तरह से समग्र उपचार करते हैं तो निश्चित तौर से बीमारियां का प्रकोप भी कम होगी और साथ साथ हमारा उत्पादन भी कम से कम 15-20% सिर्फ इतना ही करने से हमारा बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर बीज उपचार करके ही लगावें अगर इस तरह से आप, तो इन सारी प्रक्रियाओं को समावेश करना ज़रूरी है। अगर समावेश करते हैं तो निश्चित तौर पर बीमारी हमारी कम आएगी। अब दूसरी बात रही कि बीमारियां जो है बुआई के बाद कौन कौन सी आती है, तो इसमें जो प्रारंभिक अवस्था में जो बीमारी आती है वो कॉलर रॉट की समस्या आती है। ये हमारे अंकुरण के 1 सप्ताह के बाद ही ये बीमारियां लगना शुरू हो जाती है पौधे कारण, इसको कॉलर रॉट बोला जाता है, जो कि ये एक मृदा जनित बीमारी है। अगर हम ट्रैकोडर्मा से मतलब बीज का उपचार करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कम जाता है। अगर जिन खेतों में इस तरह की समस्या ज़्यादा हो, उकठा की समस्या, निश्चित तौर पर प्रक्रिया उसको डालना चाहिए, ताकि खेतों की जो है हिसाब से भी उसमें डाल के करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ये दोनों का प्रभाव तौर पर ये करना चाहिए बुआई पूर्व। और वैसे खेतों में प्लस मृदा जनित दोनों हैं, तो वैसे खेतों में जो फफूंद जिस उसके कारक, तीसरी जो बीमारियाँ आती है वो शुष्क जड़ गलन की समस्या आती है। शुष्क जड़ गलन की समस्या प्रायः जब पौधे में जब दाने बनने लगते हैं और मृदा में नमी की कमी हो जाती है, वैसी परिस्थितियां अगर रहती है तो उस समय इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। और जब हम पौधे को उखाड़ते हैं उस समय तो ये तने का भाग जो है और जड़ का भाग जमीन के अंदर रह जाता है और तने का भाग जो है वो मतलब टूट जाता है। तो इस तरह से इस रोग को हम पहचान लेते हैं। अगर इस तरह की समस्या आती है तो उसको रोकथाम करने के लिए आप उस समय हल्की वह सिंचाई कर दें, क्योंकि ये रोग के तापमान बढ़ने के कारण ही ये पैथोजन का विकास होता है। तो उस समय हल्की सिंचाई कर देने से इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। एक बीमारी और प्रमुख है जो कि अभी हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, उसको हम लोग अस्टंट रोग के नाम से जानते हैं। और ये बीमारियाँ काफ़ी ये धीरे धीरे बढ़ने जा रही है और एक समस्या के रूप में सामने उभर कर आई है। ये स्टंट रोग जो है ये हमारे जो लाही है उसके द्वारा ये रोग फैलते हैं। ये एक विषाणुजनित रोग है और ये इसमें जो है आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें पत्तियां पीली और नारंगी और लाल रंग की पत्तियां हो जाती है और जो इसके इंटरनोट होते हैं जो फर्व होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, पौधे का विकास काफ़ी कम हो जाता है, पौधे बौने हो जाते हैं और इसमें बहुत कम फलियां लगती है। इस तरह से जो है पौधे इस बीमारी को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर इस तरह के बीमारी के लक्षण जैसे ही खेतों में दिखाई पड़े तो उस पौधे को उसको उखाड़ देना चाहिए और एक कीटनाशक कोई भी जैसे इमिडाक्लोरोपीड उसका 1 ml 3 लीटर पानी में स्प्रे कर देना चाहिए ताकि जो इसके रोग वाहक है जो बीमारी फैलाते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब जो है हमारे प्रमुख रोग थे जिनका निदान करना जरूरी है और ये इनके पहचान भी आसानी से आ जाती है। तो बुआई से पूर्व भी कुछ प्रक्रिया अगर अपनाते हैं तो बिना पैसे को उसको हम कम कर सकते हैं और अगर बुआई के बाद आती है तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम समग्र उपचार करते हैं तो निश्चित तौर से जो है जो लगने वाली बीमारियां हैं उससे हम काफ़ी हद तक उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।
6: जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि कैसे रबी में जो दलहनी फसलें हैं उनके बुआई के पहले और उसके उपरांत आप कैसे रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। सारी दवाइयों के नाम भी आप सभी को बताएं और तरीका भी बताएं। तो आशा करते हैं कि आपको आज के इस वार्ता से लाभ मिलेगा इसे सुनकर। तो इसी के साथ अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।
5: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
13: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: यानी गुलकारियां, यानी ऐसे ऐसे फूल हमारे मेरे मुल्क के मेरे वतन में हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियां। और फुलवारियां भी हैं, और कैसी फुलवारियां हैं जो सरसब्ज हैं, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियां। सैराब यानी पानी से भरी हुई, खुशनुमा दिल को खुश करने वाली खुशनुमा क्यारियां मौजूद हैं। ज़मीनें वो जरखेज दिलकश चमन, ज़मीनें जरखेज हैं यहाँ की, यहाँ पे जो है हर फसल पैदा होती है। जैसे कि बताया कई मौसम है हमारे यहाँ, गर्मी सर्दी बरसात और एक बाहर का मौसम भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हर मौसम की फसल है। ज़मीनें हैं, ज़मीनें जरखेज हैं, दिलकश चमन है, खूबसूरत चमन यानी बाग हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन यानी मेरे वतन में ये सब चीज़ें हैं। हर तरह के तरकारियाँ हैं, हर तरह के गल्ले हैं, गल्ला यानी अनाज है, दालें हैं, चावल, ये सब तरह की हर तरह की फसल जो है मेरे मुल्क में मौजूद है। और इतना जरखेज़ मुल्क है मेरा। इसी तरह से पहाड़ों का मंजर, वनों का समा, पहाड़ों का मंजर, पहाड़ों के मंजर की बात कर रहे हैं, वनों का समा यानी वन जो है नहीं, जंगलों में जैसे पेड़ हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, झरने हैं, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवा, और इसमें चश्मे रवा हैं, ये झरने हैं, चश्मा कहते हैं झरने को, तो चश्मे रवा हैं। कहाँ तक बयां हूँ इसकी खूबियाँ, मैंने कितनी खूबियाँ मैं इनकी बयान करूँ कि इसकी कोई हद नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना दिलकश मेरा वतन है। है फिरदौस का इस चमन पर घुमा, फिरदौस कहते हैं जन्नत को, तो जन्नत पर जो है ये चमन जो है यहाँ के जो बाग हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम जन्नत का गुमान होता है, जन्नत तो नहीं लेकिन गुमान होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि जन्नत में इसी तरह के फल फूल पेड़ पौधे गल ये सब चीज़ें होंगी। ये बागे इरम है या बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। जैसे कि मैंने बताया जो है क्यारियाँ हैं, गले हैं, यहाँ पे हर तरह के अनाज हैं, मेवे हैं, खुश्क फल हैं, बादाम है, अखरोट, किशमिश वगैरह वगैरह और भी हैं, तो जो इस मुल्क में पैदा होते हैं, सब्जियाँ हैं, गुलकारियाँ हैं, गुल बूटे हैं, फूल जो हैं उनको तराशा जाता है, सैराब में पानी से भरे हुए हैं जो चश्मे हैं, जरखेज है ऐसी ज़मीन। जरखेज़ किसे कहते हैं, उपजाऊ को कहते हैं बच्चों, जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है। तो यहाँ हिंदुस्तान में हर तरह की फसल होती है, गर्मी की अलग है, सर्दी की अलग है, बरसात की अलग है, तो इस तरह की फसलें होती हैं जो मौसम के हिसाब से होती हैं। चश्मा ज़मीन से उबलता हुआ पानी का, पानी या सोता ज़मीन से उबलता हुआ पानी, पहाड़ों पे देखे होंगे आपने झरने बहते हुए, और चश्मा जो होता है वो ज़मीन से उबलता हुआ पानी होता है। रमा यानी बहता हुआ, फिरदौस के माने जन्नत है, जो मैंने बताया कि उस पर चमन जो है, जो बाग हैं उन पर जन्नत का गुमा होता है। ऐसे ही गुमान, गुमा के माने होते हैं शक शुबा यानी वहम गुजरता है, हालांकि वो जन्नत नहीं है लेकिन जन्नत की जैसा है। जैसे हम कहते हैं अरे कितना खूबसूरत बाग है, कितना दिलकश बाग है, कितना खुशनुमा बाग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आई, हवाएं ऐसी चल रही हैं कि जैसे जन्नत की हवाएं आ रही हैं। हवा के बारे में भी एक कहा जाता है, इसी तरह से दिलकश दिल पसंद है, दिल को लुभाने वाली है। ऐसे ही बाग इरम, बाग इरम कहते हैं जन्नत का बाग, इरम बाग इरम यानी जन्नत का बाग, इरम भी जन्नत को ही कहा जाता है। बाग अदन वो जन्नत का बाग जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो इस नज़्म में ज़्यादातर जो मंजर बयान किए गए हैं बड़े खूबसूरत मंजर हैं, जिसमें सबसे पहला मंजर जो है वो बागों का है, फूलों का है, परिंदों का है, उसके बाद चश्मों का है, पहाड़ों का है, दरियाओं का है। तो ऐसी इसी नज़्म के उस पर मुझे एक हमीदुल्ला अफसर का एक नज़्म है जैसा मेरा देश, उसकी एक चार लाइनें याद आ रही हैं जो उन्होंने अपनी नज़्म में कही हैं। कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो उनका इठलाकर चलना, दो बहने हैं गंगा जमुना, दुनिया में सानी नहीं उनका, जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। देखिए जहाँ इन्होंने कहा कि दरियाओं के बारे में कहा है, ऐसी हमीदुल्ला अफसर ने भी कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो इनका इठलाकर चलना, और दो बहने यानी गंगा और जमुना का जिक्र कर दिया, गंगा जमुना उनका जिक्र किया है, और दुनिया में उनको कोई सानी नहीं है यानी उनको कोई दूसरा है नहीं, जैसी गंगा जमुना हमारे मुल्क में बहती है, तो जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। اب ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں کہ شاعر نے اس نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے. تو وہی ہے, قمری کا ہے, چکور کا ہے, بلبل کا ہے, مور کا ہے, چڑیا, طوطا, مینا, ان سب کا ذکر جو ہے اس نظم کے اندر کیا ہے. دلکش چمن کس کو کہا ہے اس نے؟ وطن کو کہا ہے. اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں, جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں ان کو آپ کو اس میں سے دیکھ کر سمجھ کر لکھنا ہے. اور وہ کیا خوبیاں ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ بھائی آپ کی زمین زرخیز ہے, ہر طرح کے پرندے ہیں, ہر طرح کے میوے, ہر طرح کا جو ہے وہ اناج یہاں پیدا ہوتے ہیں, اور یہاں کے باغ, یہاں کے جھرنے, یہاں کے پہاڑ, ان سب کا ذکر جو ہے بھارت شاعر نے, شفیع الدین نیر نے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے. اور اس میں جو زبان کا استعمال کیا ہے وہ بڑی آسان اور عام فہم زبان ہے, یعنی ایسی زبان ہے جس کو آپ جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی مشکل لفظ جو ہے انہوں نے اس میں استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ سارے لفظ جو ہیں وہ آسان ہیں اور اس کی موضوع کی مناسبت سے ہیں, کیونکہ وہ وطن کے پھولوں کا, باغوں کا اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس میں یہ سب لفظوں کا, دلکش جیسے لفظ ہے, خوشنما لفظ ہے, تو ان سب لفظوں کا استعمال بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی ہم کوئی بھی چیز لکھتے ہیں یا کوئی نظم لکھتے ہیں, کیونکہ نظم جو ہے بچوں ایک مسلسل اظہار خیال ہوتا ہے. نظم جو ہے کسی موضوع پر مسلسل اظہار خیال کرتے ہیں, جیسے کہ یہ نظم ہے میرا وطن, تو میرے وطن میں کیا کیا چیزیں ہیں, میرا وطن کیسا ہے, اس پر جو ہے وہ شاعر کا پورا جو ہے فوکس ہے. اور اس میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ میرا وطن ہندوستان بہت ہی اچھا وطن ہے, اور اس میں یہ سب چیزیں جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کا گمان اس پہ ہو رہا ہے. اور خوبیاں بھی بیان کی اپنے وطن کی, کہ ہر طرح کے اناج ہیں یہاں پر, ہر طرح کے پرندے ہیں, اور ہر طرح کی میوہ جات جہاں پر یہاں پر ہیں, ہر طرح کے پرندے, یہ سب ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں. بچوں ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی کوئی نظم پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں, نظم کو نظم کے انداز سے پڑھیں, اس طرح سے پڑھیں کہ ہر چیز ہر آپ پر واضح ہو جائے, لفظ کو درست ادائیگی کے ساتھ مناسب لب و لہجے کے ساتھ جو ہے آپ اس کو پڑھیے, تلفظ کا دھیان رکھیے, دلکش کو دلکشی بولیے, دلکش مت بولیے گا کیونکہ اس کی میننگ پھر جو ہے وہ بدل جائیں گے. ایسے زرخیز لفظ ہے تو زرخیز مت کریے اس کو, زرخیز, پورا قے اور زے کی آواز جو ہے وہ پوری نکلنی چاہیے. اسی طرح سے جو ہے قمری ہے تو قمری نہ نکل جائے آپ کے منہ سے, تو قمری کو خواب کی آواز جو ہے وہ باقاعدہ آپ کو تلفظ کو ایسے ہی ادائیگی کرنی ہے, اور مناسب لب و لہجے کے ساتھ موزونیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر سمجھنا ہے, سمجھ کر اس کو جو مرکزی خیال ہے اس کو لکھنا ہے. مرکزی خیال کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وطن کے بارے میں, وطن کی اہمیت کو, وطن کی خوبیوں کو شاعر اس نظم میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے. پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ پیغام یہی دینا چاہتا ہے کہ بھائی میرا وطن ہندوستان جو ہے وہ اتنا دلکش اور اتنا اچھا ہے کہ اس پر جنت کا گمان ہوتا ہے مجھ کو, کیونکہ زرخیز زمین ہے یہاں کی, باغ پھل اور باغ ہے, میوہ جات ہیں, باغوں میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں. جب برسات کا موسم آتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز دھل جاتی ہے, سبزہ جو ہے وہ چاروں طرف صاف ستھرا نظر آتا ہے, پھولوں میں جان پڑ جاتی ہے, کلیوں میں جان پڑ جاتی ہے, اور پرندے بھی چہچہانے لگتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کیونکہ گرمی سے سب کا برا حال ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس نے جو شروعات میں جو ایک کہا ہے کہ میرا وطن ہے, یہ میرا وطن ہے, یعنی ایک بڑائی بیان کر رہا ہے, اپنے وطن کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. اسی طرح سے اس میں کچھ لفظ دیے گئے ہیں, نیچے لکھے ہوئے کچھ لفظ ہیں, ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. جیسے اس میں ہے وطن, تو وطن پہ آپ وطن لکھیے اور وطن کو جملے میں استعمال کیجئے کہ میرے وطن کا نام ہندوستان ہے اور اس میں بہت دلکش باغ ہے. اسی طرح سے منظر ہے, तो पहाड़ों का मंजर बहुत अच्छा मालूम होता है। तो मंजर लफ्ज जो है उसमें जरूर आना चाहिए, उसकी मीनिंग मत लिखिएगा बल्कि उस मंजर को, क्योंकि लफ्ज अपने आप में कुछ नहीं होता, बल्कि लफ्ज को जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं विद कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चमन लफ्ज है, ऐसी समा, कैसा खूबसूरत समा है या कैसा दिलकश समा है। तो समा यानी कैफियत, एक तरह से किस तरह का मंजर है, तो वो मंजर जो है वो आप इसके अंदर समा में लिख सकते हैं, कैसा अच्छा समा है या कितना खुशगवार वक्त है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके अंदर लफ्ज़ हैं जिनको आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही इसमें जैसे तरकारी है, तो तरकारी जो है वो वाहिद हो गया, उसके जमा तरकारियाँ हो गई। ऐसे जो है इसमें चश्मा है, तो उसकी जमा जो होगी बहुत सारे चश्मे यानी चश्मों। ऐसी जो है बाग, बाग की जमा बागों। इस तरह से नज्म में जितनी भी वाहिद जमा और मुतजाद अल्फाज आ रहे हैं उनको इसी नज्म से भी तलाश करके लिखिए। ऐसे इसमें मैंने बताया था जैसे लिखते वक्त भी जो इमला जो लिखते हैं आपकी मैडम आपको लिखवाती हैं, या घर में आप अपने इमला लिखते हैं, आपके घर में आपकी बहन या आपकी मदर आपको इमला लिखवाती हैं, तो उसमें जैसे इसमें है तरकारियाँ, तो आपने अगर उसको सही सुना होगा तो सही लिखेंगे, अगर आपने सुन लिया तरकारियाँ तो उसको क्या लिखेंगे, तरकारियाँ। तरकारियाँ तो कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है, तरकारी है, तरकारियाँ हो गया। इसी तरह से अब जैसे बागों, तो गैन की आवाज़ ने लिख के आपने गाफ उसके अंदर लिख दिया तो वो हो जाए बागों, तो बागों तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है इसका इमला जो है वो दुरुस्त आपको लिखना होगा। ऐसी मंजर है, तो मंजर को मीम नून और जो और रे से लिखा जाता है, और अगर आप उसको जे से लिख देंगे तो वो मंजर मंजर नहीं रहेगा, गलत लिख जाएगा। तो लफ्ज़ों को सही हिज्जे के साथ लिखना, सही तलफ़ुज के साथ लिखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वतन है, वतन वाव तोय और नून है, तो आप इसमें वतन को जो है बहुत से बच्चे लिख देते हैं वाव ते और नून वतन, तो ते तो उसमें है नहीं बल्कि तोय है, तो तोय को जो है उसमें लिखा जाएगा। तो इसी तरह सरसब्ज है, तो सरसब्ज को आप सीन से ना लिखकर स्वाद से लिख दें तो वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इमला भी आपको दुरुस्त करना है, तलफ़ुज़ भी आपको उसकी अदायगी भी सही से करनी है, और उसको उसका जो मतलब है उसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मुनासिब लबोलोजे के साथ और मौजूनियत के साथ आपको पढ़ना, मौजू करके पढ़ना है। यानी कि आप एक आंग होता है ना, एक लय होती है एक नज़म के अंदर, उसी नज़म के तहत उसको पढ़ना है। जैसे ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। देखिए एक ही लय में, ले आपकी एक ही होनी चाहिए, और अगर आपको आपने उसको ऐसे पढ़ दिया वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर इस तरह से, तो कोई भी नज़म होती है ना उसका अपनी एक लय होती है, उस लय में जो है अगर आप उस नज़म को पढ़ेंगे तो मज़ा भी आता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। आप जब उसको पढ़ें या उसकी किरत करें या उसको बुलंद खानी करें तो आवाज़ का भी आपको उतार चढ़ाव आपको देखना है, तो बहुत ज़्यादा ये ना हो कि बहुत खींच के पढ़ना है या बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम चढ़ा दिया उसको, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान पढ़ते वक्त रखना है। जैसे मैंने बताया था चिड़िया, तो चिड़िया की जमा चिड़ियाँ हो गई, बुलबुल बुलबुलें, झील की जमा हो गई झीलों, दरिया की जमा दरियाओं, फिर झरना झरना की झरनों हो जाएगी, पहाड़ की पहाड़ों होगी, और मेवे की मेवो हो जाएगी। तो इस तरह से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद अगर आप बनाएंगे तो नए नए लफ्ज़ भी आप लिखेंगे, और इस तरह से आपकी ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होगा। और बच्चों आप भी नज़म लिख सकते हैं किसी भी उस पर, इन्होंने तो वतन पे लिखी है, आप किसी भी मंजर पर, आप फूल पे लिख सकते हैं, आप बरसात पे लिख सकते हैं, या पहाड़ पे लिख सकते हैं, या कोई आपको परिंदा नज़र आता है तो चिड़िया पे भी लिख सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप नज़म। लेकिन लिखते वक्त जब आप लफ्ज़ों का इंतखाब करें, तब जैसे चिड़िया है तो चिड़िया से मुतालिक जितने लफ्ज़ हैं जैसे चिड़िया आई दाना लाई, इस तरह से। तो चिड़िया से मुतालिक जो जो चीजें हैं वो आपको उसके अंदर जो लफ्जियात है उनका इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना होगा। चिड़िया आई दाना लाई, या फिर एक नज्म जो है वो कि एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्नी मुन्नी भोली भाली, पाली और भोली भाली। तो इस तरह से उसमें पूरा ये कहानी है कि एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही डाला। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद ना आई, चूचू चूचू करके रोई, सारी रात इसी में कोई। सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला, प्यार से जब उसको चमकारा, चिड़िया ने तोतों से चोंचों से मारा। बुढ़िया भागी अंदर आई, मिट्टी भरकर दाना लाई, जब बुढ़िया ने दाना खिलाया तब चिड़िया ने गीत सुनाया। तो देखा ये भी एक गीत है और चिड़िया पर है, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी के नाम से बरकतुल्ला फराक की नज़में जो कि बच्चों के शायर थे, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। तो ये मुझे एक नज़म याद आ गई क्योंकि आपको बता रही थी कि नज़म को किस तरह से लिखा जाए, तो वो नज़म आप लिख सकते हैं। फिर ये है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप नज़में भी जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यार बच्चा नज़म लिख सके। आप नज़म नहीं लिख सकते तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में इकट्ठी कीजिए, उन नज़मों को याद कीजिए, इस नज़म को याद कीजिए और उसको सुनाइए आप अपने घर वालों को, और या फिर जो है तरन्नुम से गाइए, मिलकर गाइए, दो तीन लोग अगर मिलकर गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो गाने से क्या होता है वो जल्दी समझ में आएगी, और बच्चे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं खासतौर पर नर्सरी केजी के या तो इस तरह के बच्चे जो है ना नज़में गा के पढ़ते हैं, गा के पढ़ते हैं तो उनको याद भी हो जाता है। क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है, क्योंकि पाँचवीं क्लास आप पास कर चुके हैं, प्राइमरी आपका इब्तदाई जमातों से आप निकल कर अब आप प्राइमरी में दाखिल हुए हैं, तो अपर प्राइमरी में आपसे क्या तवक्कु की जाती है, यही तवक्कु की जाती है कि आप नए नए अल्फाज जो हैं उनको समझेंगे और ज़बान मतलब आपने जो वहाँ पर सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखा है। तो यहाँ अगर आपका जो मयार है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ऊँचा हो जाएगा, और वो कैसा होगा ऊँचा कि आप रवानी से बोलेंगे, रवानी से अपनी किसी बात का इजहार करेंगे, किसी मंजर को देख के उसके बारे में दो चार जुमले भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के जुमलों को लिखेंगे या वतन से मुतालिक और किसी ने जो नज़में कही हैं, जैसे मैंने अभी आपको सुनाई थी हमीदुल्लाह अफसर की नज़म, और भी अल्लामा इकबाल ने भी लिखी है नज़में, तो उन नज़मों को भी आप ले सकते हैं, या और जो मनाजिर फितरत पर लिखी गई हैं नज़में, उन नज़मों को भी आप इंटरनेट से तलाश कीजिए, उनको लिखिए और उनका एक वो बना लीजिए। ऐसे ही अब इसमें जो है वो से शेर मुकम्मल करने हैं, तो मिसरों को सही तरतीब से देख के लिखना। मिसरा दे दिया इसमें, वो गल्ले वो मेवे वो तरकारियाँ, अब इसमें मुझे देखना है कि इसमें वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, तरकारियाँ और गुलकारियाँ, कहाँ तक बयां उसकी हों खूबियाँ, मुझीलों वो सरसब बागों की फुलवारियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुबा, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर। तो इस तरह से आपको नज़्म जब आप देखेंगे तो ये जो किताब में जो मशकें दी गई हैं उस मशक में ये लिखा गया है कि मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए, क्योंकि जो शेर होता है दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, तो दोनों मिसरों को आपको जो है मिलाना है। अब इसमें एक एक मिसरा इधर दिया है तो दूसरा जो है वो आप अगर आपको नज़म याद है तो बखूबी उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको देख कर और उस नज़म को कीजिए। अच्छा इस ज़बान को मैं ये भी कहूँगी कि आप ये भी कर सकते हैं कि नज़म को ज़बानी याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी नज़म है और ज़बानी याद की जा सकती है। ज़बानी याद कीजिए, फिर उसको जो है वो तरन्नुम से गाइए, और उसके बाद ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी में जब आपको याद होगी नज़म ना तो आप आराम से उस नज़म को लिख सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इसमें वतन की जो सबसे बड़ी वतन की अहमियत को बयान किया है शायर ने, शफीउद्दीन अय्यर ने, और इसके अलावा वतन की या मुल्क की हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बहुत सारी खूबियों को मुख्तसरन बयान किया गया है। क्योंकि नज़्म तो मुख्तसर बयान होता है, बहुत कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाती है, और नसर जो होती है उसको हम वजाहत के साथ लिखते हैं। جیسے اب یہ میرا وطن ہے، میرا وطن پہ آپ مضمون بھی لکھ سکتے ہیں بچوں، تو ایک مضمون جب لکھیں گے تو آپ اس میں لکھیے کہ میرا وطن ہندوستان ہے، ہندوستان میں اتنا یہ چیزیں ہیں جو آپ نے اس میں دیکھی ہیں، جو آپ محسوس کرتے ہیں ان سب چیزوں کو لکھیے، ایک پیراگراف کم سے کم آپ لکھ سکتے ہیں میرا وطن پر. ایسے ہی اس وطن کی محبت اور دوستی کے جذبے کو نظم میں ابھارا گیا ہے کہ شاعر کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یعنی اس پر ایک فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھیے میرا وطن کتنا دلکش ہے، کتنا خوبصورت ہے میرا وطن، میرا ملک، میرا ہندوستان کتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر ہر طرح کے پھول ہیں، کیاریاں ہیں، چشمے ہیں، جھرنے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. تو آپ ان سب چیزوں کو اپنے نظم میں بھی اگر لکھ سکتے ہیں تو نظم میں لکھیے. نظم ضروری نہیں آپ میرے وطن پہ ہی لکھیں، کسی اور موضوع پہ بھی لکھ سکتے ہیں. میرے وطن پر آپ مضمون بھی لکھ سکتے ہیں، وطن پر کوئی ڈرامہ بھی آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اس کو اسٹیج کر سکتے ہیں. وہ ڈرامہ آپ کو جو ہے وہ بنانا پڑے گا، اگر آپ بنا سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور اس میں کچھ مکالمے وغیرہ جو ہے وہ ڈال دیجیے. اور بہت کتنا 5 منٹ کا بنائیے، زیادہ نہیں، کیونکہ 5 منٹ میں آپ اپنی بات کو جو ہے بیان کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں بچوں آپ کو اس نظم سے ایک تو پڑھنا، موزونیت کے ساتھ پڑھنا، اور دوسری یہ کہ لہ کے ساتھ پڑھنا، صحیح تلفظ سے ادائیگی کرنا، اور اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے اس سے واقفیت ہو گئی ہوگی. اس کے علاوہ وطن کی اہمیت کو جو شاعر نے جو بیان کی ہے، زبان کو جو لکھا ہے، جو ان کا انداز ہے، جس کو کہتے ہیں ہم تحریر اسلوب کہتے ہیں، جس کو اسٹائل کہتے ہیں، وہ بھی بہت ہی اچھا ہے. تو آپ اس پر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار لگیے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی اور کیوں اچھی لگی. اس پر کم سے کم 5 جملے تو آپ لکھ ہی سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں بچوں آپ کو آج کی نظم بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ جو ہے اس نظم کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیے، سمجھ کے پھر لکھیے. تو اس طرح سے یہ نظم جو ہے وہ وطن کی اہمیت، اس کی وطن سے محبت اور وطن دوستی کے جذبے کو نظم میں ابھارا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں سمجھتی ہوں آپ کو یہ نظم بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ.
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला. निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना. ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत.
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है. और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीवी किसी को भी हो सकता है. टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं.
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान. टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है. दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल. साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी. उपचार चल सकता है और भी लंबा.
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना. तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें. इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं. टीबी हारेगा देश जीतेगा.
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात. आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार. अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात. बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना.
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी.
4: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का. तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम. टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है.
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार किसान भाई, मैं हूँ आरजेनु और एक बार फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच लेकर उन्नत कृषि कार्यक्रम। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर हमेशा इस कार्यक्रम में बातें करते हैं किसानों के लिए, किसानों के हित की बातें। तो आज भी कुछ ऐसे ही बातें, आपकी खेती से जुड़ी सारी बातें हम लेकर आए हैं। लेकिन फिलहाल आज का एक हमारा बहुत ही खास विषय है, और जैसा कि जानते हैं आप किसान भाई कि आलू, जिसे सब्जियों का राजा कहा जाता है, आलू के बिना हमारा हर एक जो सब्जी है वो अधूरा रहता है। तो जब भी हम जाते हैं बाजार तो आलू ज़रूर खरीदते हैं। क्या आपको पता है कि आलू की खेती भी वैज्ञानिक तरीके से हो सकती है? जी हाँ, आलू की वैज्ञानिक खेती, आज यही विषय है हमारा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आलू की खेती किस मौसम में होती है?
12: आलू मिट्टी के नीचे तैयार होने वाली शीतकालीन कंद फसल है। आलू की खेती मुख्य सब्जी फसल के रूप में बिहार के प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। आलू की खेती ठंडे मौसम में, जहाँ पाले का प्रभाव नहीं होता है, सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके सही जमाव के लिए 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अधिकतम तापक्रम कंद बनते समय दिन का 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस तरह का तापमान उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से मार्च तक रहता है। कम तापमान, सूर्य की तेज रोशनी और छोटे दिनों में कंदों का शीघ्र निर्माण होता है। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर कंदों का निर्माण रुक जाता है।
11: अच्छा, तो डॉक्टर साहब शीतकालीन, मतलब कि शीतकाल में इसकी जो आलू की खेती है वो हो सकती है, ये आपने बताया। तो डॉक्टर साहब, अब खेत की बारी थी कि हम आलू की खेती करना चाहते हैं, तो खेत की तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें?
12: आलू उत्पादन में खेत की तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा उसके बाद दो तीन बार कल्टीवेटर से जुताई करें। ध्यान रखें कि प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, ताकि भूमि में नमी बनी रहे तथा मिट्टी भुरभुरी हो जाए। यदि भूमि में नमी की कमी हो तो जुताई से पूर्व सिंचाई कर लेना चाहिए, जिससे भूमि भली भांति तैयार की जा सके। उसके बाद जुताई के क्रम में खरपतवार एवं फसलों के डंठल वगैरह जो भी हो उसे चुनकर खेत से बाहर निकाल दें।
11: तो ये थी खेत की तैयारी। और डॉक्टर साहब, खाद और उर्वरक जो हैं, ये इसका इसके लिए, यानी कि किसी भी फसलों की खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आलू की खेती की बात आती है तो इसके लिए अलग खाद और उर्वरक की ज़रूरत होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि खाद और उर्वरक आलू की खेती में कैसे दें, कौन सी देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए?
12: अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। आलू की फसल के लिए खाद एवं उर्वरकों की मात्रा भूमि की किस्म, भूमि की उर्वरा शक्ति, जलवायु, फसल चक्र एवं किस्म पर निर्भर करती है। नियमतः खाद एवं उर्वरक मिट्टी के परीक्षणोपरांत ही डालना चाहिए। अतः खेत जोतने के समय 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। गोबर की खाद खेत में डालने से न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी पूरी होती है, बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी पूर्ति होती है। आलू की फसल को प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 730 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या 325 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। आलू की फसल को गंधयुक्त रासायनिक उर्वरकों से अधिक लाभ मिलता है, अथासंभव यूरिया के बदले अमोनियम सल्फेट तथा DAP के जगह सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा आलू बोने के समय ही करना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा मिट्टी चढ़ाते समय अर्थात बुआई के 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। बुआई के समय उर्वरकों को डालने की विधि पर ध्यान देना आवश्यक है। आलू के कंद उर्वरकों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, अन्यथा कंद सड़ने की संभावना रहती है। अतः आलू बोने के लिए बनाई गई उथली नालियों में उर्वरकों को डालकर मिट्टी में मिला दें और तब आलू के कंद रखें, या कंद रखने के 50 सेंटीमीटर दूर उर्वरक को डालें। आलू के कंदों को पंक्ति में रखने के बाद मिट्टी चढ़ा दें। प्रायः देखा जाता है कि एक ही खेत में प्रत्येक वर्ष आलू लगाया जाता है। शुरू के कुछ वर्षों तक उपज अच्छी मिलती है, परंतु बाद में उपज में कमी आने लगती है, क्योंकि एक ही खेत में कई वर्षों तक लगातार आलू की खेती करने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। अतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्रत्येक 2-3 वर्षों पर 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 से 15 किलोग्राम मैंगनीज सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व खेत तैयारी के समय ही खेत में डाल दें।
11: तो डॉक्टर साहब ने बताया आप सभी को कि खाद एवं उर्वरक किस मात्रा में, कौन से खाद एवं उर्वरक डालने चाहिए आपको आलू की खेती के लिए। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि हम अगर सही प्रभेदों का चयन करें तो हम आलू की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आप किसान भाइयों को बताएं कि आलू के कौन कौन से प्रभेद उनके लिए अच्छे होंगे।
12: आलू की भरपूर उपज प्राप्त करने के लिए उसकी उन्नत किस्मों को ही उगाना चाहिए। आलू के प्रमुख उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे आलू का कुछ किस्में आगात किस्म होती है। जैसे आगात किस्म में आती है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी कुबेर, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज। ये सभी किस्में 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है तथा इन्हें 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अवश्य ही लगा देना चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। फिर दूसरा ग्रुप आता है मध्य आघात। मध्य आघात के लिए अच्छी किस्में हैं कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी ज्योति, कुफरी चमत्कार। ये सभी मध्य आघात यानी कि मुख्य फसल वाली किस्में हैं जो लगभग 100 से 110 दिनों में तैयार होती है। इसे 20 नवंबर तक लगा देना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ पिछात किस्में। इसमें पिछात किस्में में मुख्य रूप से हैं कुफरी सिंदूरी, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2। ये किस्में लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार होती है तथा इन्हें 30 नवंबर तक लगा देना चाहिए।
11: तो यहाँ पर हमने जो प्रभेदों के बारे में जाना है, डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्नतशील प्रभेदों को ही हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए, आलू के उन्नतशील प्रभेदों को, और उसके टाइमिंग के बारे में बताया कि कब और किस समय के बीच लगाएं आप, ताकि आपको फ़ायदा हो किसान भाइयों। और डॉक्टर साहब, जब बीजों की आवश्यकता की बात करते हैं तो हमारे जो किसान भाई है वो सही बीजों का चयन करेंगे तो उन्हें इस खेती में, आलू की खेती में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि कौन से जो बीज हैं वो उनके लिए सही होंगे।
12: आलू का उत्पादन आलू के बीज के ऊपर निर्भर करता है। आलू के बीज पर लगभग कुल लागत का 40-50% तक खर्च आता है, अतः अधिक उपज हेतु सदैव प्रमाणित एवं निरोग बीज का उपयोग करना चाहिए। इसकी खेती के लिए बीज की मात्रा आलू के कंदों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे 25 से 30 ग्राम यानी कि बाजार में उसे सूत पर बिकता है, तो 25 से 30 ग्राम यानी कि 8 से 9 सूत का कंद प्रयोग में लाने पर एक हेक्टेयर के लिए 15 से 20 क्विंटल बीज लगेगा, तथा 40 से 50 ग्राम यानी 12 से 14 सूत का कंद लगाने पर एक हेक्टेयर के लिए 20 से 25 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। 20 ग्राम यानी लगभग 6 सूत से छोटे आकार के कंदों का प्रयोग करने पर उपज में कमी हो जाती है, अतः बहुत छोटे कंदों का प्रयोग बुआई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 25 से 30 ग्राम अर्थात 8 से 9 सूत यानी उससे बड़े आकार के कंदों को वायरस से ग्रसित होने की संभावना नहीं होती है, तथा पौधे स्वस्थ एवं पुष्ट होते हैं। यदि बीज के कंद वायरस से ग्रसित होंगे तो कुछ दिनों के बाद पौधे की पत्तियां मुड़ने लगेगी यानी कुकुड़िया जाती है, और ऐसे पौधों में कंद लगेंगे ही नहीं, और यदि लगेंगे भी तो आकार में बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, फलस्वरूप उपज में कमी आ जाएगी। आलू के बड़े कंदों को काटकर भी लगाया जा सकता है, परंतु कटी हुई आलुओं से बुआई अक्टूबर माह के बाद ही की जानी चाहिए, जब तापक्रम कम हो जाए। वायुमंडलीय तापमान अधिक रहने की स्थिति में कंदों को काटकर लगाने पर सड़ने की संभावना रहती है। कंदों को काटने के समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 आँखें, जिसे कलियां कहते हैं, अवश्य रहे। अंकुरित आलू के कंद ही लगाने चाहिए। उत्तर भारत में प्रायः शीतगृह में रखा हुआ बीज ही बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज से बीज को निकालने के बाद उसे ठंडे हवादार और अंधेरे कमरे में फैलाकर 1 सप्ताह छोड़ दें, ताकि कंदों में अंकुरण आ जाए। यह हमेशा ध्यान रखें कि अंकुरण आने के बाद ही उसकी बुआई करें।
11: अच्छा, तो यहाँ पर हमने जाना कि कैसे बीज होने चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ बीजों की जो खराबी है उनके बारे में बताया कि अगर वैसे बीज रहते हैं तो आप उसे ना लें, ताकि उससे आपको नुकसान ना हो, आपके जो फसल है उस पर नुकसान ना पहुँचे, उसे नुकसान ना पहुँचे। और डॉक्टर साहब, अब सस्य क्रियाओं की बात करते हैं, तो इसकी खेती में जो प्रमुख सस्य क्रियाएँ हैं वो हम जानना चाहेंगे।
12: इसकी खेत पहले तो कि जब हम आलू लगाते हैं तो उसको हमको बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित करने के लिए एमिसान नामक दवा आती है, एमिसान 6, उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर उसे घोल बना लें और उसमें आलू को डुबो दें। 10-15 मिनट डुबोने के बाद उसे बाहर छानकर निकाल लें और छाया में सुखाने के पश्चात उसकी बुआई करें। बुआई की दूरी जो है हमेशा 50 से कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें खरपतवार आ जाते हैं, अतः बुआई के 10-15 दिनों बाद निकाई गुराई करें ताकि फसल कर खरपतवार से मुक्त रहे। साथ ही साथ मिट्टी हल्की होगी जिसके कारण कंदों का विकास भी ठीक होगा। अब आलू बोने के बाद जो है उसमें मिट्टी चढ़ाना एक प्रमुख कार्य होता है, अतः आलू में मिट्टी का चढ़ाया जाना बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए इसका समय इसलिए मिट्टी चढ़ाना समय पर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विलम्ब से मिट्टी चढ़ाने के कारण नए नन्हे कंदों को नुकसान होगा, अतः बुआई के 25 से 30 दिनों के अंदर ही खेत की कोरनी कर एवं नाइट्रोजन उर्वरक का भुरकाव कर मिट्टी चढ़ा दें। उसके बाद शस्क्रिया में मुख्य रूप से सिंचाई पर भी ध्यान देना आवश्यक है, तो सिंचाई के लिए हमें नियमित एवं हल्की सिंचाई का होना आवश्यक है। यदि बुआई के बाद नमी में कमी नज़र आए तो प्रथम सिंचाई बुआई के 4-5 दिन बाद हल्की करें ताकि पौधा आसानी से उग जाए। दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 15 दिनों बाद तथा तीसरी सिंचाई मिट्टी चढ़ाने के 2-3 बाद करें। इसके बाद 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। ध्यान रहे कि आलू के क्यारियों में कभी भी ज़्यादा पानी न हो। सिंचाई से मेड़ों का केवल 2/3 भाग ही गीला होना चाहिए। कंदों के खुदाई के 15 दिनों पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से फसल सुरक्षा भी आता है, तो फसल सुरक्षा के लिए इसमें मुख्य रूप से कजरा पिल्लू दीमक वगैरह लगता है, तो फसल को कजरा पिल्लू एवं दीमक से बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय फुराडाउन 3G एक कीटनाशी दवा है। इस दवा को 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय मिट्टी में डाल दें। आलू में मुख्य रूप से अगात झुलसा, पिछात झुलसा एवं वायरस रोग का प्रकोप होता है। इन रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि फसल 5-6 सप्ताह का हो जाए तो इमिडाक्लोरोपीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में तथा इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद सिर्फ इंडोफिल M45 फफूंदनाशी दवा का 10-15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। यदि मौसम में नमी अधिक हो, तापक्रम बहुत कम हो, बदली छाए रहे तथा हल्की बारिश हो जाए तो रीडोमिल एम गोल्ड फफूंदनाशी दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अति आवश्यक है, अन्यथा पिछात झुलसा रोग से फसल बर्बाद होने की संभावना रहती है। वैसे तो बिहार राज्य में पाला पड़ने की संभावना नहीं रहती है, परंतु कभी कभी तापक्रम काफ़ी कम हो जाता है और पाला गिरने जैसी स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में फसल को बचाने के लिए खेत में कम दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे तथा रीडोमिल गोल्ड दवा का भी छिड़काव करते रहें। आलू के पौधों की पत्तियों में जब पीलापन आने लगे तो समझें कि अब मेरा आलू तैयार हो गया है, उसके बाद इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। आलू को खेत से निकालने के बाद उसे छायादार एवं हवादार जगह में 10-15 दिनों तक सुखाने के बाधे भंडारण करें।
11: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी कि आप आलू की वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि खेत की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, खाद एवं उर्वरक आप किस तरीके के और कौन से डाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी खेती के प्रमुख सस्य क्रियाएँ कौन सी हैं, बीमारियों से बचाव के बारे में बताया। तो इन सारी चीज़ों की पूरी जानकारी आप सभी को उपलब्ध हो गई है और आशा करेंगे कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए इन सुझावों को अपनाएंगे और आलू की खेती बिना रुकावट के साथ करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75 70% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे या फिर डायमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दे टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: हूँ आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु, लेकर आ चुकी हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हाँ, वैसे समय की बात करें, सीजन की बात करें तो सब्जियों की रोपाई का वक्त आ चुका है और उसमें भी बहुत सारे सब्जियां हैं जो आप अपने बागान में लगा सकते हैं। तो सब्जियों को लगाने से पहले ज़रूरी होता है कि हम सावधानियां बरतें। सावधानियां यानी कि जो कीट पतंगे हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, उन कीट पतंगों से हम कैसे आज़ादी दिलाएं अपने बागानों को, यानी कि खास तौर पर सब्जियों के बागानों को। तो आज हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं एक खास विषय पर जो है सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन। जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर टी साहा जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और जहाँ तक देखा जा रहा है तो मौसम के अनुसार भी हमारे किसान भाइयों को अभी ये सलाह दिया जा रहा है कि वो अपने नए बागान सब्जियों के लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन की ओर जाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि बैंगन के अगर हम बागान लगाते हैं तो उनमें कौन कौन से कीट पतंगे जो हैं वो आ सकते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम।
1: धन्यवाद। मैं पहले बताना चाहूँगा, बैंगन में हमारे बिहार में जो है मुख्यतः 3-4 कीड़े जो है सबसे ज़्यादातर डैमेज करते हैं। उसमें जो है बैगन के तना और फली छेदक है, जो जब हमारे बैगन ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके 20 से 25 दिन के बाद से ये कीड़े का आक्रमण शुरू होता है। ये पहले तना में अटैक कर डैमेज करता है, तना के अंदर वो जो है छेद करके उसके अंदर घुसता है, जब एक से जब उसका पिल्लू निकलता है उसके बाद फिर वो होल पहले शुरू में जो है बहुत छोटा रहता है, बट जब मैच्योर होता है लार्वे जो पिल्लू जो है वो निकल के फिर फ्रूट में डैमेज करता है। जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है, फल का अवस्था होता है, तो फल में वो डैमेज करता है। ये पिल्लू जो है देखने में थोड़ा सा हल्का सा उजला और भूरा कलर का मिक्सचर है, और जो उसका हेड है जो उसको बोलते हैं वो जो है भूरा कलर का होता है, और ये जो है दोनों तना को भी एवं फल को भी ये छेद करते हैं। किंतु इसका जो एडल्ट है जो संपूर्ण अवस्था है ये डैमेज नहीं करता है, किंतु इसका जो इमैच्योर जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं इसको ज़्यादा डैमेज करता है सब्जी में, बैगन में। और ये डैमेज जो है लगभग 20-80% तक डैमेज करता है, रबी में भी डैमेज करता है। तो रबी फसल में थोड़ा सा कम करता है, कंपेयर अगर किया जाए हम लोग खरीफ बैगन और रबी में अगर बैगन लगाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सबसे मुख्य कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डा बीटल, ये शुरू के टाइम में ज़्यादा डैमेज करता है। जब बैगन का 2-3 पत्ती के समय आता है इसमें ये क्या, ये बैगन का पत्ती को जो है नोच के इसको पूरा उसका जो हरा वाला पोर्शन पीला हरा वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा डैमेज करके ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है, और उसमें जो पत्ती में जो वेंट्स वगैरह रहता है वही से बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। जब बैगन का 2-3 लीफ का स्टेज रहे उसी समय हमको इनको अच्छा से कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद तीसरा जो कीड़ा है ये है बैगन का जैसिड बोल सकते हैं हम लोग, ये पूरा पीला का हरा कलर का होता है, बहुत छोटा होता है, और बैगन के पत्ती के निचले भाग में ये ज़्यादातर देखा जाता है। ये अंडा भी उसी के अंदर ही देता है, अंदर जो बैगन के नीचे वाला पत्ती में, और ये बैगन को बैगन से जो है पत्ती से रस चूस के इसको कंप्लीट जो है एकदम ड्राई कर देता है। जो पत्ता जो आहिस्ता इसका अंदर जो क्लोरोफिल रहता है बैगन के पत्ती में ये पूरा ख़त्म करके इसको भूरा कलर का आकार कलर में आ जाता है। पहले पीला करते हैं फिर भूरा कलर होके फिर पत्ती गिर जाता है, और ये वायरस नामक एक बीमारी भी फैलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ बेंजर। ये कैसे होते हैं देखने में, जब भी ये वायरस बीमारी आपके खेत में आएगा तो बैगन का जो नॉर्मल जो हाइट होता है उससे वो छोटा हो जाएगा, उसमें ना फल लगेगा ना फूल लगेगा, और बैगन का जो जितना भी ब्रांचेस आता है उसमें छोटा छोटा जो है जो पत्ती है छोटा छोटा हो जाएगा, और वो ऊपर की तरह थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और उसमें कोई फूल भी नहीं लगता है कोई फल भी नहीं लगता, और उसका पत्ती का जो कलर है जो नॉर्मल हमारा बैगन का पत्ती का कलर है उससे ज़्यादा डार्क हरा कलर का पत्ती आता है। तो ये जो है बहुत भयंकर बीमारी है, ये अगर आपके खेत में आ जाता है तो आपको तुरंत जो है आपको खेत को वो बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कुछ और छोटे छोटे कीड़ा है जिसे हम लोग बोल सकते हैं सादा मक्खी बोल सकते हैं बैगन का, ये

0: डैमेज करता है, ये भी निचले वाले पोर्शन के, बैगन के पत्ती के नीचे वाले पोर्शन पे रहता है, ये भी शुरू के टाइम में ही डैमेज करता है मैक्सिमम। ये जब डैमेज करता है जो पत्ती का, फिर वही कलर चेंज हो जाता है और बैगन का पत्ती का कलर जो है ये पीला कलर का हो जाता है, फिर भूरा कलर का हो जाता है। तो इससे भी हमको सावधानियाँ बरतना पड़ेगा। यही सब जो है बैगन का मुख्य कीट जो है हमारे इधर लगता है।
1: अच्छा, यहाँ पर आपने बताया डॉक्टर साहब कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं इन कीट पतंगों से, तो अब जो समेकित अगर हम इसके समाधान के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, खासतौर पर बैंगन के लिए?
0: हाँ, हम लोग अगर समाधान करने के जाए, हम शुरू से बताना चाहेंगे हम कैसे बैंगन का समाधान करेंगे। जैसे शुरू में हम आपका, आप लोगों को बताए, जो बैगन का जो जैसीड है और सादा मक्खी है ये शुरू के समय में ज़्यादा लगता है, और जो दो से तीन पत्ती में हड्डा बीटल लगता है।
1: अच्छा।
0: जो अगर हम बीज शोधन करके अगर हम लगाए तो ये हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है, जैसे जैसीड हो गया, सादा मक्खी हो गया, ये जो है 20 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, और नर्सरी में भी हम जब इसको बुआई करेंगे तब भी कोई दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा जो है कीट, जो फसल में जो कीटनाशी का प्रभाव भी कम होगा, और हमारा फसल में जो फार्मर फ्रेंडली जो बंधु कीट है इसका भी नंबर बढ़ेगा, और डिजीज भी हमारा कम है, मतलब तो रोग भी जो है हमारा कम आएगा। तो ये हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। शुरू से हम लोग बीज शोधन करें, बस सीडलिंग डिप, मतलब जो सीडलिंग जो नर्सरी से आप मेन फील्ड में जब रोपाई करेंगे तो सीडलिंग को अगर इमिडाक्लोपीड बा थायोमिथाक्साम नामक जो दवा है, इमिडाक्लोपीड का गौचो और थायोमिथाक्साम नामक एक तरह का दवा है, ये दवा अगर 3 ml और 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप इसको डिप कर सकते हैं। अगर कम मात्रा में बनाना है तो इसका मात्रा है 1 ग्राम/1 ml प्रति 3 लीटर पानी। अगर स्प्रेयर में लेना है तो 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर में 5 ग्राम/15 लीटर स्प्रेयर में आप घोल कर सकते हो। तो हम इसको बीज शोधन जो है, हम उसको नर्सरी से मेन फील्ड में लगाने के बाद हम इसको सीडलिंग डिप करके भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो चूसने वाले कीड़ा से हम 25 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा हड्डा बीटल के बारे में आप बताएं, जब आप 2 से 3 लीफ की स्टेज में हैं वो मैक्सिमम डैमेज करता है। अगर वो एक बार डैमेज मैक्सिमम कर देंगे तो फिर उसमें फल भी नहीं बनेगा, फूल भी नहीं आएगा, और वो ग्रोथ भी बंद हो जाएगा, तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम अगर समेकित प्रणाली में जाए तो हम जानते हैं हमारे गाँव में जो है राख मिलता है, राख मतलब जो जलावन करने के बाद जो रेसिड्यू रहता है उसको अगर हम कलेक्ट करके उसको अगर हम भुरकाव करें पत्ते के ऊपर, भुरकाव करने के बाद हल्का सा मिट्टी का तेल डाल दे, इसलिए डाल दे जो वो उसके ऊपर बना रहे, नहीं तो कभी कभी ये होता है बारिश के समय पे वह हल्का जो ठंडी के समय पे जो ड्यू जो पानी गिरता है उससे जो है वो फिर पत्ती में सटके नहीं रह सकता है। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें अगर डाल देंगे तो ये जो है हमको कोई भी कीटनाशी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और हमारा जो पत्ती जो है और हमारा बैगन का जो फसल है कीटनाशी मुक्त रहेगा। और इस तरह से हम समेकित प्रणाली से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके गाँव में नीम का पेड़ है, नीम का पत्ती आपको मिलेगा, अगर नीम आधारित कोई दवा अगर आप इस्तेमाल करना चाहे, अगर बाजार में उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना मिले तो नीम का पत्ती जो है आप पेड़ से तोड़ के 400 से 500 ग्राम पत्ती मिक्सचर ग्राइंडर में उसको क्रश करके उससे जो निष्कास निकलेगा उसको एक उजला कपड़ा में पोटली बनाकर 1 लीटर पानी एक मिट्टी के घर में घड़ा में व कोई भी बर्तन में आप रख के उसको ओवरनाइट जो एक रात तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन देखिएगा जो पानी का पूरा कलर चेंज हो जाता है, निष्कास से जो पानी में जो मिल गया उससे जो जो आपको जो जो बना जो नीम का सॉल्यूशन बना वो आप एक लीटर का पानी का जो बॉटल मिलता है उसमें आप उसको आप स्टोर कर गए, स्टोर करके उसी से 5 ml 1 लीटर पानी के दर से आप छिड़काव करें। अगर 15 लीटर का नेफस्ट्रक स्प्रेयर है तो 75 ml 75 ml का जो है आप लेके उसको छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको कोई कीटनाशी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और हम जो है समेकित कीट प्रबंधन के और भी बढ़ सकते हैं, तो इससे बहुत हद तक हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप केमिकल में भी जाना चाहते हैं तो केमिकल के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक केमिकल है बहुत ही सस्ता है जिसको हम लोग बाजार में क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन जो नाक के नाम से मिलता है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो मात्रा है 1 ml 1 लीटर पानी में आप घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया जो चूसने वाले कीड़ा और जो चूसने और चाटने वाले। अब जो सबसे खतरनाक जो कीड़ा है बैगन का तना और फली छेदक, तना और फली छेदक के लिए हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। इसलिए बैगन जो है हम डायरेक्टली इसको खाते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कीटनाशी का छिड़का जितना हद तक कम करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो शुरू में हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू में हम आपको जैसे नीम आधारित दवा के बारे में बताएं, आप नीम आधारित दवा का अगर बाजार में मिले आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। नीम के पत्ती से बना जो सॉल्यूशन बनाए हम उसको 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके 7 दिन के अंतराल में 25 से 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप उसके अंदर छिड़काव करने से ये जो है रिपेलेंट का काम करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारे कीड़े का आक्रमण कम होगा। और हम फेरोमोन ट्रैप जो है बाजार में उपलब्ध है, फेरोमोन ट्रैप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं आपके जो खेत पे। इससे क्या होगा, जो मेल जो मक्खी होता है वो मक्खी सोचेगा उसका फीमेल उस ट्रैप के अंदर है, वो उससे मेटिंग करने जाएगा और उसके अंदर वो फंस के मर जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारा जो बैगन का तना और फली छेदक का पॉपुलेशन है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और इससे हमारा कंट्रोल भी बहुत हद तक हो जाएगा। ये तो हुआ समेकित कीट प्रणाली। अगर हम केमिक बायोपेस्टिसाइड भी इसके अंदर हम बताना चाहेंगे, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस नामक एक बायोपेस्टिसाइड है जो बैक्टीरियासाइड बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 ml 1 लीटर पानी में बाजार में BT करके नाम से मिलता है, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस भारत कुर्स्टाकी के नाम से मिलता है, इसको हम लोग बाजार से खरीद के इसको भी 1 ml 1 लीटर के दर से पानी के दर से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ये भी समेकित कीट प्रणाली में कर सकते हैं। और दो बायो इंसेक्टिसाइड्स है, अगर आपको लगे जो नहीं मात्रा 10% to 15% डैमेज से ज़्यादा हो जा रहे हैं हमारे फील्ड में, इस समय जो है आप दो बायो इंसेक्टिसाइड है, एक है स्पाइनोसेट जो बाजार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, इसका मात्रा जो है 2 लीटर पानी में 1 ml, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाजार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है जिसका मात्रा है 5 लीटर पानी में 2 ग्राम। तो ये दोनों में से कोई भी मिल जाए, थोड़ा सा ये दो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये दवा तभी आपको स्प्रे करना पड़ेगा जब आपका खेत में कीड़े के आक्रमण 20% to 30% से ऊपर डैमेज कर रहा है तब। नहीं तो हम जो आपको समेकित कीट प्रणाली बताए जिसमें आपको नीम लीव्स कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस का स्प्रे कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं तभी आप कर सकते हैं, और ये भी दोनों बायो इंसेक्टिसाइड है। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा दो केमिकल पेस्टिसाइड है, इस एक जो नाम है फ्लूबेंडियम जो फेम करके दवा के नाम से आता है, ये जो है 1 gram/3 liter पानी में आप घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो है लैम्डा साइहैलोथ्रिन जो कैराटे के नाम से आता है, लैम्डा साइहैलोथ्रिन नमक दवा ये भी बहुत अच्छा है, ये बैगन के तना फली या तना छेदक के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी यूज़ करते हैं, इसका दाम थोड़ा सा कम होगा। फेम नामक जो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये ही दवा आपको कब करना पड़ेगा, जब आपका आक्रमण ज़्यादा होगा तभी आपका छिड़काव करना पड़ेगा।
1: तो इस तरीके से आप बैंगन के कीट से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप राख का छिड़काव कर सकते हैं उस पर किरासन तेल डालकर, और इसके अलावे जो है अगर सावधानियों की बात करें तो आप नर्सरी से जैसे ही आप उसे पौधे रुपाई के लिए ले जाते हैं तो बीज शोध करके ही ले जाएं, अन्यथा नहीं ले जाएं क्योंकि डर रहता है कि उसमें कीट पतंगे भी लग सकते हैं। इसके अलावे अभी बात आ रही है डॉक्टर साहब कि हम टमाटर की जो है रुपाई वो कैसे करें, अभी फ़िलहाल टमाटर की रुपाई का सीज़न भी है, सलाह दिया जा रहा है किसान भाइयों को कि आप टमाटर की आराम से रुपाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सावधानी भी बरतना है। और उसमें सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि कीट पतंगों से कैसे बचा जाए, तो हम जानना चाहेंगे टमाटर खासतौर पर इस पौधे में जो कीट पतंग लगते हैं उनके बारे में और वो किस तरीके से इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं।
0: टमाटर में हमारे बिहार में मुख्यतः 3-4 तरह के कीड़े हैं जिसमें ज़्यादा समस्या दिखाई देता है शुरू के टाइम में, जो सादा मक्खी जिससे एक वायरस डिजीज जो हम लोग बताते हैं टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, मतलब पत्ता ऊपर की तरह कुकड़ी हो जाता है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ये जो वायरस जो बीमा वायरस बीमारी है ये सादा मक्खी नामक कीड़े से फैलता है। ये सब शुरू में ही सबसे प्रॉब्लम होता है। इसके छोड़ के टमाटर के सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है टमाटर फसल को वो है फली छेदक। वो जो है अंतिम अवस्था में आता है, जब फल आना शुरू होता है उस समय जो है फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, तो वो भी बहुत ही समस्या। तो फली छेदक को अगर हम लोग कैसे पहचाने, तो हम जब भी देखेंगे टमाटर के फल में छोटा सा छेद किया हुआ रहता है, जब भी उसका आक्रमण होता है उसको अगर हम तोड़े फल को, तो उसके अंदर से एक पिल्लू, तो हरा कलर का पिल्लू जो है निकल के आएगा। तो वो सबसे ज़्यादा बैगन में जो है 20-30% तक डैमेज करता है अगर हम बैगन लेट में लगाए। अगर हम बैगन अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगा देते हैं और हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च तक हो जाता है हमारे, उस केस में हम लोग देखते हैं जो बैगन में फली छेदक का आक्रमण कम है। अगर बैगन हम लोग लेट लगाते हैं, लगभग नवम्बर के एंड बट दिसंबर में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग हम लोग मार्च के मिडिल से अप्रैल तक करते हैं, तो उस फसल में हम फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादातर देखते हैं। ये फली छेदक छोड़ के जो तीसरा जो हमारा कीड़ा है, जो हम लोग टमाटर का लीफ माइनर कहते हैं, जो पत्ता में जो है सांप जैसा जो है अपना दाग छोड़ के जाते हैं, और ये भी जो है बहुत ही हद तक डैमेज करता है किंतु हमारा फल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, किंतु टमाटर का पत्ती के ऊपर मैक्स बहुत हद तक ये डैमेज पहुँचाता है। तो ये तीन जो है मुख्य कीड़ा है, टमाटर का सादा मक्खी, टमाटर का फली छेदक और टमाटर का लीफ माइनर। और माइनर अगर जो उससे भी अगर हम डैमेज अगर कम करें इसके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे, तो टमाटर में माइट का भी, मकड़ी जिसको बोलते हैं, माइट का भी समस्या है। और इसमें जो है पत्ता जो है टमाटर का नीचे की तरह मुड़ने लगेगा, जब हम बताएं सादा मक्खी जब आक्रमण होगा तो ऊपर की तरह मुड़ेगा, किंतु जब मकड़ी व माइट का आक्रमण होता है तो नीचे की तरह मुड़ता है। तो ये भी जो है बहुत हद तक डैमेज करता है टमाटर के पत्ते के शुरू के समय में।
1: अच्छा, तो ये हो गई बातें कीट की, और अब इसका समाधान कैसे करें हमारे किसान भाई, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम।
0: समाधान के लिए पहले ही हम बताना चाहेंगे आपको, शुरू से ही आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप बीज शोधन से शुरू करते हैं तो आपको जो बैगन टमाटर में जो वायरस बीमारी है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जिसको हम कहना चाहेंगे, इससे आप बहुत हद तक जो है आप निष्कास पा सकते हैं। इसमें जो है आपको जो है इमिडाक्लोपिड नामक दवा जो गौचो करके नाम से आता है 5 ग्राम प्रति केजी सीट, बा थायमिथक्सम बा एक तरह नामक दवा जो आता है वो भी 5 ग्राम प्रति केजी सीट के दर से आप इसको बीज शोधन कीजिए। बीज शोधन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं हम आपको ये थोड़ा सा बता दें। एक पॉलीथीन जो है आप मिट्टी में बिछा दीजिए और सीट को फैला दीजिए पॉलीथीन के ऊपर, और पॉलीथीन में थोड़ा सा हल्का सा जो है बीज के ऊपर नमी के लिए थोड़ा सा पानी का हल्का सा छिड़काव करें, और जो इमिडाक्लोपिड नामक दवा और थायमिथक्सन का जो पाउडर हम बताए वो पाउडर पूरा बीज में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करके आप हाथ में पॉलीथीन पहन के, खाली हाथ में नहीं, हाथ में कुछ पहन के, पॉलीथीन पहन के या कुछ भी ग्लव्स पहन के आप उसको अच्छा से मिला दीजिए। मिला के एक पूरा रात छोड़ दीजिए, अगले दिन बा अगले से एक दिन और छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन जाके आप इसको जो है सोइंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपको शुरू के समय में जो आपका वायरस नामक बीमारी का जो समस्या है ये समस्या आपके खेत पे नहीं आएगा, ये बहुत हद तक जो है आपको खेत में कंट्रोल भी कर देगा और कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है शुरू के 20 से 25 दिन के बाद अगर बीज शोधन करते हैं तो 30 दिन और 40 दिन के अंतराल में, मतलब 10 दिन के इंटरवल में, 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप दो छिड़काव, कीड़ा खेत में थोड़ा भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोपिड नामक दवा है वो एडमायर व कन्फिडर के नाम से मिलता है, 1 ml 3 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। बा आप जो है थायमिथक्सम जो एक तरह नामक दवा है इसका भी जो है आप 1 ग्राम 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर समय की पीट प्रबंधन के तरफ आप जाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो ये सादा मक्खी जो है, जो वेक्टर है जो बीमारी का, जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है, इसके लिए हम लोग योलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। योलो स्टिकी ट्रैप ये है, आप कोई भी पीला कलर का कागज व पॉलीथीन जो है, आप एक पिच बोर्ड जो है, बच्चे लोग जो पढ़ता है वो पिच बोर्ड को, उसको उखाड़ के पिच बोर्ड के दोनों तरफ जो पीला कलर का कागज साट दीजिए, साट के उसके अंदर जो है ग्रीस और गोंद का मिक्स करके, ट्रांसपेरेंट गोंद होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट गोंद और ग्रीस का जो है प्रोलेप मिक्स करके उसको ब्रश से इससे दोनों साइड में आप उसका प्रोलेप लगा दीजिए। लगा के जो है आप एक जो बांस का ये मिलता है स्टिक मिलता है उसको जो है आप गाड़ के जो फसल का जो हाइट होता है, जो हमारा पौधा का जो हाइट है उसी हाइट के अनुसार आप अपना जो ट्रैप जो बनाए उस ट्रैप को आप जो फील्ड खेत में लगाइए। ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लगाना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना, जो उसका हाइट है फसल का वही सिमिलर हाइट में आपको लगाना है। इसलिए लगाना है जो हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है वो ज़्यादातर ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, वो बहुत ही वीक है, उन नहीं पाते, तो इसीलिए वो सिर्फ हवा के माध्यम से ही दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो हम येलो स्टिकी ट्रैप बताए, जो पीला कलर का ट्रैप बताए, इससे क्या होगा, जो हमारा सादा मक्खी उसमें अट्रैक्ट ज़्यादा होगा और उसमें जाके वो फंस जाएगा। एक बार जब उसमें फंस जाएगा उसके गोंद और ग्रीस के वजह से वो उधर से निकल नहीं पाएगा, उसी में वो मर जाएगा। तो इससे जो है बहुत हद तक हम पॉपुलेशन जो है हमारा सादा मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। और शुरू में जो है आप नीम आधारित, आपको हम बताए थे नीम आधारित कोई भी दवा, निम्बिसिडिन हो, निमाजोल हो, एचूक हो, कोई भी दवा अगर आपको बाजार में मिले वो कर सकते हैं, बा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, नीम का बीज को मिक्सचर ग्राइंडर में क्रश करके उसका 5% सॉल्यूशन बना के 5 ml 1 liter पानी में घोल करके भी हम छिड़काव कर सकते हैं, पर नीम का पत्ती से भी हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है हम कीट बताए, कीड़े के बारे में बताए, जो टमाटर का फली छेदक है, फली छेदक के लिए हम लोग शुरू से हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जब भी हम लोग जिस फील्ड में लगाना है उस फील्ड को अच्छा से जुताई करना चाहिए। इसलिए जो कीड़ा है, कीड़े का जो इमैच्योर जो अवस्था है वो एक इमैच्योर स्टेज जो है वो सॉइल जो मिट्टी के अंदर भी रहता है, अगर हम उसको अच्छा से प्लाउइंग करेंगे तो वो जो है सूर्य के सामने जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, उससे क्या होगा उसका पॉपुलेशन भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो प्लाउइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो हम टमाटर में हम ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप क्या मतलब जो है जो कीड़ा टमाटर छोड़ के दूसरे क्रॉप में भी अट्रैक्ट हो, उससे क्या होता है जो हमारा जो मेन क्रॉप टमाटर है वो बच जाएगा, जो ट्रैप क्रॉप है ट्रैप क्रॉप के ऊपर ही हम दवा का छिड़काव करेंगे तो मेन क्रॉप में कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होगा। तो ये ट्रैप क्रॉप का नाम है मेरीगोल्ड, गेंदा जिसको हम लोग बोलते हैं, गेंदा का जो है 25:2 मतलब 25 टमाटर 2 गेंदा, 25 टमाटर 2 गेंदा, ये लगा के हम जो है अपना पेस्ट जो है जो हम बोले पिल्लू हेलिकोबर्पा वो हम गेंदा पे शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज गेंदा का जो फूल है वो जो पीला कलर का होता है इसमें वो अट्रैक्ट होता है और उसमें वो शिफ्ट हो जाए, तब हम गेंदा में स्प्रे कर से जो हमारा टमाटर जो मेन फसल है इसको पेस्टिसाइड के लोड से बचा सकते हैं। ये एक तकनीक है समेकित कीट प्रबंधन का। दूसरा जो समेकित कीट प्रबंधन का तकनीक है हम बताए थे फेरोमोन ट्रैप के बारे में, फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हो। फेरोमोन ट्रैप का नाम है हेलिलियो। हम लोग अगर मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग मतलब कब हमारे खेत में कीड़ा है इसके अगर हम लोगों को जानना है तो इसके लिए हम लोगों को 1 hectare में 12 ट्रैप लगाना पड़ेगा 200-200 meters के दूरी में। उससे क्या होगा जो उसका एडल्ट का जो एडल्ट है पिल्लू का जो एडल्ट है वो उसमें फंस जाएगा, उससे हमको पता चलेगा जब हमारे खेत में जो है हेलिकोबर्पा का इन्फेस्टेशन शुरू हो चुका है, तो हम लोगों को सचेत रहना होगा। और उसके बाद हम लोगों को अगर इन्फेस्टेशन लेवल जो है 5%, 5% या 10% फ्रूट डैमेज से ज़्यादा हो तो हमको समेकित कीट प्रणाली में से एक दवा आता है HANPV, उसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये नामक दवा का जो है हम 2.5 to 3 grams प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से बहुत 70-80-90% तक हमारा कीड़े का जो है कंट्रोल हो जाएगा, अब मैनेजमेंट हो जाएगा, तो हमको कोई रासायनिक दवा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसान बंधु रासायनिक दवा में भी जाना चाहता है तो रासायनिक दवा के लिए हम बता देते हैं जो एक दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्साकार्प, जो बाजार में एवांट करके नाम से मिलता है, उसका मात्रा है 2 लीटर पानी में 1 ml इंडोक्साकार्प एवांट, ये की दवा है। दूसरा जो दवा है ये है लैम्डा साइलोथ्रिन, जो बाजार में कराटे के नाम से मिलता है। ये शुरू में आप दे सकते हैं, इसका महंगा भी नहीं है ज़्यादा, आप यूज़। अगर आपका कीड़े का आक्रमण ज़्यादा हो गया, अगर लगता है जो नहीं कीट जो है कीटनाशी, अच्छा कोई कीटनाशी देना पड़ेगा जिससे कंट्रोल और कम हो जाए, इसके लिए हम बताना चाहेंगे थोड़ा कॉस्टली दवा है, जैसे स्पाइनोसेट, जो हम बताना चाहेंगे स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, 2 लीटर पानी में 1 ml के दर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। व फ्लूबेंडियामाइड जो फेम है, फेम भी 1 ग्राम प्रति 3 लीटर के दर से 15 लीटर पानी में 5 ग्राम के दर से आप छिड़काव कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा दवा है जो कोराजेन के नाम से मिलता है, ये भी जो है 3 लीटर पानी में 1 ml के गुना के दर से घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दो जो लास्ट दवा बताए, फ्लूबेंडेमाइड, फेम और कोराजेन, ये थोड़ा सा महंगा दवा है। जब आपका खेत में आक्रमण जो है 20-30% के ऊपर चला जाएगा तभी इस दवा का छिड़काव करें, अन्यथा आपको जो पहले जो हम इंडोक्सोकार्प के बारे में बताए, लैम्डा साइहेलोथ्रिन के बारे में बताए, इसी दवा का आप छिड़काव करें। और अंतिम जो मैं कीड़े के बारे में बताया था, टोमेटो का लीफ माइनर, जिसको हम लोग बोलते हैं जो पत्ते में जो सांप के जैसा दाग छोड़ देता है, इसके लिए जो है आप समेकित कीट प्रबंधन में नीम आधारित दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और रासायनिक में क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा है, क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो है आप प्रोफेनोफॉस नामक दवा है जो कुराक्रॉन के नाम से मिलता है, ये भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि लगभग सभी सब्जियों में कीट और समाधान एक समान है, लगभग, तो इसलिए आप इस तरीके से इन दवाइयों का छिड़काव जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन दवाइयों का छिड़काव करके या फिर कुछ सावधानियों को अपनाकर अपनी सब्जियों को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि इन कीटों से दूर रख सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे आगे मुलाकातें होंगी अगले विषय के साथ, अगली जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर। तब तक सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: घर सूर्य घर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
10: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर, सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
10: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
10: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा, मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है, तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं। इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं, आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं, इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल, चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई, लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी

0: आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
8: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
13: जी
12: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
13: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
12: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
14: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 एफएम ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूं और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं, ये जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में।
2: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन, अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
1: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
2: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, इसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं। हो सकता
1: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा, वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
2: पोषण दवाई के माध्यम, दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे, तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को, मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
2: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह के कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके शरीर में।
1: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
2: उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, महिलाओं को उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है वो, हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का, उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा। उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
1: जी, मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
2: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे, बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग, जैसे एनीमिया, रतौंधी, ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों को।
1: तो अगर मान लिया जाए, ये सब तो आपको पता है कि मान लिया जाए ऐसा होता है, अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले, तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है। तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
2: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा नाम मानव है।
1: जी, तो मानव जी, आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें, इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियां हैं ये बताएं।
2: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर जमीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
1: ये तो मान लिया जाए कि वृहत पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा जमीन नहीं होती है।
2: हाँ।
1: जब जमीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे, या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
2: वो अपने बारे वो क्या करे, अगर जो वो नहीं कर सक, अगर जो उनके पास अपना ज़मीन नहीं है तो वो दूसरे पे, दूसरे के अथी पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो उगा रहा है तो अगर वो उसके पास है कि वो एक दूसरे
3: नहीं, नहीं, अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो, बाड़ी हो, उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं, उस क्यारी में लगाएं और अपना जैसे कि सब्जी हो, फल हो, वो अपने आप आंगन में अगर उपजाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है, ठीक है, उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 FM ग्रीन आपका धन्यवाद करती है। मैं

0: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं, जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में, गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें, तो परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूँ मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूँ पर आश्रित हैं। और यहाँ वर्षों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूँ, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यावसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा जमीन है, तो आप कुछ जमीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास जमीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी, तो वो क्या कर सकते हैं? पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है। लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं। और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यवसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
5: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
6: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है। फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है, तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था आप बोल सकते हैं, आज वहाँ पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, वही धान गेहूँ पर आश्रित है, तो ऐसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज़्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
5: तो सर, अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
6: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं। आपका मूल जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कोई भी काम उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही। जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
5: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यवसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
6: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है, उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसे योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके लिए जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है। तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों नए फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है। फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे। आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा आपको, लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है। तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
5: यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
6: जी जी हाँ।
5: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
6: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट, प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी, आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
5: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
6: देखिए एक एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है, जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, इसी सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाध में बोलते हैं, बाध बोलते हैं, खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाध में है, पश्चिम बाध में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है। तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है, और छोटे खेत में आप एक एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है। पूंजी की कमी, आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं या, तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
5: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
6: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती, क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है, अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाइए और वो 10 लोग मिलके एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी में आपका फल फूल आपका जो हाँ औषधीय पौधे, औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए, तो इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
5: जी, तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
6: जी जी, देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें वो हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए, तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
5: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
6: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे मैंने बताया वही एक बीघा में धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियां जैसे हमने बात किया, तो उस चुनौतियां सब जगह चुनौतियां हैं, जीवन में चुनौतियां हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियां उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी
5: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: उन्नत कृषि आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
14: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
15: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
16: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. നമസ്കാരം, ആപ്നെ ട്യൂൺ കിയാ ഹൈ 90.8 FM ഗ്രീൻ ഓർ മേ ഹൂ ആപ്കി ഹോസ്റ്റ് ആപ്കി ദോസ്ത് ആർ ജെ അനു. एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर हम आ चुके हैं. दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे बिहार में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, लेकिन एक जो सबसे खास, जो देखने में तो सुंदर लगता ही है और उसकी विशेषताएं भी बहुत हैं, वो है स्ट्रॉबेरी. जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही हम उसकी खेती के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूं तो बहुत ही कम जगह ख़ासतौर पर मैंने देखा है इसकी खेती, और इसीलिए लोग इसकी खेती को जानने के लिए उत्सुक होते हैं. तो आपको बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसकी एक विशेषता इस स्ट्रॉबेरी से है, वो है पोषण सुरक्षा. यानी स्ट्रॉबेरी की खेती से पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है और ये एक लाभदायक व्यवसाय हमारे लिए कैसे बन सकता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे. और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर रूबी रानी जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद अनु. मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, योग उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे.
0: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा?
1: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए. सबसे पहली बात है कि हमारे स्ट्रॉबेरी जो है उसमें बहुत ही पोषण से भरपूर, या पोषण का कैप्सूल, न्यूट्रिटिव कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं. अच्छा. इसमें हर तरह का न्यूट्रिशन है और जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटास, फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फैट का ये अनुपात कम है और इसमें कैलोरी कम मिलती है.
0: अच्छा.
1: लेकिन ये फाइबर रिच फ्रूट है. एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स में बहुत ज़्यादा है. अब एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स का क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोगरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं.
0: अच्छा.
1: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोगरोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें.
0: अच्छा.
1: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है. जो भी फैट कंटेंट, थोड़ा फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है. आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं.
0: जी बिल्कुल.
1: होना चाहिए. और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
0: एंटीऑक्सीडेंट्स
1: ज़्यादा हो, विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा हो. तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए. तो इस स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद हैं.
0: जी.
1: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है.
0: अच्छा अच्छा.
1: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फूड है, फ्रूट है. लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है. और ये फल जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है.
0: अच्छा.
1: जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से क्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं.
0: अच्छा.
1: स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है. इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो इसको जो अच्छे कंडीशन में जब इसको बहुत कम दिन होता है, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं.
0: अच्छा.
1: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाए.
0: जी.
1: तभी हमें ये मिल पाएगा वरना हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
0: तो दोस्तों मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं, जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना शामिल हो चुकी है ये महामारी, और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसी फल और सब्जियां लेनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर शामिल करें, और आपको हम स्ट्रॉबेरी से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। तो मैम ने जैसे कहा कि इसे बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता, ये बहुत कोमल फल है, तो मैम बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है क्या?
1: बेशक बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है, हमने पिछले 10 साल में पर इस पर शोध किया। जब हमने शुरू किया था तो हमें भी विश्वास नहीं था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसका शोध किया तो मैंने पाया कि बिहार में इसका खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि ये फल जो है वो ठंडे जगहों का फल है, जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में, आदि जगहों में उगाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ किस्में आई हैं और कुछ विशेष तकनीक की मदद से इसे हमारे प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगहों में भी काफ़ी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए हमने शोध के उपरांत मैंने देखा कि बिहार में ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।
0: मतलब पहले लोग ये घबराते थे कि गर्म वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये पहले जम्मू और कश्मीर में ही उगाया जाता था। तो यहाँ पर शोध के बाद पता चला है दोस्तों कि बिहार में इसका उत्पादन किया जा सकता है।

0: ग्रुप
1: व्यावसायिक हाँ। ग्रुप भी बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही सुवासित सुगंधित फल है, इसका अलग ही एक एरोमा है, और जो कि इसका आकर्षित रंग के साथ साथ इसका एरोमा भी लोगों को अट्रैक्टिव करता है। साथ ही पोषण और बहुआयामी इसके उपयोग है, इसके कारण इसकी खेती बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इसको उगाने के लिए, क्योंकि ये 7 से 8 महीने में पूरा फसल तैयार हो जाता है, और इसका डिमांड ज्यादा होने के कारण इसके प्राइस ज्यादा है, और किसानों को ज्यादा मुनाफा 7 से 8 महीने में प्राप्त हो जाता है
0: जी।
1: और अब आती है कि इसको लगाने की विधि
0: जी,
1: और इसका समय क्या है। तो हमने शोध के उपरांत पाया कि बिहार में इसको लगाने का समय अक्टूबर माह जो है, इसको लगाने का सबसे उत्तम समय है। प्रथम सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंत तक आप लगा सकते हैं, हालांकि इसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन आप अक्टूबर तक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 15 नवंबर के बाद आप लगाएंगे तो इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि कमी आ जाती है, क्योंकि उसको सही समय नहीं मिल पाता है उसको समुचित ग्रोथ का, और फूल खिलने लगते हैं इसके कारण कि छोटे पौधे में फूल खिलने से उत्पादन में कमी हो जाती है, गुणवत्ता भी सही नहीं रहती है। तो लगाने का उचित समय इसका अक्टूबर है,
0: अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से।
1: प्रथम सप्ताह से आप 15 नवंबर तक लगा सकें, नवंबर तक बिल्कुल लगा दें, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उत्पादकता में आपको
0: कमी मिलेगी जी।
1: अब भाई इसको पूछा जैसे कि अपने लगाने की विधि क्या है, तो इसको लगाते हम लोग रनर से, पौध से हम इसे लगाते हैं
0: जी जी।
1: इसके लिए जो है छोटे छोटे पौध आते हैं, और इसके हम बीज से नहीं लगाते हैं, और ये पौध जो है हमारे रनर से एक पौधे से कई कई पौधे निकलते हैं उससे तैयार होते हैं। परंतु हमारे राज्य में अप्रैल महीने के बाद से इतनी गर्मी होती है
0: जी।
1: कि ये पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पौधों के लिए दूसरे राज्यों जहाँ ठंड प्रदेश हैं वहाँ से हमको उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये पौधे 4 से 6 पत्तियां हो उस पौध में, उसको हमको लगाना चाहिए। और लगाने के पहले पौधे को हम कार्बनडाइजीम के 0.2% के घोल में 5 मिनट तक डुबाते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके पौधे को लगाते हैं। तो ये भी लगाने की विधि और इसका लगाने का समय।
0: तो मैम इसके बाद उत्पादन तकनीक को भी हम जानना चाहेंगे, जब विधि की बात हो गई है और इसके बाद उत्पादन तकनीक को ना जाने तो थोड़ा अधूरापन रहता है, तो इसके उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताएं थोड़ा।
1: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी इसका भूमि की तैयारी कैसे करें, इसका बेड कैसे बनाएं, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें, और इसमें सिंचाई कैसे करें, और इसमें कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके बारे में मैं एक एक करके सबको आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी करने के लिए आप जैसे अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें खेत की। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
0: अच्छा।
1: और मिट्टी जो है वो बलवाही दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, और वो क्षारीय मिट्टी ना हो, जैसे कि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का चुनाव करें, और वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव नहीं हो और मिट्टी हल्की हो। इसका जिसका पीएच मान मिट्टी का 6.5 से 7 के बीच या 6 से 7 के बीच हो, 7 से ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का हम चुनाव करें
0: जी।
1: और चुनाव करने के बाद लगाने के समय के, यानी कि अक्टूबर में आप लगा रहे हैं या 15 अक्टूबर को लगा रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले आप उसकी जमीन की गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई करें। हल्की जुताई के समय उसमें आप कुछ खाद डालें, तो खाद की मात्रा जो है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो पोटास प्रति एकड़ आप हल्की जुताई के समय में डाल करके इसको जुताई कर दें। उसके बाद इसकी खेती, व्यावसायिक खेती जो होती है वो उठी हुई क्यारियों पे होती है।
0: अच्छा।
1: तो उस क्यारी को बनाने के लिए आप उसकी ऊंचाई जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखें, और उसकी

0: चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार जितना चाहे रख सकते हैं
1: जी।
0: दो क्यारी के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आपकी उठी हुई क्यारी तैयार हो जाएगी जो कि 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 से 1.25 मीटर चौड़ा हो और दो क्यारियों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो। एक क्यारी पे अगर आप 1 मीटर रखे हैं या 90 सेंटीमीटर तक चौड़ा रखे हैं तो आप 2 पंक्तियां लगाएं, अगर उससे ज़्यादा रखे हैं तो 3 पंक्तियां भी आप लगा सकते हैं। 4 पंक्तियां में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 3 पंक्तियां आप एक क्यारी पे लगा सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आप बेड पे 2 से 3 क्यारी तैयार कर सकते हैं और प्रति एकड़ लगभग 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद आता है कि हम इसको लगाने की विधि मैंने पहले बता दी, लेकिन अगर आप इसमें सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था कर सकें तो ये आपके लिए वरदान होगा
1: जी।
0: और ड्रिप सिंचाई पे आज जो है सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है, तो आप सरकारी सहायता प्राप्त कर आप ड्रिप सिंचाई का अपने खेत में लगा सकते हैं और ये जो कि काफ़ी वरदान होता है इसके लिए, बड़ी अच्छी खेती, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है फलों की। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि किसान भाइयों आप ड्रिप सिंचाई का इसमें उपयोग जरूर करें
1: जी।
0: इसके अलावा पौधे लगाने के बाद इसकी जो खेती होती है, इसके जो फल होते हैं वो मूलतः जमीन पे सटे हुए होते हैं। जब निकलते हैं तो जैसे ही फल बड़ा होता है तो अपने भार से वो जमीन सतह पे सट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, इसलिए मल्च या पलवार का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी और फल का संपर्क ना बने। ये फल चूंकि बहुत ही कोमल मुलायम होता है, लगातार अगर मिट्टी के संसर्ग में रहेगा तो ये खराब हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, बाजार में ले जाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मल्च बहुत ही आवश्यक है। मल्च आप पुआल का भी दे सकते हैं और प्लास्टिक का भी दे सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो प्लास्टिक का मल्च बहुत ही अच्छा देखा गया है इसमें, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की मल्च नहीं है तो आप धान या गेहूं के का जो भूसा होता है या पुआल होता है उसका भी उपयोग मल्च के रूप में कर सकते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा मल्च होना चाहिए ताकि फल का संपर्क डायरेक्ट मिट्टी से ना हो और आपकी फल जो है परिपक्वता तक अच्छे कंडीशन में रहे और बाजार में ले जाने लग रहे। तो इस तरह से दो तकनीक, जो मल्च और सूक्ष्म सिंचाई, ये दोनों इसके लिए वरदान है। और जब आप बेड तैयार करते हैं तब उसमें जो है आप सूक्ष्म सिंचाई पहले बिछा दें, पौधे लगा दें, उसमें सूक्ष्म सिंचाई कर दें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं आपने वहाँ वहाँ उतनी दूरी पर आप मल्च में छेद करके उस तरह से पौधे को व्यवस्थित कर दें
1: जी।
0: आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार करके मल्च को फिक्स कर दें, फिर जितनी दूरी पर आपको बेड को तैयार करके पहले ड्रिप इरिगेशन लगा दें, फिर आपको मल्च डाल दें, मल्च फिक्स कर दें और जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर छेद करके थोड़ा सा होल करके वहाँ पर पौधे को आप फिक्स कर दें और ड्रिप से आपका पानी और पोषण सारा चीज ड्रिप के माध्यम से पौधे को मिलता रहेगा। तो ये हुई विशेष तकनीक।
1: अच्छा,
0: कि इसके उत्पादन में विशेष तकनीक है। इसके अलावा हमारे राज्य में दिसंबर के अंत में और जनवरी तक पाले का प्रकोप रहता है, उसमें बहुत धुंध रहती है, पाले का प्रकोप रहता है और पाले से बचाने के लिए आप छोटा पॉलीटनेल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पौधे जो है पाले से बच सकें। और पॉलीटनेल जो है उसकी ऊंचाई 65 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये पॉलीटनेल क्या है, एक छोटा पॉलीहाउस है, मिनिएचर है पॉलीहाउस का, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होती है। इसको बेड कवर या रो कवर भी बोलते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 65 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये अगर आपको टनल बनाने के लिए जीआई पाइप का ना मिले तो आप बांस की करची पे भी पतली पॉलीथीन की सीट बिछा करके पॉली टनल बना सकते हैं, और जो कि आपके पास बहुत आयत में बांस तो हर गांव में उपलब्ध रहता है, तो उस कमाची का उपयोग करके, बांस का उपयोग करके आप पॉली टनल बना लें, और पॉली टनल पर पतली सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उजले कलर की पॉलीथीन आप डाल दें, और ये जो है जब आपका पाला पड़ना शुरू हो जाए तब और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसको डाले रहें। इससे क्या होता है कि पौधा जो है पाले से बचा रहेगा और धूप उसके अंदर आती रही, ग्रोथ बढ़वार बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा पॉली हाउस का इफेक्ट रहता है, पॉली जैसा पॉली हाउस में उसका इफेक्ट रहता है पौधों का, उसी तरह से पॉली टनल का भी उपयोग है, साथ साथ ये पाले से भी बचाता है, और ढके रहने के कारण कीट व्याधि का भी प्रकोप कम रहता है, इसी कारण की फल की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये विशेष तीन तकनीक जो है स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सूक्ष्म सिंचाई, पॉली टनल और मल्च। किसान भाइयों, अगर आप सूक्ष्म सिंचाई नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन मल्च तो मस्ट है, चाहे आप पुआल का मल्च दें चाहे आप प्लास्टिक का मल्च दें, मल्च के लिए हमेशा काले पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है, मल्च सीटू कहलाता है, और वो 1 मीटर और 1.25 मीटर के चौड़ाई में आता है, और लंबा आप जितना चाहे एक रोल ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी जाती है, खासकर ये स्ट्रॉबेरी सब्जियों आदि के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्च आप का उपयोग करें, सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बिना उसकी भी खेती कर सकते हैं। टनल का भी उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, करना करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मल्च का उपयोग तो करना ही होगा। तो ये है उत्पादन तकनीक, और लगाने के बाद जो है आप जो भी उसमें पोषण देंगे वो फर्टिगेशन के थ्रू देंगे, क्योंकि आप ड्रिप सिंचाई लगा चुके हैं और पौधा जो है मल्च के नीचे है, तो आपको बाहर से आप नहीं दे सकते हैं, आप जो है इसको फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं। और फर्टिगेशन के लिए भी हमने शोध किया है, पौधे लगाने के 30 से 45 दिन बाद जो घुलनशील हमारा एनपीके है 20-20-20 का, उसका 25 ग्राम की मात्रा को 4 भागों में बांट दें, और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम 4 भागों में बांट करके और 15 दिन के अंतराल पे उसको 4 बार दें, तो इस तरह से आपका जो है वो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा।
1: जी श्रोताओं, मैम ने आपको बताया कि उत्पादन की तीन विशेष तकनीक हैं, वो है मल्च, पॉली टनल, और साथ ही मैम ने बताया सूक्ष्म सिंचाई। मल्च जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये अपनाएं ही अपनाएं, और सूक्ष्म सिंचाई आप चाहें तो अपना सकते हैं नहीं तो नहीं, और पॉली टनल भी आप चाहें तो अपना सकते हैं नहीं तो आपकी जो सुविधा है आप उसके अनुसार उत्पादन तकनीक को अपना सकते हैं। मैम, उत्पादन तकनीक के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और अगर किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो पहले से सावधान हो जाएंगे, उन सावधानियों के साथ वो उत्पादन तकनीक को अपनाएंगे ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे किसान, हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत लोग किसान लोग कर रहे हैं, और हमारे पास उनकी समस्याओं के बारे में भी फ़ोन आते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के दौरान किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कुछ इसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है उकठा रोग। कभी कभी देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बीच बीच में पौधे गलने शुरू हो गए, पौधे अचानक सूखने शुरू हो जाते हैं और उसको चाह करके भी आप नहीं बचा सकते हैं, तो इसके लिए ये समस्या फरवरी मार्च के बाद आनी शुरू होती है, जब पौधे जो थोड़ी सी गर्मी आती है उसके बाद ही आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आपको देना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध होनी चाहिए, उस पौधे में कहीं किसी तरह का स्पॉट या कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पौधे को लगाएं तो मैंने बताया कि कार्बन डाइजीम में उसको 0.2% के घोल में, आप कार्बन डाइजीम के घोल में उसको 5 मिनट तक दुबाएं, उसके बाद लगाएं। और जब आप बेड तैयार करते हैं, ऊंची उठी हुई बेड आप तैयार करते हैं, तो 0.01% का मेटल एक्सिल का घोल से एक बार उस पर स्प्रे कर दें
1: जी,
0: तो ये आपको उकठा रोग से बहुत बचाव करेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो कंपोस्ट डालते इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, कंपोस्ट को डालने के पूर्व ट्राइकोडर्मा आधा आधा केजी लेकर के ट्राइकोडर्मा उसको 15 से 20 केजी कंपोस्ट में मिक्स कर दें, उसको एक सप्ताह के लिए छोड़ दें, मॉइस्ट रखें और उस कंपोस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि आप कार्बन डाइजीम का यूज करें, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें और मेटल एक्सिल के 0.01% के घोल से आप बेड को जो नर्सरी का अपनी जो उठी हुई क्यारी तैयार की उसको उपचारित करें। इस तरह से करने से आपको जो है फफूंद जनित रोग जो है वो आप से आप इसको बचा सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा और इसका रोग है लीप स्पॉट आता है, पर्णचित्ती आता है। कभी कभी देखेंगे कि गोल गोल गोल गोल स्पॉट आ गया है लीप पे, जैसे ही आप स्पॉट देखें उसको आप कैंची से हटा दें, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1% का घोल से उसका छिड़काव करें, इससे आप जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे कि फल में फल जो है उस पर फफूंद रोग गया है, तो वैसे फल जो मिट्टी के संसर्ग में आएंगे या ज़्यादा पानी भी आप अगर आपने दे दिया है तो ग्रे मोल्ड का जो ग्रे मोल्ड होता है ग्रे मोल्ड का प्रकोप हो जाता है और ग्रे मोल्ड का प्रकोप होने से आपका फल खराब हो जाएंगे, इसलिए आप मल्च का उपयोग करें। बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं दें, जड़ों को आप नमी बरकरार रखें जड़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वातावरण में नहीं रहने दें। और अगर सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करते हैं तो आपको जड़ में पानी जाएगा, पत्तियों पे बाकी वातावरण में पानी कम रहेगा और वहाँ पर ग्रे मोल्ड की समस्या कम होगी। इसलिए ग्रे मोल्ड से बचाने के लिए आप मल्च का उपयोग करें। अगर ये कुछ आ गया है तो तुड़ाई के उपरांत डायथन M45 का 2 ग्राम का प्रति लीटर का घोल बना करके आप एक बार स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप ग्रे मोल्ड से, उकठा रोग से यानी कि विल्ट से और लिप स्पॉट से इसका निजात पा सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं, आपने जाना कि जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान के बारे में भी आपने जाना, और मैम इसके बाद उत्पादन से लाभ तो मिलेंगे ही, क्योंकि पहले ही भी हम जान चुके हैं इसमें पोषण बहुत ज़्यादा है। तो व्यावसायिक तौर पर, आम तौर पर क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इसके उत्पादन से?
0: इसके पहले हम बताना चाहेंगे इसकी तुड़ाई कैसे की जानी चाहिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो अगर आप इसको अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो दिसंबर माह में इसका फल टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगातार मार्च तक या कभी कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फल देगा। जैसे ही गर्मी आएगी इसमें फूल आना बंद हो जाता है और फूल आना बंद हो जाएगा तो फल आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको मार्च तक आपको अच्छा फलन देगा। और इसका तोड़ने के लिए जब ये फलना शुरू हो जाता है तो कुछ कुछ अंतराल पे ये फल आपको तोड़ने होंगे और फल की तुड़ाई आप सुबह में करें। तुड़ाई के बाद आप फल को जो है आप ठंडे जगह में रखें और जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें, क्योंकि तुड़ाई के उपरांत इसकी जो है संधारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फ्रूट है और बहुत जल्दी खराब होता है
1: जी।
0: तो जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें। अगर दूर के मार्केट में आपको भेजना है तो फल को पूरा लाल होने के पूर्व यानी 75% जब पक जाए तभी आप इसको हार्वेस्ट करें, थोड़ा उसमें टफ रहता है और 1-2 दिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये थोड़ा सा और पकता है, फिर जा करके आप उसको मार्केट में भेजें। तो नज़दीक के लिए मार्केट के लिए पूरा फल पकने के बाद इसको तोड़ें, और अगर दूर का मार्केट में भेजना है तो आप 75% पकने पर ही उसको तोड़ दें। इसकी पैकिंग के लिए पुनेट आता है, पुनेट का उपयोग करें और सही ढंग से इसकी पैकिंग करें, एक फल दूसरे फल पे बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना हो, एक फल पर दूसरा फल ना हो, इस तरह से इसकी पैकिंग करें और तभी आपका ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा मार्केट में रह सकता है
1: जी।
0: और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, कितने लाभ हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी लागत जो है आपको अगर ड्रिप सिंचाई क्या लगाएंगे, मल्च डालेंगे, पॉलिटिनेल डालेंगे तो पहले साल इसकी लागत कुछ ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लगातार इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करें, और 3 साल के बाद उपरांत पाएंगे कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 4 रुपया आपको मिलेंगे।
1: अच्छा,
0: तो पौधों का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो पौधे आपको 10 से 12 रुपये के बीच में मिलेंगे या 15 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 20,000 पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपये आपको पौधे में लग जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादकता जो है अगर अच्छे से आप मैनेज करें तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपको 15 टन से कम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर उसको 200 रुपये के जी भी बेचेंगे तब भी आपको 3 से 4 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा एक एकड़ में। इसलिए 8 से 9 महीने के बीच में इतना शुद्ध मुनाफा किसी भी क्रॉप में नहीं है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है, पोषण से भरपूर फल है, कम अवधि में इसके उगाए जा सकते हैं। और अगर आपके शहर के किनारे छोटा सा भी ज़मीन है तो आप छोटी सी भूभाग में इसकी खेती करके आप इसको बहुत मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अच्छे अच्छी आमदनी पाए, अच्छा लाभ पाए। व्यावसायिक तौर पे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ये इसका स्ट्रॉबेरी का फल उत्पादन काफी अच्छा है। और मैं अपनी वार्ता के दौरान एक चीज बताना भूल गई कि हमारे राज्य में किस्में कौन कौन सी अच्छी उत्पादकता के साथ कर रही हैं। तो मैं बता दूं कि इसके लिए आप स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामारोजा, विंटर डाउन, नबीला, सेंसेशन, ये 6-7 किस्में जो हैं वो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हमने शोध के उपरांत पाया, हमने लगभग 21 किस्में शोध किया है, किस किस्मों का उत्पादन किया अपने रिसर्च प्लॉट पे, और हमने पाया कि ये 6-7 किस्में जो हैं हमारे राज्य में बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादकता के साथ। तो मेरा ये मैंने अपने बताया आपको कि स्ट्रॉबेरी की खेती के कैसे उत्पादन करें और कैसे इससे लाभ कमाएं और क्या इसके लाभ हैं, ये हमारी बात। धन्यवाद किसान भाई, उम्मीद है कि आपको उचित जानकारी मिली होगी, जो जानना चाहेंगे, जानना चाह रहे होंगे आपकी वो जानकारी आपको मैं दे पाई होंगी इतने कम समय में। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना स्ट्रॉबेरी एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बन सकता है, पोषण सुरक्षा हेतु स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा सकती है, हर एक छोटी से बड़ी बात मैम ने आपको बताया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा। अगर आप अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, समय है। और साथ ही जो भी समस्याओं की बात यहाँ पर हुई है, मैम ने उसके समाधान के बारे में भी बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगाएं। और उत्पादन तकनीक के बारे में भी मैम ने बताया कि आप उस तकनीक को ज़रूर अपनाएं, और मल्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे तो आपको अपनाना ही चाहिए, जो कि आपकी जो फल हैं वो मिट्टी संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से बहुत लाभ होगा आपको अगर आप इन जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर,
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं, तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इन लोगों की इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है, जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है। तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा, और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
0: जी जी। तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
1: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे, तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी, तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले, उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की, वो तो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी। अच्छा। तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
0: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसके फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि है, जलवायु अनुकूल कृषि है या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके की पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटाशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे जी। तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
0: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
1: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था, तो वैसे ही ये एक नई तकनीक है। तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है, नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीज़ें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियाँ हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
0: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद उमा आपको।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

इसकी शुरुआत भागलपुर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर

फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है। और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था, उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है, तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएँ होती है, कमाने वाली महिलाएँ होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं।

0: जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए, आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
7: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में रबी मक्का में लगने वाले कीटों के समुचित प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह और सर वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका स्वागत है। और किसान अभी मक्का लगा रहे हैं और इस समय उनको क्या कुछ करना चाहिए, तो उसके बारे में पहले बता दें।
8: हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मक्का लगा रहे होंगे, इसमें कुछ सावधानियां हैं। कैसे, आप मक्का तो आप लगाते ही हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिसको आप कर करके आप ये कीट है, ये कीट का जो संक्रमण होता है जो, उसे आप बच सकते हैं और आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप खेत की तैयारी, जो लोग नहीं लगाए होंगे वो कर रहे होंगे, तो खेत की तैयारी में कुछ चीज़ें हैं, उस बातों पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब जुताई करते हैं तो जुताई हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है कि कल्टीवेटर से भी करते हैं तो एकदम ऊपर ऊपर ना हो करके उसको थोड़ी गड्ढा में उसको करना है। चूँकि अभी तो ये सीजन है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हर तीसरे साल पे आप लोगों को अपनी ज़मीन का गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई जनरली इस महीने तो नहीं संभव है, इस महीने करने से फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। गहरी जुताई करना है आपको मई जून के महीने में, जब सूरज का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उस समय आपको करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि जितने भी रोग जो पौधे को करता है, जो शुरुआत में जो पौधा जब हमारा बहुत छोटा रहता है तो उसको संक्रमित करता है, तो उनसे रोग करने वाले कारक को सूरज के जो प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश जो है उनको मार देते हैं, जिसके चलते ये संक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तो रोगों से बचाव होता है, दूसरा जो है कीट के जीवन चक्र का कोई भी जो स्टेज होता है वो अगर सॉइल में है, ज़मीन में है, तो वो ये ज़्यादा तापमान से, धूप के प्रकाश से वो मर जाते हैं। तो साथ ही साथ जो बहुत सारे जो कीट को जो चिड़िया हैं वो चुन करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गहरी जुताई के फ़ायदे। अब हम लोग चलते हैं उर्वरक के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो आपको जो उर्वरक है उसको कब कब देना चाहिए, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उर्वरक हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी खड़े फसल में भी वो फास्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो ये खरीज फसल में जब फास्फोरस और पोटाश डालेंगे तो इनका जो उपलब्धता होता है, ये अगर आज हम उसको छींटते हैं प्लांट में तो इसकी उपलब्धता में होते होते महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर उर्वरक जो है देने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक सही समय है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधी मात्रा यूरिया का जो अनुशंसित है मक्का के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान आजकल हाइब्रिड मक्का लगाते हैं, तो उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय और पूरी मात्रा फॉस्फोरस और पोटास की। आपको खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद पट्टा दे करके जब हम बीज लगाते हैं तो उस समय आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा शुरू में छोटा रहता है तो जितना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो तो मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास लगभग एक महीने के बाद जब उपलब्ध होगा तब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, ऐसे आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो रेस्ट जो नाइट्रोजन है उसको जो आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं तो उसको पुनः दो पार्ट में आधा आधा कर करके, एक जब नी हाइट होता है, मतलब नी हाइट कहते हैं जब आपके ठेहुने के हाइट का हो तब, और दूसरा जब उसमें धनवाल जब आने वाला होता है उस समय आपको प्रॉपर सिंचाई के साथ आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पोटेशियम जो होता है अगर आप कम मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं तो ये आपके पौधे के जो रोगों से लड़ने या कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। अगर पोटेशियम आप कम मात्रा में देंगे तो आपके जो फसल होंगे उस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है कि ज़्यादा हो और वो, लेकिन अगर आप पोटेशियम जो समुचित मात्रा में देते हैं तो इस पर कीट वो पौधा जो होता है वो मजबूत होता है और उसके चलते जो है उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है। तो ये आप पोटेशियम के बारे में आप समझ लीजिए जो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जब आप उर्वरक जब दे दिए तब होती है कि भाई बीज का चुनाव कैसे क्या करना है। तो बीज आप अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लेंगे और बीज में भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीज एक तो हाइब्रिड होना चाहिए, क्योंकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो अगर बीज होती है तो उसमें रोग और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। एक जो साधारण प्रकार का अगर बीज हम लगाते हैं वो और एक जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो उत्पादन में ही अंतर होता है और साथ ही साथ इसमें रोगों और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो बीज आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता वाली लेनी है। अब ये बीज आपको मिलेगी कहाँ से, इसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो बीज जो है अच्छे दुकान से ले और वहाँ उनसे कैश मेमो का डिमांड करें, मांग करें, और कैश मेमो जो होता है ओरिजिनल बिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसका लॉट नंबर रहता है, सारा डिटेल रहता है उसमें दिया हुआ। तो इनकेस अगर कभी कोई आपको अगर बीज का शिकायत होता है समय से अगर पहले उसमें अगर फ्लावरिंग हो गया, फूल आ गया या दाना सेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है आपको, अगर आपका कैश मेमो होगा तभी कृषि विभाग या कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो ये होगा कि कहाँ से बीज लाएं, तो ये आपको रसीद लेनी है ओरिजिनल कैश मेमो के साथ और उसको आपको लगाना है। टाइमिंग का भी सही उपयोग करना चाहिए, अभी उपयुक्त टाइम चल रहा है उसको आप लोग लगाइए। अब क्या है कि बीज जो आप लेते हैं उसको उपचारित करना है। अब उपचारित कैसे करें, उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उपचार करने का दो, चूँकि ये मक्का है इसलिए दो चीज़ों से उपचार करने से ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो करना है कि रोगों से इसका कैसे बचाव हो, तो रोगों से जो बचाव होने के लिए इसका हम लोग कार्बेंडाजिम से हम लोग इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसका 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलो सीड की दर से आपको कार्बेंडाजिम लेना है और पानी उतना ही मिलाना है जितना कि जस्ट ये बीज आपको उसमें मतलब ये भींग जाए। और इसको आपको पक्का फर्श पे या पॉलीथीन जो आता है पॉलीथीन सीट उस पे करना है, ज़मीन पे कभी इसको ना करें। और ये जब भी बीज उपचार करते हैं आपको ठंडे में करना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको रोगों से लड़ने। इससे क्या होता है, ये जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदनाशी है, और ये आपके पौधे को, जो पौधा आपका छोटा छोटा होता है उसको लगभग 21 दिन तक आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके मिट्टी में मिट्टी जनित फफूंद भी होगा तो ये अपलू बहुत हद तक आपके फसल को ये बचाता है। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक से भी इसको जो है बीज उपचार करना चाहिए। तो मक्का के केस में क्योंकि कहीं कहीं पे ये हम लोग रबी में लगा रहे हैं इसको, तो इसमें दीमक और इस सब की भी समस्या हो सकती है। दूसरे जो कीट है उनके भी जो शिशु है वो मिट्टी में हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 एसी प्लस साइपरमेथ्रिन 5 एसी ये जो द्रव के मात्रा में ये पाए जाते हैं कीटनाशी, तो इसका आपको जो मक्का का बीज है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति की दर से इसको आपको किसी भी पात्र में या जो पॉलीथीन का जो पैकेट आता है, मक्का का जो पैकेट आता है दो केजी वाला जो आता है, तो उसी में डाल करके आप दोनों हाथ से उसको हिला दीजिए, और हिलाने के बाद पुनः जो है इसको पक्का फर्श पे इसको आप सुखाइए, और सुखाने के बाद तब जा करके आप इसको खेत में लगाना है। इसको पुनः अब खेत में कैसे लगाना है, तो कई किसान भाइयों को रहता है कि अगर जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम कम करेंगे, और फिर लाइन में पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको भी कम करके अगर जो मक्का के जो पौधा है उसकी संख्या अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। लेकिन इसके उल्टा भी होता है, जब इस सारा एक अनुशंसित मतलब इसका जो दूरी होती है जो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, और पुनः उसमें 20 सेंटीमीटर का जो होता है लाइन में पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए। क्योंकि इसे अगर कम आप रखते हैं तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे जो मक्के के पौधा है उसको सभी पार्ट में नहीं लगता है, और जिसके चलते रोग भी होने की समस्या रहती है, और कीटों के जो जीवन चक्र के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था नीचे में जाके कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, और छुपने के बाद जो है वो आपके फसल को ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लाइन से लाइन कर दिए, देन आपको जो पौधा है उसको हमेशा आपको खेत पे अपने जाते रहना चाहिए। खेत पे जाते रहने से क्या होता है कि आपको अगर कोई कीटों का अगर उस पर समस्या होगा, आक्रमण होगा, तो आप देख पाएंगे और उसका जो है समुचित आप उपचार कर पाएंगे।
7: जी, तो अगर हम बात करें कीटों की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं इसके बारे में बताएं।
8: हाँ, ये कीट एक तो कटवर्म जो मक्का में बहुत अभी जब आपका पौधा जब छोटा छोटा होता है तो वो आता है कटवर्म, और दूसरा है जब पौधा फिर आपका जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसमें तना छेदक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। और उसके बाद तना छेदक के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, एक फॉल आर्मी वर्म जो कीट है जो पहले नहीं पाया जाता था लेकिन विगत कुछ सालों से उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, तो वो मुख्यतः ये रहते हैं। उसके अलावा भी कई कीट है लेकिन इन ये तीन कीटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ग्रास हॉपर है जो आपको पत्तियों पे खाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन तीनों तीन कीटों पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि क्या है, उनको कैसे आप पहचानें, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, ये कटवर्म का आप लोग अपने अलग अलग जगहों पे लोकल भाषा में उसका कुछ और भी नाम है हो सकता है, ये आपको बताते हैं कि ये कैसे आपके फसल को नुकसान करता है। तो आप जब अपने जो हम मक्का जब लगाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जब ये दो पत्तियों के फेज में होता है, ये जर्मिनेशन के अंकुरित होने के बाद के जो बाद है उसके बाद ये जनरली आपको कटवर्म की समस्या हो सकती है। तो कटवर्म में क्या होता है कि इसके जो शिशु होंगे वो लंबा लंबा शिशु होते हैं, और वो जनरली ज़मीन का जो ढेला होता है और उसमें ये छुपा रहता है या दरार रहता है उसमें छुपा रहता है ये दिन को, लेकिन जो ही शाम होता है ये निकल करके आपकी जो फसल है उसको ये नीचे से ही कट कर देते हैं, मतलब जड़ के ऊपर से कट कर देते हैं, क्योंकि पौधा बहुत छोटा होता है, मुलायम रहता है, जिसके चलते कभी कभार किसान भाइयों को क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर ये काट दिए, ये जो कीट है, इसके जो शिशु है, तो आपको पुनः किसान भाइयों को वहाँ पे गैप फिलिंग करना पड़ता है मक्का के दूसरे बीजों से। तो ये कटवर्म है, तो अब इस कटवर्म से कैसे आपको निजात पाना चाहिए, तो अगर ये इसकी कहीं कहीं समस्या है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 EC प्लस साइपरमेथ्रिन 5 EC की जो मात्रा है वो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, इसको आपको पूरी तरह से इसको ज़मीन पे और जो आपका छोटा पौधा है उस पे शाम के समय, शाम के 4 बजे के आसपास इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका जो है वो रोकथाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो शुरुआती कंडीशन है। उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जब पौधा आपका जो बड़ा होगा तो तना छेदक का समस्या हो सकता है। तो ये तना छेदक कैसा होता है, ये तना छेदक आप देखेंगे कि आपका जो मक्का है तो उनकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियां में लाइन से 3-3 गोला गोला छिद्र ये हो सकता है, छिद्र मिले। तो पुनः छिद्र के साथ साथ होता है क्या कि जो उसका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो है ये इसके जो है शिशु रहते हैं और वहाँ पे वो उसको वो खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं, साथ ही साथ स्क्रीटा भी उसमें वो डालते रहते हैं। तो ये है तना छेदक का। तो तना छेदक की जब समस्या हो, और इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, अगर 100 पौधे में अमूमन अगर 5 पौधे में ऐसा समस्या अगर 5 से ज़्यादा में देखा जाता है तब आपको इसके उपचार के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे है 5 से इसकी संख्या कम है तो ये उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकता है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके कीटनाशी को छिड़कने में और ख़रीदने में और छिड़कने में जितना पैसा आपका लगता है उससे कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तब आपको इसके उपचार के लिए आपको आगे आना होगा। तो एक तो हो गया, अब इसका उपचार कैसे करें। तो इसके उपचार करने के लिए अगर पौधा आपका छोटा है, आपका अगर पौधा आपके ठोने से नीचे कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप जो दानेदार जो कीटनाशी है, जो कटाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4 G के नाम से आता है, तो इसको एक जर्दे के डब्बा में डालना है और जर्दे के डब्बा में छेद करके जैसे जर्दा पान पे डालते हैं लोग, उसी ढंग से आपको जो मक्का का जो गभा है उस गभा में उसको डालना है, ऐसे छींटना है ताकि 2-3 उसके जो हमारा जो कीटनाशी है क्लोरपाइरीफॉस दानेदार, उसकी ये दानेदार कीटनाशी है, उसका दाना जो है उसके कंठ में चला जाए, क्योंकि ये कीट जो कंठ में छुपे रहते हैं तो ये कीट के बॉडी में ये स्पर्श करते ही सटते ही ये कीट मर जाता है, और आपका जो है जिस पोर्शन में, जिस पॉकेट में, जिस क्षेत्र साइड में अगर ये समस्या, उधर ही सिर्फ छिटने से आपको काम हो जाएगा, आपके पूरे फसल पे छिटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चलते क्या होता है कि एक तो हमारा जो कीटनाशी की मात्रा कम लगती है और हमारे जो मित्र कीट है वो भी मरने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आपको ये तना छेदक के लिए। लेकिन हाँ, अगर पौधा पर बहुत जब बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में आप ये जो दानेदार दवा जो है नहीं छींट सकते, तो उस कंडीशन में आपको जो लिक्विड वाला दवा है उसको आपको गटोर से स्प्रे करना चाहिए, और उस कंडीशन में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसकी मतलब 10 लीटर पानी में 4 ग्राम मात्रा आपको डालना है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा कीटनाशी है जिसको पहले ये झिल्ली की तरह होता है, इसको पहले आपको किसी भी पात्र में घुला लेना है, और घुलाने के बाद ये घुलाने के बाद तब आपको स्प्रेयर में डाल करके फिर पानी डालना है और उसके साथ कुछ मात्रा में स्टिकर मिलाना है और स्टिकर मिला करके अच्छी तरह से उसको तब आपको स्प्रे करना है गटोर से पूरी अच्छा से स्प्रे करना है। और स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटा छोटा बूंद आए, ऐसा नहीं कि पूरा पानी पूरा निकल रहा हो, इससे आपकी दवा भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो सॉइल और सारा हमारा जो सिस्टम है वो उस पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया तना छेदक के लिए। अब एक आती है जो फॉल आर्मी बम, तो ये फॉल आर्मी बम हो सकता है कि सब कहीं पे आता है कहीं पे नहीं भी आता है, लेकिन इसको ये बहुत आक्रामक है, ये तना छेदक से भी ज़्यादा बहुत जल्दी ये आपके फसलों को बर्बाद करता है, इसीलिए इसका नाम फॉल आर्मी बम रखा गया है। क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका 2 से 3 दिन में आपके फसल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो ये आपको जो तना छेदक होता है इससे ये ज़्यादा मोटा होता है, लंबा भी होता है, इसके बॉडी पे ये काला काला धारी होता है और साथ ही साथ इसके जो टेल जो पूंछ पोर्शन जिसको बोलते हैं, तो पूंछ पोर्शन में 4 छोटे छोटे बिंदु काले काले बिंदु होते हैं जो एकदम स्क्वायर के रूप में रहते हैं, जैसे कि अगर चारपाई या जो भी स्क्वायर होता है उसके चारों साइड पे ये बुंद रहेंगे। साथ में अगर आगे पोर्शन में देखिएगा तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो उल्टा वाई का शेप उसके सर पे बना हुआ रहता है। तो ये फॉल आर्मी बम है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जनरल कीटनाशी है उसे ये कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इसके भी 6 इन स्टार है, इसके जो 6 स्टेजेज हैं, अगर ये इनिशियल कंडीशन में है तो सिंपल कीटनाशी से भी ये इनका रोकथाम हो सकता है, लेकिन अगर ये इन स्टार अगर ये एडवांस इन स्टार में है जैसे 4, 5 और उसके आगे के इन स्टार में है तो उस कंडीशन में आपको मतलब इससे जो हार्डी इंसेक्टिसाइड है वो देना है। तो जो शुरू वाला अगर फेज है जैसे स्टेज 1 और 2 में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट हमने जो बताया है उससे भी ये नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 स्टेज में है तब स्पाइनोटोरम 11.11.7% की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको और साथ में स्टिकर लेकर के इसको छिड़काव करना है शाम के समय में। और अगर इसकी उपलब्धता नहीं हो तो थायोमेथक जम 12.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथोगियम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मी वर्म में क्या होता है, ये आपके पत्तियाँ को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जब बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए और इससे आपका इस से आप निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मक्का का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा।
9: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
7: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
7: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
9: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है, उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टी विटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
7: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियाँ कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
7: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। खुद का कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
7: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने खूब

0: पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
1: बन बकेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओ एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
1: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर।
1: जी,
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है।
1: जी,
0: खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
1: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओ अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
1: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
1: श्रोताओ कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओ दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था।
1: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
1: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
1: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया।
1: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
1: सोचिए श्रोताओ, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि 4 बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओ, किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है।
1: जी।
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
1: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति, नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
1: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने 4 बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती
1: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम 3 बातों को जरूर याद रखें।
1: जी।
0: तो पहली बात,
1: संकट में घबराएं नहीं।
0: दूसरी बात,
1: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
1: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम।
1: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी।
1: जी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते

0: चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना नहीं,
4: अरे
5: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
6: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
4: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
5: प्लीज दिखा दो।
4: अरे चुप, देखो मैडम आ रही हैं। चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी। चलो चलो चलो चलो
7: चलो। गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
8: बहुत अच्छी।
9: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
10: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
10: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
10: जी
11: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
11: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
10: लीजिए मैडम।
3: हाँ, इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
4: अरे किताब भी नहीं है।
3: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
10: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
4: सैनिकों के बारे में।
10: सैनिकों के बारे में है।
11: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
10: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है। वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
10: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
9: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
4: सैनिकों को तो बहुत
10: बहादुर है हमारे सैनिक।
11: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
9: मुझे भी।
11: इसके बाद मैं नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
5: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
11: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
11: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
10: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
8: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
10: जी मैडम।
3: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
10: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
3: क्या बात है।
11: अच्छा मेघा ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
10: बताती हूँ सुनो। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह। अच्छा मेघा क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
10: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
3: शाबाश।
10: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
11: मेघा ऐसा क्या किया था उन्होंने?
10: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूं?
8: ओ मैडम जी।
3: जी मोहन भैया क्या बात है, आ जाइए।
8: मैडम जी आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
3: ओ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
8: ठीक है जी।
3: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
10: जी मैडम।
3: मेघा देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
11: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
4: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अवसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह
9: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
12: मोहित लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
3: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
13: नमस्ते सर।
14: नमस्ते बच्चों।
3: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
10: जी मैडम।
14: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
10: धन्यवाद सर।
12: धन्यवाद सर।
14: सबसे पहले तो मेघा मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
10: धन्यवाद सर।
14: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
10: सर मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
14: बिल्कुल ठीक। बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
3: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
14: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
13: एक हिंदुस्तान।
14: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
15: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
16: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद।
14: दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था।